0: मंदिर है। गूगल मैप्स पर भी इस मंदिर की तस्वीरें मौजूद हैं। साफ पता चलता है कि ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। सर्च के जरिए साफ हो गया कि ये वीडियो न्यू टाउन का ही है और इसमें दिख रही महिला मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक है, जो 4 मई को चुनाव नतीजों के दिन बीजेपी की जीत की खुशी मनाते हुए डांस कर रही थी। मानसी और उनके पति सुखरंजन हल्दर दोनों ही बीजेपी समर्थक हैं, जो न्यू टाउन के विवेकानंद पल्ली इलाके में रहते हैं और नई सरकार के गठन के बाद से अब तक इस इलाके में कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी क्लिप को रिवर्स सर्च करने से ये हमें एक न्यूज आउटलेट की 12 जून 2025 की रिपोर्ट में मिली। रोती हुई महिला वाला वीडियो इसी 10 मिनट 45 सेकंड की रिपोर्ट से लिया गया है। ये रिपोर्ट दिल्ली के कालकाजी में हुई डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई से संबंधित है। वीडियो में महिला भगवान की मूर्ति पकड़कर खड़ी है और कह रही है कि बीजेपी के राज में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां मौजूद दूसरे लोग भी रिपोर्टर से बातचीत के दौरान अपना घर तोड़े जाने पर दुख जाहिर कर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस वीडियो को उस वक्त कांग्रेस ने भी शेयर किया था और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार के राज में दिल्ली में मंदिर भी तोड़ दिए गए। एक आधिकारिक न्यूज आउटलेट पर 11 जून 2025 को छपी एक खबर के मुताबिक कालकाजी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध अतिक्रमण का ये मामला लगभग 10 साल कोर्ट में चला था, लेकिन झुग्गी वासियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट के आदेश के बाद ही ये अवैध निर्माण गिराए गए थे। इस दौरान 344 घर गिराए गए थे जिनमें 1200 परिवार रहते थे। साफ है दोनों क्लिप्स में दिख रही महिलाएं अलग अलग हैं। पहली क्लिप बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की है, जहां मानसी हल्दर नाम की बीजेपी समर्थक 4 मई को पार्टी की जीत के बाद खुशी मना रही थी। वहीं दूसरी क्लिप जून 2025 में दिल्ली के कालकाजी में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान का है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पर बीच बाजार में चाकू से हमला किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करके यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि एक हिंदू लड़की से इश्क करने पर एक मुस्लिम युवक की हत्या कर दी गई। वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, पड़ताल करते इस वीडियो में देखिए।
2: सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स के हाथ में चाकू है, निशाने पर एक व्यक्ति है जिसे पीछे से एक दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है ताकि वो चाकू के वार से बच नहीं पाए। बीच सड़क पर ये खूनी खेल चल रहा है, लेकिन कोई इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी अनदेखी करके आगे बढ़ जा रहे हैं। यहां तक कि किसी ने पुलिस को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो खूब तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर धड़ल्ले से वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर इसे शेयर कर रहे हैं।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्यार करना महंगा पड़ गया, बाजार में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले तो वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को बड़े ही गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में एक बोर्ड नजर आया, उसमें तेलुगु में कुछ शब्द लिखे मिले, मतलब ये वीडियो तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने इंटरनेट और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन हाल फिलहाल में दावे की पुष्टि करती कोई ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे हमें वायरल दावे पर संदेह हो। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल, अगर दावा सही है तो वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं रंजिश के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? आखिर सच्चाई क्या है? क्या है सच, क्या है झूठ? दिखाते हैं।
2: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। उस दौरान हमें नवंबर 2025 की कई तेलुगु भाषा में छपी रिपोर्ट्स मिली जिसमें वायरल हो रहे वीडियो के क्लिप का इस्तेमाल किया गया था। 5 नवंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बालेश्वर रेड्डी और पीड़ित रोशन कुमार सिंह दोनों ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधी थे। बताया गया था कि ये मामला वित्तीय विवाद को लेकर हुआ था। सर्च के दौरान हमें 5 नवंबर 2025 को छपी एक आधिकारिक रिपोर्ट मिली। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और उसी दिन बालेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में जगतगिरी गुट्टा बस स्टॉप पर रोशन कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। रेड्डी ने अपने साथियों मोहम्मद और आदि के साथ मिलकर रोशन पर धारदार हथियार से हमला किया और फिर मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में रोशन कुमार सिंह की मौत हो गई। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि रेड्डी और रोशन दोनों हिंदू थे। इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे हमलावर और पीड़ित दोनों हिंदू थे। 2025 की इस घटना में कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं था। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ फैक्ट चेक में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार से वापस आएंगे, आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड की हलचल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए GNT।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
4: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर को अंत की तरफ बढ़ाने का, आप सबको ऐसे वीडियोस दिखाने का जिसके बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
5: कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है, और इस बात को सच कर दिखाया है रूस के रुस्तम नाबियेव ने। उन्होंने वो कर दिखाया है जिसे आम इंसान तो क्या, अच्छे भले पर्वतारोही करने से पहले 100 बार सोचे। दोनों पांव से दिव्यांग रुस्तम ने बिना किसी कृत्रिम पैर के सिर्फ अपने हाथों के सहारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली है। इस ऐतिहासिक चढ़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई हैं। दरअसल साल 2015 में एक सैन्य बैरक के अचानक ढह जाने से रुस्तम ने अपने दोनों पांव हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। उस हादसे में कई सैनिकों की जान चली गई थी और रुस्तम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर जिंदगी काटने के बजाय उन्होंने पहाड़ों को चुनौती देने का फैसला किया। 20 मई को उन्होंने सुबह 8:16 पर एवरेस्ट के शिखर पर रूसी झंडा लहराया। इससे पहले पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्धा मगर ने कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट फतह किया था, लेकिन बिना प्रोस्थेटिक्स के सिर्फ हाथों के बल पर एवरेस्ट फतह करने वाले रुस्तम दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आंसर शीट नजर आ रहा है और उसमें छात्र ने सभी सवालों के जवाब भी लिखे हुए हैं। लेकिन टीचर का दिमाग कुछ शब्द देखकर घूम गया, क्योंकि उसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। छात्र ने अबाउट को ABT लिखा हुआ है, उसने आगे एक जगह पर काइंडा लिखा हुआ है, वही एक जगह पर उसने बाय द वे की जगह BTW लिखा हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बात करते हुए अक्सर यूज करते हैं, मगर आंसर शीट में देखकर टीचर ने भी माथा पकड़ लिया। वही वीडियो में लिखा है, अगर आपका स्टूडेंट जेंजी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पपेट शो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ, वही कठपुतली कला जिसमें एक आदमी कुछ कठपुतलियों को अपनी उंगली से कंट्रोल करता है और एक कमाल का शो दिखाता है। ये एक पुरानी कला है जो लोगों का मनोरंजन करती है, मगर आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। वही कला वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिली। वायरल वीडियो में नजर आता है कि एक पपेट कुछ आर्ट बनाने में लगा हुआ है। वो कलम निकालता, उसकी इंक चेक करता, कागज पर कुछ बनाता और फिर उसे गौर से देखते हुए नजर आता। उस पपेट को एक आदमी कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट का पैसा वसूल हो गया है। सोशल मीडिया पर एक अनोखा और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुल्हन खुद अपने पति के घर बारात लेकर पहुंच जाती है। गाने की धुन, पटाखों की गूंज के साथ जबरदस्त डांस करते हुए वो पूरे धूम धड़ाके के साथ ससुराल में एंट्री करती है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल बारात नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में दिया गया सरप्राइज था। घर के बाहर ही वो जमकर नाचती है और फिर अपने होने वाले पति को वरमाला पहनाकर सबको चहका देती है। आसपास मौजूद लोग भी इस पल को एंजॉय करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

0: किसान की मेहनत उसकी फसल में ही दिखती है। इस फसल के मन मुताबिक फलने फूलने की खुशी किसान ही महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना के किसान ने खुशी न सिर्फ खुद महसूस की है बल्कि दूसरों को भी महसूस कराई है। वीडियो में एक तरफ फसल कटती नजर आ रही है और दूसरी तरफ है खुशी जताता किसान। खुशी में वो जो भी कर रहा है उसे वो इंसान भी महसूस कर सकता है जिसने कभी खेती होते हुए भी ना देखी हो। वायरल हो रहे वीडियो में किसान को गुलाटियां लगाते देखा जा रहा है। वो ऐसी गुलाटियां लगा रहा है जैसे छोटा बच्चा हो, जबकि वो देखने में अधेड़ उम्र का लग रहा है। उसकी खुशी इतनी थी कि उसने उम्र देखने वालों और फसल काटने वालों की भी चिंता नहीं की। इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि महीनों की मेहनत आखिर क्या होती है। गर्मी से बचने के लिए एक कपल ने बाइक पर ऐसा जुगाड़ भिड़ाया जिसने सभी को चौंका ही दिया है। आलम यह है कि इस वीडियो को लोग बार बार देख रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि गर्मी से बचने के लिए किस तरह एक कपल ने बाइक को ढका है। देखकर ऐसा लगता है जैसे बाइक नहीं बल्कि चलता फिरता घर हो। आलम यह है कि सड़क पर पलट पलट कर लोग इसे देख रहे थे। जंगल में बंद पड़े रास्ते को एक हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से साफ कर दिया। आईएसएफ अधिकारी प्रवीण कासवान ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो साझा किया है जिसमें एक हाथी जंगल के रास्ते को साफ करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रास्ते पर भारी लकड़ियां और पेड़ों के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे जिनकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए जेसीबी जैसी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जंगल के अंदर हर जगह मशीनों का पहुंच पाना आसान नहीं होता। खासकर बारिश या खराब रास्तों के कारण भारी वाहन अंदर नहीं जा पाते हैं। ऐसे समय में हाथी जंगल विभाग के लिए सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी और एक छोटे से डॉगी की जबरदस्त बॉन्डिंग और मस्ती साफ नजर आती है। वीडियो में दिखता है कि एक बड़ा हाथी तालाब के किनारे खड़ा हुआ है और अपनी लंबी सूंड से पानी उछालकर उस नन्हे डॉगी पर गिरा रहा है। हाथी का अंदाज ऐसा लगता है जैसे वो डॉगी को बारिश या झरने जैसा मजा दिला रहा हो। हाथी की इस हरकत से डॉगी भी काफी खुश दिखता है। पानी की बौछारों के बीच वो उछल कूद करता रहता है जैसे उसे कोई नेचुरल शावर मिल गया हो। वीडियो में उसकी पूंछ लगातार हिलती रहती है जिससे साफ पता चलता है कि वो इस मस्ती को दिल से एंजॉय कर रहा है। साथ ही वो कई बार हाथी को फिर से पानी डालने का इशारा भी करता नजर आता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पहली नजर में देखने से लगता है कि एक शख्स अपने हाथ पर कुछ लकड़ी की सूखी टहनियों को रखे हुए है, लेकिन अगले ही पल उन सूखी लकड़ियों में जब हलचल होती है तो पता चलता है कि ये कोई सूखी लकड़ी की टहनी नहीं बल्कि कीड़े हैं। वायरल वीडियो को लेकर जानकारी जुटाने पर पता चला कि इन कीड़ों का नाम बफ टिप मॉथ है। ये कीड़े देखने में टूटी हुई लकड़ी की टहनी के टुकड़े लगते हैं, मगर असल में ये कीड़े होते हैं। इन कीड़ों की यही सबसे बड़ी खासियत है। बफ टिप मॉथ नाम का ये कीड़ा जब आराम करता है तो वो अपने पंखों को कुछ इस तरह से मोड़ लेता है कि वो देखने में बिल्कुल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह नजर आता है। ये कीड़ा अपने आप को शिकारी पक्षी और जानवरों से बचाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wake up.
3: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: बॉलीवुड में इन दिनों अगर किसी फिल्म के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है नितेश तिवारी की रामायण। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई लेकिन कमाई के मामले में पहले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड के लिए खतरा बनने लगी है। खबर है कि मेकर्स ने सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए पूरे 450 करोड़ रुपए की डिमांड रख दी है, यानी कि रिलीज से पहले ही फिल्म का भाव आसमान छू रहा है।
6: रिलीज से पहले ही इतिहास रचने जा रही है रामायण। बड़े पर्दे पर किंग का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज से पहले ही सिनेमा की दुनिया में हलचल मचाने का दम रखती हैं। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भी कुछ ऐसा ही धमाल मचाने की तैयारी में है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही मेगा बजट फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक दिखाने लगी है। सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि फिल्म के मेकर्स को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। शायद यही वजह है कि मेकर्स ने फिल्म के सिर्फ हिंदी थिएट्रिकल राइट्स के लिए 450 करोड़ की भारी भरकम मांग रखी है। अगर राइट्स के लिए 450 करोड़ की डील हो जाती है तो ये शाहरुख खान की किंग के मौजूदा रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा होगी। किंग के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की डील करीब 250 करोड़ में हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो रामायण के थिएट्रिकल राइट्स की डील पर जल्द मुहर भी लग सकती है। अगर ये डील 300 से 400 करोड़ के बीच फाइनल होती है तो भी ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड होगा। कामयाबी की उम्मीदों के आंकड़े सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की डील में ही नहीं दिख रही। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की महाडील पर भी नजरें टिकाए हुए हैं। नमित इस डील के लिए इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से बातचीत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से फिल्म के दोनों पार्ट्स की कंबाइंड स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मेकर्स को 700 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन नमित मल्होत्रा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और वो डिजिटल राइट्स के लिए 1,000 करोड़ की डील ही चाहते हैं। जाहिर है अगर ये दोनों डील पक्की हो जाती हैं, तो ये फिल्म पर्दे पर आने से पहले ही टेबल प्रॉफिट का नया इतिहास रच देगी। रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म रामायण एक भव्य पौराणिक फिल्म है। इस फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका में हैं और साउथ के सुपरस्टार यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। पर्दे पर भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल नजर आएंगे। धुरंधर की तरह ही फिल्म भी दो पार्ट्स में आने वाली है। रिलीज से काफी पहले से ही इस फिल्म का सोशल मीडिया पर बज बना हुआ है। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा। ये फिल्म करीब 4,000 करोड़ के भारी भरकम बजट में तैयार हो रही है। फिल्म के मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि रिलीज के बाद ये फिल्म हिंदी सिनेमा में कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और खबरों में अब रुक करते हैं अनोखे रिकॉर्ड की ओर, जो कि बना है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट फतह करने की तमन्ना तो तमाम लोगों को होती है, लेकिन वहां पर सभी का पहुंच पाना मुश्किल होता है। हालांकि दो दिन पहले ही एक साथ 250 के करीब लोगों ने चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। देखिए,
7: बर्फ से ढके इस पहाड़ पर जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है, पर्वतारोहियों की ये लंबी कतार हैरान करने वाली है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा पर्वतारोहियों का ये दल न केवल इस शिखर को फतह करने निकला था, बल्कि इन्होंने वहां पहुंचकर अनोखा रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। बताया जा रहा है कि 20 मई को नेपाल से 274 पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंचे और एक ही साथ इतने लोगों के एवरेस्ट फतह करने का नया रिकॉर्ड बन गया। नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इसकी तस्दीक की है।
8: On the 20th of May 2026, above 274 people summit successfully, including the climbers and the Nepali Climbing Sherpa Guide. This year, 2026, more than 500 people obtained the climbing permit for Mount Everest from the Department of Tourism.
7: इससे पहले 22 मई 2019 को 223 लोग एक साथ एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एवरेस्ट पर आवागमन को लेकर इस तरह से चिंता भी जताई गई कि इससे वहां की आबो हवा पर असर पड़ सकता है और पर्यावरण को खतरा भी हो सकता है। लेकिन नेपाल के एक्सपीडिशन ऑपरेटर्स एसोसिएशन का कहना है कि लोगों के एक साथ जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि सैकड़ों पर्वतारोही एक ही समय में वहां मौजूद हों, बल्कि वो अलग अलग झुंड में होते हैं।
8: Disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter. So they are not in gathering, they are distributing in different camps and park. So there aren't that much climber in Everest according to the size, according to the distance of the mountain.
7: हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन अधिकतम 250 लोगों की सीमा तय कर दी जाए ताकि निश्चित संख्या में ही लोग एवरेस्ट के शिखर तक जा सकें और वहां भीड़ न लगे, क्योंकि पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ने से वहां पर ऑक्सीजन की कमी और एक्सीडेंट के खतरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पर्वतारोहियों की जान और एवरेस्ट के प्राकृतिक माहौल को बचाने के लिए सावधानी हर हाल में जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।

जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है। बताओ, विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है, वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, बोलो, क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे और तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो, बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटू वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। दोनों की भक्ति में अंतर है, ऐसे समझे। यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। जरूरी नहीं कहे अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें विभीषण से कह रहे, हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक बाटका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, बाटका का नाम अशोक, माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है। जहां नाम कुछ और हो काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम, नाम तो अशोक बाटका है, माता सीता शोक में। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को,

हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा है, एक बार दर्शन करा दो फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ पागलो। हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी

0: और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है।
1: बहुत से लोग हमें मिलते हैं और हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी, हमने कहा हाँ जी, बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हमका हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी। जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माताजी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले मैं। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा, पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे, श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा हैं। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ को, भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा ना मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं। साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरषि मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा क्या विभूति है, श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है।

बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18-18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है, चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वे जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजनदास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है, इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सियाराम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक बाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है, बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था, श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां। आहा, बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्तमाली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जाकर जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था, तो यह पटना रेलवे स्टेशन पर गए। तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे, श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकालकर बोले, क्यों बाबा दिल्ली जाना है क्या? तो मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए, धन्य है किशोरी जी की कृपा, अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। भैया इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलो मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी, व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो और हनुमान

0: मेरी प्रिय आत्माओं, भगवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमतां वरिष्ठं भी हैं, बुद्धि बल भी तेज है। लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात हो, देखो झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखे कहां। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन, है कहां खर्च करें दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आपत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े के है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम, ये झंझट है बहुत खतरनाक झंझट होते हैं, इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो। बोलो जय सियाराम। एक आचार्य जी कथा सुनाते थे, बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। एक महात्मा मरने लगे तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कोई ज्ञान दो ज्ञान, तो गुरुजी बोले एक ही ज्ञान है बिल्ली मत पालना। एक ही ज्ञान है, क्या नहीं पालना, बोलो बोलो, बिल्ली मत पालना। अब महात्मा मर गए, अब शिष्य बड़ा हैरान कि गुरुजी कह गए बिल्ली मत पालना, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। दूसरे महात्मा ने बताया, बोले हम तुम्हारे गुरुजी को जानते हैं, हमें पता है हकीकत। बोले क्या, बोले क्या है, जब तुम्हारे गुरुजी नए नए बाबा बने तो जिस कुटिया में रहते थे वहां चूहे बहुत रहते थे, चूहे कपड़े फाड़ देते थे, चूहे लंगोट फाड़ देते थे। तो गांव वालों ने कहा महाराज चूहे अगर कपड़े फाड़ देते हैं तो बिल्ली पाल लो। तो महात्मा जी ने बिल्ली पाल ली कि कम से कम चूहे खाती तो रहेगी बिल्ली। और जब से बिल्ली आई सो चूहे कम हो गए, लेकिन एक नई आपत हो गई कि दूध चाहिए बिल्ली को। अब गांव वाले दूध कब तक दें?
1: क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसकी माता की सेहत बिगड़ सकती है? क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसके घर में विवाद हो सकते हैं? क्या बच्चे के ग्रहों की वजह से आर्थिक स्थिति चमक सकती है? बच्चे के ग्रहों का माता पिता के भाग्य पर क्या होता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates. Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake up. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
1: just
4: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
0: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: उत्तराखंड में आज खुल रहे हैं सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक। मई के महीने में जारी मौसम की आंख मिचोली, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बेमौसम बर्फबारी। IMD का अगले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में आंधी तूफान का अलर्ट। मैदानों में प्रचंड गर्मी का दौर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: लंबे इंतजार के बाद ऐश्वर्या राय पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में बला की खूबसूरत लग रही है ऐश्वर्या राय, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये स्टनिंग लुक। पैप्स को स्माइल करते हुए हैंड वेव करती दिखी ऐश्वर्या राय, अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कान के रेड कार्पेट पर पैप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते नजर आई, मुस्कुराते हुए हाथ इमोजी भी बनाकर किया सबका अभिनंदन। खूबसूरत गाउन के साथ जमीन तक लहराता दुपट्टा, नुमा स्टॉल ने लुक किया पूरा, दोनों हाथों में अंगूठी और गले में पहने हार ने उनकी खूबसूरती में लगाए चार चांद। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान भारत पवेलियन में लॉन्च किया गया फिल्म बॉम्बे स्टोरीज का पहला पोस्टर, मशहूर लेखक सादत हसन मंटू की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। रामचरण की फिल्म पैडी के नए गाने हेला लालू का प्रोमो रिलीज, गाने में रामचरण और जानवी कपूर का जबरदस्त डांस। आज भोपाल में होगा फिल्म पैडी का सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर बूची बाबू सना, संगीतकार ए आर रहमान समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट होगी शामिल। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजला में डबल रोल में आएंगे वो नजर, खलनायक निभाएंगे किरदार, विलेन का भी किरदार निभाएंगे। 14 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म। दशहरे पर बॉक्स ऑफिस पर हुंकार भरने को तैयार है राजकुमार, 16 अक्टूबर को फिल्म रफ्तार होगी रिलीज किया ऐलान। अब हॉलीवुड में दिखेगा वरुण धवन का दमदार एक्शन, मशहूर निर्माता लॉरेंस कासनॉफ की फिल्म में आएंगे नजर। माधुरी दीक्षित तृप्ति डिमरी की फिल्म माँ बहन का ट्रेलर रिलीज, 4 जून को ओटीटी पर होगी रिलीज। फिल्म द नर्मदा स्टोरी का दमदार एंथम रिलीज, देश की महिला पुलिस अधिकारियों के शौर्य, खाकी वर्दी देशभक्ति और नारी शक्ति को सलाम करता है ये गीत। तेलुगु अभिनेता सत्यदेव कंचाराना ने की नई फिल्म का नाम रिवील, संवर्ती का फर्स्ट लुक आया सामने। धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद फैंस को अब आर माधवन की पोस्टर अवेटेड बायोपिक ड्रामा जीडीएन का इंतजार, महान आविष्कारक और उद्योगपति जीडी नायडू के जीवन पर आधारित ये फिल्म 17 जुलाई को होगी रिलीज। आईपीएल के 67वें मैच में हैदराबाद की शानदार जीत, आरसीबी को 55 रन से दी करारी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करने वाले हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर बनाए 255 रन, जवाब में 200 रन पर सिमटी आरसीबी की पारी। हैदराबाद से ईशान किशन ने खेली 79 रनों की धुरंधर पारी, अभिषेक ने 56 और क्लासेन ने बनाए 51 रन। इस हार से आरसीबी को नहीं हुआ खासा नुकसान, अभी भी टेबल टॉप पर ही है आरसीबी, जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैदराबाद। अब बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, 26 मई को धर्मशाला में होगा मैच। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब की भिड़ंत, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 7 मुकाबले में हुई कांटे की टक्कर, जिसमें पंजाब को 4 और एलएसजी को 3 मुकाबलों में जीत मिली। प्लेऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है लखनऊ की टीम, हालांकि अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ इस सत्र को खत्म करना चाहेगी एलएसजी। पंजाब को प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस मैच में जीत जरूरी, बल्कि नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए एक बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी जीत। पिछले कुछ मैचों से खराब गेंदबाजी से जूझ रही है पंजाब की टीम, इस बार अर्शदीप और चहल होपर होंगी सबकी निगाहें। भारत की सुरक्षा हुई और मजबूत, ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता, 12 टन है इस मिसाइल का वजन। 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में है सक्षम अग्निवान, कम दूरी तक बेहद सटीक हमला करने की है क्षमता। स्ट्रैटेजिक फॉरेंसिक कमांड की देखरेख में किया गया यह परीक्षण, जो देश की रक्षा और न्यूक्लियर क्षमता को देता है मजबूती। इसे क्विक रिएक्शन के हिसाब से किया गया है डिजाइन। खास बात यह है कि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है मिसाइल। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है साइप्रस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ राष्ट्रपति निकोस का भव्य स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई लंबी बातचीत। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात। 19 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बागेश्वर में अब हर शनिवार मनाया जाएगा नो व्हीकल डे। पेट्रोल संकट और बढ़ते जाम के बीच बागेश्वर प्रशासन का बड़ा फैसला। पटना में मिट्टी के घड़े और बोतल की बाजार में बड़ी डिमांड। बढ़ती गर्मी के बीच कुम्हारों के काम में तेजी। कश्मीर के जोजिला और आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी। आईएमडी का अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के असर। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिखा रहा है गर्मी। गर्म हवाओं के साथ लगातार बढ़ रहा है पारा। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल। बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम का सख्त आदेश। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के कारण 23 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट। सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूकने से 7 बिजली घर ठप। रैपिड मेट्रो की सेवा कई घंटों के लिए बाधित। विदर्भ के ब्रह्मा भूमि में 47 डिग्री पहुंचा पारा। 25 मई तक कई जिलों में हीट वेव के रेड और ऑरेंज अलर्ट। आज से खुल रहे हैं सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। चरम पर श्रद्धालुओं का जोश। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए रवाना। गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया। समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र है श्री हेमकुंड साहिब। हर साल मई महीने से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है पवित्र यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम कर चुके हैं हेमकुंड साहिब का निरीक्षण। यात्रा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट है टीम। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। पवित्र अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीरें आई सामने। गुड न्यूज टुडे पर करिए बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन। प्राकृतिक हिम शिवलिंग ने पूरी तरह लिया आकार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में है तैयारियां। पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंची सुरक्षा बलों और मंदिर प्रशासन की टीम। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा। 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालु कर आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन। बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम में आज करीब 90,000 श्रद्धालु ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 30,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने दर्शन किए। आज करीब 28,000 श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल के धाम। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का मेला। दोनों धामों में करीब 3.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया परीक्षण। 1,000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम अग्नि-1 मिसाइल। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी के कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। 3D इमेज जारी। तेलंगाना के मंत्री के वेंकट रेड्डी का 14 टॉपर बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट। हवाई जहाज से हैदराबाद से विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे बच्चे। रिजर्व बैंक देगा सरकार को अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड। रिकॉर्ड 2.87 ट्रिलियन रुपए के ट्रांसफर को बोर्ड की मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुआ मशहूर विविड फेस्टिवल। शानदार रोशनी से नहाया ओपेरा हाउस। शानदार आतिशबाजी के साथ विविड फेस्टिवल का शुभारंभ। सिडनी में उमड़ा जन सैलाब। ओपेरा हाउस पर दिखाई गई मछलियां जेलीफिश और पक्षियों की आकृति। 23 दिनों तक चलेगा विविड फेस्टिवल। 13 जून को होगा विविध फेस्टिवल का समापन, दुनिया भर से जुटेंगे पर्यटक। सैलानियों को देखने को मिलेगी रोशनी, संगीत और कला का अनोखा संगम, कई प्रसिद्ध कलाकारों की आज की भी नुमाइश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
4: क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसकी माता की सेहत बिगड़ सकती है? क्या बच्चे के ग्रह की वजह से उसके घर में विवाद हो सकते हैं? क्या बच्चे के ग्रहों की वजह से आर्थिक स्थिति चमक सकती है? बच्चे के ग्रहों का माता पिता के भाग्य पर क्या होता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
13: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
14: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
13: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है, तो निकालिए अपना कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
17: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

आपका आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके आहार का आपके विचारों पर आपकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके आहार और आपके विचार के कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी जीव की मुख्य रूप से चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। हो सकता है आप खाने पीने से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी, चाहे प्रकृति से चाहे प्रकाश से। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो अन्न नहीं खाते रहे हैं, लेकिन प्रकृति से, वायु से, तेज से, अग्नि से, प्रकाश से वो अपने आहार की आवश्यकताएं पूरी करते रहे हैं। तो आहार आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप भोजन से आहार लें, चाहे प्रकृति की शक्तियों से आहार लें। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका हमारे ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है। देखिए, शरीर का जो निर्माण है या शरीर के मानसिक स्तर का जो निर्माण है वो विभिन्न कोशों से हुआ है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आहार से ही हमारी कोशिकाओं का, हमारे सेल्स का निर्माण होता है और उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, रस का क्षरण होता है। रस यानी हार्मोन्स से हमारी सोच में विकास और परिवर्तन आता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब आप साधना जगत में जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें खाने को मना किया जाता है। उसका कारण पाप पुण्य नहीं है, उसका कारण ये है कि जिस तरह का आहार ग्रहण करेंगे मन वैसा ही होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप गहरी उपासना नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप साधना के मार्ग पर, मन को शुद्ध करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार को पवित्र करना होगा। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि कौन सी खाने पीने की चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते, सात्विक भोजन नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी सात्विक आहार नहीं मानते। मांस मछली और मादक पदार्थ को भी सात्विक नहीं माना जाता। जो खाद्य पदार्थ डब्बे में बंद करके लंबे समय के बाद प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी सात्विक नहीं मानते। बासी खाना, एक समय से ज्यादा पुराना भोजन, खास तौर से मसूर की दाल, अगर एक वेला से ज्यादा हो गया तो वो तामसिक हो जाती है। किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रख सकते हैं? सभी प्रकार की अनाज और दाल, ये सात्विक है। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ भी सात्विक है। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक आहार हैं। फल और मेवे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये भी सात्विक आहार के अंदर आते हैं। अब ये जानते हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें आपको खानी चाहिए। रोटी खाइए, बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो प्याज लहसुन और मांस मछली से परहेज करें, खास तौर से कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आपको छोटी छोटी बात पर तनाव पालने की आदत है, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करें। मशरूम और आलू यानी कंद, मशरूम, अरवी, बंडा, आलू, ये कम खाएं या ना खाएं। अगर आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करता हो, शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइएगा, अनाज आपको कम से कम खाना चाहिए। अगर आपके मन में ज्यादातर अश्लील विचार आते हों, ज्यादातर निगेटिव विचार आते हों, बुरे विचार आते हों, तो मांस मछली, प्याज लहसुन ना खाएं। मसूर की दाल से भी संभव हो तो परहेज करें।
जितना पवित्र और जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके सोच पर इसका असर पड़ेगा। जो लोग बुरे स्वभाव के हैं, गलत तरीके से कमाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुष्टता दिखाते हैं, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आज हमने बात की आपके आहार और आपके विचार के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मेज पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपके ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: उत्तराखंड में आज खुल रहे सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन तक चलेगी यात्रा। ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक। मई के महीने में जारी मौसम की आंख मिचोली, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बेमौसम बर्फबारी। आईएमडी का अगले 48 घंटों के दौरान कश्मीर में आंधी तूफान का अलर्ट, मैदानों में प्रचंड गर्मी का दौर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के ग्रह के बारे में। जब आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके ग्रहों का असर उसके माता पिता के भाग्य पर पड़ता है, और अगर पड़ता है क्या कोई बुरा असर पड़ता है, तो इसको सही करने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
5: अगर आप किसी मुकदमे को जल्दी हल करना चाहते हैं, कोई मुकदमा चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को मीठे चावल अर्पित करें, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठा चावल बनाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें और वो मीठे चावल मंगलवार को हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पित करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बांटें। अगर आप ऐसा लगातार करते जाएं तो मुकदमे में कितनी भी गड़बड़ियां क्यों ना हो, मुकदमा आपके पक्ष में हल होगा।
4: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से, क्या किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है?
5: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के ग्रहों का, बच्चे के भाग्य का माता पिता के जीवन पर कैसा असर पड़ता है। क्या वास्तव में किसी बच्चे के भाग्य का माता पिता के भाग्य पर असर पड़ता है? देखिए, किसी भी बच्चे का जन्म माता पिता के प्रारब्ध से, माता पिता के भाग्य से ही होता है। हर बच्चे के ग्रह अपने माता पिता के साथ जुड़े हुए होते हैं। माता पिता के अच्छे और बुरे ग्रह बच्चे पर तुरंत असर डालते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अच्छे और बुरे ग्रह माता पिता पर भी असर डालते हैं। कभी कभी बच्चे का भाग्य इतना ज्यादा प्रबल होता है कि उसके जन्म लेने के साथ ही माता पिता का भाग्य बदल जाता है। बच्चे के जो अलग अलग ग्रह हैं, बच्चे का सूर्य, बच्चे का चंद्रमा,

0: का, तो चलिए जानते हैं मेष वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ होता दिख रहा है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि बच्चे के चंद्रमा का असर उसके माता पिता के भाग्य पर किस तरह से पड़ता है।
1: अब ये जानते हैं कि बच्चे की कुंडली का चंद्रमा बच्चे के माता पिता पर कैसा असर डालता है। देखिए, बच्चे का चंद्रमा सीधी तौर से माता के साथ जुड़ा हुआ होता है। बच्चे का चंद्रमा उसकी माता है। अगर बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो बच्चे का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है शुरुआत में, माता का स्वास्थ्य भी बच्चे के जन्म लेने के बाद बिगड़ जाता है और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ अच्छा नहीं रहता। तो बच्चे का चंद्रमा अगर गड़बड़ है तो बचपन में बच्चा बीमार होगा, उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और आगे चल करके बच्चे का संबंध अपनी माता के साथ बेहतर नहीं रहेगा। तो अगर आपने देखा कि बच्चे की कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो क्या उपाय किया जाए। अगर बच्चे का चंद्रमा खराब है तो बच्चे की माता को पूर्णिमा का व्रत जरूर रखना चाहिए और बच्चे की माता रोज रात को चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी कम से कम 108 बार, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः कहके मंत्र का जप करेंगी और बच्चे को भी और उसकी माता को भी दोनों को चांदी का चंद्रमा बचपन से ही बच्चे को और बच्चे के जन्म लेने के बाद माता को दोनों को गले में चांदी का चंद्रमा पहनना

0: चाहिए। अगर बचपन से बच्चे की मां बच्चे के चंद्रमा को सुधारे तो ये बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और मां के अपने जीवन के लिए भी बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, जब पंडित जी द्वारा आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमिता ने लिखा है और अमिता हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1980, जन्म का समय दोपहर के 1:50, जन्म का स्थान है लखनऊ। अमिता कह रही हैं कि मैं पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही हूं, लेकिन वहां पर मेरी कोई उन्नति नहीं हो रही है, मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए या यहीं पर बेहतर समय का इंतजार करना चाहिए। अमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने का प्रयास शुरू कर दीजिए, और अगर अभी से शुरू करती हैं तो अगस्त के बाद आपकी नौकरी बदल सकती है, ये संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि नौकरी बदलने के साथ आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और नौकरी बदलना या स्थान परिवर्तन करना ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाले समय में करियर में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जीवन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप पंडित जी से अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आप आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न अभय शंकर ने हमें लिखा है और अभय शंकर हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1975। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे। जन्म का स्थान है बेंगलोर। अभय जी कह रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़कर कुछ समय पहले अपना व्यापार शुरू किया है, लेकिन व्यापार में बहुत उन्नति नहीं हो रही है, तो आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा और व्यापार में उन्नति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आपके व्यापार की दशा बेहतर होगी फरवरी 2027 के बाद। तब तक कुंडली के हिसाब से आपको इंतजार करना चाहिए। फरवरी 27 के बाद व्यापार आपका ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि इस साल के अंत में आप अपने रहने की और काम करने की जगह में परिवर्तन करेंगे और वो परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए ताकि व्यापार बेहतर हो सके। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब जानते हैं कि बच्चे के सूर्य का प्रभाव माता पिता के जीवन पर, उनके ग्रहों पर किस तरह से पड़ता है।
0: देखिए, बच्चे का जो सूर्य है वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालता है। क्या करता है? बच्चे का सूर्य सीधे तौर से उसके पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर बच्चे का सूर्य कमजोर होगा तो बच्चे को आंखों की और नाम यश की समस्या परेशान करेगी। किए गए कार्यों का यश जीवन में नहीं मिलेगा। और बच्चे का सूर्य अगर गड़बड़ होगा तो पिता का स्वास्थ्य और पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। बच्चे का सूर्य अच्छा नहीं होगा तो आगे चल करके बच्चे का संबंध अपने पिता के साथ अच्छा नहीं होगा। और ये नौबत भी भविष्य में आ सकती है कि बच्चा और उसके पिता दूर दूर रहें, एक दूसरे के साथ ना रह पाएं। तो बच्चा जन्म लेता है और अगर उसका सूर्य गड़बड़ स्थिति में है तो जन्म के साथ ही पिता के जीवन में संघर्ष और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। बच्चे को तो मुश्किल होती ही है, उसके पिता के जीवन में भी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चे का सूर्य गड़बड़ है, सूर्य की स्थिति फेवरेबल नहीं है, तो बच्चे के पिता नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। बच्चे और पिता दोनों को रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जब बच्चा छोटा है तो पिता अपने बच्चे को बगल में बैठा लें और गायत्री मंत्र बोल बोल कर सुनाएं। जब बच्चा बड़ा हो जाए तो बच्चा भी और उसके पिता भी रोज सुबह कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। घर में लाल फूल वाले पौधे, खास तौर से गुड़हल के फूल के पौधे घर में लगाइए और जहां तक हो सके पिता को अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बच्चे के सर पर हाथ रख कर बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए। पिता अपने बच्चे से जितना जुड़ाव रखेंगे बच्चे के साथ साथ पिता का जीवन भी बेहतर होगा।
1: और आप जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहों के योग होते हैं तो क्या उसका प्रभाव भी माता पिता की कुंडली पर पड़ता है या उनके भाग्य पर पड़ता है।
0: देखिए, बच्चे की कुंडली में जो ग्रहों के योग होते हैं, अलग अलग ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो भी माता पिता के जीवन पर असर डालते हैं। क्या करते हैं, अगर बच्चे की कुंडली में कोई बुरा ग्रह योग है तो अलग अलग योगों के अनुसार माता पिता पर अलग अलग असर पड़ता है। जैसे अगर बच्चे की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसके जन्म के बाद से कुछ समय के लिए घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में शनि राहु का योग है तो घर में अलगाव, विभाजन, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का योग है तो तो ये पिता के जीवन के लिए, पिता के साथ तालमेल के लिए काफी बुरा होता है और आगे चल करके पिता और पुत्र काफी दूर दूर हो जाते हैं, उनके संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। तो अगर बच्चे की कुंडली में कोई अशुभ योग है जिसका प्रभाव माता पिता पर पड़ रहा है, तो क्या उपाय किया जाए जिससे उस दुर्योग का प्रभाव ना पड़े। अगर गुरु चांडाल योग है तो बच्चे के आचरण को ठीक रखना चाहिए। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए ताकि गुरु चांडाल योग से बच्चे को या उसके माता पिता को कोई कष्ट ना हो। अगर शनि राहु का योग है बच्चे की कुंडली में तो घर में शमी का एक पौधा लगाएं और नियमित रूप से घर में सुंदर कांड का पाठ करें या शनिवार के शनिवार घर में सुंदर कांड का पाठ करें, अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो शनि की शांति करवाएं और घर में सूर्य के पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करें। बच्चे के जन्म लेने के साथ उसकी कुंडली के अशुभ योगों को दूर करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर पीपल का पौधा लगवाएं। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे की कुंडली के दुर्योगों का प्रभाव बच्चे के माता पिता पर नहीं पड़ेगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह या खराब योग ना बने।
0: देखिए, ऐसा भी उपाय किया जा सकता है, ऐसी भी कोशिश की जा सकती है कि बच्चे की कुंडली में खराब ग्रह और खराब योग ना बने। क्या उपाय किया जाए? देखिए, ये उपाय तब किए जा सकते हैं जब महिला प्रेग्नेंट हो, बच्चा गर्भ में हो। गर्भवती माता को रोज सुबह और रोज शाम को रामचरितमानस के बाल कांड का जितना संभव हो पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिला को अपने आहार विहार को, अपने खान पान को सात्विक रखना चाहिए। जो गर्भवती महिला हैं वो तेज सुगंध से, इत्र से और अत्यधिक सौंदर्य प्रसाधन से बचाव करें और गर्भवती महिला के घर में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। जहां तक हो सके गर्भवती महिला को अंधकार से बचना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो खैर व्रत रखने को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गर्भवती महिला ऐसा कर सकती हैं कि नियमित रूप से एकादशी को अन्न का या वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करते रहें। जितने दिन महिला गर्भवती हैं उतने दिन नाम जप करें भगवान का, भगवान का चिंतन करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो अच्छे संतान की प्राप्ति होगी जिसकी कुंडली के ग्रह सामान्यतः बेहतर होंगे।
1: और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, कार्य क्षेत्र की स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल, उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न प्रसून जी ने हमें लिखा है, और प्रसून जी हमें मेल लिखते हैं गुजरात से। इनकी जन्म की तारीख है 1 फरवरी 1979। जन्म का समय रात में 9:40। जन्म का स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। ये कह रहे हैं प्रसून जी कि मैं नौकरी करता हूं और अपनी पत्नी के नाम से एक व्यापार भी करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और नौकरी के हालात स्थिर बने हुए हैं, तो क्या मुझे आगे व्यापार कंटिन्यू करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रसून जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपना व्यापार वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि व्यापार आप किसी के नाम से भी करेंगे तो आप ही, और व्यापार में सफलता की अभी तो कम से कम संभावना नहीं बन रही है, तो व्यापार को हटाइए, वाइंड अप करिए, केवल नौकरी वाले हिस्से पे फोकस करिए, नौकरी में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि नौकरी में आपके तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। आपकी कुंडली में आने वाले समय में अक्टूबर 2026 से लेकर और अप्रैल 2027 के बीच में करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब हम लेंगे आज का आखिरी सवाल, तो जानेंगे पंडित जी से आज का आखिरी और चौथा सवाल वो किसका लेने वाले हैं
0: जी। आज का अंतिम प्रश्न आनंदिता ने हमें लिखा है और आनंदिता हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1989। जन्म का समय रात में 11:55। जन्म स्थान है दिल्ली। आनंदिता कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आनंदिता, आपकी कुंडली में अति विलंब से विवाह के योग बनते हैं, लेकिन अभी आपके विवाह का योग आ गया है। साल 2026 के अंत तक आपका विवाह फाइनल होना चाहिए और 2027 के आरंभ तक आपके विवाह की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रविवार को दोपहर के समय में, दिन के समय में पार्वती मंगल का पाठ करें। अगर ये दो उपाय करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और परमात्मा की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं दूर होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। ये साल सफलता से आपके लिए भरा रहेगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या अगर आप नया घर खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो क्या नए घर में पहला त्योहार होली नहीं मनाना चाहिए? देखिए, होली में पुराने संवत का, पुराने साल का दहन होता है, जिसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए नए घर में उस समय प्रवेश करना चाहिए जब पहला त्योहार दीपावली या दशहरा पड़े। अगर पहला त्योहार होली का नए घर में मनाएंगे तो सामान्य मान्यता यह है कि फिर वो घर आपको सूट नहीं करेगा।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। आपके काम में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी।
1: तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः एवरेज होता है, मध्यम होता है। इनको रिश्तों के मामले में गंभीर रहना चाहिए, रिश्तों के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज आपको एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी

0: आपकी कुंडली में केतु की अशुभ दशा चल रही हो, केतु की अशुभ महादशा या अशुभ अंतर दशा चल रही हो, तो क्या करेंगे? घर में एक मदार का पौधा लगाइए और उसकी देखभाल करिए। रोज सुबह और शाम गणपति मंत्र का जप करिए, ओम गं गणपतये नमः, सुबह शाम 108 बार। और नियमित रूप से स्नान के बाद अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। केतु की दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है? क्या आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है? क्या खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है? क्या है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: इस वक्त की शानदार खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट आने की खबर है और लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अत्यधिक गर्मी के लंबे दौर के बाद मौसम में बदलाव दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ समय के लिए गरज चमक, बिजली गिरना और तेज झोंकेदार हवाएं तीव्र हो सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ये भी कहा गया है कि आंधी तूफान में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो आज सुबह की शानदार खबर देखिए, दिल्ली के मौसम में अचानक से बदलाव आ गया है। तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश।
11: 43 से 45 डिग्री का सितम झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लिए अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और ऊपर बादलों का साया, तो थंडरस्टॉर्म, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि थंडरस्टॉर्म के साथ हवाओं के अचानक से जो तापमान है वो 30 डिग्री के नीचे आ गया है। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों पर बूंदाबांदी भी आपको मिलेगी और थोड़ी सी राहत जरूर इससे तापमान में मिलेगी। हालांकि सिर्फ एक दिन के लिए हो सकता है, यानी सप्ताह अंत में अगर आप घरे देखिए आंधी तूफान जो है ना, हवा के थपेड़े बहुत ही तेज चलने लगे हैं, तो डस्ट स्टॉर्म भी, और जिसका असर सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, फरीदाबाद, इन तमाम इलाकों में होगा। और इसी के साथ साथ ये देखिए हवाओं के थपेड़ों के साथ सड़कों पर आपको धूल और जो पूरा दिखाई देगा चारों तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ मौसम में बदलाव भी हुआ है, तापमान भी नीचे आया है और बूंदाबांदी भी शुरू हुई है, और इसी के साथ मौसम में जो मिजाज थोड़ा सा बदला है, तो बहुत सारे लोग जो सप्ताहांत में अगर घर पर हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। लगातार 43, 44, 45 डिग्री का हम सितम झेल रहे थे मई में, तो आज कम से कम राहत जरूर है। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है दिल्ली में, जाहिर है थोड़ा सा धूल तूफान है ये भी चल रहा है, तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
12: ना एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
13: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
14: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए बात दिल्ली के साइकिल मैन की कर लेते हैं, जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं लेकिन अंदाज बिल्कुल आम लोगों जैसा। वो पिछले 15 सालों से साइकिल से बचत वाली राइड करते हैं। दिल्ली में घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की कुल दूरी करीब 34 किलोमीटर है, जिसको वो अपनी साइकिल के जरिए ही तय करते हैं। उनका साफ मानना है कि साइकिल की सवारी है सबसे न्यारी। मध्य पूर्व में तनाव और वैश्विक ईंधन संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील से काफी पहले से साइकिल ही उनकी सरकारी सवारी है।

0: साइकिल पर आम आदमी जैसा दिखने वाला ये आदमी ओहदे के लिहाज से बेहद खास है। एक लंबे अरसे से साइकिल से घर और दफ्तर के बीच दूरी तय करने वाले रिजवानुद्दीन दिल्ली के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रीजनल कमिश्नर के पद पर हैं। फिर भी रिजवान साइकिल से ही चलना पसंद करते हैं। पिछले 15 साल से वो साइकिल की सवारी रोज कर रहे हैं। घर से ऑफिस की एक तरफ की दूरी 17 किलोमीटर है। इस तरह वो रोज 34 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही करते हैं। दिल्ली के किदवई नगर ईस्ट में मौजूद सरकारी घर से रिजवान रोज जनकपुरी तक अपने दफ्तर का सफर साइकिल के जरिए ही पूरी करते हैं।
1: इस बीच आपको बहुत सारे मंत्री दिखाई पड़ रहे होंगे, सरकारी अफसर दिखाई पड़ रहे होंगे जो साइकिल से अपने मंत्रालय जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेट्रोल बचाइए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी अफसर से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले लगभग 15 सालों से साइकिल से ही ऑफिस जाता है, ऑफिस से अपने घर साइकिल से ही आता है, और कई बार उनके घर और दफ्तर के बीच की दूरी कम नहीं होती। इस समय भी वो जब ट्रेवल करते हैं तो उनके घर और दफ्तर के बीच की दूरी लगभग 34 किलोमीटर के आसपास है।
2: मैं यहाँ पे रीजनल पीएफ कमिश्नर हूँ, ईपीएफओ की नेशनल एकेडमी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी पीडूनास में। यहाँ पर मैं चीफ लर्निंग ऑफिसर भी हूँ, तो मेरा जॉनर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह का काम देख चुका हूँ लगभग 4.25 साल।
0: सरकारी अधिकारी होने के बावजूद रिजवान दफ्तर जाने के लिए कभी सरकारी या निजी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि साइकिल की सवारी सबसे न्यारी का नारा बुलंद करते हैं। खास बात ये है कि वो ट्रैफिक नियमों का भी खूब ख्याल रखते हैं। सड़कों को पार करने के लिए पैदल यात्री की तरह सबवे का इस्तेमाल करते हैं।
1: रिजवान जी की ये रोज की यात्रा है, वो साइकिल से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, और जब जाते हैं तो रास्ते में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा अच्छा अच्छा रास्ता ही है, कभी कभी इस तरह से जो अंडरपास होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए उनका भी इस्तेमाल करते हैं, और जब करते हैं तो इस तरह से साइकिल को उठा कर ले जाते हैं। रास्तों की बात तो लगे, कभी खराब रास्ता मिला, कभी अच्छा मिला, कभी पथरीला है, कभी टूटा है, लेकिन इस तरह से साइकिल को उठाकर कई जगह से अंडरपास से निकलना, ये भी इनकी रोज की दिनचर्या का इसी तरह से हिस्सा है।
0: सरकारी अधिकारी होने की वजह से व्यस्तता है, फिर भी रिजवानुद्दीन ने साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। 55 साल के सरकारी अधिकारी रिजवान साल 2012 से साइकिल से ही आ जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट की बदौलत वो साइकिलिंग के संकल्प को बनाए रख पा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हैं। साइकिलिंग के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाला हेलमेट पहनते हैं। ट्रैफिक नियमों के अलावा अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखना भी नहीं भूलते।
1: सर, इस तरह से रोज साइकिल को उठाकर भी लाना होता है?
2: हाँ, ये तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, ऐसा कई बार रेलवे ओवर ब्रिजेस होते हैं वहाँ से भी हम लोग लेकर जाते थे साइकिल को, तो ये तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत लाइट वेट है साइकिल का, आराम से आ जाती है।
1: रास्ते की हम बात कर रहे थे, रास्ते में ऐसा अच्छे मिलते हैं?
2: हाँ, रास्ता ठीक है, बट आपको थोड़ा हेलमेट वगैरह होना बहुत ज़रूरी है, और स्पीड मॉड्यूलेशन, क्योंकि कई बार व्हीकल्स बड़ी स्पीड से आ रहे होते हैं तो क्रॉसिंग्स पे या जहाँ पे दो राहें हैं वहाँ पे आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेके चलना होता है। बाकी नॉर्मली ठीक है, क्योंकि हैबिट है चलने की मुझे, 2012 से साइकिलिंग कर रहा हूँ। तो
0: साइकिल चलाने के अपने शौक को रिजवान ने अपनी फिटनेस और अनुशासन से जोड़ दिया है, ताकि स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सके। इसके लिए वो दूसरे लोगों में साइकिलिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं।
1: शौक के लिए साइकिलिंग थी या आपने इसको दिनचर्या का हिस्सा ही बना लिया कि सबसे ज्यादा टाइम जाता है ऑफिस और घर के बीच में तो साइकिल से ही चलते हैं?
2: देखिए, हेल्थ और एनवायरनमेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं लाइफ के, तो ये शौक तो रहा ही होगा, लेकिन मेन चीज है कि आपने हेल्थ और पर्यावरण, मैं ऐसी जगह में पैदा हुआ जहाँ एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, आज भी पहाड़ों में पैदा हुआ, मसूरी हिल्स के पास झड़ी पानी एक जगह है, तो जब ग्वालियर की गर्मी देखी तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है, 48 डिग्री तक भी हो जाता है, तो लगा कि भाई ये व्हीकलर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारक है, इससे बचना है तो आपको साइकिलिंग प्रमोट करना होगा, और इसीलिए हमने बहुत वहाँ पे इवेंट्स भी किए। ग्वालियर और उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर, BSF, एयरफोर्स, इन सब के साथ मिलकर, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर रैलीज भी हम लोगों ने की, और उस एरिया में काफ़ी साइक्लिस्ट बढ़े। तो उसमें एक स्लोगन था कि ग्वालियर कम दूरियों का शहर, स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है सफर।
0: साइकिल चलाने के उनके शौक पर गर्मी, सर्दी या बारिश का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस मौसम के मुताबिक वो थोड़े एहतियात बरत लेते हैं।
2: साइकिलिंग के लिए देखिए, ये भ्रम है लोगों का, हम लोग जो बड़े इवेंट्स करते हैं काफी दूरी दूरी तक, आपको इलेक्ट्रोलाइट लेते रहना है, लिक्विड, पानी, नमक और चीनी, ये सब। अगर आपने ये काम किया हुआ है तो साइकिलिंग में बस थोड़ा सा धूप में आंखों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, उसका आपको इंतजाम रखना है। अदरवाइज तो हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइड करने में कोई खास फर्क नहीं आएगा, हल्का सा स्पीड हो सकता है कम हो जाए बहुत ज्यादा तेज गर्मी में, बट जो लोग करते हैं हमें तो आनंद आता है, क्योंकि मुझे तो, मेरे लिए तो सबसे बड़ा, जो सबसे दिन का सबसे अच्छा समय होता है वो सुबह में होता है, जब मैं अपने घर से कार्यालय जा रहा होता हूँ साइकिलिंग करते हुए। मौसम इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे बैग में खुद बरसाती है, तो अगर पेपर्स आपको बचाने होते हैं बारिश में भीगे नहीं, बाकी भीगते हुए साइकिल भी चलाई जा सकती है और बड़ा मज़ा आता है, कभी चलाइएगा आप, आनंद आता है बारिश में भीगने का भी।
0: नियमित रूप से साइकिल चलाने से न केवल शरीर फिट रहता है, बल्कि कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। बस लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है।
1: क्या टिप्स देंगे जो लोग आपसे प्रेरणा लेकर अगर शुरू करते हैं दिल्ली NCR में साइकिलिंग, कम से कम अपने ऑफिस जाने के लिए ही, क्या टिप्स आपके हिसाब से सेफ्टी के लिहाज से?
2: सेफ्टी के लिए हेलमेट होना बहुत जरूरी, और आप पहले प्रैक्टिस करें, एकदम से साइकिल ऑफिस ना जाने लगे, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तो ज्यादा आसान रहेगा। और हेलमेट के बिना तो कभी भी साइकिल ना चलाएं, क्योंकि हेलमेट आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे एक हल्का सा गड्ढा है,
1: पड़ा हुआ है।
2: ये आपको हेलमेट बहुत आपका लाइफ सेविंग डिवाइस।
1: गिर गए थे आप?
2: हाँ, ये मैं एक लंबी राइड पे जा रहा था तो मैं हल्का सा गिरा था, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकला था दिल्ली से, तो वहाँ पे मैं बुलंदशहर जा रहा था, तो मैं ग्रेटर नोएडा के आसपास एक बार मैं गिरा, तो उसमें हेलमेट ने ही सेव किया मुझे जी।
1: साइकिलिंग में भी आपने बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं, बहुत सारे आपके पास खिताब भी हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं?
2: नहीं, एक इवेंट होता है एडॉक्स इंडिया का, जिसमें कि एक ही सीज़न में आपको 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 600 किलोमीटर की राइड एक सीज़न में कंप्लीट करनी होती है।
0: आज जब भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तब रिजवानुद्दीन जैसे लोग साबित कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति हो तो हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। एक सफर, एक साइक्लिस्ट और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा, यही है रिजवानुद्दीन की पहचान। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
6: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
5: Smartless.
7: Hey guys, we got a mouthful of English muffin with a glass full of
5: Marketplace.
8: Big three on the program today, or, you know, the big three of
5: and more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the

0: Great moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट। उत्तराखंड में आज खुल रहे सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन तक चलेगी यात्रा। भारत में 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, सीएनजी भी 1 रुपए महंगी। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे। अभी वक्त है जीएनटी एक्सप्रेस का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की शानदार खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है, दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है जिसके कारण तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट आने की खबर है और लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिल रही है। दिल्ली में तापमान कई दिनों से 45 से 46 डिग्री के आसपास चल रहा था, जो अब बताया जा रहा है कि गिरकर 30 डिग्री के आसपास आ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम 2 से 3 घंटे तक मौसम में बदलाव का असर दिख सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अत्यधिक गर्मी के लंबे दौर के बाद मौसम में बदलाव दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ समय के लिए गरज चमक, बिजली गिरना और तेज झोंकेदार हवाएं तीव्र हो सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और ये भी कहा गया है कि राजधानी में आज आंधी तूफान के भी आसार हैं और इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।

तो दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ आज बारिश हो सकती है और इस वक्त की ये शानदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी से शहर में काफी लोग परेशान थे, लेकिन उसी के साथ अब बारिश होने से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अब देखिए ये हल्की फुहारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान इन्होंने ला दी है। लगातार 45 से 46 डिग्री तापमान जो है वो बना हुआ था।

0: फरीदाबाद इन तमाम इलाकों में होगा। और इसी के साथ साथ ये देखिए हवाओं के थपेड़ों के साथ सड़कों पर आपको धूल और जो पूरा दिखाई देगा चारों तरफ से, लेकिन इसी के साथ साथ मौसम में बदलाव भी हुआ है, तापमान भी नीचे आया है और बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। और इसी के साथ मौसम में जो मिजाज थोड़ा सा बदला है, तो बहुत सारे लोग जो सप्ताहांत में अगर घर पर हैं उनको राहत ज़रूर मिलेगी। लगातार 43, 44, 45 डिग्री का हम सितम झेल रहे थे मई में, तो आज कम से कम राहत ज़रूर है। बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है दिल्ली में, जाहिर है थोड़ा सा धूल तूफान है ये भी चल रहा है। तो दिल्ली NCR समेत पूरे इलाकों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
1: और चलिए अब इस शानदार खबर के बाद रुख करते हैं GNT एक्सप्रेस का।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश। दिल्ली में हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और झांसी समेत कई जिलों के लिए पड़ेगी भीषण गर्मी। पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट।

कश्मीर के जो जिला के आसपास के इलाकों में बेमौसम बर्फबारी, आईएमडी का अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के आसार। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिख रहा है गर्म, गर्म हवाओं के साथ लगातार बढ़ रहा है पारा। गाजियाबाद में 23 मई से बंद रहेंगे सभी स्कूल, बच्चों को लू से बचाने के लिए डीएम का सख्त आदेश। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के कारण 23 मई से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद। गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, सेक्टर 72 के 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर फूकने से 7 बिजली घर ठप, रैपिड मेट्रो की सेवा कई घंटों के लिए बाधित। विदर्भ के ब्रह्मा भूमि में 47 डिग्री पहुंचा पारा, 25 मई तक कई जिलों में हीटवेव के रेड और ऑरेंज अलर्ट। आज से सुबह खुल रहे सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, चरम पर श्रद्धालुओं का जोश। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ, पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था गोविंद घाट से पवित्र धाम के लिए रवाना। गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया, समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र श्री हेमकुंड साहिब, हर साल मई के महीने से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है पवित्र यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम कर चुकी है हेमकुंड साहिब का निरीक्षण, यात्रा व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट है टीम। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम में आज करीब 90,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 30,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने दर्शन किए, आज करीब 28,000 श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल के धाम। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का मेला, दोनों धामों में करीब 3.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पवित्र अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीरें आई सामने। गुड न्यूज टुडे पर करिए बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन, प्राकृतिक हिम शिवलिंग ने पूरी तरह लिया आकार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंची सुरक्षा बलों और मंदिर प्रशासन की टीम। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन, बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की।

0: भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर दिव्य श्रृंगार किया गया। ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन पहुंचे कई फिल्मी सितारे, महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। कोरियोग्राफर एमओ डिसूजा, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और अभिनेता विक्की जैन ने महाकाल की रात्रि शयन आरती में शामिल हुए, विधि विधान से की पूजा। लंबे इंतजार के बाद ऐश्वर्या राय पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में बला की खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या राय, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये स्टनिंग लुक। पेप्स को स्माइल करते हुए हैंड वेव करती दिखी ऐश्वर्या, अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज भी क्लिक करवाई। कान के रेड कार्पेट पर पेप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते आई नजर, मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी भी बनाकर किया सबका अभिनंदन। खूबसूरत गाउन के साथ जमीन तक लहराते दुपट्टे नुमा स्टोल ने लुक किया पूरा, दोनों हाथों में अंगूठी और गले में पहले हार ने उनकी खूबसूरती में लगाए चार चांद। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान भारत पवेलियन में लॉन्च किया गया फिल्म बॉम्बे स्टोरीज का पहला पोस्टर, मशहूर लेखक सरादत हसन मंटू की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। रामचरण की फिल्म पैरी के नए गाने हेला लालो का प्रोमो रिलीज, गाने में रामचरण और जानवी कपूर का जबरदस्त डांस। आज भोपाल में होगा फिल्म पैरी का सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर भूची बाबू सना, संगीतकार ए आर रहमान समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट होगी शामिल। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजिला में डबल रोल में आएंगे वो नजर, खलनायक के निभाएंगे किरदार, विलन का भी किरदार वो निभाएंगे। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। दशहरे पर बॉक्स ऑफिस पर हुकार भरने को तैयार है राजकुमार, 16 अक्टूबर को फिल्म रफ्तार होगी रिलीज, किया ऐलान। अब हॉलीवुड में दिखेगा वरुण धवन का दमदार एक्शन, मशहूर निर्माता लॉरेंस कासनोफ की फिल्म में आएंगे नजर। माधुरी दीक्षित तृप्ति डिमरी की फिल्म माँ बहन का ट्रेलर रिलीज, 4 जून को ओटीटी पर होगी रिलीज। फिल्म द नर्मदा स्टोरी का दमदार एंथम रिलीज, देश की महिला पुलिस अधिकारियों की शौर्य खाकी वर्दी, देशभक्ति और नारी शक्ति को सलाम करता है ये गीत। तेलुगु अभिनेता सत्यदेव कंचारना की नई फिल्म का नाम रिवील, समरवती का फर्स्ट लुक आया सामने। धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद फैंस को अब आर माधवन की मोस्ट अवेटेड बायोपिक ड्रामा जीडीएन का इंतजार, महान आविष्कारक और उद्योगपति जीडी नायडू के जीवन पर आधारित है यह फिल्म, 17 जुलाई को होगी रिलीज। भारत की सुरक्षा हुई और मजबूत, ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता, 12 टन है इस मिसाइल का वजन। 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने हाथ से ले जाने में सक्षम है यह अग्नि 1, कम दूरी तक बेहद सटीक हमला करने की है क्षमता। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया यह परीक्षण, जो देश की रक्षा और न्यूक्लियर क्षमता को देता है मजबूती। इसे क्विक रिएक्शन के हिसाब से किया गया है डिजाइन, खास बात यह है कि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है मिसाइल। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल, मुंबई से शिरडी जाने के लिए ट्रेन का किया इस्तेमाल। राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा देश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 21वें राज्यपाल गोल्फ कप टूर्नामेंट का शुभारंभ, कई खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का उद्घाटन किया। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच, 3D इमेज जारी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है साइप्रस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ राष्ट्रपति निकोस का भव्य स्वागत, दोनों नेताओं के बीच हुई लंबी बातचीत। देवरिया को सीएम योगी ने दी 655 करोड़ की सौगात, 19 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बागेश्वर में अब हर शनिवार मनाया जाएगा नो व्हीकल डे, पेट्रोल संकट और बढ़ते दाम के बीच बागेश्वर प्रशासन का बड़ा फैसला। पटना में मिट्टी के घड़े और बोतल की बाजार में बड़ी डिमांड, बढ़ती गर्मी के बीच कुम्हारों के काम में तेजी। हिमाचल प्रदेश में नया टूरिस्ट स्पॉट बना, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं रॉक गार्डन। डलहौजी के पास है नया टूरिस्ट स्पॉट रॉक गार्डन, पहाड़ों के बीच बहते ठंडे पानी के प्राकृतिक स्रोत का सैलानी उठा रहे आनंद। दिल्ली के ईपीएफओ में तैनात रीजनल कमिश्नर रिजवान दे रहे हैं फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साइकिल से जाते हैं ऑफिस। 55 साल के रिजवान साल 2012 से लगातार घर से ऑफिस तक का सफर साइकिल से करते हैं तय, रोजाना तय करते हैं करीब 17 किलोमीटर का सफर। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम, ऊबर कारपुलिंग सर्विस को हरी झंडी। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, मार्को रूबियो दिल्ली, आगरा और जयपुर भी जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात, भारत के साथ अमेरिका ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी, दोनों देशों के बीच अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन, वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। हॉर्मुज तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस, 26 मार्च को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो। आईपीएल के 67वें मैच में हैदराबाद की शानदार जीत, आरसीबी को 55 रन से दी करारी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर बनाए 255 रन, जवाब में 200 रन पर सिमटी आरसीबी की पारी। हैदराबाद से ईशान किशन ने खेली 79 रन की दुआधार पारी, अभिषेक ने 56 और क्लासे ने बनाए 51 रन। हिसार से आरसीबी को नहीं हुआ खासा नुकसान, अभी भी टेबल टॉपर ही आरसीबी, जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैदराबाद। अब बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा पहला क्वालिफायर, 26 मई को धर्मशाला में होगा मैच। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब की भिड़ंत, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 7 मुकाबलों में हुई कांटे की टक्कर, जिसमें पंजाब को 4 और एलएसजी को 3 मुकाबलों में जीत मिली। प्लेऑफ के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है लखनऊ की टीम, हालांकि अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ इस सत्र को खत्म करना चाहेगी एलएसजी। पंजाब को प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस मैच में जीत जरूरी, बल्कि नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए एक बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी जीत। पिछले कुछ मैचों से खराब गेंदबाजी से जूझ रही है पंजाब की टीम, इस पर हर्षदीप और चहल होम पर होगी सबकी निगाहें। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शुरू हुआ मशहूर विविड फेस्टिवल, शानदार रोशनी से नहाया ओपेरा हाउस। शानदार आतिशबाजी के साथ विविड फेस्टिवल का शुभारंभ, सिडनी में उमड़ा जनसैलाब। ओपेरा हाउस पर दिखाई गई मछलियां, जेलीफिश और पक्षियों की आकृति, 23 दिनों तक चलेगा विविड फेस्टिवल। 13 जून को होगा विविड फेस्टिवल का समापन, दुनिया भर से जुटेंगे पर्यटक। सैलानियों को देखने को मिलेगा रोशनी संगीत और कलाकारों का संगम, कई प्रसिद्ध कलाकारों की आर्ट की भी नुमाइश। चीन के चोंगकिंग में शुरू हुआ बड़ा रोबोटिक्स मेला, भविष्य बदलने वाले दिखे स्मार्ट रोबोट्स, हर उद्योग की नई ताकत बनेंगे रोबोट। उपभोक्ता सेवाओं से बचाव अभियान तक पहुंचे स्मार्ट रोबोट, चोंगकिंग मेले में दर्जनों हाईटेक रोबोट बने आकर्षण का केंद्र। चीन में चिकित्सा क्षेत्र में रोबोट तकनीक ने दिखाई नई छलांग, स्मार्ट कृषि में तेजी से बढ़ रहा रोबोट का इस्तेमाल। सुरक्षा और रेस्क्यू मिशन में उतरे एडवांस रोबोट, मेले में एआई और रोबोटिक्स का दमदार संगम, भविष्य की टेक्नोलॉजी का लाइव प्रदर्शन। स्मार्ट बदलाव की रफ्तार बढ़ा रहे हैं हाईटेक रोबोट, मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं में रोबोट बने मददगार। चीन में छोड़े गए हिम तेंदुओं ने पहली बार जंगल में परिवार बसाया, हेलन पहाड़ों में दिखा हिम तेंदुओं का दुर्लभ पल। इंफ्रारेड कैमरे में कैद मादा हिम तेंदुआ और उसके शावक की तस्वीर, वैश्विक हिम तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम को बड़ी सफलता। दक्षिणी और मध्य चीन में भीषण बाढ़, मूसलाधार बारिश से स्कूल कारोबार और बिजली व्यवस्था ठप। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश पर रेड अलर्ट, राहत कार्यों के लिए 150 मिलियन युआन जारी। चीन के लियु झोऊ में 80 से ज्यादा स्ट्रे कैट्स की देखभाल में जुटे वॉलंटियर्स, कैट शेल्टर में बिल्लियों ने ली शरण।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: क्या आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है? क्या आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है? क्या खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है? क्या है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
0: और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बचत का सशक्त संकल्प छिपा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच हैदराबाद की एक कंपनी ने अनोखी पहल की है। कंपनी ने कहा है कि उनके जो कर्मचारी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उन्हें कंपनी की तरफ से मिलेगा खास इनाम। इनाम कहिए।
3: पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, कार पूलिंग करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल करने का पालन करते हुए एक प्राइवेट कंपनी, हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉयज को कहा है कि ईवी व्हीकल्स खरीदिए और कैश प्राइजेस या फिर चेक्स हमारी तरफ से ले जाइए। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ फनीराज जी जुड़े हैं जो सीईओ है कंपनी के। सर बताइए इस इनिशिएटिव की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है?
4: क्या अभी देखिए प्रधानमंत्री 10 दिन पहले इधर आ चुके हैं हैदराबाद में और सबको बुलावा इधर से हैदराबाद से दिया है। ऐसा नहीं कि वो किधर और से दिया है, हैदराबाद से आके इधर आके दिया है कि लोगों को ट्रेन यूज करना है, मेट्रो ट्रेन यूज करना है या कारपूलिंग करना है या ईवी में शिफ्ट होना है, जो भी पॉसिबल है वो करना है। क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस देखो आप या अभी जो भी चल रहा है पूरा दुनिया में वो सब अंदाज करते हुए, अंदाज में रखते हुए और जो फॉरेन रिजर्व्स है कंट्री का उसको सेव करना है, ये सब मंशा मन में रखे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कॉल दिया है नेशन के लिए, उसके लिए हैदराबाद से मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता हूं, मैं इंकरेज करना चाहता हूं लोगों को कि प्लीज डू दिस। क्योंकि ये एक एक एक एक बंदा जो भी करता है वो पूरा देश के लिए आगे जाके वो बहुत बड़ा बन जाता है। हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैं तो शिफ्ट कर सकता हूं, मैं तो मेरा पेट्रोल कार घर में रख के मेरा बीवी का इलेक्ट्रिक कार से ऑफिस आ रहा हूं, वो तो मैं कर सकता हूं, बट आगे और मैं क्या कर सकता हूं एट द पोजिशन ऑफ सीईओ, आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम ओनर ऑफ द कंपनी, मैं और क्या कर सकता हूं। ऐसा सोचे तो मुझे लगा कि मेरे एम्प्लॉयज को मैं मोटिवेट करूंगा, उन लोगों को जो भी अभी पेट्रोल की टू व्हीलर यूज कर रहा है उसको बोलूंगा कि यू गो एंड बाय ईवी, आप ईवी यूज करो, ईवी परचेज करो, आई विल गिव यू सम इंसेंटिव। सो ईवी का जनरली 30-40,000 से लेके 1,00,000 तक ईवी का प्राइस है। अगर समझो कि आप एक पेट्रोल उसका व्हीकल है वो बेचे तो उसको कुछ 20-30,000 आ रहा है, उसके ऊपर मैं एक 5,000 रुपीज दे रहा हूँ, हमारा कंपनी एक 5,000 रुपीज दे रहा है, तो उसको ऐड करके यू गो एंड बाई ईवी स्कूटी आर समथिंग टू व्हीलर, दैट विल हेल्प यू रिड्यूस, नॉट ओनली दिस विल रिड्यूस द क्लाइमेट थिंग, नॉट ओनली दिस विल रिड्यूस द यू नो फॉरेक्स का, और प्रधानमंत्री को रेस्पेक्ट किया, ये सब एक तरफ से है। और दूसरी तरफ से एम्प्लॉय का भी मंथली खर्चा कम हो जाता है, जो पेट्रोल में वो स्पेंड कर रहा है ऑफिस आने में वो कम होता है, तो इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव।
3: बातचीत करने के लिए तो लगातार हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके के इनिशिएटिव के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज भी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन करेंगे तो ईंधन की जो ईंधन का इस्तेमाल है, पेट्रोल डीजल का जो इस्तेमाल है वो कम हो सकता है और आगे बचत में हर कंपनी का अपना अपना योगदान हो सकता है, ऐसा इस कंपनी का मानना है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
5: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
8: somebody save me,
7: to timeless favorites,
8: and life is like a song,
7: and new discoveries.
9: You and I, so much more than a history. Wake up!
7: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
16: आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
18: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: दिल्ली NCR में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट। उत्तराखंड में आज खुल रहे सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी यात्रा। भारत में 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। सीएनजी भी 1 रुपए महंगी। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक।

आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड की देवभूमि इस वक्त आस्था के सबसे बड़े उत्सव की गवाह बनी हुई है। एक तरफ जो बोले सो निहाल के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब की कठिन यात्रा के लिए, पवित्र यात्रा के लिए रवाना हो चुका है, तो दूसरी ओर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब नए रिकॉर्ड बना रहा है। बर्फीले रास्तों, लंबी चढ़ाई और मुश्किल मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और आंकड़ा 20 लाख के पार जा चुका है। आज पांचवें धाम कहे जाने वाले हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल रहे हैं। हम आपको हेमकुंड साहिब की यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में आस्था का जन सैलाब भी दिखाएंगे। और अब बात हेमकुंड साहिब की यात्रा की। आज उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब के कपाट खोले जा रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार सिखों के इस पवित्र तीर्थ के कपाट खोले जाने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू हो रही है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था कई दिन पहले ही रवाना हो चुका था। पंच प्यारों के अगुवाई में ऋषिकेश से जत्था गोविंद घाट पहुंचा और फिर घांगरिया के लिए रवाना हो गया। वहां से श्रद्धालु आज हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। इस जत्थे में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हैं। आज हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में अरदास के साथ सालाना तीर्थ यात्रा की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। सिख श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जोश चरम पर है। मौसम अच्छा है, फिर भी रास्ते की चुनौतियों को देखते हुए यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जयकारे के साथ जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया। मंजिल दूर है, रास्ता मुश्किल, लेकिन जोश देखिए, चेहरों पर उत्साह देखिए। पंजाब बैंड मधुर धुन बजा रही है और भक्ति भाव से संगत आगे बढ़ रही है। ये तस्वीर है गोविंद घाट गुरुद्वारे की, जहां पंज प्यारों की अगुवाई में ऋषिकेश से चले जत्थे ने आराम किया और फिर यहीं से आगे की यात्रा शुरू हुई। लेकिन इससे पहले गुरुद्वारे में अरदास हुई।

0: जत्था रवाना होने से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद हुक्मनामे के साथ पंज प्यारों की अगुवाई में जत्था अगले पड़ाव यानी घांगरिया के लिए रवाना हो गया।
1: बड़ी कठिन और दुर्गम यात्रा होती है हेमकुंड साहिब की, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे है, लेकिन जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाई अल्टीट्यूड में जाने का, खासकर विशेष तौर पे विशेष इंतजाम करने के बाद यहाँ से ये लोग जाते हैं। हमने जिन भी यात्रियों से पूछा, इतनी टफ कठिन यात्रा है, क्या क्या व्यवस्थाएं वो करते हैं, तो उनका कहना था बहुत सारी चीजें वो रखते हैं, मिश्री हुई, टॉफियां हुई, छाता हुआ, बरसाती हुई, तमाम चीजों को साथ यात्रा करते हैं संगत। और बहुत ही कठिन है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन उत्साह के साथ देख सकते हैं, मानो कोई जैसे यात्रा शुरू हो रही है वैसे ही लोग सब अब यहां से हेमकुंड साहिब के लिए निकल चुके हैं।
0: इस साल मौसम मेहरबान नजर आ रहा है और इसलिए उम्मीद है कि भारी तादाद में सिख श्रद्धालु हेमकुंड साहिब यात्रा में शामिल होंगे। पहले जत्थे में ही जैसी भीड़ है उसे देखते हुए ये अंदाजा गलत नहीं लगता कि इस साल नए रिकॉर्ड बनेंगे। हाँ, यात्रा की चुनौतियों को देखते हुए श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने तीर्थयात्रियों से अपना ख्याल रखने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: सभी को बधाई है, जितने जन संगत जो आ रही है उनको बधाई है, हमारे उत्तराखंड वासियों को हर एक को बधाई है कि आज जो पांचवा धाम हम कहते हैं हेमकुंड साहब, उसकी यात्रा भी प्रारंभता भी शुरू हो गई है। और जो इस बार हम संगत का रुझान देख रहे हैं उससे लगता है कि सारे रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेंगे और इस वर्ष जो ओपनिंग पे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6-7 हज़ार आदमी ओपनिंग पर भी आएंगे, कि जो संगत बुजुर्ग है या जिनको अस्थमा है या जिनको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर से परामर्श करके तभी यात्रा के लिए प्रस्थान करें और कोई भी ऐसा काम ना करें, हट ना करें, क्योंकि संगत को ये समझना चाहिए, यात्री को ये समझना होगा कि ये कठिन यात्रा है। जितनी मर्जी आप सड़कें भी ठीक कर लो, ट्रैक भी ठीक कर लो, आफ्टरऑल चढ़ना आप ही को है। जब आप चलोगे तो शरीर जो आपका अगर साथ देता है तो तभी इतनी खड़ी चढ़ाई पे आप जा सकते हैं। तो हमारा फिर निवेदन है कि एक तो इस तरफ ध्यान रखें और दूसरा सफाई, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण का हमने खास ध्यान रखना है। उत्तराखंड की नगरी में आप आयो, देवभूमि है ये, तो इस करके हमारा सबसे हाथ जोड़ के विनती।
0: हेमकुंड साहिब की यात्रा कठिन होती है, लिहाजा कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों की पूरी तैयारी करनी होती है, सेहत को लेकर भी सावधानी जरूरी है। फिर भी इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का जोश है,
3: उत्साह रहता है। ऐसा है कि एक बार कोई जाएगा तो स्वर्ग के दर्शन धरती भी हो सकते हैं, ये कहना चाहूंगा मैं। बहुत लाजवाब है, सारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया है।
4: वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पहले तो सारी सिख संगत नूं साडे लो बहुत बहुत मुबारक, जेड़ी साडी यात्रा है वो हो गई है शुरू।
0: हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक स्थलों में शामिल है। माना जाता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु जी ने ध्यान लगाया वहीं ये गुरुद्वारा बना है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। इस साल बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब के रास्ते में बर्फ की मोटी चादर बिछी थी, लेकिन सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ हटाकर रास्ता तैयार कर दिया। रास्ते की चुनौतियां तो खैर अभी भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा श्रद्धालुओं में उत्साह है। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से होते हुए पहले देवप्रयाग पहुंचते हैं, वहां से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ तक की यात्रा होती है। जोशीमठ से यात्री आधार शिव गोविंद घाट जाते हैं। घांगरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर है और ये यात्रा का अंतिम और सबसे खड़ी चढ़ाई वाला हिस्सा है, जिससे पैदल या खच्चर के जरिए तय किया जाता है। तीर्थ यात्रियों का उत्साह बहुत जबरदस्त है। चमोली में हर तरफ हेमकुंड साहिब यात्रा की रौनक दिखाई दे रही है और इंतजार देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चारधाम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का आंकड़ा करीब करीब 20 लाख के पार तक पहुंच गया है। वहीं बद्रीनाथ में भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में रोजाना करीब 15,000 से 20,000 लोग दर्शन कर रहे हैं। धाम पर दर्शन के लिए लंबी कतारों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी मदद के लिए प्रशासन हर संभव इंतजाम कर रहा है। बद्रीनाथ में श्रद्धा का जनसैलाब कैसा है, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: हर कदम पर आस्था, हर सांस में भगवान। यही है बद्रीनाथ धाम की पहचान। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सभी के दिलों में एक ही भाव, एक ही विश्वास। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जिनको चलने में परेशानी है, उनकी मदद के लिए जवान और कर्मचारी तैनात हैं। हाथ थाम कर, कंधे पकड़कर, सहारा देकर लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। बुजुर्गों को पीठ पर बैठाकर मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ बीमार यात्रियों को कंधों का सहारा देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रास्ता दिखाने का काम भी लगातार किया जा रहा है।
1: बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आने के बाद चलो कोई तो स्वर्ग में आ गया है, ऐसा लगता है। बाकी यात्रा एकदम सही चल रही है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब जगह से मदद होती है।
0: चारों दिशाओं से लोग भगवान विष्णु के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि धाम के हर रास्ते पर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा है। सुबह से रात तक मंदिर परिसर में घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और जय बद्री विशाल के उद्घोष वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना रहे हैं।
2: मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, पूरी फैमिली है जिसमें मामा, दामाद, भाई, बेटी सभी लोग हैं। और हम लोग ने हरिद्वार से स्टार्ट किया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, और अब हम बद्री विशाल जा रहे हैं और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही।
0: चार धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग एक महीना पूरा हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या ने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। पूरा चार धाम यात्रा मार्ग इस समय भक्ति और उत्साह से भरा दिखाई दे रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु अब अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए परिवार, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं बेहद उत्साह के साथ पवित्र यात्रा को पूरा कर रहे हैं।
3: तो हम लोग अभी 2-3 धाम कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव था, और अभी चौथा धाम बाकी है, तो वो भी अच्छा ही रहेगा।
0: भक्ति का सैलाब ऐसा है कि कई बार दर्शन के लिए लगी कतारें 2-3 किलोमीटर तक पहुंच जा रही हैं। कई बार सड़कों पर जाम लग रहा है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से रास्ता जल्दी ही साफ हो रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण कुछ मार्ग प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्हें तेजी से ठीक कर लिया गया है।
4: व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी भक्तों से कहूंगा कि अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखें, और यात्रा संपूर्ण आपकी तब होगी जब आप चार धाम करेंगे, और जरूर उत्तराखंड आइए, यहां का टूरिज्म बहुत बेहतर है।
0: इधर चतुर्थ केदार रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद वहां भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है। 18 मई से शुरू हुई यात्रा में भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उम्मीद है कि पंच केदार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों के रिकॉर्ड को पार कर सकती है। उत्तराखंड से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चारधाम की यात्रा में सबसे ज्यादा रौनक बाबा केदार के धाम में है। यहाँ हर मार्ग पे, यात्रा मार्ग से लेकर मंदिर प्रांगण तक यात्रियों का जमावड़ा है। भोले की भक्ति में लीन भक्त चुनौतियों का सामना करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी आस्था और भक्ति की वजह से केदारनाथ यात्रा में नया रिकॉर्ड बन रहा है। महीने भर की यात्रा में केदारनाथ धाम का आंकड़ा करीब 8 लाख जा पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट।

0: महादेव की कृपा से पहाड़ तक झुक जाते हैं। शिव की महिमा ऐसी कि आस्था की कोई सीमा नहीं रह जाती। केदारनाथ धाम में एक बार फिर शिव की अनंत शक्ति का चमत्कार देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में ही केदारनाथ धाम ने एक नया इतिहास रच दिया है। बाबा के धाम में एक बार फिर चमत्कार हुआ है।
1: प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक महीने में 7.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है।
0: कपाट खुलने के 30 दिनों में ही 7,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। आलम ये है कि रोजाना 25 से 30 हजार भक्त दर्शन को उमड़ रहे हैं।
1: इन दिनों बाबा केदार का पैदल यात्रा मार्ग हो या मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार है। सुबह से साय तक बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों केदारनाथ धाम में आस्था का मेला लगा हुआ है।
0: इन दिनों केदारनाथ चारधाम यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। इसकी वजह है बेहतर सड़कें, हेलीकॉप्टर सेवाएं और अच्छी व्यवस्थाएं। इसी का असर है कि केदारनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती चरण में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश विदेश से भक्तों का लगातार आना जारी है। भक्तों का तांता उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी लगा हुआ है। कपाट खुलने के बाद से अब तक इन दोनों धामों में 6,45,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं।
2: यमुनोत्री धाम में 3,17,000 से भी अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बड़कोट स्थान पर, और ये वही स्थान है जहां पर यात्री पंजीकरण जांच की जाती है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से तीर्थयात्रियों के वाहनों का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
0: यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ने से धाम में लगातार रौनक बनी हुई है।
2: कुल मिलाकर के दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। यात्रियों की यात्रा के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा, उमंग और उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। लगातार तीर्थ यात्री यमुनोत्री धाम की ओर अपना रुख किए हुए हैं।
0: तीर्थयात्रियों की संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये ईश्वर की असीम कृपा है। पैदल चलकर दर्शन करने का तप है और जीवन भर की सुनहरी यादें हैं। और इसलिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए केदारपुरी पहुंच रहे हैं। अटूट आस्था और अटल इरादों के साथ ये साधु एक पैर के सहारे केदारनाथ धाम पहुँच गए। वक्त लगा, मुश्किल आई, पर 7 दिन में किसी तरह रुकते चलते ये धाम तक आ ही गए।
3: प्रशासन को क्या थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको चलने में बहुत दिक्कत आया, ऐसे कभी नहीं आ रहा, घोड़ा खच्चर परेशान कर रहे, लोग गाली दे रहा है, तभी सुना लोगों का, अभी तक मैंने हार नहीं माना।
4: इसको निकालो।
3: 8 दिन से लगातार चल रहा, 8 दिन से आज केदार बाबा के मंदिर के दरबार में, मंदिर के सामने, ये देखो उनके सामने मैं बैठा हुआ हूँ आज।
0: दूसरी ओर मध्य प्रदेश से 15 यात्रियों का दल पैदल ही बद्री विशाल की यात्रा पर निकला हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद ये लोग केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर पैदल निकलेंगे। कड़ी धूप और गर्मी में ये भक्त एक दिन में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहे हैं।
5: हम 3 मई को निकले हैं बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं, और हमें आज स्नान रुद्रप्रयाग में किए हैं, और बद्रीनाथ की यात्रा करने के साथ दर्शन करते हुए फिर हम जाएंगे केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ की यात्रा करके गंगोत्री जाएंगे, जमुत्री जाएंगे, फिर उसके बाद घर वापस लौटेंगे।
6: हम यात्रा करने के लिए निकले भैया थी, कोई ऑक्यूपाइड होंगे,
7: अभी दिक्कतें हो रही है रास्ते में, क्या
6: कोई दिक्कत नहीं, आराम से असली जा रहे हैं असली।
0: महादेव और बद्री विशाल से ऐसी गहरी आस्था जुड़ी है कि मुश्किल रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। जयकारों के साथ जत्था बढ़ता जाता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपके खान पान से आपके विचारों का कोई संबंध है? क्या आपके खाने पीने से आपकी पूजा उपासना पर असर पड़ जाता है? क्या खान पान में बदलाव करके अपने क्रोध और अपने तनाव को बेहतर किया जा सकता है? क्या है आपके आहार और विचार का संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: और अब बात अक्षय कुमार की दरियादिली की। एक्टर अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग के अलावा समाज सेवा के मामलों को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाके के बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय की एक खास पहल ने उनके स्कूल की तस्वीर ही बदलकर रख दी। क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट।
3: आम लोगों के साथ नाचते गाते मस्ती करते बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार की तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी हुई एक शानदार कहानी है। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब अक्षय कुमार बीएसएफ के जवानों के न्योते पर जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में स्थित तुलैल इलाके में आए थे। अक्षय कुमार का ये सफर इस इलाके के लोगों के लिए सिर्फ इस मायने में ही यादगार नहीं है कि बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे से उन्हें मिलने जुलने का मौका मिला, बल्कि अक्षय ने अपनी कश्मीर यात्रा के जरिए इस इलाके में बदलाव की अनूठी इबारत भी लिख दी।
4: 5 साल पहले 2021 में जब पूरा दुनिया कोविड की महामारी झेल रहा था, तब देश के बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार सीमावर्ती गांव तुलेल पहुंचे। तुलेल कश्मीर में सबसे दूर दराज इलाका है जो बांडीपोरा जिले में आता है, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। लेकिन तभी तुलेल में जाकर अक्षय कुमार ने वहां पर लोगों से मिलकर, खासतौर से बच्चों से मिलकर, उन्हें आश्वासन दिया था कि वो यहां पर एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जो किसी भी स्कूल की हर तरह की सुविधा से बेहतर हो।
3: तुलैल के नीरू गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत के सामने रखा ये बैनर अक्षय कुमार के उसी वादे की दास्तां बयां कर रहा है, जो उन्होंने 2021 में यहां के बच्चों और आम लोगों से किया था। अक्षय कुमार ने स्कूल की नई इमारत बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे अब यहां पर न केवल स्कूल की शानदार इमारत खड़ी है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।
5: पहले तो हमारे पास स्कूल नहीं था, फिर अक्षय कुमार साहब आए जिन्होंने हमें स्कूल दिया और हम स्कूल से अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है और 2 रूम है जिस पर बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते हैं।
6: बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पहले तो हमें एक्टिविटीज़ करने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, बट अब हमारे पास लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ कराई जाती है। हमारे टीचर्स हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और अब हमें पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही।
3: अक्षय कुमार की ओर से की गई मदद की पहल ने स्कूल की तस्वीर बदल दी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए साफ सुथरे बेहतरीन माहौल और इंतजामों के साथ यहां पर मिड डे मील की भी सुविधा मिलती है। लिहाजा सभी के चेहरों पर हंसी खुशी और सुकून साफ साफ देखा जा सकता है। तुलैल से अश्रवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More favorite country roads.
8: Thank God I get to wake
7: and everything
8: up
7: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
11: It's college football time. College basketball feels
10: Pardon
11: like
10: my take.
12: The Rams catching the Commanders.
10: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
13: Good news today.
14: आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी, और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी।
15: न एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
14: आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी, और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, तापमान में अचानक जबरदस्त गिरावट। ताजा बर्फबारी से बदला कश्मीर के ऊपरी इलाकों का नजारा, राजधान दर्रे में चेंज तक जमी बर्फ, गुरेज घाटी में तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड में आज खुल रहे हैं सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। भारत में 10 दिनों में बढ़ी तीसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, सीएनजी भी 1 रुपये महंगी। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक।

थे आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपके आहार का आपके विचारों पर, आपकी सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे आपके आहार और आपके विचार के कनेक्शन के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के

अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। देखिए, किसी भी जीव की मुख्य रूप से चार आवश्यकताएं हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। हो सकता है आप खाने पीने से, खाद्य पदार्थ से आहार न लें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी, चाहे प्रकृति से चाहे प्रकाश से। बिना ऊर्जा के जीवन की लंबे समय तक कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत सारे ऋषि मुनि, संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो अन्न नहीं खाते रहे हैं, लेकिन प्रकृति से, वायु से, तेज से, अग्नि से, प्रकाश से वो अपने आहार की आवश्यकताएं पूरी करते रहे हैं। तो आहार आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप भोजन से आहार लें, चाहे प्रकृति की शक्तियों से आहार लें। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन की समस्याएं हल होंगी, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन हानि से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसका हमारे ऊपर किस प्रकार से असर पड़ता है? देखिए, शरीर का जो निर्माण है या शरीर के मानसिक स्तर का जो निर्माण है वो विभिन्न कोशों से हुआ है। इसमें एक कोश है अन्नमय कोश। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं जा सकते। आहार से ही हम

कोशिकाओं का, हमारे सेल्स का निर्माण होता है और उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं, रस का क्षरण होता है। रस यानी हार्मोन्स से हमारी सोच

जाइम्स निकलते हैं, रस का क्षरण होता है। रस यानी हार्मोन्स से हमारी सोच में विकास और परिवर्तन आता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का व्यवहार और उसी तरह का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जब आप साधना जगत में जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें खाने को मना किया जाता है। उसका कारण पाप पुण्य नहीं है, उसका कारण यह है कि जिस तरह का आहार ग्रहण करेंगे मन वैसा ही होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, आप गहरी उपासना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप साधना के मार्ग पर, मन को शुद्ध करने के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार को पवित्र करना होगा। आहार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी खाने पीने की चीजों को हम सात्विक आहार नहीं कह सकते, सात्विक भोजन नहीं कह सकते। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है, ये सात्विक आहार नहीं है। सरसों का साग और मशरूम, इसको भी सात्विक आहार नहीं मानते। मांस मछली और मादक पदार्थ को भी सात्विक नहीं माना जाता। जो खाद्य पदार्थ डब्बे में बंद करके लंबे समय के बाद प्रयोग किए जाते हैं उनको भी सात्विक नहीं मानते। बासी खाना, एक समय से ज्यादा पुराना भोजन, खास तौर से मसूर की दाल,
अगर एक वेला से ज्यादा हो गया

या तो वो तामसिक हो जाती है। किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रख सकते हैं? सभी प्रकार की अनाज और दाल, ये सात्विक है। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ भी सात्विक है। सभी प्रकार की सब्जियां सात्विक आहार हैं। फल और मेवे, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये भी सात्विक आहार के अंदर आते हैं। अब ये जानते हैं कि आप अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह के स्वभाव के लिए किस तरह का आहार आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, तो गुड़ और मीठी चीजें आपको खानी चाहिए। रोटी खाइए, बासी खाना खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, तो प्याज लहसुन और मांस मछली से परहेज करें। खास तौर से कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आपको छोटी छोटी बात पर तनाव पालने की आदत है, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करें। मशरूम और आलू यानी कंद, मशरूम, अरवी, बंडा, आलू, ये कम खाएं या ना खाएं। अगर आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करता हो, शारीरिक समस्या हमेशा बनी रहती हो, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइएगा, अनाज आपको कम से कम खाना चाहिए। अगर आपके मन में ज्यादातर अश्लील विचार आते हों, ज्यादातर निगेटिव विचार आते हों, बुरे विचार आते हों, तो मांस मछली, प्याज लहसुन ना खाएं। मसूर की दाल से भी संभव हो तो परहेज करें। जितना पवित्र और जितना सात्विक भोजन आप करेंगे, आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपके सोच पर इसका असर पड़ेगा। जो लोग बुरे स्वभाव के हैं, गलत तरीके से कमाई करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, दुष्टता दिखाते हैं, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की आपके आहार और आपके विचार के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर ऑफिस में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो अपने मेज पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा आपको रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी नौकरी में, आपके काम में, आपके ऑफिस में स्थिरता बनी रहेगी। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: न एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
2: I'm in the game. I should I join with this G2-3?
1: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, बताओ विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं, तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे, हैं? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, वो लोग क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे, तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो, अभाव में जितना भजन हो सकता, प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटू वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। दोनों की भक्ति में अंतर है। ऐसे समझे, यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं, तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। जरूरी नहीं कि अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें विभीषण से कह रहे, हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक बाटका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, बाटका का नाम अशोक, माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है, जहां नाम कुछ और हो काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम, नाम तो अशोक बाटका है, माता सीता शोक में। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को,

0: हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा है, एक बार दर्शन करा दो फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ पागलो। हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी कि लंका में भी माता जानकी यानी भक्ति मिल गई, और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है।
1: बहुत से लोग हमें मिलते हैं और हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी, हमने कहा हाँ जी, बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हमका हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे, ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया, भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे है कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जो भक्त भगवान के भरोसे होता, ऐसे समझो मेला में एक 5 साल का बच्चा गया, एक 15 साल का, एक माताजी के दोनों बेटे, एक 15 साल 20 साल का था, एक 5 साल का। मेला बहुत भरा हुआ था पर माता जी की नजर बार बार 5 वर्ष वाले बच्चे पर जा रही थी, जो 5 वर्ष का बालक था उसी पर नजर जा रही थी, ये गुम ना जाए, गायब ना हो जाए, भग ना जाए, चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बार बार हाथ पकड़कर 5 वर्ष के बच्चे को माता जी कभी गोद ले लें, कभी उंगली पकड़ लें, कभी सिर पर हाथ रख ले मैं। क्यों? क्योंकि 15-20 वर्ष का बच्चा तो सब अपने मन से करेगा पर 5 वर्ष का बच्चा तो अपने मन से नहीं कर पाएगा, उसकी चिंता माँ को होती है। उसी प्रकार भैया तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम्हें स्वयं सब कुछ करना पड़ेगा, और तुम ध्यानी बनोगे तो तुम्हारी परवाह भगवान को करनी पड़ेगी। कल हम लोग कमरे में बैठे बैठे परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी की चर्चा कर रहे थे, श्री नारायण दास भक्त माली जी महाराज, आहा कितने अद्भुत महात्मा हैं। उनकी चर्चा जब आप लोग कर रहे थे तो हमें उनकी कुछ को, भारत में अभी भी कुछ संत दर्शनीय है, बाकी तो भैया प्रदर्शनीय है। बुरा ना मानना सांचौर वाले लोगों, तुम हमारी आत्मा हो, हम सच बात बोल रहे हैं, साधु हो जाना कठिन नहीं है, साधु बन जाना बहुत कठिन है। कपड़ा पहन लेना बहुत सरल है, बाल रखा लेना सरल है, माला पहन लेना सरल है, लेकिन भजन जीवन में उतारना और संत का आचरण जीवन में उतारना बहुत कठिन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी भी अपने भारत में परम पूज्य जैसे पथमेड़ा वाले श्री गौरशी मनीषी परम पूज्य श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, क्या अद्भुत विभूति है। कभी फोटो टीवी पर नहीं आती, कभी फोटो नहीं खिंचवाते, कभी स्पर्श नहीं करवाते। क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं। भारत में कुछ ही महात्मा हैं जो दर्शन करने योग्य हैं। आज ही आते समय हमारी बात बरसाने वाले परम पूज्य श्री विनोद बाबा जी से हो रही थी। आहा, क्या विभूति है। श्री राधा रानी जी की कितनी अद्भुत भक्ति है। बात करते करते ही उनके नेत्र सजल हो जाते। 18-18 घंटे श्री राधा रानी जी का भजन करते, एक ही झोपड़ी में पड़े रहते, ब्रज छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाते। भैया ऐसे संतों का भारत में अब होना बड़ा कठिन है। चाहे वो पथमेड़ा वाले महाराज जी हो, चाहे वो बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी हो, चाहे वह जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट वाले पूज्य गुरुदेव भगवान हो, चाहे वह मलूक पीठ वाले पूज्य महाराज जी जगतगुरु द्वाराचार्य श्री राजनदास जी महाराज जी हो, ऐसे संतों के दर्शन वर्तमान के समय में सतयुग स्वर्ण काल युग है। इस कलिकाल में ऐसे संतों के दर्शन करना ही परमात्मा के दर्शन करना है। बोलो जय सियाराम। तो हम आपको बता रहे थे कि भगवान को चिंता होती है, तो मामा जी का एक बाकिया है। जिन संत के बारे में हम बता रहे उनका शरीर तो नहीं है पर वो आज भी है, बिहार प्रांत के बक्सर जिले में पांडे पट्टी नामक गांव में आपका जन्म हुआ था। श्रीमन नारायण चतुर्वेदी जी के यहां, आहा, बड़े अद्भुत महात्मा। गुरुजी ने इनका नाम श्री नारायण दास भक्तमाली जी रखा। होमगार्ड की नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ दी और गीतों को संगीतों को गा गा कर मंदिरों में जाकर जाकर के भगवान के भजन सुनाने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, भक्तमाल जी की कथा पढ़ने के लिए वृंदावन आना था, तो ये पटना रेलवे स्टेशन पर गए। तो टिकट के लिए रुपया तो थे नहीं, पर इन्होंने सोचा अब जो होगा श्री किशोरी जी कृपा करेंगी, अब वहीं देखा जाएगा। और पटना रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गए। अब टिकट है नहीं, कैसे जाएं? महात्मा आदमी कहीं टीसी पकड़ ले, बेइज्जती कर ले, जेल में डाल दे, अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक कोने में रेलवे स्टेशन पर बैठकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। श्री किशोरी जी को प्रणाम करने लगे और आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। भैया आपने अपने मुंह से खुद इस घटना को कई बार कहा। भक्तमाली जी कहते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए एक सरदार जी उठे और झट से अपनी टिकट निकाल कर बोले, क्यों बाबा दिल्ली जाना है क्या? तो मामा जी बोले कि हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको तो वृंदावन जाना है, पर आप क्यों पूछ रहे? तो सरदार जी बोले, महाराज हमें कोई जरूरी काम आ गया और हमारी टिकट दिल्ली तक की है, हमें जरूरी काम से वापस जाना है, हमारा फोन आ गया, अगर तुम्हें दिल्ली जाना हो तो ये टिकट हमारी ले लो, हमारी टिकट स्लीपर में है, बढ़िया रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में बैठ करके चले जाओ। मामा जी कहते हमारी आंखों से आंसू आ गए, धन्य है किशोरी जी की कृपा, कि अचानक सब व्यवस्था कर दी और उन्होंने टिकट ली और श्री धाम वृंदावन पहुंच गए। भैया, इस घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो तुम्हें अपनी चिंता स्वयं नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को तुम्हें तुम्हारी सारी चिंता करनी पड़ेगी। आपकी चिंता भगवान की हो जाएगी, आपका काम भगवान का काम हो जाएगा, आपकी पीड़ा भगवान की पीड़ा हो जाएगी। और सांचौर के पागलों, मेरी आत्माओं, हम हाथ जोड़ करके तुमसे प्रार्थना करके कहना चाह रहे हैं, अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं, हमारे वीर बजरंग बली की हो जाएगी। हमारे हनुमान जी की हो जाएगी, व्यवस्था करने का काम हनुमान जी का हो और हनुमान जी के

मेरी प्रिय आत्माओं, भगवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तुम भगवान के भक्त हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के साधक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के उपासक हो जाओगे, अगर तुम हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारोगे, अगर तुम हनुमान जी की पूजा करोगे, अगर तुम हनुमान जी का बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारी चिंता नहीं बचेगी, समस्त चिंताएं हमारे श्री वीर बजरंग बली की हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज सर्व प्रकार समर्थ हैं, सभी प्रकार से बलवान हैं, सभी प्रकार से निपुण हैं, बुद्धिमतां वरिष्ठं भी हैं, बुद्धि बल भी तेज है, लेकिन भैया हम हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं पर अपने स्वार्थ के लिए हनुमान जी की भक्ति करते, अपितु हम लोगों को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। एक बात हो, देखो झंझटों जितनी ज्यादा हो उतनी आफत। कई लोगों को लगता है हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ी आफत है, गरीबी बहुत है। बात ठीक है तुम्हारी, पर जितने झंझट आ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर टेंशन होगी। आज तुम्हें टेंशन है पैसा नहीं है, और कल तुम्हें फिर नई टेंशन हो जाएगी कि पैसा है तो रखे कहां। एक नई टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, ईडी की टेंशन, जीएसटी की टेंशन, है कहां खर्च करें दुनिया को पता ना लग जाए, फिर और नई आपत खड़ी हो जाएगी। आज भी तुम झंझट में पड़े के है नहीं, कल फिर नए झंझट में पड़ोगे कि क्यों है इतना। बोलो सीताराम, ये झंझट है बहुत खतरनाक झंझट होते हैं, इसीलिए जो झंझट नहीं है भगवान को धन्यवाद दो, बोलो जय सियाराम।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: Today, achhi khabar, sachi khabar.
3: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था,
11: सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
13: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
14: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
15: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
16: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
17: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
23: Thank God I get to wait.
22: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
24: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
25: पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
25: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
27: न एयर डिफेंस न रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
26: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
28: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
29: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
30: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन, गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ।

0: तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, तापमान में अचानक गिरावट। ताजा बर्फबारी से बदला कश्मीर के ऊपरी इलाकों का नजारा, राजधानी दर्रे में 6 इंच तक जमी बर्फ, गुरेज घाटी में तापमान में आई गिरावट। भारत में 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, सीएनजी भी 1 रुपए महंगे। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर, ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में वायरल हुआ उनका स्टनिंग लुक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं देखने को मिली, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास भारतीय अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। ऐसा ही कुछ जादू हुआ कान के रेड कार्पेट पर जब ऐश्वर्या राय की एंट्री हुई। मिडनाइट ब्लू गाउन में ऐश्वर्या बला की खूबसूरत लगी। पैप्स को स्माइल और हैंड वेव करते हुए मरमेड गाउन में ऐश का स्टनिंग लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहले से स्लिम लग रही ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कान की रेड कार्पेट पर पैप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते और मुस्कुराते हुए हाथ

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल, ये एक ऐसा मंच है जहां रेड कार्पेट पर चलना सिर्फ कैमरों के फ्लैश तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि वहां तक पहुंचने के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और खुद को साबित करने की कहानी छिपी होती है। दुनिया भर के कलाकार, मॉडल्स, डिजाइनर और डिजिटल क्रिएटर्स इस मंच तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन यह सपना हर किसी के हिस्से में नहीं आता, क्योंकि कान सिर्फ ग्लैमर का मंच नहीं है। यहां पहचान मिलती है उस शख्सियत को जिसने अपने काम से दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। तो चलिए अब आपको ऐसे ही कुछ किरदारों से मिलवाते हैं जिनका इस इंटरनेशनल मंच तक पहुंचना जादू जैसा रहा है।

0: कान फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी कांस में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। पारंपरिक गहने और शाही अंदाज, रुचि का जो पूरा लुक था वो भारतीय संस्कृति और राजस्थान की विरासत को बयां कर रहा था।
0: कान फिल्म फेस्टिवल वो भव्य मंच है जहां दुनिया भर के सिनेमा, फैशन और ग्लैमर का सबसे बड़ा संगम देखने को मिलता है। जहां रेड कार्पेट पर कदम रखना किसी भी कलाकार और क्रिएटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा होता है। और अब इसी प्रतिष्ठित मंच पर भारतीय कलाकार से लेकर डिजिटल क्रिएटर्स की चमक भी लगातार बढ़ती जा रही है। रेड कार्पेट पर जहां एक ओर सितारे अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं नई पीढ़ी

0: के कंटेंट क्रिएटर्स भी ग्लोबल मंच पर भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के भव्य मंच पर ऑफ व्हाइट ड्रेस में अपना जलवा बिखेरती है हृदा थराना, जिनका सफर एक छोटे से गांव से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेड कार्पेट तक पहुंचा है। अपने एलिगेंट लुक, आत्मविश्वास और दमदार मौजूदगी से हृदा ने न सिर्फ फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि भारतीय डिजिटल क्रिएटर्स की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी मजबूती से दुनिया के सामने पेश किया। गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के प्रतिष्ठित रेड कार्पेट तक पहुंचने का हृदा का सफर और संघर्ष आत्मविश्वास और मेहनत की प्रेरणादायक कहानी है। आर्थिक तंगी और समाज की सोच ने कई बार उनके रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष के दम पर पहले सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई और हृदा थराना ने कांस फिल्म फेस्टिवल के मंच पर भी अपनी दमदार अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक छोटे से गांव से निकलकर ग्लोबल रेड कार्पेट तक पहुंची हृदा ने ये साबित कर दिया कि प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के आगे कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। कांस के रेड कार्पेट पर उनका आत्मविश्वास, स्टाइल और मौजूदगी नई पीढ़ी के डिजिटल क्रिएटर्स के लिए प्रेरणा बन गई। दरअसल कान का मंच दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित फिल्म और फैशन आयोजनों में गिना जाता है। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना पूरी तरह से निमंत्रण और प्रोफेशनल कैटेगरी पर निर्भर करता है। इस आयोजन में फिल्म, मीडिया और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े चुनिंदा लोगों को ही एंट्री मिलती है। इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में आमतौर पर फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल होते हैं। फिल्म निर्देशक, निर्माता और राइटर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं फैशन डिजाइनर और ब्रांड एम्बेसडर्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल क्रिएटर्स, मॉडल्स और ग्लोबल सेलिब्रिटीज को भी इस मंच पर निमंत्रण मिलता है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी इस मंच का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए मीडिया, फिल्म मार्केट से जुड़ा होना या फिर इंडस्ट्री प्रोफेशनल होना जरूरी होता है। वहीं रेड कार्पेट पर चलने का मौका भी केवल चुनिंदा आमंत्रित मेहमानों को ही मिलता है। रेड कार्पेट पर केवल वही लोग चलते हैं जो फिल्मी दुनिया से जुड़े हों। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को उनकी फिल्मों, प्रोजेक्ट्स या फिर आधिकारिक आमंत्रण के आधार पर एंट्री दी जाती है और डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें बड़े फैशन या फिर ब्यूटी ब्रांड्स के जरिए रेड कार्पेट पर आने का मौका मिलता है। कान केवल फिल्मों का उत्सव नहीं बल्कि फैशन, कला और संस्कृति और ग्लोबल पहचान का सबसे बड़ा मंच बन गया है, जहां हर साल दुनिया भर की नजरें टिकी रहती हैं और अब भारतीय प्रतिभाएं भी इस मंच पर लगातार अपनी चमक बिखेर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर एक ऐसी फिल्म की जो भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर बनने जा रही है। वैसे तो दोनों देशों के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर सहित आतंकवाद के खिलाफ अभियानों को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अब जो फिल्म बनाई जा रही है उसका संदेश एकदम अलग है। इसके बारे में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने फिल्म के एक्टर और निर्देशक युवराज कुमार से खास बातचीत की, आप भी देखिए।
2: भारत पाकिस्तान पर एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने को तैयार है, जिस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया जा चुका है। फिल्म का नाम है इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन और इस फिल्म के एक्टर मिस्टर युवराज कुमार इस समय हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत, थोड़ा सा यहाँ है युवराज जी, बहुत ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और भारत पाकिस्तान पर आप भी एक फिल्म में आ रहे हैं, क्या है इस फिल्म की कहानी और क्या जरूरत आन पड़ी, थोड़ा बताएं
3: जी। तो धन्यवाद, आपने ये पोस्टर को पसंद किया। गुड न्यूज भी बहुत होती है, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है दुनिया में और आप उसे कवर करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। हमारी जो फिल्म है इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन, ये एक अमन की बात करती है। अभी ही ईरान का वॉर हो रहा है, ईरान का वॉर हो रहा है और हमें अफेक्ट हो रहा है इससे, बल्कि तो डायरेक्ट वॉर हम इन्वॉल्व नहीं है। तब सोचिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है तो कितनी तकलीफ होगी हमें। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर पीस ही है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी पीस ही होना चाहिए।
2: बेसिकली मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन फिल्म है, ये शांति का संदेश ले आएगी।
3: शांति का संदेश ले आएगी और एक बहुत अच्छा डायलॉग है हमारी फिल्म में।
2: थोड़ा हो जाए।
3: मैं माजद से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई सल्तनत नहीं चाहिए, ये मेरा कोई पेशा नहीं है, ना मैं किसी पे हुकूमत करना चाहता हूं, ना मेरा किसी से कोई मुकाबला है। अगर मौका मिले तो मैं हर एक किसी की मदद करना चाहूंगा, यहूदी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, यही तो असल इंसान की फितरत है। हम एक दूसरे को तकलीफ में नहीं बल्कि एक दूसरे को खुशी में देखना चाहते हैं। ये दुनिया इतनी अमीर है कि हर एक के जरूरतों को मुकम्मल कर सकती है। जिंदगी का रास्ता आजाद और ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अब हम ये रास्ता खो चुके हैं। लालच ने इंसानों की रूह में जहर मिला दिया है, इसी नफरत ने हमें रुकावट में डाल दिया है। हमें मशीन्स अफराद देती है, फिर भी हमें और ज्यादा पाने की चाह है। हमारी जहनी काबिलियत ने हमें बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमें मशीन से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है। जहनी काबिलियत से ज्यादा हमें नरमी और अच्छाई की जरूरत है। इन खूबियों के बगैर दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूं, हमेशा पीस, पीस को सपोर्ट करें। और हम भारतीय हैं, इंडियंस हैं, हमारी मिसाल दी जाती है कि वी आर अ वेरी पीसफुल नेशन, वी आर अ होप फॉर द वर्ल्ड। सो लेट्स कीप दैट होप अलाइव ऑलवेज।
2: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर एक और फिल्म भारत पाकिस्तान पर बनी हुई है और बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार हो रही है। बहुत ही दिलचस्प होगा ये देख पाना कि ये जो जनता है, ये जो थिएटर में बैठने वाले दर्शक हैं, वो शांति से भरी भारत और पाकिस्तान की कहानी कितना ज्यादा अपनाते हैं। विजिलेंस वादत खां के साथ धर्म दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव
0: खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
10: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ। ताजा बर्फबारी से बदला कश्मीर के ऊपरी इलाकों का नजारा। राजधानी दर्रे में 6 इंच तक जमी बर्फ। गुरेज घाटी में तापमान में आई गिरावट। भारत में 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। CNG भी 1 रुपए हुई महंगी। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में वायरल हुआ उनका स्टनिंग लुक। कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी। चिली की फिल्म ला पेरा में निभाई है शानदार भूमिका। पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।

0: आपके साथ आशा गुप्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज बात उस सुपर कार की जिस पर AK-47 की बुलेट से भारी भरकम हथौड़े का वार भी बेकार हो सकता है। ऐसी धुरंधर कार जो सुरक्षा के लिहाज से सड़क पर चलता फिरता किला है। सुरक्षा के मामले में ये कार इतनी जोरदार है कि इसमें बैठने वाला पिस्टल, राइफल की बुलेट्स और कई मामलों में तो ग्रेनेड जैसे हथियारों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन ये किसी एक कार की बात नहीं है, बल्कि ये बात है उस तकनीक की जिसके जरिए किसी भी आम कार को सुपर कार में बदला जा सकता है। मैं बात कर रही हूं बुलेट प्रूफिंग तकनीक की। आपने अक्सर VVIP, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं को बुलेट प्रूफ कारों में सफर करते तो देखा होगा। देखने में ये दूसरी कारों जैसे ही लगती हैं, लेकिन प्रोटेक्शन देने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं। आखिर कैसे तैयार होती हैं ये कारें और क्या किसी भी गाड़ी को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बदला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे और क्या है ये पूरी प्रक्रिया और इस पूरे प्रोसेस में कितना खर्च आ सकता है? आज आपको इन तमाम सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में मिल जाएगा, तो जीएनटी स्पेशल देखते रहिए, क्योंकि आज जीएनटी स्पेशल में आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में मौजूद उस फैक्ट्री में जहां बुलेट प्रूफ कारें तैयार की जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह एक आम कार को सुपर कार में बदला जा सकता है।
1: ये देखिए, तो अब ये 10 किलो के हथौड़े ने लगभग 4-5 बार इस कांच पर वार किया है, मारा है। आगे से तो ये चीजें टूट गई है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भीतर कार के अंदर जो शख्सियत बैठा है क्या उसे कुछ हुआ है। ये देखिए, कांच पूरी तरह से आगे से टूटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं। बड़े प्यार से हम हाथ लगा पा रहे।
2: कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
3: सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है, लेकिन अगर अंदर से आप जब भी हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है।

0: AK-47 की गोली हो या हथौड़े का वार, इन फौलादी सुपर कारों पर हर वार है बेकार, क्योंकि कार नहीं ये कारों की धुरंधर है। वो धुरंधर जो सड़क पर देती है सुरक्षा की 100% गारंटी। और एक आम कार को धुरंधर में बदलती है वो बुलेट प्रूफ तकनीक, कारों का वो शानदार और जानदार मॉडिफिकेशन जिस पर दुनिया भर के नेता, अभिनेता, उद्योगपति और तमाम वीवीआईपी अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो बुलेट प्रूफ कार का सीधा मतलब है एक ऐसा वाहन जो आपको किसी तरह के हथियारों के हमले से सुरक्षित रखे। इन गाड़ियों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ज्यादा सुरक्षा वाली गाड़ियां तो हैंड ग्रेनेड या रॉकेट लॉन्चर के हमले से भी बचा सकती हैं। वीवीआईपी और नेताओं को गंभीर सुरक्षा खतरों के कारण ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। भारत में ऐसी कई गाड़ियां विदेशों से इंपोर्ट की जाती हैं, लेकिन अब भारत में भी कुछ कंपनियां इन धुरंधर कारों को तैयार कर रहे हैं। आज आपको ले चलेंगे मुंबई से करीब 260 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर में मौजूद एक ऐसी ही कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो पिछले कई सालों से भारत की जमीन पर जोरदार बुलेट प्रूफ कारें तैयार करती आ रही है। शील्ड आर्मरिंग, जहां देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बड़े उद्योगपतियों, विदेशी मेहमानों, राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार की जाती हैं। साथ ही शील्ड आर्मरिंग, पुलिसिंग, गंगा कंट्रोल और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों के काम आने वाली आर्म गाड़ियां भी तैयार करती हैं। शील्ड आर्मरिंग ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के लिए 6 PAMA आर्म्ड व्हीकल तैयार किए हैं। ये कार नहीं बल्कि सुरक्षा के मामले में ये चलते फिरते टैंक है।
1: देश की जनता की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा जिन हाथों में है, उनकी सुरक्षा किन हाथों में है, ये एक अहम सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर में ये बुलेट प्रूफ कार दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी अत्याधुनिक तरीके से बनाकर तैयार की गई है। स्टेट पुलिस को ये दी जाने वाली है और शहर के उन कोनों में ये खड़ी रहेगी जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध स्थल है। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की बुलेट प्रूफ कार कैसे बनती है, कहाँ बनाई जाती है, क्या चीजें इसमें इस्तेमाल की जाती है। इंडिया टुडे ग्रुप में आप ये सारी चीजें इस समय एक्सक्लूसिव देख रहे हैं।
0: ये बख्तरबंद गाड़ियां रिस्की ऑपरेशंस में तैनात पुलिस जवानों को सुरक्षा का नया कवच प्रदान करेंगी। स्टेट पुलिस की सेवा में पहले से मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों की तुलना में ये व्हीकल ज्यादा एडवांस्ड, अपग्रेडेड और बेहतर प्रोटेक्शन देने वाला है।
2: हाँ, ये हमारी ब्रांड की व्हीकल है जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो इसे यूज करना चाहते हैं, तो ये 100% हमारा डिजाइन है जो ये व्हीकल हमने डेवलप की है।
1: अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना अंदर चल करके किस तरीके से क्या बना है, क्या खासियत है, क्योंकि पहली बार ये चीजें कैमरे पर आ रही हैं।
2: जी, तो ये सबसे पहली बात, ये पूरा जो व्हीकल है वो 360 डिग्री प्रोटेक्शन है। जब हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसे कोई भी एंगल से पेनिट्रेशन की चांसेस नहीं है। कहीं से भी अगर बुलेट आ रही है, कहीं से भी इसको गलत फायरिंग हो रही है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। इसके चारों साइड्स हैं, इसका रूफ है, इसका बॉटम है, ये सारा कम्प्लीटली आर्मर्ड होता है। इसके आप जितने भी ये ग्लासेस देख रहे हैं, ये बहुत ही हैवी ग्लासेस होते हैं जो AK-47 SLR जैसे जो वेपन्स होते हैं उसको वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है।
1: अच्छा, और ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा छेद है, ये क्या है?
2: तो सर ये ऐसा है कि जब हमारे फोर्सेज होते हैं, जब हमारे पुलिस जवान कभी कोई मिशन में जाते हैं और वहाँ पर से अचानक से फायरिंग हो गई, तो उनको अंदर से ही बैठ के रिटेलिएट करना है, उन्हें अंदर से बैठ के जब फायरिंग करनी है तो वो अपना बैरल इस स्पॉट से, इसे गन पोर्ट कहते हैं, वहाँ से निकाल के उसे ईजिली फायर कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो गए, वीवीआईपी प्रोटेक्शन हो गए, वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इस व्हीकल के अंदर अगर आप टॉप पे देखें तो ये 360 डिग्री टरेट है,
3: जहाँ पर जवान बाहर निकलता है वो अपना गन माउंट करता है और उसको 360 डिग्री उसे फायर करने के चांसेस है। तो अगर कहीं से भी फायर हो रहा है तो उसे व्हीकल घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल वो टरेट है उसको घुमाएगा, वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहेगा और उसी वक्त वो फायर कर सकता है। इस व्हीकल की और एक खासियत है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जितने भी स्लॉट्स हैं ऐसे टोटल 4 स्लॉट्स हैं व्हीकल में, तो इसे इवन हेलीकॉप्टर से इस व्हीकल को लिफ्ट किया जा सकता है और कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है।

0: ये वाली तस्वीर भी दिखा है पीछे, यहाँ पर भी जो है बैठ सकते हैं हमारे ऑफिस।
1: यस, तो इसके अंदर टोटल ये जो मॉडल है इसके अंदर 6 सीटर है। तो जब 6 सीटर की बात करते हैं तो फ्रंट में 2 है, साइड्स में 2 है और जो रेयर है उसमें 2 है। इसमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी आता है जो फर्दर इसको क्या बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि एज पर स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट और फोर्सेस के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। कोई से हमें 6 सीटर भी बना सकते हैं, 4 सीटर भी बना सकते हैं, 8 सीटर भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट सीटिंग कैपेसिटी, ईच सीटिंग इस तरह से बनाई गई है कि जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का वो क्विक एंट्री एंड एग्जिट हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट इसमें होता है कि आप कितना फास्ट मूव इन करते हो और मूव आउट करते हो। तो ये सारी चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ये पूरा 100% डिज़ाइन है अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ है और इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स लगे हुए हैं सब हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नतीजे से ये व्हीकल तैयार हुई।
2: बात जब बुलेट प्रूफ कार की हो तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि बुलेट प्रूफ कार असल में कोई अलग गाड़ी नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल कार को खास तकनीक के जरिए मजबूत बनाया जाता है ताकि वो गोलियों और दूसरे हमलों से बचा सके। किसी भी कार को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए उसमें बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास, दरवाजों और बॉडी में स्टील या खास मटेरियल की प्लेटिंग, मजबूत छत और रन फ्लैट टायर लगाए जाते हैं। इस मॉडिफिकेशन के लिए जरूरी है कि कार में अतिरिक्त वजन सहन करने की क्षमता हो क्योंकि सुरक्षा के लिए जो स्टील की सीट्स और मोटे शीशे लगाए जाते हैं उनमें गाड़ी का वजन लगभग 1000 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। यही वजह है ज्यादातर लोग बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए SUV को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका इंजन और चेसिस दूसरी गाड़ियों की तुलना में मजबूत होता है। भारत में आमतौर पर टाटा सफारी, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, इनोवा या लग्जरी सेगमेंट में BMW और ऑडी जैसी कंपनियों की गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाई जाती हैं।
0: हमने आपको दिखाया कि फोर्स और पुलिस किस तरह की सुरक्षा भरी कार का इस्तेमाल करते हैं, कि बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चल रहे हैं हम उस तरफ जहां पर VIP, VVIP मिनिस्टर्स भी अपने कार का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से सुरक्षित और बुलेट प्रूफ। ये देखिए लैंड क्रूजर नाम की कार यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरी तरह से बनकर तैयार है। हम सीधे अब इसके भीतर जाएंगे और कैसा लगता है भीतर बैठ करके और किस तरीके से होती है सुरक्षा उस बारे में भी जानकारी लेंगे। और पूरी तरह से लैंड क्रूजर को बना करके तैयार करके रख दिया गया है। जिस किसी भी दिग्गज ने बनाने का इन्हें ऑर्डर दिया है अब बहुत जल्दी उन्हें ये कार डिलीवर भी हो जाएगी। लेकिन भीतर से इसका नजारा कैसा होगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लैंड क्रूजर कार है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ हो चुकी है। अंदर मैं बैठा हुआ हूं, उसी तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है जैसे नॉर्मल कार के होते हैं। बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। और मेरे साथ में सुरिंदर सिंह राठौर मौजूद ही हैं, साथ ही साथ इंद्रजीत सिंह राठौर भी मौजूद हैं। थोड़ा सा बताएं, पता ही नहीं चल पा रहा कि ये बुलेट प्रूफ कार बन चुकी है और आपने इसे सजा दिया, बना दिया, कैसे, क्या, कहाँ पर, क्या खासियत, कैसे पता चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा बताएं।
3: अभी आप जब यहाँ पर देखेंगे इसकी जो प्रोटेक्शन है वो हमने 360 डिग्री दी है। ये ऊपर के साइड पे भी पूरी प्रोटेक्टेड है, साइड पे भी है, दरवाजों में भी है। ये जैसे आप ग्लास देखेंगे तो ये 40mm का ग्लास है, काफ़ी थिक ग्लास है। तो इससे क्या AK-47 SLR ये सब चीज़ें अपना प्रोटेक्ट हो जाती है। और इसका आप इसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको आइडेंटिफाई करनी नहीं चाहिए कि ये आर्मर्ड व्हीकल है कि नॉर्मल व्हीकल है। आप इसकी अगर कंफर्ट देखेंगे तो कंफर्ट एज इट इज़ जो ओरिजिनल की कंफर्ट है वो मिल रही है। आपके जो प्लास्टिक्स है, आपके जो ट्रिम्स है, आपके जो डोर पैड्स है वो एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे लग रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर ये गाड़ी की बात की जाए तो ये 2 करोड़ की गाड़ी है। तो जो बंदा ये 2 करोड़ जो पैसे खर्च रहा है वो किस चीज़ के लिए खर्च रहा है? वो ये खर्च रहा है कि इसका कंफर्ट मिले। इसकी जो उसने कंफर्ट के पैसे दिए हैं, इसके जो फीचर्स के पैसे दिए हैं, अगर हमने इसको बुलेट प्रूफ में ऐसा कर दिया कि फीचर्स ही ना काम आए तो फिर ये कंफर्ट का जो उन्होंने पैसा खर्चा उसका यूज़ नहीं आएगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ओरिजिनल है, जो भी मॉडिफिकेशन की गई है वो अंदर से की गई है, आउटर लुक को एज इट इज़ उसको मेंटेन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई ना हो कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है।
0: अच्छा, मतलब ये कि भाई सुरक्षा कवच इस कार में जो कुछ लगा हुआ है वो सब आपने छिपाया है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया।
3: यस, क्योंकि अगर दिखा दे तो क्या है कि कभी कॉन्वॉय में 3 गाड़ियां चल रही है, 4 गाड़ियां चल रही है, तो अगर कोई अटैक करता है तो उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से गाड़ी में बुलेट प्रूफ हुआ हुआ है, कौन से में नॉर्मल। तो इसकी जो हाइट है वो भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कि ओरिजिनल गाड़ी जो नॉर्मल गाड़ी है और हमारी जो आर्मर्ड गाड़ी है वो सेम जैसी की दिखनी चाहिए।
2: अब आपको बताते हैं कि किसी कार को बुलेट प्रूफ कैसे बनाया जाता है। वास्तव में किसी भी सामान्य कार को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इसमें कार के इंजन को छोड़कर लगभग पूरे हिस्से को बदल दिया जाता है। दरवाजों से लेकर विंडशील्ड, खिड़कियां, छत और यहां तक कि पूरा पैनल भी बुलेट प्रूफ मटेरियल से बदला जाता है। बुलेट प्रूफिंग से जुड़ा सारा काम होता है अहिल्या नगर में मौजूद इस कारखाने में, जहां लगभग 100 लोगों की टीम एक आम गाड़ी को मॉडिफाई कर मजबूत और सुरक्षित किले में तब्दील कर देती है।
0: ये देखिए, इस तरह से जो दरवाजे अभी हमने आपको दिखाया है, इस तरह से दरवाजे खोल दिए गए हैं। सिर्फ इंजन छोड़ करके इस गाड़ी के सारे पार्ट को निकाल दिया गया है और अब बुलेट प्रूफ चीजें उस गाड़ी में, उस कार में लगाने का कार्य जो है वो शुरू है। और मुझे लगता है, जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह राठौर ने हमें बताया है, 15 से 20 दिन में ये भी लग्जरी कार जो है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं?
4: हाँ जी, एकदम सही। तो अभी इस वक्त हमने क्या किया है, जब ये जो नई गाड़ी आई थी उसको हमने लिया है, उसे पूरा स्ट्रिप डाउन किया है। तो जब आप देखेंगे तो इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके सीट, इसके अंदर अपॉल्स्ट्री, ये सारी निकाल दिए हैं। इसके अंदर हमने रीइंफोर्स किया इसे आर्मर्ड स्टील के साथ, जहां जहां हमें लगता है कि 360 डिग्री प्रोटेक्शन देनी है वहां पर इसे हमने स्टेंटेन किया है और इस व्हीकल को वापस ग्राउंड से बिल्ट अप किया है। तो हम जब ग्राउंड से बिल्ट अप करते हैं तो इसका पहले फ्लोर बनाते हैं, फिर इसके साइड्स बनाते हैं, फिर रूफ बनाते हैं। तो इसे कंप्लीट एक केज जैसा बनाते हैं जिसे हम 360 डिग्री प्रोटेक्शन कहता है। इसका ये फायदा है कि ये बुलेट से तो प्रोटेक्ट करेगा, बट अभी अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, व्हीकल टंबल होगी, इन दैट सिनेरियो आल्सो ये व्हीकल बहुत ही सेफ होती है।
0: अच्छा, ये थोड़ा सा भी हाइट में उठेगी नहीं?
4: उठेगी नहीं, ये बहुत हैवी होती है व्हीकल। तो इसका नॉर्मल जो एड ऑन वेट होता है तकरीबन 1000 केजीज इसमें बढ़ जाता है। तो इसके वजह से व्हीकल बहुत सेफ होती है, ये रोड को पकड़ के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वीवीआईपी पॉलिटिशियंस ये व्हीकल को एवरीडे यूज के लिए यूज करते हैं।
2: एक बुलेट प्रूफ कार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके टायर। हमले की स्थिति में भी गाड़ी चलती रहे इसके लिए खास रन फ्लैट ट्यूबलेस टायरों का इस्तेमाल किया जाता है।
4: इतना टाइम हमने ये देखा है कि जब एक्चुअल में फायरिंग होती है तो उन लोग है ना व्हीकल के टायर्स को टारगेट करते हैं। जब उसे टारगेट करते हैं तो जाहिर है कि व्हीकल रुक जाएगी, उन्हें ज़्यादा समय मिल जाएगा और उसे फिर फायर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो व्हीकल का जो टायर है इसके अंदर रन फ्लैट सिस्टम लगा हुआ है। ये रन फ्लैट सिस्टम क्या करता है, जब इसके अंदर डिफ्लेट होगा, बुलेट लगेगी तो ये पूरा जो एयर है डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद में जो टोटल वेट है ये रन फ्लैट सिस्टम पे आ जाएगा। और उसके अलावा ये 350 किलोमीटर्स तो भी ये जा सकता है, पूरा डिफ्लेट होने के बाद में 50 किलोमीटर आपकी व्हीकल को ये अलग जगह पर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप सुरक्षित हो वहाँ तक ये आपको पहुँचा देगा।
0: अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो टायर है ये कौन सी कंपनी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं या खुद ही बनाते हैं?
4: नहीं, जो टायर है वो OEM के जो हो सकता है, वो कोई भी मेक का हो सकता है, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा।
2: इसी तरह बुलेट प्रूफिंग के लिए खास तरह की स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मोटाई लगभग 6.5 mm तक होती है। तो वही पूरी गाड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा शीशा होता है, इसलिए इसमें 45 से 55 मिलीमीटर तक का मोटा कई परतों वाला ग्लास लगाया जाता है।
4: तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स हैं जिसमें अलग अलग थिकनेस ऑफ मटेरियल हमने टेस्ट किया है। सो वेदर उसमें AK-47 हो गया या तो SLR हो गया, जो ये कॉमन थ्रेट परसेप्शन जो होते हैं, जो टेररिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जो नक्सलवादी लोग ये वेपन्स यूज़ करते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो स्टील और ग्लास पे कुछ इस तरह का होता है। ये जब बुलेट लगती है तो सिर्फ इतना सा एक इम्पैक्ट होता है।
0: अच्छा, और यहाँ पर एक दरवाजा भी रखा हुआ है और ये शायद गोलियों के निशान है। एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, छह, ये क्या है जी?
4: सर, इसमें क्या है कि पूरी व्हीकल को जब बन गई है तो उसके ऊपर हमने ये फायर करवाया हुआ है, तो ये उसी का एक सैंपल डोर है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लासेस के साथ ये व्हीकल के डोर पे भी फायर किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ से बुलेट अंदर पेनिट्रेट होती है, वेदर इट इज ग्लास और स्टील, बट अंदर के साइड वो कम्प्लीटली वो प्रोटेक्ट करती है।
0: अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है ये कांच की? इसकी और क्या कहते हैं कांच का और कैसे इसे बनाया जाता है?
4: तो ये इसके अंदर 5 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। ये एक सैंडविच ग्लास होता है जिसमें ग्लास होता है, उसमें 5 अलग अलग तरह के मटेरियल्स लग के उसे वो 100% प्रोटेक्ट करने के लिए 40 mm थिक होता है जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, थिकनेस है उसके हिसाब से। और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कम्प्लीटली जैसे हमने ये आर्मर्ड स्टील देखी, वो आर्मर्ड स्टील लगा हुआ है।
0: और वहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि ये कांच लगा हुआ है। थोड़ा सा इंद्रजीत जी आप बताएं, ये कांच आगे का कांच है ना या पीछे का है? पीछे
3: ये का स्क्रीन है, ये विंडस्क्रीन है। तो इस पे जैसे हमने हैमर शॉट्स दिए हुए हैं, तो हैमर शॉट्स के बाद में भी जैसे हमने आपको दिखाया कि गन शॉट्स के, तो आपने सैंपल्स देखे। अगर कोई किसके दिमाग में रहता है कि नहीं इतना बड़ा हैमर लेके फिर भी प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके लिए हमने आपको ये हैमर शॉट्स के भी डिस्प्ले बना के रखा है।
2: जहाँ एक टेक्टिकल व्हीकल को बनाने में 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है, वहीं VIP सुरक्षा के लिए एक आम कार को बुलेट प्रूफ कार में बदलने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता है। बुलेट प्रूफिंग के तमाम स्टेप्स से गुजरने के बाद जब एक आम कार किले में तब्दील होकर खास हो जाती है, तब बारी आती है टेस्टिंग की। इसके लिए तैयार बुलेट प्रूफ कार के पार्ट्स को मजबूती की टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स में भेजा जाता है।
3: इसमें जैसे गुजरात में लैब है, चंडीगढ़ में लैब है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इसको टेस्ट करती हैं। जैसे एक हमारे पास में अगर मटेरियल का लॉट आ गया, स्टील का लॉट आ गया, ग्लास का लॉट आ गया, हमने वो स्टील के लॉट को अपना सैंपल टेस्ट कर दिया। जैसे आपको दिखाया, दैट इज़ ये 300x300 का हमने अपना एक शीट काटा है, ये कटिंग करके हमने इसके ऊपर 6 शॉट्स लिए हैं, SLR के हो गए, AK-47 के हो गए। जो ग्लास है जो आपके पीछे, ये 500x500 का है, इस पर भी हमने शॉट लिया। हमारी कंपनी एक एडिशनल चीज़ करती है, जब आर्मरिंग पूरी ख़त्म हो जाती है तब उसको हम पूरी बुलेट प्रूफ करके एजेंसी में भेजते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे ये गाड़ी का आपको जैसे हमने डोर दिखाया है, कि ये गाड़ी का डोर का ये खासियत है कि ये सिर्फ डोर टेस्ट नहीं हुआ है, ये पूरी गाड़ी उनके पास में गई है, वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया है, फिर हमने वो डोर को रिप्लेस करके ये डोर को अपना एज अ डेमो पीस रखा है।
2: बुलेट प्रूफिंग और टेस्टिंग की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इस कारखाने से निकली कार एक चलते फिरते किले में तब्दील हो जाती है। आज देश के कई राज्यों में यहां से निकली बुलेट प्रूफ कारें पहुंचती हैं। तमाम राज्यों में भेजी गई मॉडिफाइड कारों के सैंपल्स को इस कारखाने में बेहद शान से डिस्प्ले किया गया है।
0: और ये तस्वीरें देखें, अलग अलग राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, बहुत सारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कांच भी लगा हुआ है जो टूटे फूटे कांच है। थोड़ा सा बताएं ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ पर आपने क्या किया है ये? मतलब
3: ये हमारा एक हमने डिस्प्ले बनाया हुआ है, ये हमने सब स्टेट्स में सप्लाई किया हुआ है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। जब हम इस पे SLR के शॉट्स मारते हैं, AK-47 के शॉट लेते हैं, तो ये जो कांच है वो टूट जाता है, शटर हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से आप जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत स्मूथ है, तो अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं है। इसके लिए हमने एक वॉल एक बनाया है, एक डिस्प्ले वॉल है, कि ये सब स्टेट्स में हमने दिया और इससे ज़्यादा स्टेट्स भी हमारे ऐड हुए हैं, लेकिन अभी तक हमने उसको अपना डिस्प्ले पे नहीं डाला गया है।
0: मतलब अलग अलग राज्यों में आपने जांच प्रक्रिया पूरी करी है,
3: जहाँ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर रही है ये उनकी टेस्ट।
2: ये तो थी बात बुलेट प्रूफिंग की, अब बात करते हैं इसमें आने वाले खर्च की। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कार्य खास है, इसलिए दाम भी आम नहीं। बुलेट प्रूफिंग का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी सुरक्षा चाहते हैं। अगर गाड़ी को सिर्फ गोलियों के हमले से बचाना है तो ये खर्च 20 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ सकता है। ये बेसिक लेवल की सुरक्षा होती है जो पिस्टल या छोटे हथियारों से बचाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप AK-47 जैसी राइफल, हैंड ग्रेनेड जैसे ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से सुरक्षा चाहते हैं तो ये खर्च बढ़कर करोड़ों में पहुंच सकता है। ये खर्च इतना ज्यादा क्यों होता है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आप कौन सी कार को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास, भारी स्टील प्लेटिंग, ब्लास्ट प्रोटेक्शन, फायर सिस्टम और खास टायर जैसी चीजें कीमत को काफी बढ़ा देती हैं।
3: इसमें जैसे ये गाड़ियां हैं वो अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन के ऊपर जाती है। अगर किसको हैंड पिस्टल से लेनी है तो वो स्टार्ट हो जाती है, एक 50 लाख से चालू हो जाती है, तो वो एक 2.5-2 करोड़ तक अपना जाती है अपना। उसमें AK-47 की भी प्रोटेक्शन है, SLR की भी प्रोटेक्शन है, बॉम्ब प्रोटेक्शन भी है, तो हर तरीके से प्रोटेक्शन देता है। अगर उसको और लाइट बनाना है हमको, तो हम उसके लिए कॉम्पोजिट यूज़ करते हैं, जो स्टील नहीं होता है वो बहुत लाइट होता है, उसमें कि ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है।
2: मुंबई में हुए 26/11 हमले के बाद इस कंपनी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनाने का काम शुरू किया था। अब ये गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कस्टमाइज्ड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशन दे रही है। इतने सालों से शील्ड आर्मरिंग भारत के आर्म मोबिलिटी डिफेंस सिक्योरिटी और मोबिलिटी इंजीनियरिंग के मेल पर काम करते हुए बदलते खतरों के हिसाब से एंड टू एंड प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देती आ रही है।
1: तो ये शुरुआत ऐसे हुई कि जब 26/11 हुआ तो हमें एक नीड ये लगी कि सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स उस वक्त इंडिया में इतने क्वालिटी के जो इंटरनेशनल क्वालिटी के नहीं थे, तो जो ऑपरेशन जब यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लैप्सेस देखे गए, वेदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात की जाए या तो व्हीकल्स की बात की जाए, तो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं था यहाँ पर। तो तब ये दिमाग में आया कि हमें कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडिया में लेके जाने चाहिए ताकि हमारे जवान हैं, हमारे VVIPs हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इसको क्या बोलते हैं अपने आप को सुरक्षित कर सके। तो बस वो एक सोच था और तब से हमने स्टार्ट किया। 2011 हमने ये कंपनी स्टार्ट की और एक स्टेट से स्टार्ट किया। तकरीबन 18 राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी व्हीकल्स यूज़ कर।
2: ये वो सुपर कारें हैं जिनके आगे बुलेट बेअसर है, भारी हथियारों का वार भी बेकार है, सड़क पर चलता फिरता आम टैंक है ये कारें। यही वजह है कि देश भर में सरकारों से लेकर असरदारों तक इन धुरंधर कारों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहिल्यानगर से साहिल चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए इसी के साथ जेएनटी स्पेशल में आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो निकालिए अपना कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रणक्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
11: After multiple assassination attempts, they can't even get...
12: They're reliable.
13: Always when I need them.
10: To live sports action.
14: One-hand jam by LeBron on the break.
15: That's another three, Steph Curry.
10: And your favorite music.
16: Well, the dawn begins to crack.
10: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
6: Navjot Randhawa ke saath, Good News Today.
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
17: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
19: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
17: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: कौन से लग्न के व्यक्ति को शारीरिक बीमारियां कम होती हैं, मानसिक बीमारियां ज्यादा होती हैं? कौन से लग्न वाले बार बार जीवन में दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और कौन से लग्न वालों को इन्फेक्शन वाली बीमारियां जल्दी हो जाती हैं? आपके लग्न में कौन सी हैं बीमारियां और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ।

0: ताजा बर्फबारी से बदला कश्मीर के ऊपरी इलाकों का नजारा। राजदान दर्रे में 6 इंच तक जमी बर्फ। गुरेज घाटी में तापमान में आई गिरावट। रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लेटर। पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ आयोजन। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मरमेड गाउन में वायरल हुआ उनका स्टनिंग लुक। के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी। चिली की फिल्म ला पेरा में निभाई शानदार भूमिका। पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।
1: NECC संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।

है आपका, आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग रत्नों का प्रयोग करके आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लग्न के हिसाब से आपको बताएंगे कि किस तरह की बीमारियां आपको होने की संभावना होती है और कौन सा रत्न अगर आप धारण करें तो बीमारियों की स्थिति से आप बच सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीन मंत्रों को मंत्र त्रयी कहा जाता है। आप कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, स्वास्थ्य की कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप निरंतर इन तीनों मंत्रों को एक साथ इसी क्रम में पढ़ना शुरू करिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इनको निरंतर अगर आप जपेंगे, इनका निरंतर जप करेंगे तो स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि रत्नों के प्रयोग से आप स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि जब हम रत्न धारण करते हैं तो रत्न किस प्रकार हमारे शरीर पर असर डालते हैं और रत्न को धारण करने से किस प्रकार बीमारियों में लाभ होता है। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जिस प्रकार आकाश मंडल में 9 ग्रहों की स्थिति है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 9 ग्रह विद्यमान हैं और शरीर के ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव है। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है तब बीमारी होने लगती है, या जब आकाश मंडल के ग्रहों से आपके शरीर के ग्रहों का कनेक्शन कमजोर होता है तब बीमारी होने की स्थिति ज्यादा होती है। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर पाते हैं। आकाश के ग्रहों की तरंगें जब शरीर के ग्रहों को नहीं मिलती तब आप बीमार पड़ते हैं। आकाश के तरंगें और आपके शरीर की तरंगें एकदम ठीक से मिल जाएं, इसीलिए रत्न पहना जाता है और रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है। और जब रत्न उन तरंगों को एडजस्ट कर देता है तब आप स्वस्थ होते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो मुख्यतः आपको ये समझना होगा कि किस रत्न की तरंग की आपको आवश्यकता है और कौन सा रत्न धारण किया जाए ताकि उसकी तरंग से आपको फायदा हो सके।
सबसे पहले जानते हैं माणिक्य रत्न के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। माणिक्य किस ग्रह का रत्न है और इससे कौन सी बीमारियां दूर होती हैं? माणिक्य मुख्य रूप से

प्रातः इसको धारण करने से लाभ होता है। तो अगर आपको हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, आंखों की गंभीर समस्या है तो माणिक्य धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं मोती के बारे में। मोती का किस ग्रह से, किस कनेक्शन से संबंध है और इसके फायदे क्या हैं? देखिए, मोती चंद्रमा का रत्न है और मोती के अंदर चंद्र ग्रह की, चंद्रमा की तरंगे पाई जाती हैं। जब आप मोती धारण करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालता है, धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। शीत रोग, कोल्ड कफ के मामले में, एनीमिया, जब शरीर में रक्त कम हो जाए या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मामले में ये लाभकारी माना जाता है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है या जिनका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में या चांदी के लॉकेट में सोमवार के दिन मोती धारण करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं मूंगे की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल। मूंगा किस ग्रह से संबंध रखता है और किन बीमारियों में फायदा पहुंचाता है? मूंगा जो है ये मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह की तरंगें मूंगे के अंदर पाई जाती हैं। कमजोरी के मामले में, आत्मविश्वास के मामले में और बार बार बुखार आने के मामले में ये लाभदायक होता है। जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनको कमजोरी का अनुभव होता है, जिनको बार बार बुखार होता है, मन में और शरीर में कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए मूंगा पहनना फायदेमंद है। मूंगे को तांबे या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। अगर आप इसको तांबे या सोने की अंगूठी में पहनेंगे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पन्ना नाम के रत्न की। पन्ना किस ग्रह का रत्न है और इससे फायदा क्या होता है? पन्ना जो है ये बुध का रत्न है। हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न होता है पन्ना, और पन्ने के अंदर बुध ग्रह की तरंगें पाई जाती हैं। जब आप पन्ना धारण करते हैं तो ये मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से आपको जीवन में प्रभाव देता है। पन्ना सबसे ज्यादा फायदा करता है मानसिक बीमारियों के मामले में, मानसिक रोगों के मामले में। अगर आपको डिप्रेशन है,

0: सीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, मानसिक रूप से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो पन्ना धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। त्वचा की समस्या के मामले में और वाणी की समस्या के मामले में पन्ना धारण करने से जल्दी लाभ होता है। अगर आप पन्ना पहने तो आपके त्वचा के मामले में, आपके बोलने के मामले में और आपकी मानसिक चिंताओं के मामले में सुधार होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की शिकायत हो या कोई मानसिक बीमारी हो, उनको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं पीले पुखराज की। कौन सा ग्रह है इसके पीछे और इससे फायदा क्या होता है? देखिए, पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न है, देव गुरु बृहस्पति से संबंध रखता है और पीला पुखराज भी मध्यम गति से, एवरेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। अगर जीवन में शिक्षा की समस्या है, ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, पेट की दिक्कत आपको हो रही है या कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर आदि की समस्या है, तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनना चाहिए। बड़ी और गंभीर बीमारियों के मामले में कभी कभी पीला पुखराज पहनने से तुरंत फायदा होता है, तुरंत लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। पीला पुखराज पहना जाता है सोने में या पीतल की अंगूठी में या लॉकेट में बृहस्पति वार को प्रातः। अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो आपको लंबी बीमारियों के मामले में, ज्ञान और शिक्षा के मामले में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं हीरे की। हीरा यानी डायमंड किस ग्रह का रत्न है और इसको धारण करने से क्या लाभ है? हीरा शुक्र का रत्न है। इसके अंदर जो तरंगे पाई जाती हैं वो शुक्र ग्रह की तरंगे हैं। हीरा अगर आप पहनते हैं सोच विचार करके तो ये तीव्र गति से, बड़ी तेज स्पीड से जीवन में प्रभाव देता है। नपुंसकता के मामले में, इम्पोटेंसी के मामले में, दुर्बलता के मामले में, डायबिटीज में और आंखों की समस्या में ये बहुत लाभकारी होता है। अगर किसी का स्पर्म काउंट कमजोर हो या किसी की एक आंख में ज्यादा प्रॉब्लम होती हो या किसी को यूरिन, किडनी या डायबिटीज की समस्या हो, तो ऐसी दशा में हीरा धारण करने से लाभ होता है। लेकिन सलाह लेकर हीरा पहनना चाहिए, क्योंकि हीरा नुकसान करेगा तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हीरे को चांदी या प्लेटिनम में धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप हीरे को चांदी में पहने, अगर आप हीरे को प्लेटिनम में धारण करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं ब्लू सैफायर यानी नीलम की। नीलम किस रक्त रत्न से, किस ग्रह से संबंध रखता है और इसको धारण करने से क्या लाभ होते हैं? नीलम के अंदर जो तरंगे पाई जाती हैं, वो तरंगे शनि ग्रह से संबंध रखती हैं, यानी नीलम जो है वो शनि ग्रह का रत्न माना जाता है। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा तीव्र और तेज होता है। स्नायु तंत्र के मामले में, नर्वस सिस्टम के मामले में, दुर्घटना में पक्षाघात यानी पैरालिसिस और असाध्य बीमारियों के मामले में, लंबी चलने वाली कठिन बीमारियों के मामले में लाभकारी होता है। लेकिन नीलम नुकसान भी बहुत जल्दी करता है, बहुत तेज करता है। इसीलिए बिना पूरी जानकारी के और बिना सलाह लिए हुए नीलम नहीं पहनना चाहिए। मोटे तौर पे आप ये जान लें कि जिनको पैरालिसिस हो गई, जिनको नर्व की प्रॉब्लम रहती है, जो लंबे समय से एक ही बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए नीलम धारण करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं गोमेद और लहसुनिया की। कौन से ग्रह से जुड़े हुए हैं? गोमेद यानी हैसोनाइट, ये है राहु का रत्न, और कैट्स आई यानी विडालाक्ष या लहसुनिया, ये केतु का रत्न है। देखिए, राहु केतु का रत्न बड़ा अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। अगर फायदा करे तो बीमारियों की सही पहचान होती है और सही इलाज होता है, लेकिन अगर ये फायदा ना करे, नुकसान करे, तो राहु या केतु का रत्न पहनने से आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो अलग अलग रत्नों का प्रभाव क्या है, किन बीमारियों में फायदा होता है, उनकी तरंगें कैसी होती हैं, ये तो आपने जान लिया। अब अपने लग्न के अनुसार जानिए। जी हां, लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार नहीं, लग्न के अनुसार आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे आपको रोग और बीमारियों से सुरक्षा मिले। सबसे पहले बारी आती है मेष लग्न की। देखिए, सामान्यतः मेष लग्न वालों का जो स्वास्थ्य है ये मजबूत होता है, ये ताकतवर होता है। फिर भी मेष लग्न वालों के साथ अक्सर आप देखेंगे कि इनके साथ दुर्घटना होने की, चोट चपेट की संभावना जीवन में ज्यादा होती है। मेष लग्न वाले सामान्यतः बीमार नहीं पड़ते, ये परेशान होते हैं, चोट चपेट के मामले से और दुर्घटना के मामले से। मेष लग्न वालों को माणिक्य धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। 90% मामले में अगर मेष लग्न वाले माणिक्य पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेष लग्न वालों को मोती धारण करने से भी लाभ होता है, मोती पहनने से भी फायदा होता है। वृषभ लग्न, वृष लग्न भी स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर ठीक लग्न है, तो वृषभ लग्न वालों का स्वास्थ्य कुल मिला जुलाकर जीवन में ठीक रहता है। फिर भी वृषभ लग्न वालों को हार्मोन्स की समस्या, सर्दी जुखाम की समस्या और ईएनटी की समस्या इनके साथ बनी रहती है। वृष लग्न वालों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की तकलीफ, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर आपका वृष लग्न है और आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको एक नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके साथ आप चाहें तो ओपल भी धारण कर सकते हैं। यानी अगर आपका वृष लग्न है और आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको नीलम और ओपल ये अवश्य धारण कर लेना चाहिए। मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न है और मिथुन लग्न वालों का स्वास्थ्य मिला जुला रहता है। कभी बहुत अच्छा होता है और कभी बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है। इनको नर्व की, नसों की, एलर्जी की और त्वचा की समस्या होती रहती है। मिथुन लग्न वालों को ब्रेन की दिक्कत, तनाव की दिक्कत, सोचने की दिक्कत भी जल्दी पकड़ लेती है। मिथुन लग्न वालों को हमेशा एक पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। अगर मिथुन लग्न वाले पन्ना धारण करें तो उनको लाभ होगा। और मिथुन लग्न वालों को जो आग्नेय रत्न है, फायर के रत्न है, माणिक्य है, मूंगा है, कुछ मात्रा में गोमेद है, ये रत्न आपको धारण करने से बचना चाहिए। कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य अक्सर कमजोर रहता है। इनकी सेहत को बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। इनको शारीरिक से ज्यादा, शरीर से ज्यादा मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। कर्क लग्न के लोग मेंटल टेंशन बहुत पालते हैं और चिंता कर करके बीमार पड़ जाते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा रत्न है मूंगा। अगर कर्क लग्न है आपका और आपने मूंगा धारण किया तो करियर के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में दोनों मामले में लाभ होगा। और अगर आप मूंगे के साथ मोती धारण करें तो आपके लिए लाभ की संभावना ज्यादा बनेगी। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न एक मजबूत लग्न माना जाता है और सिंह लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत रहता है। अगर स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हुई तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मानसिक ताकत से ये अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर लेते हैं। फिर भी सिंह लग्न वालों को हड्डियों का, पेट का और आंखों की समस्या का ध्यान रखना चाहिए और सिंह लग्न वालों को चोट चपेट न लगे, हड्डियां न टूटें या हड्डियों में कोई बड़ी समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखें। सिंह लग्न वाले अगर मूंगा पहने, कोरल बनवा करके पहने तो वो स्वस्थ रहेंगे, बेहतर जीवन जी सकेंगे। आप चाहें तो मूंगा धारण करने के अलावा आप एक माणिक्य भी पहन सकते हैं। माणिक्य धारण करना भी आपके लिए उत्तम होगा। कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों का स्वास्थ्य या तो काफी खराब होता है या काफी अच्छा होता है। कन्या लग्न वालों को नसों की, नर्व की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या और बालों की समस्या हो जाती है। कन्या लग्न के जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बिना सोचे विचारे कहीं पर कुछ भी खा लेते हैं और इस वजह से ये बीमार पड़ जाते हैं। तो कन्या वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। पन्ना पहनने से लाभ होगा। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो परामर्श लेकर, सलाह लेकर अगर आप नीलम भी पहन लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तुला लग्न। तुला लग्न वालों के स्वास्थ्य में ज्यादातर उतार चढ़ाव रहता है। कभी बहुत बेहतर होता है, कभी एकदम गड़बड़ हो जाता है। इनको पेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, एलर्जी की दिक्कत और जो बीमारियां, जो समस्याएं इधर उधर के इन्फेक्शन से आती हैं वो तुला लग्न वालों को ज्यादा होती हैं। तुला लग्न के लोग अगर नीलम धारण करें सलाह लेकर तो उन्हें काफी फायदा होगा, लेकिन साथ में अगर ओपल भी पहन लें तो आपको लाभ ज्यादा होगा। वृश्चिक लग्न। इनका स्वास्थ्य सामान्यतः कमजोर होता है और जैसे कर्क लग्न वाले टेंशन बहुत पालते हैं उसी तरह से वृश्चिक लग्न वाले भी टेंशन काफी पालते हैं। इनको सर्दी जुखाम, इन्फेक्शन के रोग या मानसिक रोग ज्यादा होते हैं क्योंकि मेंटली ये अलर्ट नहीं रहते, मेंटली एकाग्र नहीं होते, इस वजह से दिक्कतें आती हैं इनके जीवन में। इनके लिए मोती धारण करना लाभकारी होगा और मोती के अलावा अगर ये मूंगा पहने, सबसे छोटी उंगली में मोती चांदी में और अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में तांबे या सोने में मूंगा, अगर आप वो धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। धनु लग्न स्वास्थ्य के मामले में मजबूत है, इनको बीमारी नहीं होती। इनके साथ चोट चपेट ज्यादा होती है, दुर्घटना ज्यादा होती है, ऑपरेशन हो जाता है, और अगर कभी बीमार वगैरह पड़े तो टाइफाइड होने की या गैस्ट्रिक ट्रबल होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन मुख्यतः धनु लग्न वालों को चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचना होगा। धनु लग्न के लोग अगर माणिक्य पहने तो वो इनके लिए बहुत शुभ है। साथ ही साथ अगर एक पीला पुखराज भी पहन लें तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। मकर लग्न, मकर लग्न वालों का स्वास्थ्य बचपन में खराब होता है। बचपन में सामान्यतः आरंभ में ये कमजोर होते हैं और बाद में उम्र बढ़ने के साथ ये स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। सामान्यतः इनको पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और आंखों की समस्या परेशान करती है। धनु लग्न के लोगों को ऑपरेशन से बचना चाहिए, ये पहले आपको बताया। उसी तरह से मकर लग्न के लोगों को अपनी आंखों और अपनी स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका मकर लग्न है तो आप एक पन्ना जरूर पहनिएगा, और पन्ना पहनने से स्वास्थ्य और मन बेहतर होगा, और पन्ने के साथ अगर संभव हो तो एक ओपल या एक हीरा आप अगर पहने तो आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न, इनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। कुंभ लग्न वाले ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कांड करते हैं कि बीमारी अपने जीवन में खुद अट्रैक्ट करते हैं, बीमारी को खुद अपने जीवन में लाते हैं। मानसिक रोग, नसों के रोग और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जल्दी होती हैं। कुंभ लग्न वालों को डाइजेशन और लीवर को लेकर के हमेशा अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो ओपल या हीरा पहनिए। ओपल या हीरा पर्याप्त है आपके लिए। तर्जनी उंगली में, चांदी की अंगूठी में शुक्रवार की शाम को पहन लें। और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ओपल या हीरे के साथ एक नीलम भी अगर आप पहने तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन लग्न, इनका स्वास्थ्य मिला जुला रहता है, ना तो बहुत अच्छा होता है ना तो बहुत खराब होता है। मीन लग्न वाले बड़े जल्दी मोटे होते हैं। मीन लग्न के अंदर मोटापे की टेंडेंसी होती है, तो मीन वालों को त्वचा की समस्या, मोटापा और इंजेक्शन वाली चीजों से देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन पकड़ लिया तो आप बार बार इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हो जाएंगे। मीन लग्न वालों को एक मोती पहननी चाहिए। चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। साथ में अगर मीन लग्न के लोग पीला पुखराज पहन लें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अलग अलग लग्न के अलग अलग बनावट हैं, अलग अलग तत्व है और अलग अलग ग्रहों का इंपैक्ट यानी प्रभाव होता है। जब आप उस लग्न के तत्व को मजबूत कर देते हैं, जब आप उस लग्न के तत्व को ठीक कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपने लग्न की जानकारी नहीं है तो क्या उपाय करें कि हमेशा स्वस्थ रहें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और अगर उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह जल चढ़ाने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और तीसरा काम ये करें, हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करें। अगर ये तीन उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य की या दुर्घटनाओं की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Na air defense, na radar. Toot jayegi dushman ki diwar. दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा के बजाय अपने देश को ही एक्सप्लोर करने की अपील की थी, तो देखिए गुड न्यूज टुडे भी आप सभी से अब अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें और वीडियोस बना करके हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को जीएनटी पर दिखाएं। देखिए हमारे दर्शक भी बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अपनी जगहों के खूबसूरत वीडियोस लगातार हमें भेज रहे हैं। तो चलिए आपको टिहरे की उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में वीलॉगर बने एक दर्शक की जुबानी सुनाते हैं।

स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं गीता सेमवाल, मैं बुलाना चाहती हूँ आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हल्की हल्की आजकल ना शाम के टाइम पे ठंड महसूस हो रही है। वाह, कितने सुंदर नजारे हैं, कितनी सुंदर प्रकृति की यहाँ पे खूबसूरती है। आपको ना बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, चीड़ का घना जंगल, ये सब चीज देखने को मिलता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो धाम है, श्री यमुनोत्री धाम और श्री गंगोत्री धाम। तो आजकल ना काफी अच्छी यात्रा चल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी यही कहा है कि आप विदेशों में घूमने न जाके भारत की जो जगह है, पर्यटक स्थल है, जैसे उत्तराखंड में चार धाम है, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम, आप इन जगहों पे आए। इसके अलावा भी उत्तराखंड में न कहीं आपको पर्यटक स्थल देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आजकल यमुनोत्री धाम में और श्री गंगोत्री धाम में, यानी चारों धाम में काफी टूरिस्ट आ रहे हैं। जब हमारे गांव मुखवर में मोदी जी आए थे तो उस टाइम जो ये यात्रा चल रही है, अब ये ग्रीष्म काल में न होते हुए अब ये यात्रा शीत काल में भी चलती है, यानी 12 महीना यात्रा चलती है। तो माननीय मोदी जी ने घाम तापो पर्यटक इसका नाम दिया है। मुखवा के सामने धराली है, हरसिल है, बगोरी है। और अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो यहाँ पे ना ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए कई जगह है, जैसे दयारा बुग्याल है, गौमुख ट्रैक है, सात आठ ट्रैक है, ऐसे कई अन्य ट्रैक है। अगर आप ट्रैकिंग प्रेमी हैं तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप शीतकाल में यात्रा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उस टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। क्योंकि हरसिल में जो है धराली मुखवा में सेब, राजमा और उसके साथ साथ खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, ये भरपूर मात्रा में आपको देखने को भी और खाने को भी मिलती है। और इसी के साथ साथ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि वेडिंग डेस्टिनेशन है, जैसे कि त्रिजोगी नारायण है और उत्तरकाशी में बाबा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में है, श्री गंगोत्री धाम में गंगा मैया जी के मंदिर में है, और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा, वहाँ पे आप ना शादी करवा सकते हैं और इन जगहों पे ना शादी होती है। तो आइए ना श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम और गंगा मैया जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा उत्तरकाशी में आपका स्वागत है।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए आपका टीरी गढ़वाल से स्वागत करता हूं। अभी मैं यहां पे टीरी गढ़वाल के सुदूर क्षेत्र गंसाली क्षेत्र में चूल्हागढ़ बासर में मौजूद हूं। अभी मैं यहाँ चूल्हागढ़ धाम में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे लगातार जो है कार्यक्रम होते रहते हैं ऐसे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि घूमने के लिए जो है अपने अपने ही देश में जो अलग अलग रमणीक स्थानों पर जाए, तो हमारे उत्तराखंड में टिहरी में भी बहुत ही सुंदर स्थान है। इधर हमारा इधर टिहरी गढ़वाल में ही पवाली कांठा और कई प्रकार के ट्रैकिंग है, मासर ताल है, इधर नचिकेता ताल है और टिहरी झील है और कई अन्य प्रकार के यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे बुढ़ा केदार हो गया और सुरकंडा देवी हो गया, इधर ये चूल्हागढ़ हो गया।
1: बहुत नाम सुना है ये जो राजराजेश्वरी देवी है और ये जो भूमि है, अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया और ये सुंदर भूमि, हमने जो है कई हमारे जानकार रहते हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो है भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, इसलिए मंदिर को देखने के लिए आए। जो भगवान का आस्था रखते हैं उनके लिए ये दिव्य स्थान है, उनको जरूर जो है यहाँ पे आना चाहिए। जो आनंद की अनुभूति आज हमें यहाँ इस स्थान पर हुई है, वो आनंद की अनुभूति आपको कहीं भी नहीं हुई है। ये सिद्ध क्षेत्र है और जरूर आप आए और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें।
0: यहाँ पे पूरे देश के पर्यटक यहाँ पे मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पे आए और इन रमणीक स्थानों का जो है भ्रमण करें अपने परिवार के साथ।

गुड न्यूज टुडे के लिए मैं त्रिश कपूर आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज कौसानी और पूरा हिमालय जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर चमक रहा है। गुड न्यूज में आप सबका स्वागत है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि पर्यटक विदेशों में न जाएं और अपने देश में आएं, कौसानी आएं, उत्तराखंड आएं, बागेश्वर आएं। मैं आप सबको बागेश्वर में इन्वाइट करता हूँ। बागेश्वर अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थान है, एक वैली है और जिसको गोल्डन वैली ऑफ कुमाऊं एटकिंसन ने कहा था। बागेश्वर दो नदियों का संगम है, गोमती और सरयू। वहां पर उस संगम पर बागनाथ जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, पंथा यह है, शिव भगवान वहां पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे। और दूसरी कहानी यह भी है कि शिव भगवान वहां पर वाघ के रूप में, आवाज के रूप में प्रकट हुए थे। इसको बागेश्वर या बागेश्वर कहते हैं। ये सरयू नदी वही है जो यहां से निकलकर, बागेश्वर से निकलकर और ये जाती है अयोध्या और वहां से उस पर आजीपुर जाके गंगा मिल जाती है। बागेश्वर अपने आप में एक सुंदरतम स्थल है। यहाँ पर ट्रैकिंग की बहुत फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर माउंटेनिंग की, ट्रैकिंग की, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड वॉचिंग की। मैं इस कौसानी की बात कर रहा हूँ। इस कौसानी में लगभग 200 प्रकार के पक्षी आपको मिलते हैं। अगर आप पिनाक के जंगल में चले जाएं तो आपको मालूम पड़ता है कि लेपर्ड भी आपसे मिलने चला आता है और एंटीलोप बहुत है हमारे यहाँ, हिरण बहुत है हमारे यहाँ, मस्क डियर बहुत है हमारे यहाँ, लेपर्ड बहुत है और बर्ड्स तो भरी पड़ी है हमारे पास। हमारा सुंदर मंदिर है बैजनाथ का और बागेश्वर का और सत्यनारायण का, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरमा ग्लेशियर, इन सबके रास्ते यहीं से जाते हैं। अगर आप बागेश्वर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से हल्द्वानी तक आ सकते हैं ट्रेन से और हल्द्वानी से किसी भी हेली सर्विस से आप बैजनाथ उतर सकते हैं। हमारे हमारा हेलीपैड हेलीपोर्ट यहाँ पर है, वहां पर उतर के अपनी आप जर्नी 20 मिनट पूरी कर सकते हैं। अन्यथा बस से भी, अपनी कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। बहुत ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर आइए, कौसानी आइए और यहाँ की हर चीज को एंजॉय करिए। देखिए चिड़िया कितनी बोलती है हमारे यहाँ, आपको हर जगह बर्ड मिलती है। इन बर्ड्स की आवाज को सुन के आप देखिए क्या हरियाली भरी पड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर बुरांस के जंगल, यहाँ पर काफल पके हैं आज कल जंगलों में, यहाँ पर नाशपाती और फलों की बड़ी है, बहुत बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पर कौसानी में कई हमारे सेब के बगीचे लगाए हैं, दूसरे फल के बगीचे हैं। कीवी हमारा बागेश्वर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको हम कीवी के बारे में बताते हैं, बुरांस के फूलों के बारे में, बटर ब्रश के बारे में बताते हैं। अब हमारे यहाँ फल पकने लग गए हैं। आप सोचिए कि आजकल हमारे यहाँ खुमानी पक गई है, आड़ू पक गया है। ये देखिए हमारे सेब के बगीचे में सेब लगने शुरू हो गए हैं। हमारे पास आड़ू का बगीचा भी है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर नैपकिन के आड़ू की वैरायटी है जिसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और इसमें सेब से भी बाहर से सेब की तरह लगता है और अंदर जब इसके जाएंगे तो हमको बिल्कुल आड़ू खाने को मिलता है। जिस तरह से कैसा मिलता है आपको सेब से बगीचे भरे पड़े हमारे हर जगह सेब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब चारों इधर देखिए। आइए आप मेरे इस आड़ू के बगीचे में देखिए आड़ू के फल किस तरह पक चुके हैं। साथ में सेब भी हैं, साथ में चेरी भी है, साथ में प्लम भी हैं, साथ में खुमानी भी है और सारे फल हमारे भरे पड़े हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कौसानी की बड़ी खासियत है, यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपको देखने को मिलता है। और उसी तरह यहाँ पर कौसानी की खासियत यह है, यहाँ बैजनाथ की वैली 3000 फीट पर है और जो नंदा देवी है 26000 फीट पर है। तो 3000 से 26000 फीट ऊंचा हिमालय और 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपी रंपा से लेकर बंदरपुर तक सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं। और त्रिशूल की तो महिमा ही कुछ और है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा खुंटी और बैजनाथ की वैली, कतियो की वैली, बागेश्वर की वैली, ये आपका दिल बहुल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सुंदरता हमारे कौसानी में है वो कहीं नहीं है। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मित्रों की तरफ चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा था मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड या यूरोप क्यों जाते हैं जबकि कौसानी यहाँ पर है। कौसानी और बागेश्वर की महिमा ही कुछ और है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बिहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर चुके हैं कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें। तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो निकालिए अपना कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। एक बजकर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी राहत की फुहार। बारिश के चलते गर्मी से लोगों को मिली राहत। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की दर्ज की गई कमी। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिली नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लेटर। पूरे देश में 47 जगह पर हुआ इसका आयोजन। कान के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा अपना ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में वायरल हुआ उनका स्टनिंग लुक। में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी चिरी की फिल्म ला पेरा में निभाई है शानदार भूमिका, पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
11: सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, चरम पर श्रद्धालुओं का जोश। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ, पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था गोविंद घाट से पवित्र धाम पहुंचा। गुरुद्वारों को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया, समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र है श्री हेमकुंड साहिब, हर साल मई महीने से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है ये पवित्र यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम कर चुकी है हेमकुंड साहिब का निरीक्षण, यात्रा व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट है टीम। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चार धाम यात्रा, अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चार धाम में आज करीब 90,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 30,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, आज करीब 28,000 श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल के धाम। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का मेला, दोनों धामों में करीब 3.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पवित्र अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीरें आई सामने। गुड न्यूज टुडे पर करिए बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन, प्राकृतिक हिम शिवलिंग ने पूरी तरह से ले लिया आकार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंची सुरक्षा बलों और मंदिर प्रशासन की टीम। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालु करा चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन, बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं के प्रतिमाओं की पूजा की। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया उनका दिव्य श्रृंगार। ड्राईफ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। उज्जैन पहुंचे कई फिल्म सितारे, महाकाल के दरबार में लगाई अपनी हाजिरी। कोरियोग्राफर एमो डिसूजा, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और अभिनेता विकी जैन ने महाकाल की रात्रि शयन आरती में की शिरकत, विधि विधान से की पूजा अर्चना। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी में पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, परिवार भी साथ रहा मौजूद। तिरुमला के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी गई आरती। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया लेटर, पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ इसका आयोजन। महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एयरपोर्ट पर धूमधाम से दी गई उन्हें बधाई। भारत की सुरक्षा हुई और मजबूत, ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता, 12 टन है इस मिसाइल का वजन। 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम अग्नि 1, कम दूरी तक बेहद सटीक हमला करने की है क्षमता। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया इसका परीक्षण, जो देश की रक्षा और न्यूक्लियर क्षमता को देता है मजबूती। इसे क्विक रिएक्शन के हिसाब से किया गया है डिजाइन, खास बात यह है कि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है मिसाइल। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल, मुंबई से शिरडी जाने के लिए ट्रेन का किया इस्तेमाल।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to... But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये

0: शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
7: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ में 500,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पड़ी राहत की फुहार। बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की दर्ज की गई कमी। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लेटर। पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ आयोजन। कांस के रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय ने बिखेरा ग्लैमर। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में वायरल हुआ स्टनिंग लुक। कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी। चिली की फिल्म ला पेरा में निभाई है शानदार भूमिका। पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल चौधरी और लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और बेटिया का ये वीकेंड स्पेशल एपिसोड। वीकेंड है तो फन है, मस्ती है, पार्टी है, तो क्यों ना आज आप घर बैठे बैठे हो जाएं हमारी इस पार्टी में शामिल जो है सितारों से भरपूर। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। लेकिन उससे पहले नजर हमारी हेडलाइंस पर।
9: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, रोहित के घर होगी पानी की किल्लत, प्लम्बर बनकर आएगा नाहर।

फिर एक बार ईरा चलेगी अपराजिता के खिलाफ षड्यंत्र। बढ़ेंगी माँ बेटी में नजदीकियाँ, ईशा करेगी मेहका के साथ टाइम स्पेंड।

पीयूष भी करेगी नकली ड्रामा, रूहानी को दिखाएगी टशन। बात करेंगे इश्क दम इडली रसम की प्रोड्यूसर यानी कि सुरभि चान्ना से।

और देखेंगे माधुरी दीक्षित की आने वाली सीरीज माँ बहन के ट्रेलर लॉन्च के खास नज़ारे सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: नाहर और रूही, मैं जानती हूँ फिलहाल आपकी कहानी में एक बहुत ही टेंस सिचुएशन चल रही है, लेकिन क्यों ना आप दोनों भी ले लें एक ब्रेक। जस्ट पुट ऑन योर डांसिंग शूज एंड फॉरगेट एवरीथिंग। देखिएगा यूं मिनटों में आप दोनों हो जाएंगे रिफ्रेश और दिमाग भी हो जाएगा ठंडा, क्योंकि जब दिमाग होता है ठंडा तो हम लाइफ के सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
1: पानी को लेकर मचा बवाल, नाहर बना बहरूपिया। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में प्रयाज रूही के घर की पानी की टंकी खराब हो गई है, जिसके चलते घर वाले बेहद परेशान हो रहे हैं और बस पानी के जुगाड़ में लगे हैं। ऐसे में देखिए कैसे भाई रूही बकेट भरकर पानी ले आई है, जिसके बाद सब यही चाहते हैं कि रूही ये पानी उन्हें दे दे, लेकिन भाई रूही तो ये पानी नाहर के लिए लेकर आई है क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जो जाना है। ऐसे में रूही का ये बर्ताव देखकर घर वाले हैरान हैं।
2: अरे ये क्या तरीका है भाई, दोनों बिजली के घर का लड़ रहे हो। अरे ठीक हो जाएगा, पहुंच जा बंदो को।
1: ऐसे में घर में हो गई है प्लम्बर की एंट्री और जरा देखिए तो भाई घर वाले तो नहीं पहचान पाए, लेकिन हमने पहचान लिया है ये और कोई नहीं बल्कि नाहर है, जो प्लम्बर बनकर घर आए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घर की टंकी में पानी का प्रॉब्लम भी इन्होंने ही किया है, तभी तो देखिए कैसे भाई हर कोई इस प्लम्बर से सवाल कर रहा है।
3: क्या बोल रहे हो भाई, इतना मुक्का चश्मा हमने लगाया है,
4: लेकिन अभी
3: तो नहीं हो रहा तेरे। अरे कमाल करते हो भाई, अरे 5G का जमाना है, 6G 7G भी आने वाला है, 10 मिनट में ट्रांसमिशन चड्डी गड्डी, अरे मतलब खिलौना वाला गड्डी सब आ जाता है, और हम तो पलम्बर है, हम कहे नहीं आ रहे।
1: अब देखना होगा भेस बदले हुए नाहर घर की पानी की टंकी के साथ साथ और क्या कुछ ठीक करके जाते हैं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: सास बहू और बेटा के रिपोर्टर्स जाते हैं अलग अलग सेट्स पे और लेकर आते हैं आपके लिए ताजा ताजा एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। तो इस पार्टी में भी हम कर रहे हैं आपको अपडेट। तो ऐसी कौन सी ताजा खबर लेकर आई है हमारी टीम सास बहू और बेटियां, आइए देखें।
5: ईरा ने चली नई चाल, फिर कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हुई अपराजिता, बढ़ी घर वालों की टेंशन। स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनफा तुम देना साथ मेरा में आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट आते ही रहते हैं, और आज फिर एक बार ईरा पहुंच गई है अपराजिता के घर पर, और उसने देखिए बड़ी ही चालाकी से वो वीडियो निकाल लिया जब अपराजिता के पापा अपराजिता की मशीन ठीक कर रहे थे। असल में अपराजिता की मशीन खराब हो गई है, ऐसे में वो अपने पापा की हेल्प लेती है इस मशीन को ठीक करने के लिए। तभी वहाँ पर ईरा पहुँचती है जो बड़ी ही चालाकी से ये वीडियो निकाल देती है और फिर वो पहुँचती है अपराजिता के पास ये कहते हुए कि यहाँ पर सरप्राइज चेकिंग हो रही है और चेकिंग में पता चला है कि उनके इस कॉम्पिटिशन में मदद कर रहे हैं अपराजिता के पापा, जिस वजह से वो कर देती है अपराजिता को डिस्क्वालीफाई और घर में टेंशन का माहौल है।
6: वो अपराजिता मैडम बताया था ना सरप्राइज इंस्पेक्शन होगी, वही होगी।
7: और क्या कमाल का इंस्पेक्शन हुआ, जिस बात का मुझे यकीन वो आज सच में पूरा हो गया। और आज उसका रूप मेरे पास क्या हो गया, वो एक जो सच देखो अपने आप को बहुत बड़ी पुरकर समझती है, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम अपना काम अपने पापा से। एक्चुअली मेरी मशीन खराब हो गई थी। बहाने बहाने बहाने, सॉरी हम बहाना नहीं है, रिसर्च के कहा ना नॉट इंटरेस्टेड। मैं उसे एक बार इंटरेस्टेड हूँ, ये पता कि तुम इसको डिस्क्वालीफाई होती हो।

0: पे सवार कोई भली औरत है।
1: हाँ।
0: वीडियो निकाल के तो इसने कांड ही कर दिया, बुंदी औरत।
1: अब बुद्धि डिस्क्वालीफाई, मतलब अब पैसे नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी?
0: अरे कोई मरे या कोई जिए, इसे तो बस पैसा और शादी, पैसा और शादी।
2: ऐसे में अब अपराजिता गई है ईरा से बात करने के लिए, और वहाँ उसके पीछे पीछे अपराजिता के पापा भी गए हैं। लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट ऐसा आता है कि अपराजिता के पापा ईरा के सामने घुटने के बल माफी मांग रहे हैं, और ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता उन्हें रोक रही है। तभी वहाँ रक्षित आते हैं जो ईरा को भी डांटते हैं और अपराजिता के पापा को सहारा देते हैं।
3: तुम इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो गई।
4: नहीं नहीं, ये बहुत गलत। मैम प्लीज, मैम मैं आपसे हाथ मत दो, मैम आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को अच्छे मत
1: निकालो।
5: क्या बदतमीजी है राम, तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए तुम राम गोपाल अंकल से माफी मांगोगी। कमा
3: मैं क्यों माफी मांगू?
5: तुम्हारे पापा के उम्र के आदमी के साथ तुमने जो बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो।
2: वहीं दूसरी तरफ रक्षित पहुंच गया है अपराजिता के घर में उनके पापा को लेकर। ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता की माँ हो गई है परेशान। लेकिन सारी चीजें समझाते हैं और अपराजिता की मम्मी को शांत करते हैं रक्षित। वैसे यहाँ तो हो गई है एक रस्म भी, असल में रक्षित जब अंदर आए तो उनके पैर के साथ ये गेरवा भी आ गया। ऐसे में देखिए कैसे अपराजिता की माँ उनके पैर धो रही है।

0: कैसे पाओ जब ये धो जाते हैं सांस धोती है बस
1: भाई रक्षित का तो बड़े ही धूमधाम से स्वागत हुआ और अपराजिता की माँ देखिए कैसे रक्षित को अपने हाथों से बने हुए पोहे भी खिला रही है, वो भी इंदौर स्पेशल। पे लगता है रक्षित यहाँ रम गए हैं।
2: आप ये इंदौर के पोहे सेब के बगैर अधूरे हैं।
3: 100%
4: दरवाजे पे आवाज आती है तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और पता चलता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़े से बेहोश से चल के आ रहे हैं घर में और उसके साथ एक लड़का है। क्या हुआ, उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था तो क्या हुआ, ऐसे पैनिक करके वो घर में आते हैं और बाद में समझ में आता है कि हम जो काम लेकर बैठे थे दहलीज पे वो पूरा वहाँ पे कलर जो है गेरू नीचे गिर गया है और घर में पूरा फैल गया है। तो मैं बोलती हूँ अरे आप तो मेहमान हैं, आप मेरे हस्बैंड की इतनी हेल्प की है तो आप रुक जाइए, मैं पैर धो देती हूँ। तो आई क्लीन हिज फीट बेसिकली और बुआ जी उतने में बोलती है कि हाँ हाँ हमारे यहाँ तो जमाई के पैर धोए जाते हैं। वो प्रथा उधर हो रही है सिम्बॉलिकली। ऑडियंस बहुत स्मार्ट है
1: भाई। हर मोड़ पर किस्मत रक्षित और अपराजिता के कनेक्शन जोड़ रही है। अब देखना होगा कि इनमें प्यार कब और कैसे होता है। मुंबई से चंदन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: हमारी सैटरडे वाली पार्टी से अब आ रही है आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज जो जुड़ी है इनसे। जी हाँ, इनसे जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं लेकिन आज तो हम इन्हें जानेंगे अप क्लोज एंड पर्सनल। बताइए कैसे, क्योंकि यहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने की है इनसे ही एक खास मुलाकात। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर जो है सितारे से मुलाकात।
6: सूर्य करण का इश्क दम इडली रसम

0: टेलीविजन कलाकार से प्रोड्यूसर तक का सफर। सुरभि चांदना के दिल की बात, सास बहू और बेटियां के साथ। इश्क बाज फेम सुरभि चांदना भाई इन्होंने टेलीविजन पर अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता ही, लेकिन हाल फिलहाल में ये बन गई हैं शो की प्रोड्यूसर, जो इन दिनों बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, जिसका नाम है इश्क दम और इडली रसम। ऐसे में आज इस शो की पूरी कास्ट सास बहू और बेटिया के कैमरे में कैद हुई, जहां सुरभि चांदना के साथ नजर आ रहे हैं करण, नेहा लक्ष्मी और इनके शो की कास्ट एंड फ्रेंड्स। ऐसे में ये टीम जब एक साथ नजर आई, भाई मोमेंट्स तो काफी हैप्पी थे। तो आइए करते हैं सुरभि से मुलाकात और जानते हैं उनका सफरनामा, उनकी ही जुबानी।
1: किसके जुबान पे सरस्वती बैठी होती है पता नहीं चलता। कुछ 10-11 साल पहले इश्बाज जब मैं कर रही थी, तो मैंने कोई इंटरव्यू में ऐसे ही बोला, हाँ मेरे फ्यूचर में प्लान है कि मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगी, और टुडे आई एम ऑफकोर्स आपका पार्टनर भी बहुत बहुत ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे, आपको पुश करे। सो इसलिए आज हम अपने शो के साथ इश्क दम और इडली रसम के साथ मतलब विद गुड रिव्यूज़ आज हम बहुत खुश हैं, एंड इट्स एन अचीवमेंट। आई डोंट नो, मतलब 2 साल पहले जब हमने अपना म्यूज़िक लेबल खोला मैंने और करण ने, कॉल्ड फील गुड ओरिजिनल्स, हमें पता था कि ज़िंदगी में आगे जाके हमें शोज़ बनाने हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे तो वैसे ही बहुत प्यार है, तो मुझे पता था कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम शोज़ बनाएंगे, चाहे चैनल्स के लिए बनाएंगे या वेब के लिए बनाएंगे या यूट्यूब के लिए बनाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आई कि बालाजी यूट्यूब पे शोज़ बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि अरे ये चांस है तो वाई नॉट। तो कुछ फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स के थ्रू हम घुसे अंदर, वहाँ से ये बात बनी, तो उन्होंने कहा एक कुकिंग पे शो हम बनाना चाहते हैं। उनका एक शो है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, बहुत फेमस शो है, जिसमें दिव्यांका एंड राजीव खंडेलवाल है। तो उन्होंने कहा समथिंग ऑन सिमिलर लाइन, सो वी सेड ओके, दे वांटेड टू मेक अ काइंड ऑफ अ सिमिलर सीजन, अनदर सीजन ऑफ द सिमिलर शो। सो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर देन 3-4 नाम हमने थ्रो किए, कुछ बिरयानी से रिलेटेड था, कुछ इडली से रिलेटेड था, एंड अल्टीमेटली ये पिक हो गया नाम इश्क दम और इडली रसम। 30 एपिसोड्स हैं, ज़्यादा नहीं, 18-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, छोटे छोटे हैं, क्रिस्प है, पेसी कहानी है। मतलब इट्स नॉट, वो फॉर्मेट वैसा नहीं है कि चलता जा रहा है सालों साल, तो चलता जा रहा है। सो अच्छा है ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी टुडे, आज की जनरेशन का शो है। काफ़ी जो कास्ट है, सेकेंडरी कास्ट है, प्राइमरी कास्ट है, सब यंगस्टर्स हैं। सो बहुत ही अर्बन फील है और बड़ा जेंजी कॉन्सेप्ट है। शाइनी के साथ हम काम कर चुके हैं, उन्होंने हमारे एक म्यूज़िक लेबल का गाना किया था फर्जी, एंड हमें पता था कि कल जब कभी भी हम जब शो बनाएंगे हम पूछेंगे अगर शाइनी को कभी इंटरेस्ट होगा तो टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड शी वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड। अभिषेक वी थॉट वुड हैव बीन जस्ट द परफेक्ट फिट, हमें लगा कि आज तक अभिषेक को जिस तरीके से देखा है इस शो में, अगर जिन्होंने भी एपिसोड्स देखे हैं वो यही कहेंगे कि यार अभिषेक बहुत ही अलग लाइट में दिख रहे हैं, बहुत ही ड्रेडिंग वाला उनका कैरेक्टर है, बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है, उनमें एक शेड ऑफ ग्रे भी है जो बहुत मज़ेदार है, पर वो जब खुलते हैं उनके राज तो बहुत मज़ा आता है। सो बहुत अच्छे निभा रहे हैं दोनों एज एक्टर्स, एंड दोनों की जोड़ी भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। उनको अर्मी उनका नाम है, हैशटैग है उनका, अर्जुन ठाकुर एंड मीरा नायर। हाँ यार, मतलब फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ मैं तो काफ़ी कुछ, आई मीन आई हैव सीन एन एनवायरमेंट वेयर देयर हैव बीन विमेन हेडलाइनिंग शोज, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा है। और मुझे था कि यहाँ पे भी मैं और करण मिलके जो करने वाले काफ़ी 50% अगर मेरा योगदान है तो उनका भी 50% योगदान है, बट काफ़ी इंस्पिरेशन मैंने लिए, एंड अभी आज भी मैं बालाजी के साथ एसोसिएट हुई हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत ही फीमेल सेंट्रिक एनवायरमेंट है, काफ़ी चेंजेस है यार। ऑफकोर्स एक तो बूम ऑफ वेब तो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है, उस टाइम पे भी काफ़ी वेब शोज़ आ रहे थे लेकिन तब हमने इतना तवज्जो नहीं दिया, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतना कंटेंट का हमें एक्सेसिबिलिटी है, और अच्छे अच्छे कंटेंट का, मतलब लिटरली बहुत अच्छा कंटेंट है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनल हो, सो वो बहुत अच्छा चेंज है। काफ़ी वर्किंग पैटर्न में चेंज है, काफ़ी सुधार आया है चीज़ों को लेके. कोविड के बाद भी चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, तो अच्छे हो गए. ऑफकोर्स आप जब ग्रो करते हो तो आप एज इंडिविजुअल भी प्रोग्रेस करते हो, सेम वे इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रोग्रेस की है इन अ वेरी गुड वे. मैंने अपनी लाइफ में जितना ऑडिशन से जितना नहीं सीखा, जितना मैंने मॉनिटर पे बैठ के सीखा. तो जब मैंने अपना पहला शो किया था तारक मेहता के बाद, जो एक्चुअली पैरेलल लीड शो था, वो गुल मैम का शो था, कबूल है, मैं क्या करती थी, मेरा सीन नहीं होता था तो मैं मॉनिटर के पीछे जाके बैठ जाती थी. आई फील दिस इज एडवाइस टू ऑल दी एक्टर्स जिनको एक्टिंग करनी है, जो अभी बस निकले हैं, कि आप अगर फ्री बैठे हो रूम में बैठने से अच्छा, वैनिटी में बैठने से अच्छा मॉनिटर के पीछे आके समझो लाइट कैसे लेते हैं, लाइनें कैसे बोलते हैं, कैसे आपको एक ऑब्जर्वेशन, कैसा एक माहौल होता है, कोई कैसे कैरेक्टर से स्विच लेता है, कैसे आप सुबह शुरू करते हो हंसने वाले सीन्स, आते आते दिन में रोने वाले सीन्स हो जाते हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी स्विच एक एक्टर ऑन एंड ऑफ कैसे सीखना है, वो सेट पे सीखता है. मैंने तो ऐसे ही सीखा है. बहुत टफ है यार, मतलब इसके लिए तो आपको यू हैव टू इमेजिन कि आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू इमेजिन दी इंटायर एटमॉस्फियर, और उसके लिए ना एक अच्छा कैप्टन ऑफ द शिप ज़रूरी है. तो हमारे तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया था. वो सीज़न काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सीज़न भी था क्योंकि नागिन और चील की कहानी थी, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो दोनों की जोड़ी भी हमारी हिट भी हो गई थी. एक्सपीरियंस वाइज मुझे सीखने को काफ़ी मिला, एंड आई थिंक इट वॉज मोर देन एक्टिंग, इट वॉज मोर लाइक अ लर्निंग जॉब फॉर मी. और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, कैसे मैं ग्रीन स्क्रीन पर पहली बार एक्सपीरियंस था मुझे ऐसे, और हार्नेस पे कभी चढ़ रही हूँ, कभी तांडव कर रही हूँ. या काफ़ी वेट लॉस हो गया था बिकॉज वो एग्जॉस्टिंग शो था, टैक्सिंग शो था. ऐसा नहीं था कि मतलब एक सीन के लिए रेडी हो, फिर नागिन के आउटफिट से साड़ी में घुसो, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और प्लस 30-40 मिनट्स का पर एपिसोड होता है, तो पूरा हफ्ता निकल ही जाता है यार वो शूट करते करते. तो फिजिकली डिमांडिंग काफ़ी था शो. आई फील आइडियली 12-13 आवर्स इज अ मैंडेट, एंड मुझे भी लगता है कि एक्टर ना एज एन एक्टर बोलूँ तो स्विच ऑफ हो जाता है एक एक्टर. इस पूरे शो में अगर मैंने 26 दिन शूट किया है इश्दम और इडली रसम एज अ प्रोड्यूसर, मैंने गिन के 2 डेज अपनी शिफ्ट एक्सटेंड की क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो गए थे. अदर देन दैट वी यूज टू पैक अप इन 12-13 आवर्स. ये मैंने कोशिश ये रखी क्योंकि एज एन एक्टर मैं भी यही डिमांड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक्टर स्विच ऑफ हो जाता है, थकान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें. एवरी डे का पैटर्न नहीं हो सकता. वंस इन अ वाइल अगर आपको प्रोड्यूसर या आपके प्रोडक्शन हाउस आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे कि यार कुछ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें कुछ ख़त्म करना है या कुछ स्केड्यूल रह गया है पीछे, तो अगर आई थिंक वो एक्टर्स को खुद को समझना चाहिए. ऐसे देर वर डेज, मतलब अगर मैं एक अपने काम के लिए जानी मानी गई हूँ तो कभी मुझसे अगर किसी प्रोडक्शन ने बोला कि सुरभि ये स्केड्यूल ऐसा रात को ही हो पाएगा या ये इसमें थोड़े 3-4 एक्स्ट्रा घंटे जाएंगे प्लीज़ एडजस्ट, तो मैंने समझी है बात. ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है प्रोडक्शन हाउस को कि मैं नहीं करूँगी या मैं निकल जाऊँगी. हाँ, आई फील के अगर एक प्रोड्यूसर आप पे ट्रस्ट कर रहा है एक रोल को लेके, उसका काफ़ी पैसा लगा है, तो वो आपसे कुछ उम्मीद रख सकता है. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक पॉइंट पे फिर वो भी समझ जाएगा कि हाँ ठीक है. फिर एक पैटर्न सेट भी हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में शो सेट करने में ना टाइम लगता ही है. अगर आप शो देखेंगे उसमें नेहा लक्ष्मी है जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसमें सिराज सर है जो इशबाज में थे, उसमें करण खन्ना है वो भी इशबाज में थे, इसमें कबूल है कि एक एक्टर है किंजल वो इस शो में है. तो मैंने ये दोस्तियाँ कमाई हैं. मैंने जैसे ही फ़ोन किया देवर ऑल रेडी फॉर मी कि हाँ तू बोल बस आना कहाँ है, कब शूट करना है. एंड मतलब बाकी जो अभी मैंने कुछ हाल ही में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए थिएटर करते करते जिनसे मैं काफ़ी सीखी हूँ, उनको मैंने कास्ट किया. अगर मैं ही अपना प्रोडक्शन हाउस में हम अपने ही दोस्तों को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा. आई थिंक मेरा जो आज प्रोडक्शन का श्रेय है या प्रोड्यूसर की टैग का श्रेय वो सिर्फ करण को जाता है, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे किसी ने इतना पुश किया है या बैक किया है जितने मेरे हस्बैंड ने किया है. हमारी जर्नी 15-16 साल की है, मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त पहले हैं, मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. एंड मतलब ही इज़ द, जैसे बोलते हैं ना, काम टू माय केओस. अगर मैं ऐसी हूँ पैनिक क्वीन तो वो मेरा ठहराव है ज़िंदगी में. एंड मेरी सारी अचीवमेंट उनकी वजह से है. और इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो अगर मैंने अच्छा लाइफ में काम किया है तो वो उन्होंने ही बताया ये सही है ये गलत है. मतलब वो ऐसे हस्बैंड नहीं है जो बोलेंगे कि मैं गंदा काम भी करूं तो बोलेंगे ओ बहुत बढ़िया कर रही है यार.
2: अच्छा, झूठी तारीफ नहीं
1: करते. वो झूठी तारीफ नहीं, बहुत क्रिटिकल है. बहुत ही मेरी क्लास लेते हैं जहाँ उनको लेनी होती है. एंड आई थिंक वो मुझे रियलिटी चेक देते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनर टू गिव देयर पार्टनर रियलिटी चेक और हवा में नहीं उड़ाना कि भैया तुम जो सोच रहे हो ना कि हाँ तुम ये वो नहीं है. ग्राउंडेड रहो, रूट्स अपने भूलो मत. कहाँ से आई हो, कहाँ तक पहुँची हो, कैसे पहुँची हो वो मत भूलो. अपनी जर्नी मत भूलो, तुम भी कभी वहाँ थी. तो वो सारी चीज़ों की रियलिटी चेक ऑफकोर्स फैमिली से भी आती है, मेरी सिस्टर से, फैमिली, मेरे इन लॉ सब से आती है. बट जितना हस्बैंड का श्रेय ना, आई डोंट थिंक किसी और. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इशदम और इडली रसम को. बालाजी यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स आ रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 बजे. और आज का टुडेज कॉन्सेप्ट है मज़ेदार है. किचन में जैसे आज हम रेस्टोरेंट में बैठे, yes. तो पीछे किचन में क्या क्या इशूज़ होते हैं वो सब देखने को मिलेगा. एंड एक टशन और प्यार और कैसे कहानी प्रोग्रेस करती है और जो बाकी सारे फनी कैरेक्टर्स हैं और सबके अपने अपने ग्राफ हैं वो देखने को मिलेंगे. एंड द लुक एंड फील ऑफ द शो विद द म्यूजिक इज बैंगिंग. एंड आई फील द वे वी आर गेटिंग फर्स्ट एपिसोड पहले 1.1 मिलियन हो चुके हैं. सो इट्स एन अचीवमेंट.
0: भाई अभिषेक कुमार और शाइनी दोषी का ये शो एक शॉर्ट सीरीज है जो YouTube प्लेटफॉर्म पर आ रही है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं. ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सुरभि आप यूं ही शॉर्ट सीरीज लेकर आए, फिल्मों में काम करें और वेब शोज बनाए ताकि दर्शकों का प्यार आपको यूं ही मिलता रहे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.
3: अपने दोस्तों के साथ करना एक सैटरडे वाली पार्टी जो सेट कर दे हम सबका मूड, ये तो होता है बहुत ही रॉकिंग. लेकिन एट द सेम टाइम अगर पार्टी का डीजे हो डल एंड बोरिंग तो नहीं सेट होगा मूड और हो जाएगा शॉकिंग. बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
0: है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं करिश्मा तन्ना की. भाई ये बहुत जल्द मम्मी बनने वाली है, ऐसे में इनके घर रखी गई इनके गोद भराई की रस्म. तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ स्पेशल हुआ करिश्मा की गोद भराई में. वही इसी के साथ साथ उनके घर पर उनके कई सारे करीबी दोस्त पहुँचे खास मेहमान बनकर.
4: God, it's actually
5: a mixed feeling.
4: Nervous, excited, happy, emotional, lot of responsibility. But in all, a very, very happy moment. I'm glad and I'm blessed.

0: जल्द शुरू होने वाला है बरेली के बच्चन का नया सीरियल। ऐसे में देख लीजिए आखिर कौन कौन से कलाकार किस किस भूमिका में नजर आएंगे।
1: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम। भैया ससुराल में मचा है छीछा लेकर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर। आइए आपको इस घर के भाइयों से मिलवाते हैं। बड़ा भाई गंगा, घर का असली मटेरियल, बिल्कुल माँ जैसा, मंजला सतलुज, पुरानी फटपटिया की तरह खोपड़ी गरम। सबसे छोटा माही, जिसकी मासूमियत फैमिली को जोड़ के रखती है हरदम। और ये है हमारा हीरो कृष्णा, जिसने टैक्सी चलाते चलाते ऐसा चक्कर चलाया बेचारी संगम को ब्याह के घर ले आया। भैया ससुराल में मचा है छीछा लेदर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर। बरेली के बच्चन।
0: नागिन 7 के इस नए प्रोमो पर नजर डालते हैं, जहां फिर एक बार राधिका करने वाली है अपरा पर अपना नया वार।
2: महादेव जी के आशीर्वाद से आदित्य और अपरा की आज शादी है।
3: राधिका नागरानी को लेके जाने की कोशिश करेगी।
4: ड्रैगन इसे नमता को लेकर जाएगा तो सबको शक होगा ना, लेकिन अगर ये शेर लेकर जाएगा तो किसी को शक नहीं होगा।
0: अंकिता लोखंडे अपने हस्बैंड विक्की जैन संग पहुंच गई हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा उज्जैन के मंदिर में, और इसी के साथ साथ उनके साथ नजर आ रहे हैं पॉपुलर कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर रेमो डिसूजा भी।

एंड सन्स ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड। ऐसे में सेट पर हुआ इसका जश्न।

वीकेंड यानी सैटरडे, सैटरडे यानी पार्टी। तो चलिए इस पार्टी को हम बना देते हैं और भी खास, क्योंकि संभाल कर रखी है हमने ये स्पेशल स्टोरी खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, सब मैं ही बता दूंगी क्या आपको। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

0: little cats. Yeah. Questa romana c'aria mori. Questa romana c'aria mori. Hey, Rekha ji ko dekh ke kya bole, kya hi bole. Yahan pe to hamari bolti band ho jati hai Rekha ji.
1: हम तो सिर्फ गुलाब देते हैं, पता नहीं क्यों ये पगला जाते हैं.
2: रेखा, जया और सुषमा की जुगलबंदी.
3: मम्मी, तुम ना जहाँ अभी जाते हो अखंड कांड कर आती हो. हाँ, और ये क्या, आज फिर से स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया. कॉलोनी में पहले ही काफी चर्चा हो रही है तुम्हारी.
2: दिखेगा माधुरी का गजब अंदाज.
1: तुम दोनों जरा शांत होगी, हमको एक आइडिया आया है.
4: अरे मम्मी,
2: मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ ढेर सारे गोलमाल.
5: रेखा जी,
2: बहुत जल्द OTT पर आने वाली है नई सीरीज जिसका नाम है माँ बहन. इसमें आपको नजर आएंगे माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धरना दुर्गा. ऐसे में बीती शाम हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च. तो भाई बिना किसी देर किए सबसे पहले देखते हैं इस सीरीज का ट्रेलर जो आपके होश उड़ा कर रख देगा, क्योंकि है इसमें एक मर्डर मिस्ट्री और उसी के साथ साथ हो रहे इर्द गिर्द गोलमाल जिसमें आपको दिखेगी बेहद ही कमाल माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की जोड़ी.
6: मुझे बहुत डर लग रहा है.
7: ठीक ठीक बोलोगे, रात के 2 बजे रोदारी खाई बनी हुई हो.
6: कुत्ता जी है ना, उनका डेथ हो गया
7: अचानक.
6: अरे उनका डेथ हमारा घर में हुआ है.
8: आज हम करेंगे चौंका देने वाला खुलासा उस हत्याकांड का जिसने मचा दी पूरे शहर में खलबली.
9: सबका नजर हम तीनों पर है.
7: हम जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं. कोई कहीं नहीं जाएगा. अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे.
2: आइए अब आपको ले चलते हैं सीधा ट्रेलर लॉन्च पर और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से माधुरी, तृप्ति और धरना आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और साथ ही दिख रही है ये माँ और बहनों की जुगलबंदी.

0: हाय रेखा जी को देख के क्या बोले, क्या ही बोले, यहाँ पे तो हमारी बोलती बंद हो जाती है रेखा जी। रेखा जी पहले जी। तो आपको प्रणाम।
1: प्रणाम और आप सबको प्रणाम।
0: एक है, एक और मासूम फिसल गया रेखा जी के बालों में, जाल में। क्या करे रेखा जी, हर बार यही होता है।
1: हम क्या करें जनाब, हम तो सिर्फ गुलाब देते हैं, पता नहीं क्यों ये पगला जाते हैं।
0: उहू, उहू, आहा,
2: मम्मी तुम ना जहाँ अभी जाते हो अखंड कांड कर आती हो। हाँ, और ये क्या अभी फिर से स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया? कॉलोनी में पहले ही काफी चर्चा हो रही है तुम्हारी।
3: और आप हमरे फॉलोअर्स पे काहे फूल छिड़क रही हैं? और ये कौन सा नया कोलैब है अब?
2: तुमको अपने फॉलोअर्स की पड़ी है, वो भी नकली फॉलोअर्स की।
3: तुम चुप।
2: मम्मी, सोसाइटी में तुम्हारी वजह से ना हम दोनों का आना जाना बंद हो रखा है, समझी?
1: अरे उफ, तुम दोनों जरा शांत होगी। हमको एक आइडिया आया है।
3: अरे मम्मी,
1: चलो गेम खेलते हैं।
0: अरे रेखा जी, नेके और पूछ पूछ, हमें गेम बहुत पसंद है। क्या खेले आप बताइए?
1: सांप सीढ़ी खेले।
0: इनसे पूछ रहे थे, खेले
1: खेले।
0: जय जी, शुरू करते हैं आपसे
1: जी।
0: ओके, देखते हैं आप स्मार्ट है या सांप। लेट्स रोल द डाइस, गो फॉर इट। दो और एक यानी कि तीन अंक। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। आते ही आप सीढ़ी चढ़ लिए हैं तो आप तो यहां पर तोप चला रही आते ही तो। ओके, सीधा सवाल है और आपकी सबसे प्यारी बहन के बारे में है, सुषमा के बारे में सबसे अच्छी बात बताइए।
2: देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने मुझसे। सुषमा की सबसे अच्छी बात ये है कि अब वो हमारे साथ नहीं रहती।
3: मैं क्या बोल रही
0: हूँ, ये
3: सब मारेंगे ना तुमको।
0: ये सब इधर मत करना है, पब्लिक देख रही है यार, मारना वरना यहाँ पर नहीं। पर सुषमा, अब ईंट का जवाब पत्थर से देना, ठीक है? अब तुम डाइस रोल करो, अब पता चलेगा।
3: फेंकते हैं
1: माँ, अच्छा वाला करना।
3: ठीक है मम्मी, ये लो।
0: फिर से एक बार, फिर से एक बार। और यही,
1: अरे
3: मम्मी ये देख रही
1: है ना,
0: बताते हैं इसे कहते हैं कलेश। कलेश कर दिया।
3: तुम देखो नहीं हमको, ठीक है?
1: सुनो, ठीक से करो।
3: लो मम्मी ये बात।
0: दो बार चूकी पर तीसरी बार आया तो क्या आया? छह और छह। वाह।

0: सॉरी सुषमा, पर आपको तो पता है कि डेयर करना है बराबर कि नहीं। तो मेरा सवाल सीधा आपसे है कि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सोचो आप ब्यूटिशियन हो और आपकी कस्टमर है आपकी बहन जया, ओके? पर ये जया नहीं है, वो अलग किरदार है, कोई और है आपकी, कोई कस्टमर है, ऐसा सोच के तो आप जया के बारे में आपको सच में क्या लगता है वो बताना है।
1: आओ जया,
0: ब्यूटी पार्लर
1: आओ, तुम्हारा थ्रेडिंग करे जया।
2: हमको हाथ मत लगाना, बता रहे हैं।
1: चुप रहो, तुम चुप रहो,
0: यहाँ पे मारपीट अलाउड नहीं है।
1: जानती है वो बगल में रहती है ना जया, ये एक नंबर की वो
2: क्या
1: वो है
2: वो मतलब,
1: अरे कहती है अपने आप को मैं बहुत सीधी हूँ, कोई सीधी नहीं है वो। रोटी रोटी रोटी रोटी, अरे कोई रोटी नहीं बनाती वो।
2: फिर क्या बनाती है?
1: अरे बुद्धू बनाती है। और सुनिए, घर से भाग गई थी।
2: सच्चे?
1: हाँ।
2: किसके साथ?
1: चोरी करके।
2: चोरी करके
1: बड़ी से आनी भाग। आइए आपका आईब्रो बनाए जया, आइए।
2: हमको हाथ मत लगाना, बोले थे ना हमको हाथ मत लगाना।
1: तुम हाथ मत लगाओ,
2: निकलो यहाँ से।
0: अच्छा अच्छा, शांत शांत बहनों, शांत। अरे ये ब्यूटी पार्लर वाली आंटी तो हमें बहुत पसंद आई, जोरदार ताली। ये तो ना डेयर, ऐसे तो पूरा दिल पे ले लिया इसने एकदम। सुशी थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: अब है माँ की बारी। हाँ जी रेखा जी, चले
3: चलिए।

ओके, छह और पांच यानी कि एक और एक ग्यारह। जैसे भी आगे चली गई है मम्मी तो, या बहुत ही आगे। तो चलिए एक

0: बताइए लेडीज लोगों को काम करना चाहिए या नहीं?
1: अरे बिल्कुल करना चाहिए, हाँ कसम खिला लो किसी से भी। यहाँ पे हम बहुत करियर माइंडेड हैं, पता है, हम तो कभी सिंगिंग क्लास चलाए हमने, कभी टिफिन सर्विस, कभी साइबर कैफे, लेकिन अब हमको हमारा फेवरेट करियर मिल गया है।
0: वो क्या है रेखा जी?
1: हम वाइन शॉप चलाते हैं। और नाम क्या है पता है? नाम है संस्कार वाइन शॉप।
0: यहाँ पे दिल खुश कर दिया सबका, मूड बना दिया रेखा जी। क्या मैं कहूं, संस्कारी मेरा मतलब है, संस्कारी नाम है। तो चलिए इसका तो इंतजार रहेगा हमको भी, हमारे सारे दोस्तों को भी। जया जी मुड़ते हैं आपकी तरफ, अब आपकी बारी। ओके, तीन और तीन, वो कहते हैं लकी होता है। नंबर छह, चलो देखते कहां पहुंचते आप। सांप ने निगल लिया है, यानी कि डेयर है आपके लिए। तो ओके, आपके लिए है एक सिंपल सा डेयर। सुषमा आपकी फेवरेट है ना, प्यार तो हमें दिखता है जब से इस मंच पर आई है, टीजर में सब जगह हमने देखा आपका प्यार। तो सुषमा की आइकॉनिक रील अंदाज को रिक्रिएट कीजिएगा। वो कैसे बोलती हैं अपने रील्स में?
2: जी अभी बताते हैं, बदला लेने का अच्छा मौका मिला है। हेलो सुषमा के सुशीज, कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो जानते ही हैं हम कितने घटिया तरीके का वीडियो बनाते हैं और कितने घटिया तरीके से बनाते हैं, और हमको लगता है उससे हमारा फॉलोवर बढ़ जाएगा। हाँ, खरीदना पड़ता है फॉलोवर कभी कभी, क्योंकि वैसे तो बढ़ता नहीं है। आजकल हमारा ना एक नया शौक शुरू हुआ है, हैशटैग जीजू में जाऊं, जीजू जीजू जीजू जीजू जीजू।
0: मैं तो नहीं कहूंगा रिक्रिएट किया कि नहीं, क्या लगता है सुषमा कैसा लगा?
3: एकदम घटिया
2: है, तुम्हारी तरह
0: दिल को लगा। ये पूरा का पूरा दिल को लगा है, सुषमा के दिल को लगा है, बट कोशिश अच्छी थी, कहना पड़ेगा। ओके, ये माँ बहन, पता चला कि इस यू नो फिल्म का नाम माँ बहन क्यों पड़ा है, क्योंकि आप तो देख रहे हैं ये सारी नोकझोंक जो जारी है। सुषमा जी, अब बैक अगेन, बदला लिया जाए। पांच और छह, ग्यारह। आप तो भागे जा रही है, यानी कि सीढ़ी चढ़ गई आप। अब आपके लिए एक सवाल है। ओके, थोड़ा जो आप रील पे करती हैं वो नहीं करना है आपको, थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है? सवाल यह है कि आप सब कहते हैं कि जया सीधी है, बहुत ही सीधी है, क्या आपको लगता है कि जया सीधी है?
3: देखिए, जया इतनी सीधी है ना कि इनके दिमाग का रास्ता जीपीएस पे भी नहीं मिलता है, समझी? सच बता दिए,
2: ज्यादा बोलोगे ना मुंह तोड़ते।
3: चुप रहो, चुप रहो,
0: बस करो बहनों, बस करो, बस करो। रेखा जी ये तो कभी रुकती नहीं है दोनों, ये क्या तोप की तरह चले एक दूसरे पे चले जा रही है,
1: कभी रुकेंगी भी नहीं।
0: अब है आपकी बारी।
1: मेरी?
0: रेखा जी प्लीज रोल द डाइस।
1: लाइए,
0: चार और तीन यानी के सात। देखते हैं रेखा जी कहां पहुंच रही है। सांप कभी आपको निगल जाए ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा, कभी नहीं, पर ये तो उस डाइस ने कर दिया है। पर मेरे लिए ये मौका है आपसे एक डेयर करवाने के लिए।
4: भाई तो देखा आपने कैसे ये माँ बेटी और बहन एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, लेकिन इनकी तिकड़ी बेहद कमाल है। अब आइए मुलाकात करते हैं शो के बेहद ही अहम किरदार यानी कि रवि किशन से, जिनका मर्डर इस सीरीज में हो जाएगा और फिर इर्द गिर्द घूमेगी ये कहानी।
0: एक भोले भाले आदर्श पुरुष भी हैं, वो पुरुष जो जवानी के चंगुल में फंसता गया और जवानी उसे डसती गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, प्लीज वेलकम हमारे जबरदस्त एंटरटेनर, देश के फेवरेट और

0: le homola de sar
1: Don't mess with a cat We might be the rat
2: Ye jo achanak hum kamar ko saap banaye the na इन्हीं के चक्कर में सुन लीजिए अभी धक धक नहीं चाहिए इनका धक धक नहीं चाहिए पूरा देश तो पगलाया था हमारा मोहल्ला भी बर्बाद हो गया इनके धक धक के चक्कर में एक बार बता दें इनकी मासूमियत पे मत जाए अभी आप लगते ही वनमो कर रहे थे वंस मो नहीं इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ मैं बता रहा हूं इनका काटा हुआ ना पानी नहीं मांगता है बहुत बुरा काटती हैं नीला टाइप का जहर थूकती हैं अंदर से बहुत खतरा और ये इनकी बेटियां अरे बाप रे बाप इनके चक्कर में पूरा मोहल्ला ना फंसा और बर्बाद हो गया पूरी तरह बहुत दर्दीली कहानी बताऊंगा मैं आपको ढूंढ रहा था वाइन शॉप पर गया था वाइन शॉप बंद यहां मिली हो मुझे आपसे कुछ बात करना है चलेंगी मेरे साथ कुछ बात करने
3: मम्मी का फिर से नया कांड शुरू हो गया हा? एक खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू
4: ऐसे ही चलता ना तो तुम दोनों का वीडियो वायरल हो जाएगा तुम उठ पर होगी चलिए गुप्ता जी
3: चलिए गुप्ता जी
5: अरे सब कहाँ जा रहे हो कहाँ कहाँ कहाँ ये माँ बहन
2: कहाँ से जाना था
4: चलिए
2: हाँ
6: छिपा नहीं पाओ
7: नई ट्रेलर लॉन्च का मौका है तो आइए इन कलाकारों से भी जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस सीरीज में क्या ऐसा देखा जो वो इसका हिस्सा बने और साथ ही साथ जानते हैं शूटिंग से जुड़े कुछ खास लम्हे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और फिल्म में क्या कुछ धमाल होने वाला है
8: मुझे लगता है ये लोगों की जैसे कहते हैं आई ऑफ द बीहोल्डर तो ये उन्हीं का प्यार है मेरी तरफ मेहनत बहुत की है मैंने अपने ज़िंदगी में जैसे आपने कहा नुक्ता आप जब लगाते हैं तो उस पर भी मेहनत की थी बहुत मैंने ताकि लैंग्वेज पे एक कमांड आए लेकिन इस फिल्म के बारे में अगर मैं कहूँ माँ बहन मैंने हमेशा यही टाइप की फिल्में मैंने की है जहाँ जो औरत है उसको एक पावरफुल रोल हो और मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ कि सुरेश जी एंड विक्रम दे थॉट ऑफ मी इस रोल में जो बहुत ही अलग है मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए ये रोल सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम एक बहुत ही पावरफुल रोल एक और करने मिला वेयर नॉट जस्ट वन बट ऑल द वुमेन आर अमेजिंगली पावरफुल इन द मूवी सभी जितनी औरतें हैं फिल्म में दे आर वेरी पावरफुल और एक डिसफंक्शनल फैमिली है ऐसे कोई परफेक्शन नहीं है किसी का जो मेरा भी कैरेक्टर है वो डिसफंक्शनल है परफेक्ट नहीं है एक सोसाइटी में रहती है जहाँ सिंगल मदर्स को एक अलग तरीके से देखा जाता है शी इज़ फेसिंग दैट ट्रबल शी इज़ फेसिंग लोग जजमेंटल होते हैं उनके बारे में और वो खुद भी बहुत ही मॉडर्न है पुराने ख्याल की नहीं है नया सोचती है हमेशा और लेकिन एक सोसाइटी में रह के एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसका और फैमिली मतलब अपने बेटियों के साथ भी एक डिसफंक्शनल टाइप का रिलेशनशिप है लेकिन अपने बेटियों के लिए वो कुछ भी कर सकती है सो दैट इज द कैरेक्टर और विच आई एम वेरी थैंकफुल आई एम प्लेइंग दैट
2: कहना आप ये चाहती थी कि मेरी जिंदगी में अब घमंड है कि नहीं माधुरी मैम के साथ काम करके राइट ओके मैं नहीं पूरी दुनिया माधुरी मैम की फैन है हम लोगों के लिए ये एक सौभाग्य था फॉर मी ऑल्सो दैट टू शेयर स्क्रीन विथ हर बहुत आनंद आया और मैं बहुत सुंदर मैं धन्यवाद दूंगा सुरेश त्रिवेणी जी को एंड विक्रम जी को नेटफ्लिक्स को खास करके कि उन्होंने ये कास्ट को जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा है कि ये सारे लोग माँ बहन में क्या करें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये फिल्म है कि ये कास्ट ऐसी कास्ट कभी किसी ने देखी नहीं ये फिल्म क्या है क्यूरियोसिटी जो आप लोगों से भी बज मिल गया अभी ट्रेलर के दौरान माधुरी मैम के साथ बहुत कुछ सीखने मिला एक तो वक्त की पाबंदी, तो बड़ा भाग भाग के पहले पहुंचना पड़ता था। जितने भी मैंने पहले पहुंचने की कोशिश की, माधुरी मैम उससे पहले पहुंची रहती थी। तूफानी बारिश में ये बड़ी डिफिकल्ट शूटिंग रही है, जरा भी आसान शूटिंग नहीं रही। मौसम ने एकदम धोखा दे दिया था, पिछले साल की बात है। खैर, इनके साथ काम करके घमंड क्या, बस इनको तो आप निहार ही सकते हैं। जितनी और इतनी सुंदरता से इन्होंने कानपुरिया भोजपुरी, गोरखपुरिया भोजपुरी या बनारसी भोजपुरी, जो भोजपुरी का शब्द है, जो रस है, इतना सुंदर बोला है, इतनी मेहनत की, लगेगा नहीं कि ये महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र में पली बड़ी है, आपको लगेगा कि ये भोजपुरी लड़की है, भोजपुरी परिवेश में वहीं की कहानी है। तो माधुरी मैम, मेरा घमंड तो आपने चूर चूर कर दिया, एकदम चकना चूर करके उसका कचुम्बर बना दिया।
4: ऑनेस्टली मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर सिचुएशन में हर जगह प्रेशर ही फील करती है, तो चाहे रील्स हो या कहीं भी, मुझे हमेशा एक टेंशन, प्रेशर हमेशा रहता है। शायद मैं ओवरथिंक करती हूँ इसलिए, बट मुझे लगता है वो एक गुड प्रेशर है, होना भी चाहिए, कि आप हमेशा अपने परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा सोचो कि सही कर रही हूँ कि नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरा वही सेम ही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उधर कम टेंशन ले रही थी, इट्स द सेम।
3: देखिए, एक सॉन्ग का नाम लेना मुझे पाप चढ़ेगा। आई थिंक मैम के जितने भी सॉन्ग्स हैं सभी उतने ब्यूटिफुली किए हैं मैम ने, मतलब मैं तो आई कुडंट बिलीव दैट आई वाज एक्चुअली शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद माधुरी मैम। हम लोग ने स्टेप्स तो नहीं सीखे, लेकिन हम लोग ना बहुत जब ही बीच में हम शूट करते थे, और एक टाइम होता है ना जब आप कैमरा सेटअप चल रहा है, तो हम तीनों एक कमरे में बैठ के अंताक्षरी खेलते थे, और बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अच्छा लाइन्स याद करने बोला था। और मतलब माधुरी मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, मैम मैंने पहले भी बोला है कि बहुत अच्छी इंसान है, शी इज जस्ट बिन सो इंस्पायरिंग। इतनी अच्छी इंसान है कि मतलब मुझे कभी लगा नहीं मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ। इट लाइक शी ट्रीटेड अस लाइक हर डॉटर्स, हर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा होता था कि हम किसी सीन में अटक जाते थे, या कभी इन लाइफ कभी हम इवेंट्स में अटक जाते हैं कि हमको समझ नहीं आता कि कैसे सिचुएशन को टैकल करना है, शी जंप्स इन एंड सो फ्लॉलेसली दैट यू नो यू जस्ट इन ऑल ऑफ हर, एंड इट्स सो स्पेशल टू वर्क विद हर। I think it's one of the most special projects that I've done, and I'm so, so grateful that Suresh sir thought that, you know, I would be fit for the role. I remember I was shooting for something in Bhopal, and Suresh sir and Pooja, our writer, who's right here smiling at me, both of them came there and they narrated the story to me, and I just remember like sitting like this for 3 hours. I couldn't move, I couldn't breathe. I was just like, this is the best narration of my life. And it was an immediate yes, because how can you say no to such a wonderful film? And this film, as Ruchika put it correctly, is you can't put it in one genre. It's everything. And when you watch the film, you realize it. बाकी तो यार बहुत मज़ा आया काम करने में। ये एक ऐसी फिल्म है जब यू नो सेट पे जाने से पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, और जब शूट ख़त्म हो रहा था तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द प्रमोशंस नाउ, बिकॉज वी फाइनली गेट टू मीट अगेन एंड स्पेंड सम टाइम टुगेदर। इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ डिलाइट टू मीट दिस टीम, दे मेड अस फील लाइक होम एवरी सिंगल डे। एंड ऐसा होता है ना एनवायरनमेंट जब सेट पे, वेयर एवरीबडी इज रिलैक्स्ड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक द सीन वर्क, एवरीथिंग इज फॉर द फिल्म, तो वो अलग ही एनर्जी होती है। वी वर ऑल लाइक इन कैरेक्टर्स ऑलवेज, एंड इट वॉज जस्ट there were many days where magic happened on set.
8: ऐसे कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके जिसके लिए मैं ऐसा सोचूंगी, लेकिन होता है कभी कभी, ऐसे कभी कभी व्यक्ति मिलते हैं, एक सेकेंड के लिए ऐसा लगता है, फिर बाद में हम सोचते हैं नहीं नहीं जाने दो। नहीं नहीं, एक तो आपने टाइटल के बारे में पूछा, तो पहली बार जब हम मिले और आए थे सुनाने के लिए कहानी, तो मैंने पूछा कि कहानी का नाम क्या है आपके फिल्म का, तो उन्होंने कहा माँ बहन। तो एक मिनट के लिए मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैं ऐसे देख रही थी उनको, मैंने बोला ऐसे हंसी में, क्योंकि मुझे लगा मजाक चल रहा है, बोला फिर वो कुछ बोले नहीं, ऐसे ही वो देख रहे थे मुझे. मैंने बोला सच में ये टाइटल है फिल्म का? बोले हाँ. तो मैंने बोला अच्छा कहानी सुनते हैं. तो जब कहानी सुनी उसके बाद मुझे ऐसा लगा करेक्ट टाइटल है इस फिल्म के लिए.
2: यार पहली बात तो मैं आज जितने भी हैं मैं दिल से कहना चाहता हूँ स्वर ऑन महादेव. मुझे नहीं मालूम मैं क्यों वायरल होता हूँ. मुझे नहीं मालूम मैं क्यों होता हूँ. मैंने होम फ्रॉम वर्क बोला था अभी, फिर एक जल्दी से लेट बोला था, वो मैं पार्लियामेंट में जा रहा था. होम फ्रॉम वर्क, वर्क फ्रॉम होम करना था. निकलता है मैं इंसान हूँ. आप लोग मुझे क्या देखते हो? मैं मतलब आदमी नहीं हूँ. मुझे ऐसा लोग देखते हैं जैसे कि मैं कुछ अलग ही स्पेस से आया हूँ. मैं आदमी हूँ. मैं आप लोग की तरह ही गलती करता हूँ और करता रहूँगा. तो मुझे आप लोग वायरल क्यों करते हो मुझे नहीं मालूम. मुझे सब लोग पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पार्टी में भी लोग पूछते हैं, एवरीवेयर ऑल माय सुपीरियर्स आल्सो आस्क मी आप करते क्या हो. तो मुझे सो मैम आई डोंट नो, बट ये फिल्म ही वायरल होने वाली है. ये खतरनाक टाइप की वायरल होगी. ये फिल्म बहुत वायरल इसलिए होगी क्योंकि नेटफ्लिक्स पे लापता लेडीज आई, ऑस्कर तक चली गई, मामला लीगल आया, सेकेंड सीजन 2 महीने से top 10 में ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट? माधुरी मैम, तृप्ति और ये तूफान बगल में जो बैठी है हमारे, और ये कास्टिंग, और ये मैम मराठी थिएटर की बहुत बड़ी कलाकार जो हमारी पत्नी का रोल कर रही है, अरुणोदय माय ब्रदर, आई मेट यू फर्स्ट टुडे, शार्दुल बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये सब लोग आ रहे हैं. ये फिल्म बहुत बड़ी वायरल होने वाली है और मैं तो समझ रहे हो मुझे तो खाली आना है और वायरल होना है.
9: अगर एक मैसेज की, वैसे तो काफ़ी मैसेजेस हैं फिल्म में, बट अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो जिससे मैंने बहुत डीपली कनेक्ट किया इज वी आर वेरी क्विक टू जज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन, वी जज लाइक दैट, राइट? मैं अपना ही लाइफ से एग्जांपल दूंगी. माँ को ना हमने, एक माँ हो या कोई भी और हो, तो हम उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि अच्छा ये इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनका ये रोल होना चाहिए. चाहे वो आप फिल्मों में देखें, चाहे वो आप रियल लाइफ में देखें. बचपन से मैं अपनी माँ को देखती आ रही हूँ. एक दिन अगर बीमार हो गई और खाना नहीं बना पाई या कुछ नहीं कर पाई जो वो ऑन अ डेली बेसिस करती हैं सब पूरी फैमिली के लिए बिना किसी क्रेडिट के, तो यू नो कहीं ना कहीं हम बचपन में कंप्लेन करते थे कि यार आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया. वी नेवर लुक्ड एट द ह्यूमन साइड ऑफ हर. एंड नाउ व्हेन वी हैव ग्रोन अप, नाउ व्हेन वी टॉक टू हर एंड व्हेन शी शेयर्स हर स्ट्रगल स्टोरीज विद हर, इट जस्ट ब्रिंग्स टीयर्स टू माई आईज दैट how did we not see the human side of her earlier. And I think that goes for everybody, all the women especially. We are judged like that. There were two, when sir narrated the story to me, I told him that there were two women in my society who used to, they were single, they didn't have parents, and they were, you know, a little fashionable for those times. And they were called, people would call them names, they would tell us as kids that you can't go to them, you can't, you know, don't be friends with them, don't go near their house, it's dangerous. And it stayed with me somewhere. And when Maa Behen came along, it was the image of those two girls that I had in my mind. And I was like, I have to be a part of this film. Because the society judged them for no reason. And if I could get a chance to apologize to them, I think this is my chance.
8: I think we did a lot of preparation because of the dialect as well. We had, we all three came together and we were doing some behind the scenes, you know, so that we get to know each other a little bit. We get to be comfortable with the dialect. And basically, you know, getting to know each other is very important for this kind of a film. क्योंकि इसमें ऑल द कैरेक्टर्स एक साथ हैं ऑल द टाइम, और चूंकि ये माँ बहन बेटी है तो उसकी वजह से वी हैड टू लुक लाइक दैट, यू नो, कि रहे हैं इतने साल एक साथ. So all those little things that we did together were amazing, and that helped a lot, I felt. जब हम लोग सेट पे गए तभी तो इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा भी आया एक दूसरे के साथ काम करके क्योंकि एज पीपल वी गॉट टू नो ईच अदर और आई मीन रेस्ट इज एवरीथिंग हमारे जो कैप्टन ऑफ द शिप हैज़ टू टेक इट फॉरवर्ड सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैड सुरेश जी यू नो लीडिंग द थिंग सो इट वॉज ऑल मेड वेरी ईजी फॉर अस
7: तो भाई रेखा जया और सुषमा इन तीनों की तिकड़ी रवि किशन के साथ बेहद ही मजेदार लग रही है और ये सीरीज की कहानी भी काफी रोमांचक है जिसमें आपको देखने मिलेगा माधुरी दीक्षित का बेहद ही अलग अंदाज और वो अपने जलवों से कैसे सभी का दिल जीतेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट
10: कोई कहीं नहीं जाएगा अगर हम जेल गए तो तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे
11: पति ब्रह्मचारी अब बताइए हम सबको ये कहानी इतनी पसंद क्यों है क्योंकि कहानी का लेखक इसमें लेकर आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड एक ट्विस्ट जाता है तो दूसरा रहता है तैयार फिर दूसरा जाता है तो तीसरा देता है इनके दरवाजे पर दस्तक यानी यहाँ तो लिटरली होती है ट्विस्ट की पार्टी तो क्या कुछ हो रहा है इस कहानी में आज लेकर चलते हैं आप सबको सूरज और ईशा के पास
7: देखा मेहिका और ईशा का माँ बेटी वाला प्यार
12: जगे

0: परेशान ईशा को संभालती मेहिका। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा थोड़ी परेशान है। असल में उसने जॉब छोड़ दिया है और अब वो सूरज से भी नहीं मिलेगी। ऐसे में जब मेहिका पहुंचती है ईशा के पास ये कहने के लिए कि वो उसे अपने साथ ऑफिस ले जाए क्योंकि उसे सूरज से मिलना है, तब ईशा उसे बताती है कि उसने जॉब छोड़ दिया है।
1: अच्छा फिर परसों

0: ऐसे में देखिए कैसे परेशान ईशा को नन्ही सी परी मिहिका ने अपने गोद में लेटा लिया है और उसे संभालने की कोशिश कर रही है। पर यही तो है ये प्यारा मोमेंट।
1: मिहिका तो खुशी खुशी आती है कि मेरे वेकेशन हो गए, अब मैं आपके साथ ऑफिस आऊंगी। पर ईशा बोल देती है नहीं मिहिका, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तो वो क्यों? मैंने कहा नहीं बस मेरा भी ऑफिस से वेकेशन हो गया है, मैंने ऑफिस छोड़ दिया है। तो वो क्योंकि मेरा बस उतना ही काम था, मैं उसे समझा रही हूँ वैसे। तो बेसिकली ईशा ने रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया होता है सूरज को कि मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकती, मुझे छोड़ना होगा। और वो ईशा अंदर ही अंदर गेस कर रही है कि मेरा लेटर एक्सेप्ट कर लेना, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं पहुँचा सकती, इसीलिए ईशा को ऑफिस भी छोड़नी पड़ रही है।
0: असल में हुआ यूँ था कि ऑफिस में पूरन भैया आए थे, जहाँ पूरन के टैटू को देखकर ईशा समझ जाती है कि घूंघट में जो औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पूरन भैया ही थे, इसीलिए वो काफी खुश है। लेकिन उसे क्या पता ये खुशी जल्दी गम में बदल जाएगी।
2: अरे वो मोहल्ले की रामलीला में सूट पहनकर रोल करता था, मैं वहाँ पे लड़कियों की आवाज निकाल के बढ़िया पैंट सब रही होगी, मोनिका की आवाज निकाल के बच्ची का दिल बना रही थी। और फिर क्या काव्या है ना मेरे साथ, वो भी मदद करे। और वैसे भी ना मोनिका दिल की बुरी बस थोड़ी सी गुस्से वाली है और मिला हुआ मुझे पूरा यकीन जल्दी बच्ची को अपना लेगी।

0: का टैटू और उस घूंघट वाली का टैटू सेम है। इसका मतलब वो घूंघट वाली पूरे में ये
1: एग्जैक्टली ये होता है कि पूरन भाई ऑफिस में आता है और मैं अंदर होती हूँ, मुझ पर चाय गिरी और मैं फिर बाहर आती हूँ उनकी आवाज़ सुन के, तो वो बेसिकली सूरज से मिलने आए होते हैं, पर मैं कहती हूँ कि सूरज तो अभी चला गया, तो फिर वो भी चले गए जाने के लिए होते हैं और मैं बस पूछती हूँ कि बच्ची कैसी है, क्योंकि हुआ ना कि मोनिका भाभी को ही बच्ची को पालना है, पर मोनिका भाभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उन्हें अपना बेटा ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो मैं बस इसलिए पूछती हूँ कि बच्ची ठीक है, मोनिका भाभी ने उसे अपना लिया, वो उनसे उससे प्यार कर रही है। तो पूरन भैया ने कहा, वो हंसते हंसते संभाल रहे कि ईशा तू अपने पूरन भैया को जानती नहीं है, मैं प्ले करता था यहाँ पे सूर्पनखा का, वो एक्टिंग करता था, तो मुझे औरतों की आवाज़ निकालनी अच्छे से आती है, तो मैं मोनिका की आवाज़ निकाल के बच्ची को संभाल लेता हूँ। तो इसी तरह वो अपना पेन छुपा रहे हैं और कहते हैं रिया काव्या भी है, ऐसे सब कुछ मैनेज हो जा रहा है, मोनिका कुछ टाइम में अपना लेगी। और उसी बीच वो जाते जाते एक थैली गिरती है उनसे, जिसमें गिफ्ट बॉक्स और कुछ गिरती है चीज़ें, तो मैं उनके हाथ में एक टैटू देखती हूँ और फिर मुझे लाइट होता है कि ये टैटू तो सेम वो घूंघट वाली लड़की के हाथ में भी था जिसके साथ सूरज का फोटो आया था, वीडियो आया था, तो मुझे वो लाइट होता है और मैं रिलेट कर लेती हूँ कि इसका मतलब वो लड़की और कोई नहीं पूरन भैया थे, और मैं खुशी से झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, क्या रे वाह, सूरज के ब्रह्मचर्य नहीं टूटा ये।
2: तो भाई ईशा ने जॉब तो छोड़ दिया है, अब देखना होगा कि क्या सूरज उसे वापस काम पर रखेंगे या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: रूहानी और गुडू, आज तो सास बहू और बेटा की ये पार्टी चलेगी नॉनस्टॉप, और उसी तरह है हमारे पास एंटरटेनमेंट का सिलसिला भी नॉनस्टॉप, और एग्जैक्टली ऐसा ही है इनकी कहानी का अपडेट जो लेकर आ रहा है हमारे लिए भरपूर मनोरंजन। तो क्या कुछ हो रहा है गुरु और रूहानी की जिंदगी में आज, क्या आ रही है यहाँ से कोई गुड न्यूज या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा, लेट्स चेक इट आउट।
2: बहू और टशन, पुष्पिका रूहानी को चैलेंज, फिर शुरू होगा नया तमाशा।

0: टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी को पता है कि ये कुसुम नहीं बल्कि पुष्पी है। ऐसे में वो मौका ढूंढ रही है कि कैसे वो सबूतों के साथ घर वालों को ये सच बताए, क्योंकि कोई भी रूहानी की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं। ऐसे में आज यहाँ पर पुष्पी मंदिर के सामने पूजा करती है, तभी वहाँ पहुँच जाती है रूहानी और देखिए कैसे दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो चुकी है, जहाँ पर रूहानी पुष्पी को बताती है कि उसे सच पता है और पुष्पी भी रूहानी के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वही पुष्पी है कुसुम नहीं। ऐसे में दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं चैलेंज, जहाँ रूहानी ने ठान लिया है कि वो कुसुम को बाहर निकाल कर सच का पर्दाफाश करेगी, तो वहीं पुष्पी का कहना है कि वो रूहानी को ही घर से बाहर निकाल देगी। ऐसे में अब दोनों के बीच चैलेंज लग चुका है।
1: देवी माँ कुसुम माँ को बचा कर लाएंगी और अपने हाथों से आपका ये नकली चेहरा हटाएंगी, ये मेरा विश्वास भी और वादा भी
2: है। चलो ठीक है, एक वादा अगर तुमने किया है तो एक वादा हम भी करते हैं। कुछ भी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, आज इस घर से कुछ भी तुझे तेरे पूरे अस्त के साथ हमेशा हमेशा के बाहर भेज देगी।
0: देखिए कैसे पुष्पी ने चाल चलना शुरू कर दिया है। असल में पुष्पी के सर पर चोट लग गई है, ऐसे में वो कर रही है घर वालों के सामने ड्रामा याददाश्त जाने का। गुरु तो अपनी माँ के लिए काफी परेशान हो गया है, ऐसे में वो रूहानी को भी पहचानने से कर रही है इनकार, ताकि रूहानी इस घर से बाहर चली जाए।
3: लेके जाओ उसे।
0: भी तो खेल पर खेल खेलेगी। अब देखना होगा कि कैसे रूहानी सभी घर वालों के सामने पुष्पी का असली चेहरा लेकर आती है और कुसुम को भी बचा लेती है।
1: आप शांत हो जाइए, कोई नहीं है। दुखिया रही है बेचारी, उसका पति उसको छोड़ दिया, ससुराल वाला ससुराल से निकाल के दुख सुनाई गुरु बाबू को, तो गुरु बाबू बस रख लिए, उसका ध्यान रख रहे हैं, कोई नहीं है। आप शांत हो जाइए, पीछे तक
0: मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब हमारी जिंदगी भी नहीं होती है एक जैसी, इसमें भी होते हैं अलग अलग मोमेंट्स और एग्जैक्टली ऐसी ही है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे मेरा इशारा, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
4: नजर डालते हैं गंगा माई की बिटिया के इस प्रोमो पर, जहाँ खतरे में पड़ी है गंगा की जान। क्या स्नेहा बचाएगी अपनी माँ को इस खतरे से?

0: देख लीजिए लेफ्ट शेफ का ये प्रोमो, जहां किचन में हो रहा है ढेर सारा हंगामा, क्योंकि लग गया है सितारों का तड़का।
1: ब्रिलियंट दिव्या दत्ता के लिए जोरदार तालियां।
2: पहले तो चिरैया के लिए जोरदार तालियां। तो गाइस जियो हॉटस्टार पर ये सीरीज कमाल की चल रही है।
1: अच्छा दिव्या जी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की रेसिपी क्या होती है बताइए?
3: जो हम कहना चाहते हैं, और आप तो मेरे ख्याल से है ही उसमें रहना ऐसा लगता है।
1: नहीं, हम कहाँ से हैप्पी मैरिड लाइफ।
4: अरे जन्नत सुन मेरी बात, लुकिंग यू नो द बेस्ट टुडे।
1: एक मिनट, हमारी चिरैया को छोड़। दिव्या जी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इस बिचारी का कोई नहीं।
5: यार तुम्हारी टीवी बदली जा रही है, तो गरीब को तुमने अकेले लगाया हुआ बेचारी को।
1: 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं
0: अभी, 52 हो गए।
1: उसके बाद फिर इसने नहीं खरीदा।
6: जहाँ हंसी और एंटरटेनमेंट का सिलसिला कभी नहीं रुकता।
1: दो मेरा सामान।
5: खाना यहाँ बनना शुरू भी होता है, ये तो लड़ी जा रहे हैं।
6: नई गेस्ट आएंगे,
1: बाबा
6: नई मस्ती लाएंगे।
7: आपको आता है भाई खाना बनाने?
8: मैं बावर्ची बनने थोड़ी आया, एक्टर बनने आया हूँ यार।
7: सोते करना आता है?
8: सोते का है इसमें। आई एम बैक।
7: टेस्ट करके देखो ना एक बार।
8: आप लोगों का खाना भी कोई खतरे से कम नहीं है।
6: लॉफ्ट शेफ्स पे लगेगा सितारों से भरा तड़का।
1: क्या बात है।
0: देख लीजिए, कृति सनोन ने शेयर किए हैं कॉकटेल 2 के सेट से ये बिहाइंड द सीन नज़ारे, जो कि उनके सॉन्ग माशुका से हैं।

0: अक्षय कुमार तैयार है अपनी धमाकेदार एंट्री करने के लिए, वो भी भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और उनके साथ नजर आएंगी अक्षरा सिंह। भाई ये दोनों एक म्यूजिक वीडियो के लिए कोलैबोरेट करने वाले हैं।
1: प्रणाम अक्षय सर, हम हैं अक्षरा सिंह, भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। देखिए बहुत दिन से आपका हिंदी गाना देख रहे हैं हम, टिप टिप बरसा पानी चुरा के दिल मेरा। अब थोड़ा भोजपुरी में भी आइए, अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए। वक्त और दिन आप बताइए, हम चले आएंगे।
0: सचिन पर लगने वाला है मर्डर का इल्जाम, अब क्या करेगी साइली और कितने कुछ हंगामे होंगे, आइए देखते हैं इस नए प्रोमो में।
2: जो तू चाहता था वो हो गया ना, निकल यहाँ से, और मेरी आई को तेरी श्रद्धांजलि नहीं चाहिए।
3: तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो?
2: तुम्हारा जो पति परमेश्वर है ना, तू यहाँ पे ढोंग कर रहा है श्रद्धांजलि का। मेरी आई का कत्ल एक इंसान ने किया है।
0: इसी के साथ साथ उड़ने की आशा ने पूरे कर लिए हैं 800 एपिसोड्स।

0: बार तुलसी की जिंदगी में आएगा नया तूफान, क्या खुशियों के बीच लग जाएगी उसे नजर।
1: खुशियों के बीच आने वाले खतरे से अनजान है तुलसी, क्या होगा जब एक हादसा बदल देगा सब कुछ।
0: कलर्स टीवी के आने वाले नए शो मुक्काबाज में हो सकता है कि बहुत जल्द नजर आएंगी मिलानी नजरत, जिन्हें आप रब से है दुआ में देख चुके हैं।

0: फोटो लेने दो।
1: तो यहाँ ये मेहरानदीप हुड्डा एक पब्लिक इवेंट पर नजर आए, जहाँ पर वो बेहद ही गुस्से में नजर आए क्योंकि यहाँ पर फैंस का लग गया था जमावड़ा। कैसी है यार या फेम, क्रिसन और नथन ने वेलकम किया है अपनी बेबी गर्ल को, जिसका नाम उन्होंने रखा है कृषा।
2: हाउ आर यू?
3: आई एम सक्सेसफुल, हाउ आर यू?

वही फाइनली आज हो रहा है जवानी तो इश्क होना है का ट्रेलर लॉन्च, जहां नजर आए वरुण धवन, मनीष पॉल, पूजा और मृणाल। इसी के साथ साथ फिल्म की और कास्ट भी इस ट्रेलर लॉन्च के खास मौके पर पहुंची।

हाल ही में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मंगलसूत्र और सिंदूर के साथ नजर आई थी। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि उन्होंने सीक्रेटली शादी कर ली है, लेकिन अब कंगना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि ये सारी बातें अफवाहें हैं और ये उनका लुक उनकी आने वाली फिल्म से है।

0: देख लीजिए ऑन स्क्रीन माँ बेटे यानी कि रूही और रुहान का ये वीडियो, जहाँ ऑफ कैमरा ये कर रहे हैं सेट पर मस्ती।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। सास बहू और बेटियां बिल्कुल पार्टी के उस डीजे की तरह है जो एक के बाद एक बजाता है आपके फेवरेट सॉन्ग्स, और यहाँ हम डीजे बनकर बजा रहे हैं आपके फेवरेट ट्विस्ट के वो सारे गाने, यानी दिखा रहे हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट वो भी एक साथ, क्योंकि जितनी सारी कहानियां हैं हमारे पास उतने ही सारे हैं उनमें आए हुए ट्विस्ट। सो लेट्स ट्विस्ट।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कस्टमर्स को चुराने की?
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में भाई प्रेम के एक इल्जाम ने खतरे में डाली है प्रेरणा की जान।
3: प्रेरणा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैफे से निकाल दिया अनुपमा।
2: क्या हुआ?
4: वो प्रेरणा,
5: डॉक्टर को बुलाया।
6: बाबूजी मुझे नहीं लगता कि हम डॉक्टर का वेट कर सकते हैं, पल्स बहुत वीक है।
7: मैंने प्रेम को कभी भी धोखा नहीं दिया, पर फिर क्यों ऐसा लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझ पे कोई भरोसा कर सके।
8: कस्टमर्स के आने से पहले ये क्रॉकरी चेंज कर देता हूँ। सब्जियाँ, टॉपिंग्स, हर्ब्स सब रेडी है, ओवन प्री हीट हो चुका है, अब तो बस मेहमानों के आने का इंतजार है।
0: असल में श्रुति प्रेम के कैफे के लिए 30 लोगों के खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, लेकिन भाई उसकी बात मैनेजर से हुई थी जिसने खाने पर आने से अग्री कर दिया था। तभी तो देखिए कैसे प्रेम खुशी खुशी उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है।
8: हेलो
6: प्रेम, हाय मुकेश।
8: हाय मुकेश, हम रेडी हैं, बस आपके गेस्ट के आने का इंतजार है, आप आ जाइए, आपको खाने के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा।
6: वो एक्चुअली सॉरी यार, मैं ना कैंसिल करने के लिए कॉल कर रहा था।
0: लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई उस मैनेजर का एक बॉस भी है जो अनुपमा के कैफे में ऑलरेडी खाना टेस्ट करके जा चुका है। ऐसे में अनुपमा को मिला 30 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट।
9: वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
10: इसे खाइए, हमारे गुजरात की स्पेशलिटी।
9: Amazing, amazing. Yeah.
6: इनके हाथ का जादू है ही ऐसा। मैंने भी जब पहली बार खाया था ना, तो मेरा भी यही हाल हुआ था।
9: Enjoy. वाकई में बहुत बढ़िया।
10: सर ये पूरन पोली है, ये भी खा के देखिए। महाराष्ट्र में फेमस है सर।
6: देखो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हम तुम्हें कैंसिलेशन फी देंगे, लेकिन मेरी 30 लोगों की पार्टी तुम्हारे कैफे में नहीं आ सकती।
8: पर क्यों सर?
6: मेरे बॉस ने कहा कि हम कहीं और जाएंगे।
11: Yeah, looking forward. आजा। अनुपमा जी।
10: जी?
11: सुधीर अपनी 30 लोगों की टीम को लेकर यहाँ आ रहा है लंच के लिए।
10: तीस लोग? सच?
11: आपके हाथ का जादू चल गया। आपने वो उसे जो थोड़ा सा टेस्ट कराया था उसे इतना अच्छा लगा कि किसी बड़े रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन कैंसिल करके सबको लेकर यहाँ आ रहा है मीटिंग के लिए।
10: थैंक यू कान्हा जी।
12: ये तो क्रेजी हो गया।
13: अरे लेकिन अब हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी होगी क्योंकि लंच के लिए अब टाइम ही कितना बचा है।
11: करेक्ट।
10: अरे बहुत टाइम है, तू अब अपनी अनुमा को देख, मैं बुलेट ट्रेन से ज्यादा फास्ट भागूंगी।
11: साथ में हमें भी रख लीजिएगा, थोड़ी हेल्प हम भी कर देंगे।
10: हाँ सर, अब देखिएगा मेरी गुजराती थाली आग लगा देगी, आग।
14: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
15: आज शाम को हमारी फोन खुलने वाली है।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फिर एक बार क्या नई जिंदगी की शुरुआत करते करते आएंगे इनके रास्तों में कांटे।
13: क्या? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ।
16: अबीरा डॉक्टर को फोन मत करो, सर ही तो दुखा है।
13: अरमान तुम पेन से चीखे थे, तुम गिरने वाले थे, ये कैसा हेडेक है?
5: बहुत बुरा वाला।
16: हम चीज है बड़े काम की यार।
0: असल में अभीरा ने ये फैसला किया है कि अरमान के साथ मिलकर वो अपनी नई फर्म की शुरुआत करेगी, भाई चाहे वो घर से ही क्यों ना हो, लेकिन ये दोनों फिर एक बार वकालत करेंगे। और देखिए कैसे आज अभीरा इसी कोशिश में उसे मनाने लगी है।

0: हमारा नया ऑफिस कितना अच्छा है ना?
1: पर नए ऑफिस से ज्यादा मुझे मेरी नई पार्टनर पसंद है।
0: चीज़ की फैक्ट्री।
2: अब इतने अरसे के बाद सिली गर्ल और सिली बॉय साथ में काम करेंगे तो नतीजा तो अच्छा ही होगा।
0: अच्छा बुरा जैसा भी होगा हमारा होगा, हम संभाल लेंगे।
3: ऐसा रहा हमारे ये वीकेंड स्पेशल। हमने आपको घर बैठे बैठे करवा दिया ना एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। एंजॉय द वीकेंड। बाय बाय।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices, from your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
12: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्री अमरनाथ में 5,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन तक चलेगी ये यात्रा। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल। अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते रखवाले। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म।
13: तुमसे प्यार नहीं करता,
14: बहुत ज्यादा प्यार करता है। He wants to make love to me all the time.
13: क्योंकि मुझे
12: कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी, श्रीली की फिल्म ला पैरा में निभाई है शानदार भूमिका, पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित। देखिए अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। जीएनटी के साथ आप भी बाबा के दर्शन कर लीजिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 6 से 7 फीट के शिवलिंग स्वरूप में बाबा बर्फानी ने आकार ले लिया है। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। वहीं यात्रा के लिए अब तक 3,06,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, पंजीकरण पहले से ही करवा चुके हैं। फिलहाल यात्रा मार्ग पर कई जगह अब भी 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है। सीमा सड़क संगठन के जवान दोनों ही रास्तों पर तेजी से ट्रैक बहाल करने में लगातार जुटे हुए हैं। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक दोनों रास्ते पूरी तरीके से तैयार कर दिए जाएंगे। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं वो दिव्य तस्वीर जो कि अब सामने आ गई है। देखिए प्राकृतिक रूप से ये जो शिवलिंग है ये खुद बन करके तैयार हो जाता है और इसके दर्शन हम आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक इसे माना जाता है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के खुले कपाट, चरम पर श्रद्धालुओं का जोश। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ, पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालु का पहला जत्था गोविंद घाट से पवित्र धाम पहुंचा। गुरुद्वारों को फूलों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजाया गया, समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब। सिख धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र है श्री हेमकुंड साहिब, हर साल मई महीने से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है ये पवित्र यात्रा। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम कर चुकी है हेमकुंड साहिब का निरीक्षण, यात्रा व्यवस्था से पूरी तरीके से संतुष्ट है। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, अब तक करीब 20 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चार धाम में आज करीब 90,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 30,000 श्रद्धालु। सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, करीब 8 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 5.25 लाख भक्तों ने किए दर्शन, आज करीब 28,000 श्रद्धालु पहुंचे भगवान बद्री विशाल के धाम। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का मेला, दोनों धामों में करीब 3.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए सामने आए गुड न्यूज, पवित्र अमरनाथ गुफा से पहली तस्वीर आई सामने। गुड न्यूज टुडे पर करिए बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन, प्राकृतिक हिम शिवलिंग ने पूरी तरीके से ले लिया आकार। अमरनाथ यात्रा को लेकर अंतिम दौर में तैयारियां, पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंची सुरक्षा बलों और मंदिर प्रशासन की टीम। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी पवित्र अमरनाथ यात्रा, 57 दिनों तक श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालु करा चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन, बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया उनका दिव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन पहुंचे कई फिल्म सितारे, महाकाल के दरबार में लगाई अपनी हाजिरी।

0: वेदांत की पूजा अर्चना, परिवार भी साथ रहा मौजूद। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे यूपी के मंत्री दया शंकर सिंह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार्मिक गौशाला में सुबह सुबह हुई पूजा अर्चना, भगवान की उतारी गई आरती। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया लेटर, पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ इसका आयोजन। महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एयरपोर्ट पर धूमधाम से दी गई उन्हें विदाई। भारत की सुरक्षा हुई और मजबूत, ओडिशा के चांदीपुर फायर रेंज से भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 700 से 900 किलोमीटर है मिसाइल की मारक क्षमता, 12 टन है इस मिसाइल का वजन। 1000 किलो के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जाने में सक्षम है अग्नि 1, कम दूरी तक बेहद सटीक हमला करने की भी है क्षमता। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के देखरेख में किया गया ये परीक्षण, जो देश की रक्षा और न्यूक्लियर क्षमता को देता है मजबूती। इसे क्विक रिएक्शन के हिसाब से किया गया है डिजाइन, खास बात यह है कि मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है ये मिसाइल। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल, मुंबई से शिरडी जाने के लिए ट्रेन का किया इस्तेमाल। राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा देश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 21वें राज्यपाल गोल्फ कप टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, कई खिलाड़ी ले रहे इसमें हिस्सा। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का किया उद्घाटन। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच, 3D इमेज जारी। 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, दिल्ली आगरा और जयपुर भी जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। कोलकाता में मदर टेरेसा हाउस का विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत के साथ अमेरिका ऊर्जा सहयोग बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी, दोनों देशों के बीच अहम बैठक। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिका में मंथन, वैश्विक तनाव के बीच ऊर्जा और अहम संसाधनों पर व्यापक चर्चा। उम्र से तनाव के बीच भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी पर बड़ा फोकस, 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड बैठक में भी शामिल होंगे अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
4: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today. Today.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Today.
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: किसी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं। शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थ यात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पवित्र अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। सुरक्षा अधिकारियों के साथ मंदिर कर्मचारियों ने गुफा में किया प्रवेश। 3 जुलाई से शुरू होकर 57 दिन चलेगी ये यात्रा। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल। अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम, एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है, फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी। कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी, चिली की फिल्म ला पेरा में निभाई है शानदार भूमिका, पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।

नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। वो अद्भुत बल के स्वामी हैं, फिर भी वो विनम्र और सहनशील हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं, फिर भी वो चरित्रवान और दयालु हैं। जब भी हनुमान जी का नाम हमारे सामने आता है, महावीर का पराक्रम दिखाई देने लगता है। संकट में फंसे लोगों के वो तारणहार बनते हैं, लेकिन ये सब वो करते हैं धर्म संगत युक्ति और सूझबूझ से। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से राक्षसों के छल और बल का नाश किया। तो चलिए देखते हैं बजरंग बली को समर्पित हमारी ये खास पेशकश।

0: जब भक्तों पर छाता है संकट, तब पवन पुत्र का स्वरूप हो जाता है विराट। जब रघुकुल पर छाई अनिष्ट की छाया, महाबली के महाप्रताप से दूर हुआ संकट, मिट गई माया। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं। महादेव के वो रुद्रावतार हैं, संकट तो उन्हें छू भी नहीं सकता। माता सीता से उन्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हासिल हैं। देवताओं से उन्हें शक्तियां हासिल हैं। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म ही श्री राम की सेवा के लिए हुआ है। वे गुणों की खान हैं और बल बुद्धि में उनका कोई सानी नहीं है, फिर भी वे दया और करुणा के सागर हैं। आज हम उनके व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं कि संकट की घड़ी में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, जब माता सीता के हरण के बाद हनुमान जी लंका जाते हैं और महासागर को देखकर उनके पग रुक जाते हैं और जामवंत उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण करवाते हैं।
1: इसी कारण से जब माता सीता की खोज हो रही थी और समुद्र लांघकर श्रीलंका की तरफ जाना था, तो जामवंत जी हनुमान जी महाराज की शक्तियों को याद दिलाते हैं और कहते हैं कि आप में अपार शक्ति है और बचपन में श्राप के कारण आप भूल गए हैं। अपने क्षमता को याद करिए, अपनी शक्ति को याद करिए, अपनी ऊर्जा को समझिए और आप समुद्र लांघ करके जा सकते हैं, दुष्कर कार्य करके वापस आ सकते हैं, कठिन से कठिनतम कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं। आपके अंदर असीम ऊर्जा है, असीम साहस है।

0: रामायण की कथा कहती है कि जामवंत ने पवनसुत को याद दिलाया कि वो अतुलित बलधामा है। वे भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं। वे महावीर हैं। उनका शरीर वज्र जैसा कठोर है, उनमें सूर्य का तेज है और उनकी चतुराई का भी कोई ओर छोर नहीं। देवता हो या दानव, कोई भी बजरंगबली की शक्तियों के आगे टिक नहीं सकता। वो पवन वेग से उड़ सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी वेश धर सकते हैं। जामवंत ने हनुमान को बचपन में मिला वो शाप भी याद दिलाया जिससे वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। उन्हें देवताओं से मिली अमोघ शक्तियों का भान हो गया। वे बिना कोई देर किए एक बड़ी सी शिला पर चढ़ गए और प्रभु राम का नाम लेकर लंका की ओर चल पड़े। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हु हनुमाना। अर्थात जिस तरह श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी भी चल पड़े। लंका पहुंचने से पहले बजरंगबली ने जो जो किया वो सब उनकी महागाथा का अंश मात्र है। बजरंगबली का बल और उनका तेज दिखा लंका में। हनुमान जिस समय लंका पहुंचे उस समय लंकापुरी रावण की शक्ति के मद में मदहोश होकर सोई हुई थी, किंतु बजरंगबली के पहुंचते ही लंका में हनुमान का डंका बजने लगा। पवनसुत ने सबसे पहले माता सीता की खोज की और उन्हें प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता को जब ये भरोसा हो गया कि श्री राम उन्हें लेने अवश्य आएंगे, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि लंका में उनका कोई अहित नहीं कर सकता, तब उन्होंने पवन पुत्र को अशोक वाटिका के फल खाने की अनुमति दे दी। माता का आदेश मिला तो बजरंगबली ने अशोक वाटिका ही उजाड़ दी। हनुमान ने लंकेश की वाटिका को तहस नहस कर दिया और जो रक्षक उन्हें पकड़ने आए उन्हें यमलोक पहुंचा दिया।
1: जब हनुमान जी महाराज लंका का विध्वंस कर दिए, अशोक वाटिका उजाड़ दिए, तो चाहते तो रावण का वध करके माता सीता को उठा ले आते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका जो उसका मूल कारण है वह यह है कि रावण को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता, गंधर्व या यक्ष नहीं मार सकता था, केवल एक मनुष्य ही उसे मार सकता था। इसलिए हनुमान जी ने ऐसा कार्य नहीं किया।
0: रावण के बेटे अक्ष को मारने हनुमान को ललकारा तो वो भी अंजनी नंदन के हाथों स्वर्ग सिधार गया। हनुमान को पकड़ने के लिए रावण का बेटा मेघनाद आया तो उससे भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया।
1: हनुमान जी महाराज स्वयं ब्रह्मास्त्र का आदर करते हैं और शांत खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। उसका मूल कारण यह था कि एक तो ब्रह्मास्त्र का आदर करना, दूसरी तरफ वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र में अगर बांधता है मेघनाथ तो रावण के पास लेकर जाएगा, राजा के पास लेकर जाएगा, इससे राजा के मनोदशा, साहस और योजना का पता लग पाएगा।
0: ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। हनुमान को ब्रह्मास्त्र से भी सुरक्षित रहने का आशीर्वाद था, लेकिन ब्रह्मदेव के मान की रक्षा के लिए उन्होंने बंधना स्वीकार किया। आगे हम आपको बताएंगे कैसे बुद्धि और बल से हनुमान जी ने लंका में डंका बजाया और एक रात में संजीवनी बूटी लाने का अविश्वसनीय और अकल्पनीय पराक्रम कर डाला। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: रामायण की कथा कहती है कि जब हनुमान जी को रावण की लंका में लाया गया तब रावण की सभा में सभी उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने रावण को अहंकार छोड़कर श्री राम के चरणों में शरण लेकर अपने प्राण बचाने की सीख दी। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी एक ना सुनी, बल्कि उसने तो बजरंगबली की पूंछ में आग लगाकर उन्हें वापस भेजने का आदेश दे दिया।

0: रावण परम तपस्वी और शिव भक्त था। वो ज्ञानी था, कुलीन था, लेकिन शक्तियों के अहंकार में वो अधर्म की नीति पर चलने लगा था। तपस्वी के वेश में वो नारायण को तुच्छ समझने की भूल करता रहा। दशानन होने के दंभ में साक्षात जगदम्बा का हरण करके भी जब उसकी मति नहीं जागी, तब हनुमान जी ने लंका में जाकर हाहाकार मचा दिया।
1: प्रभु राम का एक सामान्य सा दूत आकर के आपके पुत्र को मार दिया आपके घर में, और आपके वन को उखाड़ दिया, और आपके सम्मुख प्रकट होकर के आपको ललकारा, पूरे लंका को विध्वंस कर दिया। उसके स्वामी कितने ताकतवर होंगे, उनके स्वामी के पास कितनी शक्ति होगी। तो इसके पीछे कई उद्देश्य छिपे थे। एक तो प्रभु राम की शक्ति को बताना रावण को, दूसरी तरफ रावण के शक्ति का आकलन करना, और तीसरा चेतावनी भी देना।
0: सुनत बिहसी बोला दसकंधर, अंग भंग करी पथि बंदर, कपि के ममता पूछ पर सबही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुन पावक देहु लगाई। रावण बोला इस बंदर को अंग भंग कर लौटा दिया जाए। बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। लंकेश के आदेश पर हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान की पूंछ जलाने की कोशिश में राक्षसों ने अपना भाग्य ही जला लिया। हनुमान ने सोने की लंका में आग लगा ली। वो कूद कूद कर महलों, मीनारों, कंगूरों पर जा चढ़े और सोने की लंका धूंधू कर जलने लगी। बजरंगबली ने लंका की सेना की छावनियां और उनके शस्त्रागार भी जला डाले। इस तरह युद्ध से पहले ही रावण की शक्ति आधी रह गई।
1: रावण ये मानता था कि जो उसकी सोने की लंका है उसकी सुरक्षा अवैध है, उसको कोई भेद नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। एक दूत आकर यदि सोने की लंका को, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था, स्वाहा कर सकता है, तो प्रभु राम में कितनी साहस होगी, कितनी शक्ति होगी। मूल रूप से देखा जाए तो सोने की लंका को स्वाहा करना, अशोक वाटिका को उजाड़ने का जो मूल कारण है, वह प्रभु राम का परिचय रावण को देना था, यह मूल उद्देश्य था।
0: तो देखा आपने, हनुमान जी ने रामायण में हर स्थान पर अपने विवेक का परिचय दिया। बलशाली होने के बावजूद उन्होंने बुद्धि के आगे बल को हावी नहीं होने दिया। जहां बल का प्रयोग उचित लगा तो उसे परलोक ही पहुंचा दिया, और जो उनकी शरण में आ गया उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। बजरंगबली की महागाथा का दूसरा सबसे चर्चित प्रसंग है संजीवनी बूटी लाना। रावण के पुत्र मेघनाद की अमोघ शक्ति से आहत होकर लक्ष्मण भूमि पर गिरे हुए थे। राम अपने प्यारे भाई को बेहोश देखकर विलाप कर रहे थे। उन्हें लंका पर चढ़ाई करना, रावण से युद्ध करना भी व्यर्थ लग रहा था। उस मुश्किल घड़ी में हनुमान लंका जाकर रावण के राजवैद्य सुषेण को ले आए। सुषेण ने पहले तो क्रोध किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपने वैद्य धर्म का एहसास हो गया। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण के प्राण बचाने और जो उपाय बताए हैं उससे त्रिलोकाधिपति राम का हृदय भी बैठ गया। लक्ष्मण को जीवन दान देने वाली मृत संजीवनी बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर थी। संजीवनी बूटी को सूर्योदय से पहले लंका लाना भी आवश्यक था, लेकिन दुस्साहस से भरा ये कार्य लगभग असंभव था। संकट की इस घड़ी में रुद्रावतार हनुमान फिर संकट मोचन बने। उन्होंने प्रभु श्री राम को धीरज बंधाया कि सेवक के रहते प्रभु को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान पवन वेग से हिमालय की ओर उड़ चले। रास्ते में रावण के मायावी दूत कालनेमी ने उनका समय नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु हनुमान ने कालनेमी को पहचान लिया और उसे यमलोक भेज दिया। आगे हम आपको दिखाएंगे महावीर हनुमान जी ने कैसे नागपाश से राम लक्ष्मण को मुक्त किया और क्यों तोड़ दी माता सीता की दी हुई मोतियों की माला। रामायण की कथा कहती है कि द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचने पर संजीवनी बूटी की पहचान संभव नहीं हो रही थी। कपिवर को सारी बूटियां ही संजीवनी लग रही थी। ऐसे में बजरंग बली ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और पूरा पर्वत ही उठा लिया और बजरंग बली सूर्यदेव से पहले ही लंका पहुंच गए और संजीवनी मिलते ही लक्ष्मण जी क्षण भर में सचेत हो गए।

0: श्री राम जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे चाहते थे तो रावण माता सीता का हरण कर ही नहीं सकता था। उनका संकल्प ही इस धरती से असुरों का संहार कर सकता था। ये तो एक लीला थी जिसने समूचे राक्षसों का नाश कर दिया, किंतु मानव अवतार की मर्यादा में बंधे होकर श्री राम ने भी संकट झेले। उन्हें नागपाश में भी बंधना पड़ा। मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति चलाने से पहले राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नागपाश में बांध दिया था। प्रभु को नागपाश में बंधा देख हनुमान बिना कोई देरी किए पक्षीराज गरुण के पास चले गए। बजरंगबली ने गरुण से प्रार्थना की कि वो श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करें। गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं। अपने स्वामी की सेवा के लिए वो पवन पुत्र के साथ लंका चले आए। हनुमान ने उन्हें फिर से अपने कर्तव्यों का स्मरण कराया और पक्षीराज ने राम लक्ष्मण के नाग बंधन काट दिए।
1: हनुमान जी महाराज के पास अपार दैवी शक्तियां थी तथा तो पवन पुत्र होने के कारण तीव्र गति से चलने की शक्ति प्राप्त थी, वायु में उड़ने की शक्ति प्राप्त थी और प्रभु राम के प्रति अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, अटूट स्वामी भक्ति के बल पर जब वो ठान लेते हैं तो उसके लिए कितना भी प्रयत्न करना पड़े वो कर लेते हैं।
0: त्रेता युग के अवतारी भगवान श्री राम के कई भक्त हुए। भरत और लक्ष्मण जैसे भाई उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय थे। शत्रुघ्न भी राम के सेवक बनकर रहे, लेकिन भक्तों में जो स्थान रुद्रावतार हनुमान को मिला वो अन्य किसी को ना मिल सका। रामायण में कथा है कि एक बार माता सीता ने हनुमान को अनमोल मोतियों की माला भेंट की। तब हनुमान उन मोतियों को दांत से काट कर फेंकने लगे। हनुमान अनमोल मोतियों में राम को खोज रहे थे। जब वहां राम नहीं मिले तो उन्होंने मोतियों को निर्मूल्य समझकर फेंक दिया। दरबार के दूसरे मंत्रियों और अतिथियों ने हनुमान की हंसी उड़ाई। तब राम नाम को राम से भी बड़ा सिद्ध कर चुके बजरंगबली ने अपना सीना चीर कर दिखा दिया कि उनके हृदय में सिया राम का वास है।
1: हनुमान जी महाराज मोतियों की माला को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आगे बढ़ते हैं और मोतियों की माला में तोड़ तोड़ कर यह देखने लगते हैं कि प्रभु राम और माता सीता कहाँ हैं, उनका नाम कहाँ है। ऐसा एक मोती देख तोड़ते और देखते फिर फेंक देते। इस तरह जब सारे मोतियों को तोड़कर फेंक देते तो यह सब लक्ष्मण जी देख रहे होते हैं। लक्ष्मण जी उनके पास गए और मोतियों को तोड़ने के संदर्भ में पूछा तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मुझे कोई भी मूल्य, कितने भी मूल्यवान वस्तु है, अगर उसमें प्रभु राम का नाम नहीं है, प्रभु राम की का स्वरूप नहीं है तो वह मेरे लिए व्यर्थ है। अपना सीना चीर देते हैं और भरी सभा में माता सीता और प्रभु राम की तस्वीर दिखा देते हैं, उनकी मूर्ति दिखा देते हैं कि और कहते हैं कि मेरे हृदय में, मेरे रग रग में प्रभु राम और माता सीता है।
0: हनुमान की भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों का स्वामी बनाया। हनुमान की पूजा से ये सिद्धियां और नौ निधियां बेहद ही सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। बजरंगबली ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने ये वचन दिया था कि वो बजरंगबली के भक्तों को उनकी सारे साथी और धैया कभी नहीं सताएगी। हनुमान अमर देवता माने जाते हैं। श्री राम ने त्रेता युग में शरीर त्याग किया, किंतु हनुमान आज भी राम नाम की धुनी रमाए रहते हैं। महाभारत में कथा है कि उन्होंने कुंती पुत्र भीम का अहंकार तोड़ा था, उन्हें विजय का आशीर्वाद भी दिया था। भीम के अनुरोध पर ही बजरंगबली महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजे। बजरंगबली और श्री कृष्ण की शक्ति से ही अर्जुन का रथ अजेय रहा और उसे किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची।
1: हनुमान जी महाराज के रथ पर रहने से कौरवों द्वारा छोड़े गए जो भी शक्तिशाली बाण थे, आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो अर्जुन के रथ को नष्ट नहीं कर पाए। रथ को स्थिरता प्राप्त हुई। जब युद्ध का अंत होता है तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे इस विजय में हनुमान जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तब श्री कृष्ण भगवान हनुमान जी को रथ से उतरने का निर्देश देते हैं। रथ से उतरते ही जैसे वह रथ विध्वंस होता है, अर्जुन को पता लग जाती है कि हनुमान जी महाराज ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके उस युद्ध में अर्जुन को विजय प्रदान कराई।
0: बचपन में सूरज को फल समझकर खा लेना और राम रावण युद्ध के बाद पाताल लोक जाकर अहिरावण का संहार करना, ये सब सिर्फ बजरंग बली ही कर पाए। हनुमान को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने संकट मोचन का नाम दिया था। संकट मोचन हनुमान आज भी अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
2: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो।
1: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार। दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार। आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: How are you?
7: I'm fine.
6: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
7: Man.
8: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ में 5,00,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल, अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम, एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म। कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी। चिली की फिल्म ला ओपेरा में निभाई है शानदार भूमिका, पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। डिजिटल पूजा पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। दरअसल देखिए, डिजिटल दौर है, हर जगह पर डिजिटलाइजेशन है, हर कोई डिजिटल दुनिया में ही है और ऐसे में पूजा पाठ भी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मामला कहां से उठा है पहले वो बता देते हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में तीर्थ पुरोहितों ने ऑनलाइन ठगी और अवैध रूप से किए जा रहे श्राद्ध तर्पण पिंड कार्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। आरोप ये लगाया कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के नाम पर AI से भी वीडियो का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पूजा के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। तो ऐसे में तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इसका विरोध किया है। तो क्या पुरोहितों के कार्यक्षेत्र में हो रहा है अतिक्रमण, डिजिटल पूजा कितनी सही कितनी नहीं, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने धर्मगुरु और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो डिजिटल पिंडदान पर विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पुरोहितों के इस विरोध के पीछे तर्क क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि स्थानीय पुरोहित समाज ने यहां ऑनलाइन पूजा का विरोध किया। बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने ये मामला उठाया और इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन भी किया, काली पट्टी बांधकर। पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और उन्होंने ऑनलाइन पूजा के नाम पर हो रही ठगी के आरोप लगाए। पुरोहितों का आरोप है कि AI वीडियो के जरिए ऑनलाइन पूजा करवाई जा रही है, जबकि परंपरा के तहत ब्रह्म कपाल में पिंडदान होते हैं और साथ ही पुरोहितों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पुरोहितों ने पुलिस अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। इतना ही नहीं, तप्त कुंड में भी अवैध रूप से कर्मकांड करवाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऑनलाइन पिंडदान शास्त्र सम्मत नहीं है। पुरोहितों ने इसके पीछे सदियों पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि वो प्रभावित हो रही है। वैसे मान्यता यह है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है और इसीलिए लोग वहां जाते भी हैं पिंडदान कराने के लिए। बहरहाल, स्थानीय पुरोहितों का कहना है कि श्रद्धालुओं को गुमराह किया जाता है, ऑनलाइन पूजा के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: हम लोग अपने एक मुद्दे पर यहाँ पर एक छोटी सी बात सभी जो है समाज से और सरकार से रखना चाहते हैं। हम लोग आज जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पे, हमने एक फैसला लिया है कि हम लोग काली पट्टी बांधकर कुछ विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग यह है कि अभी ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित में कई लोग, कई असामाजिक तत्व जो बाहर से पिंडनाथ के नाम पर कई फ्रॉड जानकारियां, फ्रॉड वेबसाइट आदि बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमने वहां आने वाले तीर्थयात्री या श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा रहा है, जिस पर हम ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित और हमारे माननीय हमारे चारों तीर्थों के अध्यक्ष उमानंद सती जी, उन्होंने जो फैसला लिया है हम सब लोगों ने मिलकर कि हम इसका घोर विरोध करेंगे और आगे भी हम लोगों ने यह निश्चय किया है अगर इस चीज पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हमारा घोर विरोध होगा। हम लोग इसमें आगे उग्र जो है हड़ताल करेंगे सभी लोग मिलकर।
0: तो चलिए आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत द्विवेदी, चेयरमैन है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी से। हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर, वान्यारा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी, पूरा मामला क्या है, आखिर विरोध किस बात को लेकर हो रहा है?
2: जी नमस्कार।
0: जी सर,
2: ये बात सही है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लेकिन जो हमारे ये तीर्थ स्थल है, जो ब्रह्म कपाल के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया है, और ये बात मैं मानता हूँ कि उनका विरोध बिल्कुल जायज है क्योंकि ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और इन स्थानों की एक अपनी मान्यता है, ये अपनी परंपराएं हैं और भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और भारत की जो हमारी इस प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थल है उन सबकी एक अपनी महत्ता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये ऑनलाइन और ये डिजिटलाइजेशन का एक वो लेकर कि हम आज इसके माध्यम से AI के माध्यम से भी पिंडदान कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन से पिंडदान कर रहे हैं, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ शायद परंपराओं के खिलाफ है, और इस पर इसका कुछ लोगों ने इसके द्वारा फ्रॉड तरीके से फर्जी वेबसाइट भी बनाई हुई है, और देश के अंदर 140-120 करोड़ सनातन धर्मी हैं पूरे भारत के अंदर, और तमाम पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पर बद्रीनाथ की स्थल को मानते हैं। तो उसके कारण मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं परंपराओं के साथ जो है कि ये खिलवाड़ हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पिंडदान की कोई मान्यता नहीं है। जो उस स्थल पर आकर, जो वहां पर उस स्थान पर आकर जो पूजाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो स्थापित जो होती हैं, उनको उसी स्थल पर आकर ही उनकी एक मान्यता है। तो ये बात सही है कि इसका इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह से कुछ फर्जी वेबसाइट के द्वारा और कुछ इस तरह से अपने जो है अपने सनातन धर्म और अपने जो इन स्थलों की जो मान्यता है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है गुमराह कर रहे हैं, और उसका संदेश भी जो है समाज के बीच में गलत जा रहा है, क्योंकि फिर इन स्थलों की एक महत्ता भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे लोग यहाँ आएंगे क्यों फिर, जब सब कुछ आप ऑनलाइन ही कर देंगे तो फिर इन स्थलों में आने का कोई महत्व नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल नहीं। हेमंत जी आप आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं कमल रैन सिलोनी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मामला देखिए काली पट्टी बांध के विरोध किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जरा हमें विस्तार से बताइए वहां एक्चुअली होता क्या है। अगर हम ब्रह्म कपाल की बात करें, लोग वहां तक क्या पहुंच पाते हैं, या उससे पहले ही उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, गुमराह किया जाता है, किस तरीके से ये पूरी ठगी का मामला चल रहा है वहां?
3: नवजोत, ये ब्रह्म कपाल जो है वो बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य है, और यहाँ पे जो पितरों का पिंडदान होता है, खासकर बद्रीनाथ मोक्ष का धाम है।

0: यहाँ पे तो पहुंचते हैं, लेकिन जो ये काली पट्टी का मामला है ये विशेष तौर पे उसलिए है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से खासकर सोशल मीडिया पे इन दिनों कई पंडित बन चुके हैं जो बद्रीनाथ की पूजा ऑनलाइन माध्यम से रील बनाकर वीडियो बनाकर फेसबुक पे डालते हैं और लोग इनके बहकावे में आके इन लोगों को पूजा पूजा की जो अमाउंट होती है ऑनलाइन माध्यम से अपनी पूजा कराने का वो दे देते हैं, इस तरह से ठगी का शिकार हो जाते हैं। जबकि ब्रह्म कपाल की पूजा या बद्रीनाथ की पूजा, जब आप बद्रीनाथ जाओगे या फिर बद्रीनाथ की जो ऑनलाइन पूजाएं हैं वो मंदिर समिति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ऑनलाइन पोर्टल पे ही बुक होती है, जो कल की होंगी परसों की होंगी जैसे भी जो होती है। लेकिन ऐसे इस तरह से कोई पंडित इस तरह की पूजाएं यहाँ पे करता नहीं है, बद्रीनाथ के बद्रीनाथ धाम से भी नहीं करता है। बद्रीनाथ की पूजाएं बद्रीनाथ में आने के बाद ही होता है। ब्रह्म कपाल का जो पिंड तर्पण है वो भी ब्रह्म कपाल आने के बाद ही यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा दी जाती है।
1: ठीक है कमल, एक चीज बताइए, क्या लोग वहां तक पहुंचते, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीच रास्ते में उनको गुमराह कर दिया जाता है कि आप दूसरी जगह जाइए, वहां हम जाके आपकी पूजा करा देते हैं, क्या ये भी मामला है या फिर उनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि फर्जी पंडित ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं ब्रह्म कपाल में पूजा के नाम पर?
0: जी, अभी का जो मामला है ये यही है कि जो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ब्रह्म कपाल जो बद्रीनाथ आएगा वो ब्रह्म कपाल जाता है,
1: ठीक है,
0: ऑनलाइन पर के नाम पे जो ब्रह्म कपाल के नाम पे ऑनलाइन जो वीडियो डाल रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ ये मंदिर है, कहाँ ये ब्रह्म कपाल बनाते हैं, वहीं पे पूजा करते हैं। इसमें कई लोग थक जाते हैं, जो खासकर जो गरीब होते हैं, जो बद्रीनाथ की यात्रा पे नहीं आ पाते हैं, वो लोग ठगे महसूस करते हैं। ऐसे में इन जो पंडा समाज है, तो तीर्थ पुरोहित है ब्रह्म कपाल का, इन लोगों ने यहाँ पे काली पट्टी बांध के इनके खिलाफ एक नया वो शुरू किया है, विरोध प्रदर्शन शुरू किया है ताकि जल्द से जल्द इन पे एक्शन हो, जितने भी वीडियो हैं, जितने भी ये लोग हैं इनको पकड़ा जाए ताकि लोग ठगी का शिकार ना हो सके कह के।
1: बिल्कुल, अभी तक मामला कहाँ पहुंचा है, क्या इसमें किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या एक्शन हुआ है इसमें कोई?
0: जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये लोग रोजाना विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के ही। इन लोगों का ये है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, आगे इन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, देखते हैं क्या होता है।
1: बिल्कुल, चले कमल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हेमंत जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये एक तरीके से एक मंदिर की एक अपनी परंपरा होती है, और उस तरीके से जब हम जाते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बद्रीनाथ धाम जा रहा है वो बहुत कठिन यात्रा भी है ये, और वहां पर पहुंचता है, और ऐसे लोग जो कि लोगों को गुमराह करते हैं ऑनलाइन के नाम पर, क्या कुछ इन पर कार्रवाई के बारे में सोच रही है सरकार?
2: लेकिन यारिका जी, मैं जरूर आपका, क्योंकि आज तक एक देश का बड़ा चैनल है और बहुत सारे लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये जानकारी जरूर सबके सामने आनी चाहिए कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति 1939 में ये टेंपल एक्ट बना था, टेंपल कमेटी बनी थी, और 47 टेंपल हमारे अधीन है जिसमें श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी तो दो बड़े अधिष्ठान हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 45 मंदिर और 45 हमारे टेंपल हैं जो अधीनस्थ मंदिर समिति चलाती है। ये बात सही है कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के बहाने लगातार जिस तरह से फ्रॉड के वो हो रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी में कोई भी ऑनलाइन पूजा, कोई भी ऐसा वो नहीं। हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है, बद्री केदार टेम्पल कमेटी की वेबसाइट है, उसी के द्वारा ऑनलाइन पूजाएं जो हमारी हैं, या जितनी भी हमारी जो मंदिर से संबंधित जितनी पूजाएं होती हैं, वो सब कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर होती है। लेकिन ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ऑनलाइन पूजा कराइए या ऑनलाइन जो है ब्रह्म कपाल का, जो इनका पितृ तर्पण वाला जो हमारे ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित है उनका एक वो है, वहां पर कई तरह के हमारे सारे जितने भी हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, हमारा नरसिंह मंदिर है, वहां पर केदारनाथ जी टेम्पल भी हमारे पास में है, हमारी मंदिर समिति उसका संचालन करती है। लेकिन लगातार कई दिनों से ये देखने में आ रहा है, और हमारे पास भी कई शिकायतें आ रही है, और हमने साइबर क्राइम को बहुत सारी शिकायतें यहाँ से भेजी हैं कि ये ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी, चाहे बद्रीनाथ जी हो और केदारनाथ जी हो, चाहे हमारे अधीनस्थ 45 मंदिर है, पंच केदार है, पंच बद्री है, नरसिंह मंदिर है, जितने भी जय भविष्य बद्री, हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन पूजा के माध्यम या ऑनलाइन से हम कोई पूजा कराते हो, क्योंकि इन तीर्थ स्थलों का महत्व है कि जो यहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी हमारी बहुत कठिन यात्रा करके जो है कि यहाँ पर देश दुनिया से लोग तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, और आज लाखों की संख्या में आप देखेंगे लोगों की आस्था, ये सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, ये सनातन धर्म की प्राणवायु है, और लोग जो देश दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी सबकी बड़ी आस्था इन पर रहती है, और इस स्थल पे आने का ही एक अपने आप में महत्व है, और वो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन इसका कोई जिस तरह का आज की तारीख में ये वेबसाइट ये ऑनलाइन और ये इस तरह से सब चल रहे हैं, इसमें कई फ्रॉड चल रहे हैं, प्रसाद भी ऑनलाइन मंगा दे

0: जबकि प्रसाद ऑनलाइन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पूजा कोई ऑनलाइन हम पूजा नहीं कराते हैं, ऑनलाइन हमारे यहाँ कोई भी चीजें नहीं है, सिर्फ हम
1: प्रसाद, तमाम चीजें ऑनलाइन होती है। बिल्कुल, चलिए मैं अब इसी पर आती हूँ। हेमंत जी आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पर और आगे चर्चा करेंगे। अब जरा हम दर्शकों को समझा देते हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, बद्रीनाथ धाम में जब जाते हैं एक ये मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, बताइए जरा ब्रह्म कपाल का महत्व क्या है, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए।
2: देखिए ब्रह्म कपाल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, क्योंकि भगवान शंकर को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, वो भगवान ब्रह्मा का जो पांचवा सिर था, जहां उनको अहंकार उत्पन्न हुआ और भगवान शिव ने उस सिर का छेदन किया था, तो उस सिर उनके हाथ में क्योंकि चिपक जाता है, और यही वो स्थान था जहां पर भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। ब्रह्म हत्या से जो उनका दोष था वो यहाँ पर खत्म हुआ था, इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मा जी का जो सर था वो यहाँ पर भगवान शिव के हाथ से अलग हुआ, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया ब्रह्म कपाल। उसके बाद भी अगर देखा जाए, जब अगर हम बात करें कौरव और पांडव के युद्ध को लेकर के, जहां पर पांडव के अपने सहोदरों का, अपने गुरु इत्यादि के हत्या का जो दोष था, वो दोष जाकर के वहां पर लगता है, तो वहां जाकर के जो तर्पण था, जो वहां जो जब स्वर्ग की जो यात्रा प्रारंभ करते हैं पांडव, उस यात्रा के प्रारंभ से पहले यही वो स्थान है जो बद्रिका आश्रम का, जो बद्रीनाथ धाम का यह स्थान है, यहाँ पर वो अपने सहोदरों की मोक्ष के लिए, सहोदरों की मुक्ति के लिए यहाँ पर उनका तर्पण करते हैं, यहाँ पर उनके लिए पूजन इत्यादि करते हैं, यहाँ पर उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और यहाँ से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि भगवान शंकर को जो ब्रह्म हत्या का पाप था उससे यहाँ छुटकारा प्राप्त हुआ, जो ब्रह्मा जी का जो सर था, जो एक पांचवा सर था, वो यहाँ पर छूटा, इसलिए उसको ब्रह्म कपाल स्थान नाम दिया गया। उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों के लिए किया, वो स्थान हुआ, और शास्त्र ऐसा बार बार वर्णन करता है कि जिनको गया श्राद्ध करने पर भी जिनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके पितरों को सद्गति प्राप्त नहीं होती है, अगर वो बद्रिका आश्रम में आकर के अपने पितरों के निमित्त ब्रह्म कपाल में श्रद्धा पूर्वक अगर श्राद्ध करते हैं, उनके मोक्ष का उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका पूर्ण फल उनको प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है जहां पर जिसके नाम पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाए, ये क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां उसका एक विशेष महत्व है, जहां पहुंच करके अगर श्रद्धापूर्वक तर्पण इत्यादि किया जाए तो उसका लाभ होता है।
1: बिल्कुल, एक बार अब वान्या जी आपके पास आते हो, देखिए इसका महत्व तो हमने राज मिश्रा जी से जान लिया। जब इस तरह की पूजा होती है, स्पेशली अगर हम पिंडदान की बात करें, हम किसी और पूजा की भी बात करें, AI का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, अभी हेमंत जी बड़े अच्छे से बता भी रहे थे कि आजकल तो ऑनलाइन आपको प्रसाद मिल जाता है, गंगा जल चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए, सब कुछ मिल जाता है, क्या इसका कोई लाभ होता है क्या वाकई? एक तो वो है कि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा भावना के साथ जा रहे हैं, वहां उस पूजा में शामिल हो रहे हैं, खुद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, खुद वहां पर तमाम तरह की जो विधियां हैं उसको निभा रहे हैं, और एक ऑनलाइन या फिर AI के माध्यम से, इसका कितना पुण्य मिलता है और ये कितना सही है?
3: देखिए जेएन जी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। नवजोत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है, वही टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है। आज की डेट में आपके चैनल से ही हमने कई बार कहा था कि AI का मिसयूज बहुत ज्यादा पीक पर होगा। ये कंप्लीट जो केस है, यहाँ पर जो है भोले भाले जो श्रद्धालु हैं, जो शरणार्थी हैं, वो फंसते हैं इस ऑनलाइन के चक्रों में, और कहीं ना कहीं जो वेबसाइट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है जो भी एंड यूजर है, अगर आप नहीं देख पाते तो एटलीस्ट उन वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी जो है आप चेक कराएं, अगर आपको कुछ गलत लगता है आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। आप कहीं भी पैसे दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक बार चेक तो कर लीजिए कि आप कहाँ पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस ऑनलाइन की कितनी रेलिवेंस है। आज इतने सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं,
1: जैसे सवाल यहाँ पर ये है ना कि क्या पूजा पाठ ऑनलाइन हो सकते हैं, आप पितरों का तर्पण ऑनलाइन कर सकते हैं?
3: देखिए आप नहीं कर
1: उससे पुण्य कितना मिलेगा, आप जो या फिर ये बस खाना पूर्ति हो रही, ठीक है हमने करना है, हमने कर दिया, चलिए काम खत्म।
3: ये कोई फॉर्मेलिटी या रजिस्टर में कोई अटेंडेंस नहीं है जो एक इंसान को लगानी है। डेफिनेटली एक बंदा एक तीर्थ स्थल पे जाता है, इतने कष्ट लेके जाता है, और उस जो स्थल की ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां पर जो है आप एक दो दिन जरूर रहकर आओ। आप सारी चीजें कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो सामान है वो आएगा नहीं आएगा, वो पूजा कितनी रेलिवेंस होगी। सी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आई थी, लेकिन अभी जो है टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने जो लाइफस्टाइल है उससे आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली उसका फल बिल्कुल अलग है। आप कैसे संकल्प लेंगे ऑनलाइन में, कैसे आपका फिजिक, और शास्त्रों में भी इस चीज की मान्यता नहीं है, और जो एक आपकी फिजिकल प्रेजेंस है उसकी मान्यता और एक ऑनलाइन डिजिटल से किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जहां पर एक्सेप्शन नहीं है, जहां आप जा सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो इंडिया में या दूर दराज आप किसी विदेश में बैठे हो, तो भी आप लीव्स लेके जब भी आप आ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फल और जो आपकी आंखों का सेटिस्फेक्शन जो आप अपने हाथों से करते हो, जो आप पिंडदान अपने हाथों से करते हो, ऑनलाइन आपके बिहाफ पे हर चीज हो रही है। तो अब बिहाफ पे देखिए, जहां वही मैं बार-बार कह रही हूं कि जहां कोई मजबूरी है, सपोज कोई बच्चा है उसका जाप वो नहीं कर सकता तो उसके पेरेंट्स को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मजबूरी नहीं है तो ऑनलाइन आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो चीज हो रही है नहीं हो रही है, और उसका आपको क्या ही फल मिलेगा जहाँ पर
1: इतनी
3: सिर्फ एक मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है।
1: बिल्कुल, तो एक बार हेमंत जी आपके पास आती हूं। आपने कहा कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है, दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक तो डिजिटली हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि क्या वाकई जहां पर वो बुकिंग करा रहे हैं या फिर अगर वो ऑनलाइन भी कुछ करवा रहे हैं पूजा वो सही है नहीं। दूसरी बात, जब ऑनलाइन बुकिंग होती है सर, थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताते जाइए, उनको इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, वो लोग जो कि क्योंकि अभी तो यात्रा बहुत लंबी चलनी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, लाखों के करीब भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा उन्हें बताइए अगर वो वहां पर जाके पिंडदान करना चाहते हैं ब्रह्म कपाल में तो प्रक्रिया क्या है। हेमंत जी,
0: जी जो वहां पर हमारा ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहितों का एक समाज है, जो पूरे ब्रह्म कपाल पर वहां पर उनकी एक एसोसिएशन है, वहां पर हमारे सारे तीर्थ पुरोहित रहते हैं, और वो आज से नहीं, मैंने जैसे कहा कि पूरी सनातन धर्म की जब से उत्पत्ति हुई है और सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले हैं और पूरी देश दुनिया से जो लोग वहां पर पितृ तर्पण के लिए आते हैं, पितृ दोष के निवारण के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनका एक पूरा एसोसिएशन है, उन सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और सारी तकनीकी माध्यमों, चाहे आप डिजिटल माध्यम की बात करें या न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया की बात करें, हर माध्यम से हर किसी को हमारे जो जो हमारे धर्म ग्रंथ भी हैं, जो हमारे धर्माधिकारी भी हैं, जो हमारे इस कार्य को संचालित करते हैं, उन सबके द्वारा समय समय पर ये बताया जाता है और सबको ये बात पता होती है। तो वहां पर जो आते हैं तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी, मैंने जैसे कहा कि पूरी एसोसिएशन है, और वहां पर हमारा ब्रह्म कपाल के नाम से जो जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के वहां पर बहुत सारे हमारे तीर्थ
1: पुरोहित हैं। मैं जो हेमंत जी जानना चाह रही हूं, इसके लिए क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है, क्या लोग ऑनलाइन इसको?
0: नहीं, कोई ऑनलाइन, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के लिए कोई ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ देश दुनिया के लाखों दर्शकों को जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं, इन तीर्थ स्थलों की अपनी एक मान्यता है, यहाँ पर आने का ही एक अपना महत्व है। ये कठिन यात्राएं जो आने के बाद में इस स्थल पर जो व्यक्ति पहुंचते हैं तो उसके बाद उसकी यात्रा जो संपन्न होती है, जिस मकसद के लिए उस यात्रा को करते हैं, उसका ऑनलाइन और ये कोई AI के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ मंदिर समिति इस पर नहीं।
1: चलिए, ये चीजें आप क्लियर करते जा रहे हैं। एक बार राज मिश्रा जी, शास्त्र क्या कहते हैं स्पेशली, अगर अभी देखिए वाने जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको आइडियली तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, कोविड काल में चीजें ऑनलाइन हुई हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है जब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, तो क्या जब भी आपको समय मिले अब तब जा सकते हैं? शास्त्रों में क्या बताया गया है, क्या ऑनलाइन की हुई पूजा आपको उतना ही फल देती है या नहीं, या फिर ये हम कहें कि एक ठगी का जरिया बना हुआ, जैसे कि यहां पर विरोध भी हो रहा है?
2: बिल्कुल, मैं उस दोनों विषय पे आता हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा था कि कलिमल लग्न से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपन। आज की परिस्थिति इस प्रकार से हो गई है कि एक्चुअल में जो धर्म की वास्तविक परिभाषा थी, जो धर्म का वास्तविक जो स्वरूप था, उस स्वरूप को कहीं ना कहीं लोग भूल करके जल्दबाजी में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए या जो कुछ समाज में भ्रमित किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ऑनलाइन ठगी वाला विषय है। अभी शायद कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा नवजोत जी कि एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया था उत्तराखंड सरकार ने, और उसके अंदर इवन आप अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग, अन्य पंथ से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को अपने साधु बने हुए, संत बने हुए, हरिद्वार के अंदर पूजा कराते हुए, रुद्राक्ष बेचते हुए, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, वो लोग जाकर के मिले हैं। सबसे बड़ा विषय जो है वो ठगी का विषय है। अगर किसी तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आप मौजूद होते हैं तो आप आत्मिक रूप से वहां प्रेजेंट होते हैं। अगर आप जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो आपकी आत्मा जुड़ी होती है, और शास्त्र कहता है कि शरीर से पूजन कर में आपका लाभप्रद होता है, वो आत्मा आपकी जो है वो परमात्मा से जुड़ी है। अगर आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ी हुई है तो आपको उस पूजन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये कह देना कि क्या ऑनलाइन पूजा और फिजिकल पूजा दोनों एक जैसी है, मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन पूजा फिजिकल पूजा की जैसी नहीं हो सकती है। फिजिकल पूजा में हम वहां परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्मिक रूप से उसको महसूस करते हैं और उस जगह पर रह करके अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। जहां तक संभव हो वहां तक फिजिकल पूजन ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक भी एक विषय है कि यदि वो मंदिर का जो प्रांगण है, यदि मंदिर की कमेटी है, मंदिर की संस्था है, मंदिर के लोग हैं, यदि कोई इस प्रकार का पूजन इत्यादि करते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्र कहता है कि कहीं भी कोई आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, करने में दो राय नहीं है, करने में दोष नहीं है, लेकिन क्या वो मंदिर का जो एक्चुअल ऑथराइज जो लोग हैं, जो एक्चुअल करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, या बीच में कोई और काल नेमी है जो आपको न तो ब्रह्म कपाल से उसका कोई लेना देना है, ना उसका धर्म से कोई लेना देना है, वो सिर्फ आपके पैसे की ठगी कर रहा है। तो मेन विषय यहां पर जो है नवजोत जी, वो ठगी का है। शास्त्र सबसे बेहतर मानता है आपके फिजिकल पूजन को। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि आप चलने में असमर्थ हैं या कोई और विषय है, तो अगर वहां का कोई व्यक्ति है जो एक्चुअल उस मंदिर को, ऐसे मुझे लगता है कि ये जिनसे हम अभी चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो ये मंदिर कमेटी को निकालना चाहिए इस प्रकार का विरोध के बजाय।
1: हेमंत द्विवेदी जी चेयरमैन हैं बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी के, उनसे आगे क्योंकि एक्शन क्या हुआ है जानूंगी। लेकिन राज मिश्रा जी, एक बात और बताइए मुझे बिल्कुल क्लियरली। देखिए, बहुत सारे ऐसे पंडित एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपको फलाकाल सर्प दोष है या फिर आपको इस तरह की पूजा करानी चाहिए, हम पूजा कर देंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भी हम, यहाँ सिर्फ बद्रीनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो उनके कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण हुआ तो फिर उसके बाद मामला उठा क्योंकि उन्होंने काली पट्टी बांधी, लेकिन ऐसे बहुत सी ऐसी हमारे तीर्थ स्थल हैं जहां पर इस तरह की पूजा होती है, ऑनलाइन पूजा होती है, ये कह के कि हम आपके फला दोष की पूजा कर देंगे, आपको यहां पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे भी अवेलेबल रहेंगे तो भी चलेगा, एआई के जरिए पूजा हो रही है, वीडियो कॉल के जरिए पूजा हो रही है, ये कितना सही है सर?
2: शास्त्र ने एक बात कहा है नवजोत जी, उसमें एआई और वीडियो कॉल का मुझे लगता है रोल नहीं है, लेकिन अगर हम गरुड़ पुराण इत्यादि को पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीज का जरूर वर्णन है, जिसे मान लिया जाए 1% एक उस विषय पर चर्चा आती है जब गरुड़ पुराण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि आखिर किसी का अगर पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करे, या उसके परिवार में कोई नहीं है तो आखिर उसका श्राद्ध कौन करे। तो ये सब वर्णन आता है कि मित्र श्राद्ध कर सकता है, पुरोहित श्राद्ध कर सकता है, जो उस व्यक्ति का मित्र इत्यादि है वो उसका श्राद्ध कर सकता है, वो उसका तर्पण कर सकता है, कर सकती है, वो उसका पिंडदान कर सकता है, कर सकती है, किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्री पिंडदान कर सकती है। इस प्रकार के कुछ वर्णन आते हैं जहां पर ये मिलता है कि किसी के बिहाफ पर कोई कर सकता है, लेकिन यदि वो उसका गुरु है या उसका मित्र है या उसका रिलेटिव है या कोई, अगर वो करने के योग्य है तब। तो इस प्रकार की परिस्थिति में गरुड़ पुराण इत्यादि के अंतर्गत चर्चा आई है कि उसको किया जा सकता है, लेकिन यहां पर तो वो वाला विषय है ना कि जब कोई वहां पर होगा, ब्रह्म कपाल में होगा, तब तो वो आपके लिए करेगा। जो उस जगह का पुरोहित है वो तो आपके लिए कर सकता है। अगर पुरोहित आपका लिए संकल्प लेकर के करता है कि ये मेरा यजमान है, इस यजमान के कल्याण हेतु मैं इस पूजन को करने जा रहा हूं, तब तो वो पॉसिबल है ना। यहां तो विषय ही अलग है। यहां लगता है मुझे कि ऑनलाइन पूजा का विषय नहीं है बल्कि सीधे सीधे फ्रॉड का विषय है, सीधे सीधे ठगी का विषय है कि जहां पर ना उस स्थान से वो जुड़े हैं, ना कोई लेना देना है, सिर्फ वो बीच में पैसा कमाने का एक रास्ता, और ये शायद सभी तीर्थों में हो रहा है।
1: वही सवाल कर रही थी ना राज जी, क्योंकि लोग डर जाते हैं, आप बता देते कि फला पूजा, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो इंतजार, वो लोग कहते कि ठीक है कब हमें वक्त मिलेगा ये पूजा कराने का, इससे अच्छा ये है कि हम ऑनलाइन ही करा लेते। वाणी जी, इस पर आप क्या कहेंगे?
3: जी नवजोत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये फियर मॉन्गरिंग जो है, ये जो डर से जो है पैसे निकलवाना, और इसमें अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर जो है बद्रीनाथ धाम में 550 फेक वेबसाइट्स जो है वो बनी है, जो किस चीज का दावा करती हैं, ऑन द स्पॉट एडवांस बुकिंग का और होटल बुकिंग का और हेलीकॉप्टर टिकट्स का जो है फेक दावा, ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी का फेक दावा। हम लोगों को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि जहां पर भी हम बुकिंग्स कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होनी चाहिए, वो URL फेक नहीं होने चाहिए। वो जो है कस्टमर्स को प्रेशराइज करते हैं कि आप इमीडिएट पेमेंट करें और अपनी ही UPI ID के थ्रू करें। यहाँ पर जो है IDs भी बहुत ज्यादा हैक हो रही हैं, तो एंड यूजर को भी ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करें और आप कोई भी चीज डर के उससे ना करें कि आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। मैं ऐसा आपके चैनल से GNT से बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना भी ब्रेन अप्लाई करें साथ में कि आप कहाँ पर क्या पेमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, वो किसके पास जा रही है। आप उसके वेबसाइट के हाइपरलिंक्स चेक करें, वो वेबसाइट चल भी रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है, क्या वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। और ये चीज जो है मैं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की जो अथॉरिटीज है मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी ऑथेंटिक और वेबसाइट्स है वो पब्लिकली जितना ज्यादा पब्लिसाइज हों कि आप लोग सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स को जो है यूज करें। और अगर किसी को कोई फ्रॉड वेबसाइट दिखती है तो आप साइबर क्राइम में जो है इस चीज को रिपोर्ट करो ताकि किसी और का भी जो है भला हो। पर रही बात डरने की, आप डर से जो है आप जो भी बुकिंग्स कर रहे हैं या डर से आप जो भी पूजा जो करते हैं या आप डर से कुछ भी ऐसा करते हैं तो अपने मन से सबसे पहले इस डर को निकालिए। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये बुरा होगा, ऐसा नहीं है। और जब भी आपको समय मिले, जो आपकी अवेलेबिलिटी हो, आप उस टाइम पर वहां पर खुद जाएं, जो आप वो एनर्जी लेके आएंगे, जो ऑरा लेके आएंगे, जो अपने पितरों का आशीर्वाद लेके आएंगे, और ऑथेंटिक लोगों से अगर वो आप पूजा कराते हैं।
1: चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अहम विषय है चंद्रांशु जी। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, तुरंत से आपके पास लौटूंगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।

0: तो डिजिटल पूजा को लेकर चर्चा हो रही है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं, चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी स्वागत है आपका। देखिए चर्चा जो शुरू हुई थी वो हुई है बद्रीनाथ की, जो पुरोहित है उन्होंने काली पट्टी बांध के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जिस तरीके से पिंडदान हो रहा है, पूजा हो रही है, वो बिल्कुल गलत है। एक तरीके से उनके कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण की बात सामने आ रही है। अब सर सवाल यहां पर ये है कि जो आजकल पूजा होती है या विशेष पूजा होती है जो ऑनलाइन कर दी जाती है, ये कितना सही है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। हमारे यहाँ की मान्यता है कि भावो ही विद्यते देवा, भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव में बसते हैं और भाव को श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। भगवान मार्केटिंग के विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा के विषय हैं। और उनके द्वारा किया हुआ उनके प्रति जो कार्य है वो श्रद्धा युक्त होकर के व्यक्ति करता है, उसको स्वीकार करते हैं। जहां तक मार्केटिंग युग की बात है, AI के द्वारा आजकल जो भी लोग कर रहे हैं, हम जहां तक जानते हैं, जितना जानते हैं, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग करते तो हैं पर वास्तविक में क्या कर रहे हैं वो एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल जो भी आपत्ति वो एक उनके बिजनेस पर, उनके काम पर, ये बातें नहीं है। ये बात तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग पूजा पाठ करवाने लोगों का कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। और जो लोग यजमान भी पूजा पाठ करवाने के बदले में 500 मजदूरों को देते हैं, तो 500 पंडित को भी देना चाहिए, 1000 पंडित को भी देना चाहिए। इस भावना के साथ जो देते हैं, न उस पंडित का कल्याण है न उस यजमान का ही कल्याण है। पूजा में दी हुई सामग्री अगर ऐसा इसी भावना के साथ किसी ने दिया हुआ है, ऐसी सोच के साथ देता है कि पूजा में लगना तो कुछ भी चलेगा, तो जैसा पूजा वैसे देवता आशीर्वाद भी देते हैं, वैसे वरदान भी देते हैं, तो बिल्कुल जिन्होंने विरोध किया, हाँ विरोध उनका बिल्कुल ठीक है कि आजकल डिजिटल मार्केट के नाम से होता कुछ नहीं है, एक दुकान केवल चल रही है, ये रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें आडंबर पाखंडबाज जैसी बातें हैं, इसमें वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूरी बनी हुई है। तो इन चीजों से विरोध का होना चाहिए। और जो लोग जिनको श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, केवल दुकान चला रहे हैं, हमारे धर्म के साथ में, आस्था के साथ में, लोगों की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए दुकानदारी, ये बिल्कुल सत्य है, उनका हम समर्थन करते हैं इस बात।
0: बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि पुरोहितों ने काली पट्टी बांधी तो ये मामला आया, वो पुलिस के पास गए हैं, प्रशासन के पास, सरकार के पास भी ये मामला पहुंचा है। अगर कहीं ऑनलाइन ठगी का मामला है तो उसको लेकर अब जांच होगी। जैसा कि अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे हेमंत द्विवेदी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में है। लेकिन सर बड़ी बात यह है, यहाँ केवल हम बद्रीनाथ की बात नहीं करें, यही चर्चा वन्य जी और राज मिश्रा जी से हो रही थी। सवाल आपसे है चंद्रांशु जी महाराज, केवल एक मंदिर की बात नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर किसी पंडित से पूछते हैं या एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं तो वो कुछ ऐसे दोष आपकी कुंडली में बता देते हैं कि आपको तुरंत से पूजा करानी है और इसी दिन पूजा करानी है, और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो हम कर देंगे पूजा, और वो AI के माध्यम से हो रही है। किसी ने अगर काल सर्पदोष की पूजा करानी, वो दक्षिण में बैठा हुआ है तो वहां पर उज्जैन में जाके अब उसकी पूजा हो रही है, या फिर महाकाल में वहां पर पूजा कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सी पूजा है जो किसी विशेष स्थान पर होती है लेकिन वहां पर अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो पंडित कहते हैं कि हम आपकी पूजा कर देंगे। सर ये कितना से इसका पुण्य कितना मिलता है लोगों को?
1: अभी दूसरे जगह की बात क्यों, हम श्री धाम अयोध्या में हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पूर्णतः भगवान के गर्भगृह में या ऊपर की जो दरबार है, कहीं पर भी मोबाइल अलाउ ही नहीं है। तो फिर भगवान का जो भोग लगता है, जो कुछ भी होता, उसको कहीं प्रसारण होने का तो कोई मतलब भी नहीं है। पर थोड़े दिन पहले एक फ्रॉड तमाम लोग पकड़े गए थे, जो दूर दूर तक भक्तों को लेना लेना देना नहीं, बेचारे कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, तमाम जगह पर लोग बैठे हैं, और वो सभी जगह लोगों पर बैठ करके यहाँ अयोध्या से राम मंदिर का प्रसाद भोग लगवा करके भेजवा रहे हैं। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये केवल अयोध्या काशी मथुरा की ही बात नहीं है, केवल बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी अन्य जगह की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में एक रैकेट चल रहा है, सिंडिकेट बना करके लोगों ने रखा हुआ, और यही काम कर रहे हैं। प्रशासन को भी इस बात को ध्यान लेना चाहिए, और जो संबंधित ट्रस्ट हैं मंदिरों के, उनको भी इस बात को ध्यान देना चाहिए, और वहां के प्रशासन को ध्यान करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो बेच ही बेच धर्म दुई, जो धर्म को बेच रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्यवाही करके, किसी की आस्था के साथ में, किसी की भावना के साथ में खिलवाड़ ना हो, उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए एक साथ में, और सशक्त नागरिकों को जो भक्त लोग हैं उनसे भी अपेक्षा है कि चाहे कल्प सर्प दोष हो और चाहे अन्य पूजा हो, राज जी बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम हमारे अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो लगातार धार्मिक अनुष्ठान वैदिक परंपरा के अनुसार चाहे कल्प दर्श हो चाहे मंगली कुंडली हो चाहे जो कुछ भी उसको करते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान आजकल ये हुआ है कि आजकल ज्योतिष के नाम पर लोगों ने केवल कुंडली को ही जान लिया है, और आजकल कुंडली भी एक व्यापार का माध्यम बनती जा रही है, लोगों का कार्डो का एक बहुत बड़ा जकीरा इकट्ठा होता जा रहा, तो जो वास्तविक लोग हैं उन तक तो लोग पहुंचते नहीं, और ये नकली दुकानदारी वाले लोग समय के अभाव में उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। मेरी ऐसे भक्तों से भी, आपके दर्शक जितने भी हैं उन सब के माध्यम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को मेरी शेयर करें, और इन आडंबरवाद पाखंडवाद के चक्कर में लोग न पड़े, अपने आस्था के अनुसार उचित आचार्य के पास में जाकर के उनसे सलाह लेकर के और उचित पूजा ही करवाएं, ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जिस तरह से दुकानदारी के लिए लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के नाम पर डरा करके, धमका करके, देवी देवताओं के नाम पर, ग्रहों के नाम पर डरा धमका करके जिस तरह लूट कर रहे हैं, जिस तरह आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अब रुकना चाहिए। जब हम लोग मंगल ग्रह तक हैं, इतनी जागृति हम सब में आनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चंद्रांशु जी महाराज, क्योंकि धर्म को आपको प्रैक्टिकली भी समझने की जरूरत है, केवल कर्म कांड और डिजिटली पूजा करवा देना नहीं, आप कितना खुद भगवान के साथ जुड़े, भावनाएं आपकी कैसी, ये बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, एक विरोध ये भी हो रहा है क्योंकि वहां पर बद्रीनाथ में ही खासतौर पर अलग तरह के कुंड है, जरा उसका मत भी हमें बताते चलिए। और ये भी कहा जा रहा है लोगों को कि हम फला कुंड में आपकी पूजा करवा देंगे, आप आइए, केवल वहां पर पिंडदान तक ये बात सीमित नहीं है, वहां पर हर जगह पर अलग अलग पूजा होती है, जो एक तो उसका मत बताते चलिए, और लोगों को कहा जा रहा है कि आपको कौन सी पूजा करानी है हमें बताइए।
2: देखिये ये एक गलत विषय है। श्रेयांतरितमानस में भी गोस्वामी जी ने एक नवजोत जी एक शब्द कहा था कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ सवेना। कुछ लोगों ने धर्म को सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, और ये गलत है। हर जगह पर करप्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब धर्म को करप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जो लोग इस प्रकार की चर्चा करें, जैसे है अलग अलग कुंड, तप्त कुंड की बात की जाती है बद्रिका आश्रम के अंतर्गत, क्यों ये कुंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अग्निदेव ने यहां पर बैठ करके स्वयं तप किया था, स्वयं यहां बैठकर प्रार्थना की थी। जब भगवान विष्णु वहां पर आराधना के लिए जाते हैं, वहां पर प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अग्निदेव ने वहां पर स्वयं प्रकट होकर के उस जल को गर्म किया, ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है। इस कारण से वहां की एक डिफरेंट एनर्जी है, एक वहां की पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब उस स्थान पर ही आप पहुंचेंगे तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, उस एनर्जी को स्वीकार कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना, ठीक है, माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं, मैं दोबारा इस विषय को आता हूं, उस प्रार्थना का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर पड़ सकता है, लेकिन कोई अनेक अनियंत्र व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो पूजन जानता भी है या नहीं जानता है, जानती भी है या नहीं जानती, उसका धर्म से कोई लेना देना है भी या नहीं है, फिर वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो भद्रिका आश्रम में बैठ करके आपका पूजन कर दूंगा, जो कि वहां पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे हम चंद्रांशु जी बता रहे थे कि अयोध्या में पॉसिबल ही नहीं कि गर्भगृह में आप जाकर के कुछ कर पाए, और ये कहा जा रहा है कि जब हम आपका भोग लगवा देंगे, आपका पूजन करवा देंगे। उसके साथ साथ तप्तकुंड, क्योंकि वहां पर अग्निदेव की अपनी महत्वता है भाई, अग्निदेव ने वहां पर तप किया है, तो अगर वहां पर आप पूजन इत्यादि करते हैं तो उसका एक बहुत सात्विक फल आपको प्राप्त होता है, बहुत पॉजिटिव फल आपको प्राप्त होता है। आपके एक्चुअल में जीवन में जो उत्पन्न दोष हैं वो दूर होते हैं, लेकिन वो तभी दूर होना संभव है जब वहां पर फिजिकली आप महसूस, फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं, जब वहां पर आप होकर के पूजन करते हैं, तो वो जो स्थान है उसकी जो ऊर्जा है वो आपके आत्मा को पवित्र करती है, आपके आत्मा को स्वच्छ करती है, और उसके बाद आपको उस पूजन का वास्तविकता में फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से बद्रिकाश्रम में कई सारे ऐसे स्थान है, क्योंकि बद्रीनाथ जो धाम है वो साधारण स्थान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ धाम वो स्थान है जहां पर वेदव्यास जी भाई स्वयं बैठ करके वहां पर उन्होंने पुराणों की संरचना की है, भागवत इत्यादि की स्वयं संरचना, जहां पर नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी को भागवत का जो ज्ञान है वो प्रदान किया है, भागवत के जो श्लोक है वो प्रदान किए हैं। तो बद्रिका आश्रम कोई साधारण स्थान थोड़ी ना है कि आप वहां दूर बैठे हुए हैं और बद्रिका आश्रम का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है। अगर बद्रिका आश्रम का आपको फल प्राप्त करना है, बद्रीनाथ धाम का अगर आपको फल प्राप्त करना है, तो एक्चुअल में वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, वहां जाकर के महसूस करना पड़ेगा चीजों को, तो ही आपको फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं बार बार एक शब्द को कहता हूं नवजोत जी, इसमें दोषी सिर्फ वो नहीं है जो ठगी कर रहे हैं,
0: हाँ।
2: वो दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं अवेयर हो रहे हैं भाई इस बात को लेकर के, जो ट्रस्ट है, जो तीर्थ स्थल है, वो क्यों नहीं इसको लेकर के अवेयरनेस फैला रहे हैं? उनको कुछ ऐसी चीजें आज ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई यूएस में बैठा है, सनातन के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही है, उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, उसके लिए पॉसिबल नहीं कि यात्रा के दौरान यहां तक पहुंच पाए, लेकिन उसकी इच्छा है कि मेरी तरफ से भगवान को कुछ भोग लगे। तो इसलिए जो वहां ट्रस्ट है उसको कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और उसका प्रसारण बाकायदा ऑनलाइन होना चाहिए। एटलीस्ट लोग भोग लगाना चाहते हैं।
0: इसी पर एक सेकंड राजी, इसी पर एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड इसमें होने लग गए, और आप खुद कह रहे हैं कि एक तरीके से पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया जो पूरी तरह से फेक है, जिनको शायद नॉलेज भी नहीं होगी धर्म की। और राज्य की बात भी सही है, जो दूर कहीं विदेश में बैठा है वो अगर नहीं भी आ सकता है तो भी पहली बात उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, और दूसरी बात ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस एंड से होनी चाहिए।
1: बिल्कुल आप एक बात सही कह रही हैं, परंतु रियलिटी अगर देखिए, कभी समाज को गुमराह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जब गुमराह नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज के समय में जब इतना व्यस्त समय है तो किसने किसके पास इतना टाइम है कि परोपकार परमार्थ के लिए सब काम करेगा। तो अगर वास्तविक में जितने भी ट्रस्ट हैं उन ट्रस्टों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं भगवान के शुभ चाहे आरती, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे राम मंदिर हो, सभी के आरती दर्शन की सबको ऑनलाइन व्यवस्था कर ही देना चाहिए, जो जहां बैठा वहां से भगवान का दर्शन कर सके। और या कि पूजा भी चल रही है तो पूजा भी कैमरा के सामने हो, लगातार वो कैमरा के सामने हो, जब तक पूजा चले तब तक यजमान परिवार को भी जहां भी बैठे हैं उनके नाम का व्यक्तिगत संकल्प हो, और संकल्प करके जब से पूजा चालू हो तब से लगातार दिखता रहे। ये भी ना हो कि लगातार एक व्यक्ति का संकल्प हो गया, 10-7 में अनुष्ठान है, एक समय में आचार्य लोग अगर 7 ब्राह्मण है महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हैं सब अलग, तो 7 दिन तक केवल 7 आचार्य कर सकते हैं, बाकी तो नहीं करेंगे। तो 10 लोगों का एक साथ संकल्प ले लिया, कैमरे दिख रहा, ये आडंबर बात रुकना चाहिए। जो सत्य है उसका तो हम समर्थन करते ही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। भगवान का दर्शन करने का किसी माध्यम से जो नहीं पहुंच सकते हैं, पूजा पाठ का अन्य किसी का जो भी है, अगर वास्तविकता दिख के धरातल पर है तो स्वागत करने योग्य है, पर उसमें कहीं से भी फ्रॉड है, चीटिंग है, लूटपाट है, ऐसे काम का विरोध होना चाहिए। हर किसी को विरोध करना चाहिए, सजग होकर के, मुखर होकर के करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा धर्म, इससे हमारी संस्कृति, हमारी भावना सब कुछ नष्ट होती है, सब कुछ आहत होता है। ऐसे काम को रोकना चाहिए, जिससे हमारा धर्म पुष्ट हो, परिपक्व हो, ऐसा काम को करना चाहिए। लोगों को, समाज को धर्म के अनुसार आगे बढ़ना है तो आप पाखंडवाद से, आडंबरवाद से नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्य के राह पर चल करके, सत्य का मार्गदर्शन करके ही हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं समाज का, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
0: ठीक है, क्या आप वान्या जी केवल विरोध तक ही रहे, या इस पर किसी को स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को या गवर्नमेंट की तरफ से?
3: मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बैठनी चाहिए कि जो भी चीजें हैं, मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हूँ, कंसल्टेशंस ऑनलाइन हो सकती हैं, पूजाएं भी अगर ऑनलाइन हो रही हैं तो वो प्रॉपर ऑथेंटिक उसके स्टेप्स होने चाहिए, बिकॉज आज के डेट में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा वहां पर आएगा। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। तो जितने भी आपके ऑनलाइन दर्शन है वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक पोर्टल हो, वो जो वेबसाइट है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, उसके प्रॉपर बंदे हों, वो जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटली पूरे अक्रॉस द ग्लोब प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए कि इतने से इतने बजे में दर्शन होंगे, या फिर जो भी प्रोसेस आप पिंड दान करा रहे हैं या जो भी आप करा रहे हैं उसके स्टेप्स, उसके प्रॉपर वीडियो कॉल्स, और वो भी ऑथेंटिक पर्सोनल के थ्रू, अगर ऑथेंटिक स्पॉक्स के थ्रू, उन्हें मंदिर की पर्टिकुलर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, तो फिर भी टू एन एक्सटेंट इट इज ओके। बट फिर भी इसको मैं टू एन एक्सटेंट बोलूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन के कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत अगेंस्ट हूँ और साइबर अथॉरिटी को डेफिनेटली इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए।
0: वक्त अभी इतना ही, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल पूजा कितनी सही है, इसको लेकर हम बड़ी चर्चा कर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए हमारे साथ।

0: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज स्टूडेंट।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
9: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉपिक।
10: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
11: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, जो कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको भावुक भी कर देंगे।
12: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: ना एयर डिफेंस ना रडार, टूट जाएगी दुश्मन की दीवार, दुश्मनों का सर्वनाश करेगा सेना का अदृश्य अवतार, आ रहा वायुसेना का मिस्टर इंडिया। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

0: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
5: उत्तराखंड में आज से सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन। गुरुद्वारे में साल की पहली अरदास पढ़कर किया गया तीर्थयात्रा का विधिवत शुभारंभ। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ में 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल, अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम, एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म। कान के रेड कार्पेट में सितारों की आंखों का तारा बना डॉगी यूरी, चिली की फिल्म ला पेरा में निभाई है शानदार भूमिका, पाम डॉग अवार्ड से हुआ सम्मानित।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत ने उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे। वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो

0: डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
1: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
0: डायवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है, जो इनलेट ऑफ एयर है, वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है उसमें। होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर। और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
1: AMCA की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
0: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है, जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
1: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराए।

0: जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
1: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है, और एमका में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है, तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है, प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है, प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMC में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस NG को AMC में अटैच किया जा सकता है।
1: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वेराइटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनेमिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
1: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता है।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं। फिलहाल दुनिया के 3 देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये 3 देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास 2 तरह के 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35, जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है, तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
1: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टुडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं, ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन्स हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Your Saturday nights will never be the same.
4: The biggest hits back to back in the mix. Get ready for the biggest mix show on the planet.
5: The Tailgate Block Party.
3: The Tailgate Block Party.
4: 6 hours non-stop. Non-stop.
5: The best DJs from around the world.
3: The Tailgate Block Party.
4: Saturday night.
3: 8 p.m. Eastern.
5: Follow Tailgate Radio Official on Instagram to find out who is dropping the beats this week.
4: And search Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
7: Thank God I get to wake.
6: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है।
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic.
15: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा तकनीक और जियोपॉलिटिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में देखा गया है कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन के उभरा है, जो कि पहले रूस हुआ करता था। यानी कहा जा सकता है कि अब भारत के पास दो दो विश्वसनीय दोस्त हैं, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ फ्रांस है। फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये डील भारतीय वायुसेना की ताकत को 50% तक बढ़ा देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने राफेल फाइटर जेट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी का इंतजार है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है तो ये डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। प्रस्तावित राफेल डील की कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, यानी लगभग $26 अरब, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाता है। समझौते के तहत कुल 114 राफेल लड़ाकू विमानों का F4 वर्जन खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स, वहीं नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन का ऑर्डर भी दिया गया है। अब जब वायुसेना के लिए 114 राफेल का सौदा अंतिम रूप ले रहा है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे।
1: भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल विमानों के लिए एक संभावित कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, जिसके तहत शुरुआती दौर में 18 राफेल विमान बने बनाए रेडीमेड फ्रांस से इंग्लैंड में आएंगे और बाकी जो 96 राफेल विमान हैं वह भारत में निर्मित होंगे और फ्रांस इसके लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कलपुर्जे भारत में जो बनेंगे 60% बनेंगे, 40% कलपुर्जे फिर भी फ्रांस से आएंगे। यानी अगर ये राफेल विमान भारत में आते हैं, और जाहिर बात है वो अगले 30-40 साल तक उड़ेंगे, तो 40% कलपुर्जे जिनमें कि इंजन होगा, रडार होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के पंप होंगे, ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्रांस से ही आएंगे।
0: एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। खबर यह है कि राफेल फाइटर जेट का सौदा मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। भारत का कहना है कि फ्रांस तमाम 114 राफेल फाइटर जेट्स में गोला बारूद मिसाइलों को इंटीग्रेट करे और साथ ही साथ इसका पूरा डेटा भारत के साथ साझा करे, ताकि इसे रडार सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सके। विमानों के सोर्स कोड को लेकर बातचीत हो रही है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये सोर्स कोड क्या है। दरअसल सोर्स कोड एक तरह से फाइटर जेट का दिमाग होता है और उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकता है। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप विमान बनाने वाली कंपनी या फिर उस देश पर निर्भर रहते हैं। भविष्य में किसी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको उनकी अनुमति की जरूरत पड़ती है।
1: सोर्स कोड जो है कंप्यूटर की वह कोड प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है अगर जहाज के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे नेविगेशन सिस्टम या वेपन डिलीवरी कंप्यूटर, उनको अगर मॉडिफाई करना हो, उनको अगर अपग्रेड करना हो तो सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा तो फिर भविष्य में जब भी हम भारत में उसको अपग्रेड करना चाहेंगे, और समझिए मेड इन इंडिया मिसाइल या मेड इन इंडिया बॉम्ब्स रॉकेट फायर करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो वेपन सिस्टम का जो कंप्यूटर है उसको अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से किसी इंजीनियर को आना पड़ेगा जो आके हमारी सोर्स कोड को सेट करेगा, उसके बाद ही हम भारत के मिराज, भारत के रफाइल से भारत में निर्मित हथियारों को फायर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा दुनिया में प्राय प्राय सभी फाइटर विमान के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है। फ्रांस अगर हमें सोर्स कोड नहीं देता है तो ये कोई खास उत्पीड़न वाली या खास चिंता वाली बात नहीं है।
0: माना जा रहा है कि कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी, साथ ही ज्यादा तादाद में एक ही प्लेटफॉर्म होने से राफेल के रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी। भारत में बनने वाले विमानों में स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम फिट किए जाएंगे। इसमें विमान के लिए नेत्रा और फाल्कन AWACS लगेंगे। वहीं ग्राउंड बेस्ड रडार और ICCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहद सुरक्षित तरीके से रियल टाइम टैक्टिकल डेटा एक्सचेंज कर पाएगा। राफेल के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चर्चाएं इस बात को लेकर होने लगी जब हमारे पास फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 है, तो फिर हम 4.5th जेनरेशन के फाइटर जेट को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? इसका जवाब सीधा और साफ है और कहें कि रणनीतिक तौर पर ही इसका जवाब तलाशा गया, जिसके बाद राफेल को चुना गया, क्योंकि भारत का निशाना केवल इस्लामाबाद नहीं है बल्कि भारत का निशाना बीजिंग है। दशकों तक भारत की रक्षा खरीद का पैमाना ये होता था कि क्या ये पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है, लेकिन राफेल डील इस मानसिकता के अंत की घोषणा है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना अब चीन के J-10C और JF-17 पर निर्भर है, जिनसे निपटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती हिमालय के उस पार है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और उसका J-20 स्टेल्थ फाइटर। अरुणाचल और लद्दाख जैसे ऊंचाई और हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में युद्ध के नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर किसी भी विमान की कागजी स्पीड मैटर नहीं करती है, यहाँ पर कोल क्षमता और साथ ही साथ पेलोड क्षमता मापी जाती है और उस हिसाब से फिर विमानों का चयन होता है। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के तहत ढाला जा रहा है, जो लेह में जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
1: जब भारत ने राफेल को लेना शुरू किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट टेस्ट पायलट्स ने भारत में राफेल को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊपर उड़ाकर देखा कि क्या राफेल से जब हम एयर टू ग्राउंड लेजर वेपन या एयर टू ग्राउंड जीपीएस गाइडेड मिसाइल फायर करेंगे, क्या वो हाई अल्टीट्यूड में यानी 10,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर टारगेट है उस पर नेविगेट करके उस पर निशाना साध के उसको ध्वस्त कर सकते हैं। इन ट्रायल्स में राफेल बहुत ही शानदार तरीके से पास हुआ। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने राफेल खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली।
0: भारत के पास इस समय 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। भारत के पास रूस और अमेरिका से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने के विकल्प हैं। अब अगर भारत दोनों देशों में से किसी एक के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील करता है तो दोनों में से कौन भारत के लिए बेहतर साबित होगा, ये भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अमेरिकी F-35 जेट और रूस Su-57 लड़ाकू विमान की ताकत और खासियत के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आसमान का असली बाजीगर कौन है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का Su-57 लड़ाकू विमान दोनों ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक यानी 1970 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं Su-57 की अधिकतम स्पीड 2 मैक यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसके हथियार, युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही किसी भी हालात में बचने के लिए फुर्ती बहुत जरूरी होती है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन F-35 की तुलना में बड़ा है। F-35 फाइटर जेट में ऑल एस्पेक्ट सेल्ट की सुविधा है, जिसका मतलब ये है कि ग्राउंड बेस्ड रडार के जरिए इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इसके ठीक उलट Su-57 में मजबूत फ्रंट एस्पेक्ट स्टेल्थ है, सामने से उड़ते समय जैसा कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमानों को रोकते समय होता है, Su-57 बिना पहचाने दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास जाता है और उसे काफी नजदीक से निशाना बना सकता है। Su-57 की डिफेंसिव इंटरसेप्शन क्षमता F-35 की तुलना में इसके ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली रडार सेंसर सूट पर आधारित है।

0: तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के F-35 विमान को दरअसल हमला करने के लिए ही चुना गया, क्योंकि अमेरिका की सोच ऐसी है। अमेरिका का मानना है कि सेल्फ डिफेंस का सबसे अचूक तरीका है हमला करना, जबकि रूस के विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बचाव की मुद्रा में रहता है।
1: रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, यानी अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने की ताकत। रूस के Su-57 को अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों की रक्षा, कच्चे माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिजाइन किया है। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर से एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मनों के हमले को रोकना है।
0: दरअसल F-35 लड़ाकू विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के विवादित इलाके में घुस भी सकता है और वहां सही तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकता है। अगर सरल शब्दों में हम F-35 की काबिलियत की बात करें तो इसे एक्चुअली रूस के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि उसके मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से वो बच के बाहर निकल आए।
1: F-35 विमान अपनी छुपने की क्षमता, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने की ताकत और दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि भारत के लिए रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में कौन सा बेहतर है। Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा भारत के हिसाब से इस बात का आकलन करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है।

अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दोनों के बीच में तुलना कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका का F-35 अगर देखा जाए तो रूस के Su-57 के मुकाबले पीछे है, क्योंकि Su-57 सबसे अपग्रेडेड और नया फाइटर जेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकी F-35 ने रण क्षेत्र में अपनी काबिलियत को परखा भी है और इसका लोहा भी मनवाया है। अगर आपको याद होगा तो हाल फिलहाल में ईरान पर हमला करने के लिए ही F-35 का इस्तेमाल किया गया था और रडार में आए बिना किस तरीके से उसने सटीक हमला किया था। वहीं अगर Su-57 की बात कर ले तो अभी तक केवल यूक्रेन युद्ध में ही इसका इस्तेमाल हुआ है, जिनके पास सही तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के मुकाबले कम से कम F-35 21 साबित हो रहा है। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 की गिनती दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में होती है। ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बावजूद इसके भारत ने अमेरिका के इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी कई वजह हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के बारे में कहा ये जाता है कि सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है। F-35 का डेटा लिंक अमेरिका के सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कमांड और संवेदनशील सामरिक डेटा को अमेरिकी निगरानी में नहीं रख सकता। भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध जैसे हालात में उसका किल स्विच किसी और के हाथ में हो।

0: अगर हम F-35 लेते हैं तो एक तो अमेरिका से उसके हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसका स्टार्ट ऑन स्विच रिमोट कंट्रोल्ड है। इसी तरह से कहा जाता है कि F-35 का जो सेंट्रल सर्वर है वो हमेशा अमेरिका में उनका जो मास्टर कंप्यूटर सेंटर है उससे जुड़ा रहता है। ऐसी हालत में अमेरिका को हमेशा पता रहेगा कि भारत ने F-35 को कहां पर डिप्लॉय किया है, पूर्वी सीमा में, पश्चिमी सीमा में, या हो सकता है दुनिया में और कहीं पर। जाहिर बात है भारत नहीं चाहेगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के विमान दुनिया में कहीं पर भी डिप्लॉयड हों तो अमेरिका को उसकी मिनट टू मिनट सूचना मिलती रहे।
1: अतीत की बात करें तो अमेरिका ने F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोककर पाकिस्तान को खूब परेशान किया था। इसके उलट फ्रांस का रिकॉर्ड बेदाग है। वो भारत के किसी भी युद्ध, चाहे वो करगिल हो या फिर बालाकोट के बाद के हालात, उस वक्त में हथियार सप्लाई नहीं रोकी। अब बात रूस के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की कर लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को रूस की ओर से ऑफर किया जा चुका है, वो भी भारत की शर्तों के साथ। अब भारत फिफ्थ जनरेशन Su-57 की बजाय 4.5th जनरेशन राफेल को क्यों तरजीह दे रहा है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन Su-57 को लेकर भारत फूक फूक कर कदम उठा रहा है और इसके पीछे वजह वाजिब भी है। दरअसल रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटी हुई है और भारत इस समय ये खामियाजा नहीं उठाएगा। किसी ऐसे देश से लड़ाकू विमान लेना जिसकी सप्लाई चेन टूटी हो, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत भी इसको लेकर फूक फूक कर कदम रख रहा है। रूस के Su-57 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी पूरी तरह से परखा हुआ फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं बना है। रूस खुद इसे सीमित संख्या में ही अपनी वायुसेना में शामिल कर पाया है और बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। इसके इंजन, स्टेल्थ क्षमता और मेंटेनेंस को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की रडार से बचने की क्षमता अमेरिका या चीन के फाइटर जेट्स के मुकाबले कमजोर है।
0: अगर हम रूस से सुखोई 57 खरीदते हैं तो रूस ने यह कहा है कि सोर्स कोड भी दे देगा। अमेरिका F-35 का सोर्स कोड हमें कभी नहीं देगा। इस तरह से रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत में सुखोई 57 बनता है तो रूस जो है भविष्य में उसको रशियन GPS यानी कॉस्मोस से जोड़ने का प्रावधान रखेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युद्ध के दौरान अमेरिकन F-35 अगर वो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं तो हमें अमेरिकन GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना पड़े। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जाएं और पीछे से अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, उनका GPS या तो बंद कर दे भारत के लिए या भारत के लिए थोड़ा सा डिले कर दे, ढीला कर दे।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की नीति साफ है, ताकत ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी है। और यही वजह है कि भारत देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बारीक से बारीक पहलू का विश्लेषण कर रहा है। हवाई ताकत से किसी भी तरह का समझौता ना हो, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले एक दशक के भीतर अपनी ताकत को दोगुना करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है। फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ ही भारत ने अगले 10 साल में 430 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी AMCA की तैयारी एयरफोर्स को वो ताकत देगी जो एक साथ दो मोर्चों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, जो कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको भावुक भी कर देंगे।
6: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवेक से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है माने उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें करीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
8: Gone! Home run!
7: NHL.
8: It scores!
7: College basketball.
9: He shoots it immediately.
10: He makes it in!
7: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
11: One lap to go.
7: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

0: Hey, how are you?
1: Oh, fine.
0: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
2: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: Tune in is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
4: I have no idea how this election is going to play out,
3: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen. The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए कामना। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट। साधुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान। शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल। पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले। बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल। अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम, एक दर्जन जमन शफट करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म।
11: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good topic.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melody.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability

0: constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
1: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है, एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,

0: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि माँ ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी माँ और उनके साहस की ऋणी हूँ। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
1: काबिले गौर है कि मिलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मिलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। माँ अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और ढाई साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
0: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक दिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
1: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गर्बाटेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें। लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
0: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
1: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
0: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
1: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। इनमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, जो कुछ आपको गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको भावुक भी कर देंगे।
2: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
5: सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: CBSE ने उत्तर पुस्तकों की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई। 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दोबारा जांच और सत्यापन के लिए CBSE ने दिया अतिरिक्त समय। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे साथ मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शबद कीर्तन और गुरवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का भी किया जा रहा है इंतजाम। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल, अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम, एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी ये फिल्म।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
8: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के खुले कपाट, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। फूलों से किया गया गुरुद्वारे का श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। धूमधाम से गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया हेमकुंड दरबार, शब्द कीर्तन के बाद पड़ी पहली अरदास। कपाट खुलने के दौरान भारतीय सेना और पंजाब बैंड की धुन पर गूंजा पूरा हेमकुंड साहिब, पहले दिन ही 5,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा करके श्रद्धालु पहुंच रहे हेमकुंड साहिब दरबार, विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया दिव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। उज्जैन पहुंचे कोरियोग्राफर एमओ डिसूजा, अभिनेत्री अंकिता लोखांडे और उनके पति विक्की जैन ने महाकाल की रात्रि शयन आरती में की शिरकत, विधि विधान से की पूजा अर्चना। शिरडी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साईं दरबार में किए दर्शन। साईं दरबार में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, विधि विधान से की आराधना। जम्मू कश्मीर के शोपिया में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसमें की शिरकत। शोपिया में लोगों ने गुलाब का फूल देकर किया उपराज्यपाल का स्वागत, पदयात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जबलपुर में किसान संकल्प परिहार का कमाल, जापान में उगने वाला दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम जबलपुर में हो रहा तैयार। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी में पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा, ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, परिवार भी रहा मौजूद। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार में पहुंचे यूपी के मंत्री दया शंकर सिंह, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा, भगवान की उतारी गई आरती। रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उन्हें लेटर, पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ इसका आयोजन। महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एयरपोर्ट पर धूमधाम से दी गई विदाई। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल, मुंबई के शिरडी जाने के लिए ट्रेन का किया इस्तेमाल। राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा देश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 21वें राज्यपाल गोल्फ कप टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ, कई खिलाड़ी ले रहे इसमें हिस्सा। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का किया उद्घाटन। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट, काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच, 3D इमेज की गई जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, पीएम मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज, सिर्फ 22 दिनों में यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार। जम्मू श्रीनगर के बीच 2 मई से शुरू हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेस, घाटी के लोगों को मिल रही है बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भीषण गर्मी से राहत का इंतजाम, चौराहों पर लगे ग्रीन नेट और मिस्ट स्प्रे। यूपी के औरैया में गर्मी से पक्षियों को बचाने की सराहनीय पहल, पेड़ों पर दाना और पानी वाले विशेष घोंसले लगा रहे लोग। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश। दिल्ली में हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में छाए बादल, मौसम हुआ खुशनुमा। दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी, आंधी तूफान के भी आसार। दिल्ली में कल से लू चलने की चेतावनी, गर्मी के चलते बिजली की भी बड़ी मांग। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर जमी बर्फ। गुरेश के राजधान दर्रे पर भी हुई बर्फबारी, 6 इंच से अधिक जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, यातायात हुआ प्रभावित। कश्मीर के जोरजिला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी, IMD का अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के आसार का अलर्ट। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिखा रहा गर्मी, गर्म हवाओं के साथ लगातार बढ़ रहा है पारा। उत्तर भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए जम्मू कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंचे पर्यटक। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। रोहतक में भी बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। इंदौर में तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार, प्रशासन ने लोगों से की दोपहर में घरों में ही रहने की अपील। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों से की दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक समेत दक्षिण भारत के मौसम सिस्टम में मॉनसून के करीब आने पर रुक रुक कर बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बारिश। हिमाचल में भी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज के साथ बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद में गर्मी के चलते बड़े सब्जियों के दाम, बाजारों में पसरा सन्नाटा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 14 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। यूपी के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और झांसी समेत कई जिलों के लिए पड़ेगी भीषण गर्मी। पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के 50 शहरों में यूपी के 26 शहर सबसे ज्यादा गर्म, लखनऊ में भी गर्म शहरों में शामिल। चंडीगढ़ में भी गर्मी के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घटी पर्यटकों की संख्या। वलसाड़ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, तापमान में आई भारी गिरावट। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कई इलाकों में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घरों में ही रहने की अपील। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते घटी राम भक्तों की संख्या, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अयोध्या में बढ़ती गर्मी से बड़ी एनर्जी ड्रिंक, गन्ने के जूस की मांग। वाराणसी में भी लगातार बढ़ रहा है तापमान, घाटों पर पसरा सन्नाटा। वाराणसी में प्रशासन ने दोपहर में गंगा स्नान करने पर लगाई रोक, दोपहर में नाव परिचालन पर भी लगी रोक। मुरादाबाद में स्थानीय लोगों की सराहनीय पहल, चौक चौराहों पर बांट रहे शरबत और पानी। आईपीएल में आज लखनऊ पंजाब की होगी भिड़ंत, इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 7 मुकाबलों में हुई है कांटे की टक्कर, जिसमें पंजाब को 4 और एलएसजी को 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है लखनऊ की टीम, हालांकि अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ इस सत्र को खत्म करना चाहेगी एलएसजी। पंजाब को प्लेऑफ की रेस में अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस मैच में जीत जरूरी, बल्कि नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए एक बड़े अंतर से दर्ज करनी होगी जीत। पिछले कुछ मैचों से खराब गेंदबाजी से जूझ रही है पंजाब की टीम, इस बार अर्शदीप और चहल होंगे पर होगी सभी की निगाहें। यूक्रेन में वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, सैन्य ड्रोन ऑपरेटर्स ने लिया इसमें हिस्सा। वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता में यूक्रेन की 19 प्रमुख सैन्य यूनिट्स और ड्रोन निर्माता कंपनियों ने लिया हिस्सा। वीडियो गेम कंट्रोलर से ऑपरेट होता है ये ड्रोन। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चीन पूरी तरीके से तैयार, मिशन जुआक्वान सैटेलाइट सेंटर से होगा लॉन्च। बांग्लादेश में ईद से पहले दुर्लभ सफेद भैंसा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, सुनहरे बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिया गया ऐसे नाम। ढाका के एक फार्म में पाला गया दुर्लभ भैंसा, करीब 700 किलो के भैंसे के माथे पर लटकते सुनहरे बाल की वजह से लोगों ने इसे डोनाल्ड ट्रंप दिया नाम। कान के रेड कार्पेट पर बेटी आराध्या संग एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की एंट्री, 3.5 लाख की ड्रेस में लूटी लाइमलाइट। ऐश्वर्या और आराध्या के लुक ने खींचा सभी का ध्यान, ब्लश पिंक गाउन ड्रेस, ऐश्वर्या का ग्लैमरस लुक नजर आया। लाइट ऑन वुमेन्स वर्थ गाला के लिए फ्लोई गाउन पहना, डायमंड रेन झुमके और क्लासिक हील्स ने बढ़ाई शोभा। बेटी आराध्या लाल गाउन और मैचिंग केप पे बेहद खूबसूरत नजर आई, मां ऐश्वर्या के साथ ग्रैंड एंट्री के साथ कान ने किया अपना डेब्यू। ऐश्वर्या राय ने गुलाबी ग्लैम ड्रेस पहनकर सभी को चौंकाया, सोशल मीडिया पर फैंस ऐश्वर्या आराध्या के लुक की कर रहे हैं जमकर तारीफें। लंबे इंतजार के बाद ऐश्वर्या राय पहुंची कान फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट पर बिखेरा अपना ग्लैमर का जलवा। ड्रामेटिक इलेक्ट्रिक ब्लू मर्मेड गाउन में बला के खूबसूरत लग रही थी ऐश्वर्या राय, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका ये स्टनिंग लुक। पैप्स को स्माइल करते हुए हैंड वेव करती दिखी ऐश्वर्या राय, अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक करवाई। कान के रेड कार्पेट पर पैप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करती नजर आई ऐश्वर्या, मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी भी बनाकर किया सभी का अभिनंदन। खूबसूरत गाउन के साथ जमीन तक लहराते दुपट्टे नुमा स्ट्रोल ने लुक किया पूरा, दोनों हाथों में अंगूठी और गले में पहले हार ने उनकी खूबसूरती में लगाए चर्चा। है जवानी तो इश्क होना है में दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन, फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट 5 जून को रिलीज होगा।
9: मारता वारता है तुम्हें?
10: नो,
9: तुमसे प्यार नहीं करता।
10: बहुत ज्यादा प्यार करता है। He wants to make love to me all the time.
11: क्योंकि मुझे एक बच्चा चाहिए सर। I want to be a father.
9: ये तो हमने ना पहले कभी देखी।
8: माधुरी दीक्षित ने माँ बहन के ट्रेलर लॉन्च की शेयर की तस्वीरें, येलो प्रिंटेड साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत। फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। तुलू रस्मों से हुई एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की गोद भराए सुनहरी साड़ी के साथ भव्य 16 श्रृंगार किया, अगस्त में बनने जा रही है माँ। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के सुरों का चला जादू, भक्ति संगीत कॉन्सर्ट में शानदार गीतों से बांधा अपना समा। फीफा वर्ल्ड कप एंथम में दिखेंगी शकीरा, दाई दाई गाने से टूटेगा 16 साल पुराना रिकॉर्ड, गाने पर करेंगी लाइव परफॉर्मेंस। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के दौरान भारत पवेलियन में लॉन्च किया गया फिल्म बॉम्बे स्टोरीज का पहला पोस्टर, मशहूर लेखक शहादत हसन मंटो की कहानियों पर आधारित है ये फिल्म। रामचरण की फिल्म पैदी के नए गाने हेल्ला लल्लू का प्रोमो रिलीज, गाने में रामचरण और जानवी कपूर का जबरदस्त डांस। आज भोपाल में होगा फिल्म पैदी का सबसे बड़ा म्यूजिकल इवेंट, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर बूची बाबू सना, संगीतकार ए आर रहमान समेत फिल्म के पूरी स्टार कास्ट को भी शामिल। कार्तिक आर्यन की आने वाली फिल्म नागजुला में डबल रोल में नजर आएंगे एक्टर, खलनायक का निभाएंगे किरदार, 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। दशहरा पर बॉक्स ऑफिस पर हुंकार भरने को तैयार है राजकुमार, 16 अक्टूबर को फिल्म रफ्तार होगी रिलीज किया ऐलान। अब हॉलीवुड में दिखेगा वरुण धवन का दमदार एक्शन, मशहूर निर्माता लॉरेंस कासनोफ की फिल्म में आएंगे नजर। माधुरी दीक्षित तृप्ति डिमरी की फिल्म माँ बहन का ट्रेलर रिलीज, 4 जून को ओटीटी पर होगी रिलीज।
12: कब से अकेली हो तो ये सुषमा कहाँ से आई?
13: दीदी हमारा फोन चेक कर लो, अगर बाप पर विश्वास नहीं है।
12: विश्वास का बात तो तुम रहने ही दो मम्मी, साक्षात सत्यवती माता भी बोलेंगी ना तब भी तुम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे।
8: फिल्म द नर्मदा स्टोरी का दमदार एंथम रिलीज, देश की महिला पुलिस अधिकारियों के शौर्य, खाकी वर्दी, देशभक्ति और नारी शक्ति को सलाम करता है। तेलुगु अभिनेता सत्यदेव कंचारना की नई फिल्म का नाम रिवील, समवर्ती का फर्स्ट लुक आया सामने। धुरंधर की शानदार कामयाबी के बाद फैंस को अब आर माधवन की मोस्ट अवेटेड बायोपिक का ड्रामा DGN का इंतजार, महान आविष्कारक और उद्योगपति GD नायडू के जीवन पर आधारित है ये फिल्म, 17 जुलाई को होगी रिलीज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: तो चलिए अब बात अक्षय कुमार की दरिया दिली की कर लेते हैं। एक्टर अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग के अलावा समाज सेवा के मामलों को लेकर भी अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाके के बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय की एक खास पहल ने उनके स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
17: आम लोगों के साथ नाचते गाते मस्ती करते बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार की तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी हुई एक शानदार कहानी है। ये तस्वीरें 2021 की हैं, जब अक्षय कुमार बीएसएफ के जवानों के न्योते पर जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में स्थित तुलैल इलाके में आए थे। अक्षय कुमार का ये सफर इस इलाके के लोगों के लिए सिर्फ इस मायने में ही यादगार नहीं है कि बॉलीवुड के इतने बड़े सितारे से उन्हें मिलने जुलने का मौका मिला, बल्कि अक्षय ने अपनी कश्मीर यात्रा के जरिए इस इलाके में बदलाव की अनूठी इबारत भी लिख दी।
18: 5 साल पहले 2021 में जब पूरा दुनिया कोविड की महामारी झेल रहा था, तब देश के बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार सीमावर्ती गांव तुलैल पहुंचे। तुलैल कश्मीर में सबसे दूर दराज इलाका है जो बांडीपोरा जिले में आता है, नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है। लेकिन तभी तुलैल में जाकर अक्षय कुमार ने वहां पर लोगों से मिलकर, खासतौर से बच्चों से मिलकर, उन्हें आश्वासन दिया था कि वो यहाँ पर एक ऐसा स्कूल बनवाएंगे जो किसी भी स्कूल की हर तरह की सुविधा से बेहतर हो।
17: तुलैल के नीरू गांव में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत के सामने रखा ये बैनर अक्षय कुमार के उसी वादे की दास्तां बयां कर रहा है, जो उन्होंने 2021 में यहाँ के बच्चों और आम लोगों से किया था। अक्षय कुमार ने स्कूल की नई इमारत बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे अब यहाँ पर न केवल स्कूल की शानदार इमारत खड़ी है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।
19: पहले तो हमारे पास स्कूल नहीं था, फिर अक्षय कुमार साहब आए जिन्होंने हमें स्कूल दिया और हम स्कूल से अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है और 2 रूम है जिस पर बच्चे पढ़ सकते हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते हैं।
20: बहुत अच्छी टीचर्स है जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। पहले तो हमें एक्टिविटीज करने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, बट अब हमारे पास लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें एक्टिविटीज कराई जाती है। हमारे टीचर्स हमें अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और अब हमें पढ़ाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही।
17: अक्षय कुमार की ओर से की गई मदद की पहल ने स्कूल की तस्वीर बदल दी है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए साफ सुथरे बेहतरीन माहौल और इंतजामों के साथ यहां पर मिड डे मील की भी सुविधा मिलती है। लिहाजा सभी के चेहरों पर हंसी खुशी और सुकून साफ साफ देखा जा सकता है। तुलैल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: इस वीडियो को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मामला एक डोसा दुकानदार और उनके सबसे अनोखे कस्टमर से जुड़ा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यस्त सड़क के किनारे एक डोसे की दुकान है, जहां तवे से ठीक पास एक सांड बड़े ही धैर्य के साथ खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लगता है माने उसे दुकान का पूरा मेन्यू जबानी याद है और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। आमतौर पर दुकानदार जानवरों को भगा देते हैं, लेकिन इस डोसे वाले ने तो जो किया उसने सभी का दिल जीत लिया है। आप देखेंगे कि दुकानदार ने बड़े ही प्यार से तवे पर मक्खन मारकर एक बढ़िया कुरकुरा डोसा तैयार किया और सीधे अपने इस चार पैरों वाले स्पेशल गेस्ट को परोस दिया। सांड ने भी बड़े चाव से डोसा खाया और अपनी पूंछ हिलाकर वेंडर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर दो बहनों ने इजिप्ट लीबिया के बॉर्डर पर बने अपने छोटे से घर की एक झलक लोगों को दिखाई है। झोपड़ी जैसा ये घर देख लोगों को लगा कि बहनें गरीब हैं और मुश्किल में अपने दिन गुजार रही हैं। लेकिन जब घर को अंदर से देखा गया तो सब दंग रह गए। घर के अंदर आधुनिक और लग्जरी लाइफस्टाइल की झलक देखने को मिली। कमरे में सॉफ्ट लाइटिंग, कम्फर्टेबल सोफा, बड़े बड़े बेड, फुली इक्विप्ड किचन, वाईफाई, एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं और खूबसूरत डेकोरेशन सब कुछ यहां मौजूद थी। बहनों ने बताया कि उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से घर तैयार किया है, जिसमें मिट्टी और नमक का इस्तेमाल किया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
16: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
1: Gone! Home run!
14: NHL.
1: It scores!
14: College basketball.
21: He shoots it immediately.
1: He makes it in!
14: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
22: One lap to go.
14: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
23: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
5: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
24: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
25: प्रेजेंटेड बाय
4: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.
6: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन.
8: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई. 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन. दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय. देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र. कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित. शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना. देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद. उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट. श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान. शब्द कीर्तन और गुरबाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं. उत्तर प्रदेश के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल. पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले. बेजुबानों के लिए दाना पानी का भी किया जा रहा है इंतजाम. जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल. अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम. एक दर्जन जर्मन शफट करते हैं रखवाली.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.

0: सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। चर्चा जिसी को लेकर करेंगे, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे, और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सलमान खान ने कितने गुस्से में बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए थे, लेकिन उनको गुस्सा क्यों आया, आज बात उसी की करेंगे। और इसीलिए हमने अपने इस शो का नाम दिया है सितारों की प्राइवेसी में नो एंट्री। ये पूरा मामला दरअसल सलमान खान से जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक बहस छिड़ गई है। बहस ये कि सोशल मीडिया और तकनीक के दौर में कहीं सितारों के निजी स्पेस में दखल तो नहीं हो रहा है। असल में मुद्दा यह है कि दो दिन पहले सलमान खान एक अस्पताल पहुंचे थे और पीछे पीछे पैपराजी यानी तमाम फोटोग्राफर्स भी वहां पर पहुंच गए, चिल्लाते हुए फोटो लेने लगे, लेकिन सलमान इसी से खफा हो गए। फिर यह बहस छिड़ गई कि सितारों की निजता में दखल क्यों दिया जाए। पैपराजी को सलमान खान ने नसीहत क्या दी और बिग बी को भी अपने एक मामले में क्यों करनी पड़ी पोस्ट, क्योंकि उनके साथ भी ऐसे ही वाकया सामने आया। वैसे केवल बिग बी और सलमान खान नहीं, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनका जिक्र आगे हम करेंगे, जहां पर पैपराजी किसी की निजी जिंदगी में दखल देते हैं। कितना सही, आज इसी को लेकर बात करेंगे। तमाम सवालों पर, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। हमारे साथ होंगे फिल्म जगत की बड़ी हस्तियां और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो चलिए बात करते हैं फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और दूसरे वीवीआईपीज की प्रिवेसी की, क्योंकि लगातार निजता का हनन हो रहा है। अक्सर सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आलिया, विराट कोहली समेत कई दूसरे और बड़ी हस्तियों के पर्सनल स्पेस में बाहरी दखलअंदाजी देखी जाती है। फिलहाल तो ताजा मामला सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये था कि मंगलवार देर रात सलमान खान अस्पताल पहुंचे, वो एक करीबी को देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान पैपराजी यानी कि फोटोग्राफर्स भी अस्पताल पहुंच गए। और इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी लग रहा है कि पैपराजी ने गाड़ी में भी सलमान का पीछा किया था और फिर अस्पताल परिसर में तस्वीर लेने पर सलमान गुस्सा हो गए। हालांकि यहां पर खबर ये भी आ रही कि उन्होंने किसी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर सलमान को काफी गुस्सा आया। तो मंगलवार रात तस्वीर खींचने के लिए पैपराजी चिल्ला रहे थे और इसी बीच सलमान खान ने पैपराजी को नसीहत दे डाली। सलमान ने पैपराजी को चुप रहने के लिए कहा। फिर करीब 20 घंटे बाद सलमान खान बुधवार रात एक पार्टी में पहुंचे। हालांकि ये पार्टी रितेश की फिल्म सक्सेस पार्टी थी। इस दौरान पैपराजी ने अपनी हरकत के लिए सलमान खान से माफी भी मांग ली, लिहाजा सलमान खान ने भी उन्हें तुरंत माफ कर दिया है। लेकिन इस बीच वीवीआईपी की तस्वीरें लेने पर एक बहस जरूर छिड़ गई है। कभी सलमान खान होते हैं, कभी अमिताभ बच्चन होते हैं, कभी विराट कोहली की निजता में दखल की बात सामने आ जाती है, तो ऐसे तमाम सितारे हैं। सितारों की निजता का भी सम्मान होना चाहिए। मोबाइल उठाया, वीडियो बनाया वाले दौर में सभी को यह समझना होगा कि हर जगह पर वीडियो नहीं बनाए जा सकते हैं, हर जगह सितारों का पीछा नहीं हो सकता है। ये सबसे अहम मसला है कि सितारों की अपनी पारिवारिक जिंदगी भी होती है, ऐसे में खुद ही सभी को नैतिक तौर पर भी एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। तो निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक बुनियादी मानव अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जिंदगी, विचारों और डेटा को बराबरी बाहरी हस्तक्षेप या फिर दखल से बचाने की आजादी देता है। लेकिन अक्सर स्टार्स की प्राइवेसी पर वजह बेवजह दखल दिया जाता है। सबसे ताजा मामला सलमान खान से जुड़ा हुआ है। 19 तारीख का ये मामला है। सलमान खान किसी करीबी दोस्त को देखने के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पैपराजी ने सलमान खान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका उन्होंने पीछा किया। और जैसे ही सलमान खान अस्पताल पहुंचे या फिर उससे बाहर अस्पताल से बाहर निकले, तो कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने के लिए कहा और उनसे पूछा कि अगर आपके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। तो अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर से फूटा। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फ पोस्ट किए हैं, साथ ही पैपराजी को एक बार फिर से उन्होंने नसीहत दी है। सलमान खान ने पोस्ट में लिखा, जिस प्रेस के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, जिनसे बातचीत की है, उनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया है कि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान खान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई अपनी निजी जिंदगी या फिर मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा कि 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे। और उसके बाद उन्होंने हा हा हा लिखा है। बेशक सलमान खान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में भी लिखी होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान खान के शब्दों में तलखी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि सलमान खान ने बड़ा दिल दिखाते हुए पेपराजी को माफ कर दिया। दरअसल ये बुधवार शाम की, क्योंकि मंगलवार को ये वाकया हुआ था, बुधवार शाम सलमान खान रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की सक्सेस पार्टी में पहुंचे थे और सलमान खान ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर वो वेन्यू की तरफ एंट्री लेने लगे, वहां पर नजारा पूरी तरह से बदला हुआ था। मीडिया के कैमरों के फ्लैश चमक रहे थे और सभी पेपराजी एक दिन पहले की अपनी हरकत के लिए एक ही सुर में सलमान खान को सॉरी बोल रहे थे। इस दौरान सलमान ने कैमरों के आगे पोज दिया, साथ ही पेपराजी को नसीहत भी दे डाली कि उन्होंने कहा कि ये सही जगह है, यहाँ फोटो आप क्लिक कर सकते हो। सलमान ने फिर से मजाक में कहा कि जोर से सॉरी बोलो। तो चलिए, ये तो सलमान खान का मामला है। जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि तमाम सेलिब्रिटीज पेपराजी के किसी ना किसी व्यवहार से परेशान रहते हैं। बिग बी का एक मामला आपको बता देते हैं। दरअसल आजकल बिग बी एक क्रिप्टिक पोस्ट, उनकी काफी चर्चा में है। उन्होंने खास ह्यूमर वाले अंदाज में कविता शेयर की है जिसका सार ये है कि चील जब होवे शांत तो भैया तोते बोलन शुरू करे, यानी चील जब चुपचाप हो जाती है तो तोते चहचहाना शुरू कर देते हैं। फैंस बिग बी की इस पोस्ट को लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिग बी ने खुद के अस्पताल में भर्ती होने की अफवाह उड़ाने वालों पर यह तंज कसा है। बिग बी ने पोस्ट के अंत में लिखा है, प्यार, प्रार्थनाएं और भी बहुत कुछ। चलिए, इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद खान एक्टर हमारे साथ हैं, प्रदीप सरदाना कुछ ही देर में स्टूडियो में हमारे साथ पहुंचेंगे, रामकिशोर पाठशाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेजनी त्रिपाठी हैं, लेकिन सबसे पहले सना फरजीन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सना, आपके पास आना चाहूंगी। आपने बहुत, आपका एक लंबा करियर है, आपने फिल्म रिपोर्टिंग की है, तमाम एक्टर्स के आपने इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ लिया है, लेकिन ये पेपराजी कल्चर आज की तारीख में क्या कैसे इसको देखा जाए? क्योंकि देखिए, एक कानून है निजता के हनन का, लगातार किसी की प्राइवेसी में जाना और लगातार बार बार उसको ट्रैक करना, ये कितना सही? क्या मुंबई में इसको लेकर कहीं चर्चाएं होती हैं?
1: हाँ जी, बिल्कुल इसको लेकर चर्चाएं होती है, स्पेशली क्योंकि जो जैसा हम बात कर रहे हैं ना कि हम सब ने लंबा करियर एक जर्नलिस्ट की तरह जिया है, हमारा काम ही रिपोर्टिंग है, जब आप उसे पेपराजी के साथ भी कनेक्ट करते हो वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और इस बारे में काफी मीडिया वालों ने भी पहले आपत्ति जनाई है, क्योंकि पेपराजी जो हम शायद एक इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे जहां कैमराज पीछे भागते थे सेलिब्रिटीज के, जैसे प्रिंसेस डायना की जो हमने स्टोरी देखी है जिस तरीके से उनका देहांत हुआ, उस तरीके की होती है पेपराजी। बट यहाँ बॉम्बे में हमारा बहुत ही पीआर ड्रिवन पैप कल्चर भी है कि आपको फोन करके बुलाया जाता है कि आप आए और हमें शूट करें एयरपोर्ट पे, कहीं जिम में या लोकेशंस पे। बट जब एक पेपराजी, जब एक कैमरा ले आप उनके घर के अंदर घुस रहे हैं, उन्हें एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैप्चर कर रहे हैं, या जैसे सलमान खान के इंसिडेंट पे हॉस्पिटल में, और स्पेशली हम जब देखते हैं किसी के फ्यूनरल पे जिस तरीके से कवरेज होता है कि आप जूम करके उनके चेहरे को दिखा रहे हैं, वो रो रहे हैं,

0: जाता है ये लाइन कि आप कौन सा एथिकल है और कौन सा नहीं, बट ये शायद कहीं ना कहीं अभी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम इसे समझे और इसे फॉलो करें कि आप एक एक्टर है, एक पब्लिक फिगर है, बट उनकी भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी है।
1: सना शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चले शशांत आपके पास आना चाहूंगी, आप भी एक एक्टर हैं। ये पेपराजी कल्चर से एक एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर तमाम जो वीवीआईपी लोग होते हैं, कितना ये मुश्किल है इनको हैंडल कर पाना?
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए पापराजी जो है या हमारे जो न्यूज वाले बच्चे हैं उनको इतना कुछ, जो पुराने हैं वो बहुत अदब के दायरे में रहते हैं, लेकिन अभी जो नए बच्चे आए हैं वो कहीं भी घुस जाते हैं कैमरा लेके, वो किसी भी इस जो हरकतें करते हैं। और जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे दोस्त सलमान खान के साथ जो हुआ है कि ऑब्वियसली वो किसी को मिलने गए होंगे हॉस्पिटल में, कोई करीबी होगा। अब हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो उसका मूड बड़ा अजीब सा रहता है कि कौन है, मतलब क्या, कब ये निकलेगा या क्या, डॉक्टर्स एक बड़ा अजीब अलग सा माहौल रहता है, बहुत आदमी डिप्रेस रहता है, बहुत वो रहता है। और उसके बीच में जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर जो प्रेस वाले जो है, पापराजी का हो या मामाराजी जो भी है, ये लोग जो है वहां से चिल्लाते हैं फोटो और फिर उनके वो फिल्म मातृभूमि के बारे में पूछ रहे। ये कोई जगह है और हॉस्पिटल है भाई, एक अकेला वहां पर वो पेशेंट नहीं है जो सलमान खान का दोस्त है या जान पहचान वाला है, और भी लोग हैं वहां पर
1: जी।
2: तो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, हमारे पैप्स को इतनी वो होनी चाहिए कि भाई हम अस्पताल में आए हैं या बीमार लोग है, कोई सीरियस है, कोई आईसीयू में है, तो इनकी इतना आवाज, इतना न्यूसेंस हमें नहीं क्रिएट करना चाहिए। इतनी तो समझ और अकल इन पैप्स में होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटती हूँ रामकिशोर भारचा जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। ये कल्चर किस तरीके से समय के साथ या कहें कि सोशल मीडिया बूम जब से आया तब से और ज्यादा बढ़ा है, और दूसरी बात यह है कि एक सेंसिटिविटी जो होती है, हम उम्मीद करते हैं किसी जर्नलिस्ट में या फिर वो कोई भी इंसान जो कि फिल्म कवर कर रहा है या टेलीविजन को कवर कर रहा है या किसी को भी कवर कर रहा है, एक रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, क्या ये सब फॉलो किए जाते हैं?
3: देखिए नवजोत, आपको याद होगा कि प्रिंसेस डायना जो थी पेरिस में थी और वो किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और पेपराजी जो है उनका पीछा कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि एक लुक उनका ले सकें, एक तस्वीर उनकी ले सकें। और उसी समय उनका वो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलटी मर्सिडीज और उनकी मौत हो गई थी, ये आपको किस्सा याद होगा। उस समय भी ये पेपराजी जो है उनके पीछे में लगे। तो जो पेपराजी कल्चर है बेसिकली तो वो तो वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है, हमारे यहाँ पहले ये कल्चर नहीं होता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से पेपराजी जो है, जिसको कि फोटोग्राफर बेसिकली कहा जाता है, और वो जैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म हुआ करता था एक टाइम पर, वो उस तरह के लोग होते हैं कि जो एक झलक पाने के लिए सितारे की या कोई ऐसा मोमेंट पकड़ने के लिए जिसे वो बताकर दुनिया के सामने लाकर अपने लिए कुछ कर सकें या अपनी ब्रांडिंग कर सकें, लेकिन उसके जो खतरे हैं और उसके जो पर्सनल लाइफ में घुसने के जो रास्ते हैं उन पर थोड़ी सी रोक जो है वो कम से कम लगनी चाहिए। क्योंकि सलमान का किस्सा अकेला किस्सा नहीं है, वो तो एक अभिनेता है, लेकिन कई अभिनेत्रियों के भी ऐसे किस्से सामने आए हैं जब पेपराजियों ने उनकी तस्वीर लेने के बहाने उनकी पर्सनल लाइफ को टच किया है। तो नैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस या जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं एक तस्वीर लेने के लिए, उसको पेपराइज्म के नाम पर जो है काफी इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि उससे हमारा, आपका और स्टार्स का ही नहीं, उस आदमी का भी नुकसान होता है जिसके लिए वो पीछे भाग रहे हैं।
1: बिल्कुल, उनकी उनकी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती। प्रदीप जी क्या कहेंगे इसको लेकर, पेपराजी कल्चर को?
4: नहीं बिल्कुल, ये देखिए जो पेपराजी का एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, मैं तो पिछले करीब 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से कवर कर रहा हूँ। तो पहले बड़ा एक आत्मीय रिश्ता होता था फिल्म कलाकारों के साथ हमारा, उनके यहाँ कोई फंक्शन होता था हमको घर पे बुलाते थे, हम उनको अपने यहाँ भी बुलाते थे, हमारे घरों पर भी आते थे, कहीं भी मिलते थे बड़े आत्मीयता के साथ मिलते थे और बातों बातों में भी फिल्मों का जिक्र, कहानी का जिक्र, आपके हालचाल पूछते थे, और उसी में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी होते थे, बहुत अच्छी बातें भी होती थी और बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी निकल कर आती थी। लेकिन जैसे जैसे मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दायरा बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो है पिछले कुछ समय में पेपराजी हमारे यहाँ बहुत तेजी से पनप रहे हैं। खैर उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और घंटों खड़े रहते हैं एक पोज के लिए, एक सीन के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कोई अस्पताल में जा रहा है या किसी का निधन हो गया है या कोई ऐसी दुखी

0: में है तो आप उसके पीछे पीछे भागे और उसको जबरदस्ती उसके पोज बनाए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं इसका बिल्कुल हर समय इसका मना करता हूं, इनकार करता हूं चीज से कि ऐसी चीज कभी नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो हादसा हुआ ये भी बड़ा गलत था कि सलमान खान अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं, हिंदुजा में अपने बहुत से व्यक्तिगत उनके संबंध होते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो चाहते भी नहीं इस चीज़ को करें, लेकिन जब कोई ऐसा करता है तो वो बहुत गलत है। और अच्छी बात यह है कि पेपरा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। अस्थियां प्रभावित करने सनी देओल और उनका परिवार हरिद्वार गया तो वहां पेपरा जी फोटो खींचने लगे तो उन्होंने बिल्कुल उसको गुस्से में पूछा कि तेरे को कितने पैसे चाहिए, तेरे को मैं पैसे देता हूँ, इसको बंद कर। जिस तरह जब उसके बाद उनको घर पर ले आया गया था उनके, उसको जब ज्यादा उनकी स्थिति खराब थी कोमा में जा रहे थे तब भी वो सब आ गए, तब भी उनका क्या बात है, तुम्हारे घर में अगर पिता हो बाप हो उनके साथ कोई ऐसा करे तो वो क्या फील होगा। तो इसलिए इस चीज का सुधार होना चाहिए,
1: कुछ चीजें और इनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। एक बार लेज़ली अब मैं आपके पास आती हूँ, देखिए कुल मिलाकर सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में हम हिट कैसे हो सकते हैं और इसीलिए ये पेपराजी कल्चर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की सोच रहती है? देखिए अगर देखा जाए तो रिस्क में तो जो तस्वीर ले रहा है पेपराजी वो भी रिस्क में है और जहां तक मर्यादा की बात है वो तो यहां पर बात हो ही रही है कि किसी की निजता का हमें ख्याल रखना चाहिए, अस्पताल जा रहा है तो ध्यान रखे, कोई फ्यूनरल पर जा रहा है तो तस्वीरें कम से कम नहीं खींचनी चाहिए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या सोच रहती है इसके पीछे?
2: थैंक यू मैम, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट माइना मिश्रा। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मैटर अभी आया है नजर में, जया बच्चन मैम काफी बार ये मैटर बोल चुकी है, पेपराजी को कई बार जया बच्चन मैम ने कहा है कि क्यों आप मुझे ये सब सवाल पूछते हो, ये जगह है, बट वो ट्रोल्ड हुई तो उनको देखते हुए बहुत सारे सेलिब्रिटीज थोड़े डर के मारे पेपराजी को बोलना बंद कर दिए कि आप उल्लंघन कर रहे हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि उनको डर था कि वैसे ट्रोल होंगे जैसे जया बच्चन मैम को ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग हंसते हैं कि वो ऐसे बोल रही थी, बट अभी जब इतने सीनियर आर्टिस्ट इतने लेजेंडरी एक्टर बोल रहे हैं तो आई थिंक वो ड्रॉ ऑफ द लाइन हो गया, उन्होंने लक्ष्मण रेखा डाल दिया एंड अभी सब वो फॉलो करेंगे, उनको भी पता चल गया कि ऐसे सेंसिटिव जगह लाइक हॉस्पिटल के पास ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये बात सही है कि एक्टर्स एंड पेपराजी मीडिया एंड लाइक आर्टिस्ट इन सबका एक जो ब्रीद इन ब्रीद आउट रिलेशनशिप है वो ईच अदर के बगैर नहीं जी सकते, इसीलिए कभी कभी मीडिया हो या पेपराजी आजकल के जो डिजिटल जर्नलिस्ट है वो कभी कभी मर्यादा उल्लंघन भी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे वीडियो मिल जाए कुछ भी, आइदर अगर आर्टिस्ट गुस्सा भी हो रहा है, हीरो गुस्सा भी हो रहा है, वो भी कैप्चर कर दो वो वायरल चला
1: नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो वाली लाइन चलती है यहाँ
2: जी। अभी क्या हो रहा है कि लाइक्स एंड व्यूज मैटर्स और कोई अगर कुछ भी पूछ लेता है इज दिस द राइट थिंग, वो उस पे ही यू नो 10 बार जूम इन जूम आउट करेंगे, ये आर्टिस्ट को आया गुस्सा देखो उनका लाइक खून खोला ऐसे, तो यू नो पीपल एंजॉय, फिर ट्रोलिंग वहां पे नीचे शुरू हो जाती है और कभी बाद में अगर वो आर्टिस्ट को कभी ट्रोल करना है तो वो लोग वही गुस्से वाला फोटो यूज कर लेते हैं। तो
1: रामकिशोर बादशाह जी मैं आपसे सवाल सीधा करना चाहूंगी, देखिये बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारी सहयोगी सना भी बता रही थी यहाँ पेपराजी को लेकर सवाल सलमान खान ने किया, उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो मुझे यहाँ पे किसी भी मंच पर आपसे वो सवाल नहीं करना चाहिए या फिर मुझे देखना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। सिर्फ ये बताइए कि वो सेलिब्रिटीज जो खुद बुलाते हैं तमाम पेपराजी को तमाम फोटोग्राफर्स को कि आइए अब हम जिम जा रहे हैं, अब हम फला रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या हम उस पार्टी में जा रहे हैं, क्या ये कहीं से इन लोगों को ज्यादा शय नहीं मिल जाती कि ठीक है जब वो लोग बुला रहे हैं तो हम कहीं भी किसी की भी तस्वीर ले सकते हैं और किसी भी जगह ले सकते हैं?
3: ये बात तो नहीं, बिल्कुल सही है कि ये ब्रांडिंग का प्रोसेस भी है, ये ब्रांडिंग का प्रोसेस भी है, एक तरह से सेल्फ प्रमोशनल जिसको कहा जाता है आज के जमाने में वो भी है। और सलमान के बारे में मैं एक बात कहूं आपको कि एक मैं बीबीसी हिंदी के लिए जब काम करता था तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, मैं मुंबई में था। सलमान एक ऐसे अभिनेता है जो अंदर से बहुत इमोशनल और सीधे और सच्चे हैं, कई लोग उनसे कहते हैं कि साहब उन्होंने ऐसा कहा ये किया तो उनको माफी मांगनी चाहिए, अभी प्रदीप जी मुझे मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ किया है अगर वो माफी मांग लेते तो शायद प्रपराजी से उनको सीखना चाहिए लाइक दिस। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि जो इस समय सोशल ब्रांडिंग का जो इस समय सिनेरियो चल रहा है उसमें सलमान हो या कोई दूसरे भी लोग हो वो इस काम को करते हैं, बट सलमान की जहां तक बात है, सलमान ने एक बार ये कहा, मैंने उनसे पूछा ये सवाल कि भाई आप इतने औखड़ जवाब क्यों देते हैं, आप बदतमीजी से क्यों लोगों से बात करते हैं और इसका क्या मतलब, क्या सोच के आप सोचते हैं कि आप स्टार हैं इसलिए कुछ भी कह सकते हैं कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राम साहब, सीधा सा मामला है, मैं स्टार हूं ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ है जिसे लोगों को टच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मुझे चोट लगी है और मैं किसी को दिखाता हूं कि साहब देखिए मेरी चोट लगी है, तो वो चोट को देख सकता है, लेकिन वो देखने तक सीमित रहे, अगर वो उसको टच करके दबाएगा और मुझे दर्द होगा तो मैं रिएक्ट करूंगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन सलमान जो है वो बहुत अलग लेवल और बहुत अलग सोच के इंसान भी
1: कह सकते हैं। रामकिशोर जी की कुछ सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा नहीं है, शहजाद जी आप बताइए, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी गलत कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज खुद को फेमस करने के लिए व्यूज वगैरह के लिए भी पपराजी को जानबूझ के बुलाते हैं।
3: फायदा उठाने वाला ऑफिशियली एक सिस्टम है अभी जी जी, लेकिन सलमान के मामले में ऐसा नहीं था।
1: ठीक है,
4: देखिए जो सेलिब्रिटीज पैपराजी को बुलाते हैं या जो उनके पेरोल, जिन्होंने इनको पेरोल पे रखा है, वो करते हैं तो ठीक है, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो अपने आप को मशहूर करना चाह रहे हैं और एक ही रास्ता है पैपराजी को बुला के अपनी फोटोज खींचना ये वो, लेकिन पैपराजी जिस तरीके से उन खास करके जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बच्चियां हैं उनके जिस एंगल से फोटोज लेते हैं जिम के ये वो भी बहुत गलत है। वो भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सभ्यता का अपमान जो है उसका ख्याल रखना चाहिए और हर लड़की की एक रिस्पेक्ट होती है। वो आपको बुला रही है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, ठीक है आप पब्लिसिटी कीजिए कि भाई ये अभी रेंज रोवर से उतरी है या अभी एयरपोर्ट जा रही है या अभी जिम जा रही है, लेकिन एंगल्स जो है गलत एंगल से शूट करना ये करना ये शोभा नहीं देता मेरे ख्याल से।
1: मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेज़ली अब आपके पास आती हूँ, आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ लगाम लगेगी इस पर, क्योंकि अब सलमान खान ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक स्पेस होती है, एक जगह होती है जहां आप किसी सेलिब्रिटी को कवर करते हैं या फिर वो आपको बुलाए तब आप उससे बातचीत करेंगे, अदरवाइज आप किसी की निजता में दखल नहीं दे सकते हैं।
2: मैम आई थिंक कि ये जो पैपरेजी है आगे जाके सीनियर आर्टिस्ट के साथ थोड़ा देख के हैंडल करेंगे, और ऐसे हॉस्पिटल जैसे जगह में तो सेंसिटिव जगह में दे वोंट बी अनरूली बिहेवियर ऐसे नहीं दिखाएंगे, बट जो यंगस्टर्स है जो नॉर्मल उनको बुलाते हैं और वो कल्चर चल रहा है, मैम ये बात बहुत सही है कि वो ना बस अपना फैंडम नहीं दिखा रहे हैं, क्रेज नहीं है उनको स्टार्स का, उनको पैसे मिलते हैं मैम, लैक्स में पैसे मिलते हैं। अगर लैक्स में व्यूज आते हैं और लोगों का एंगेजमेंट स्ट्रांग होता है, बढ़ता जाता है, लोग नीचे कमेंट्स में ना हंसी मजाक कर रहे हैं स्टार्स का, उन्होंने अगर थोड़ा सा यहाँ वहां का गुस्से में वीडियोस फोटोज अच्छा से एडिट करके डाल दिया तो उसमें उनको लाखों का इनकम होता है पर मंथ, तो ये एक्चुअली उनका सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नॉर्मल जॉब्स 9 to 5 नहीं कर पा रहे, घर से अभी जॉब्स कर रहे हैं, तो वो प्रिफर करते हैं कि वो पैपराजी की तरह अपना फोन पकड़े, उनका जीरो इन्वेस्टमेंट होता है और उनका लाखों में इनकम होता है, सो दे विल नॉट गिव अप। एंड एक्चुअली वर्ल्ड इज लाइक इंडिया में इतने सारे आर्टिस्ट है, दे हैव लॉट ऑफ पीपल जिनसे वो पैसे कमाते जाएंगे।
1: चलिए वक्त अभी इतना ही, सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड सितारों ने सीधा कह दिया कि उनकी प्राइवेसी में नो एंट्री, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए आपके हमारे साथ।

0: कौन सी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं? शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाए? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
2: Gone! Home run!
1: NHL. College basketball.
3: He shoots it immediately.
4: He makes it in!
1: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
5: One lap to go.
1: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Yes, sir. Classic hip-hop. Or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: दिल को छू जाती ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
13: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
14: CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के CBSE ने दिया अतिरिक्त समय। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान। शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल। पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले। विजवानों के लिए द्वार में किया स्नान। शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल। पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले। विजवानों के लिए दाना पानी का इंतजाम। जबलपुर के संकल्प ने किया कमाल। अपने बाग में उगाए लाखों की कीमत वाले जापान के मियाजाकी आम। एक दर्जन जर्मन शेफर्ड करते हैं रखवाली। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग। 5 जून को रिलीज होगी फिल्म।
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। आज बात करेंगे बाबा केदारनाथ धाम की। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव का केंद्र है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसे इस पवित्र धाम को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह तीर्थयात्रा तब तक अधूरी है जब तक श्रद्धालु सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक आदि गुरु शंकराचार्य को नमन ना कर ले। आदि गुरु शंकराचार्य और केदारनाथ धाम का अलौकिक संबंध है। ये संबंध केवल आस्था का नहीं बल्कि सनातन धर्म के पुनर्जन्म का है। इस महासंत ने सदियों से उपेक्षित पड़े केदारनाथ धाम मंदिर का न सिर्फ जीर्णोद्धार किया बल्कि अद्वैत वेदांत के जरिए दुनिया को बताया कि आत्मा ही परमात्मा है।

0: केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतं वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा।
1: देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जहां कण कण में शिव का वास है। इस धाम की भव्यता और इसके अस्तित्व के पीछे एक ऐसी महान विभूति की तपस्या और संकल्प छिपा है, जिन्होंने बिखरते हुए भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में पिरो दिया। वे थे आदि गुरु शंकराचार्य। साक्षात भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का केदारनाथ धाम से संबंध केवल आस्था का नहीं, बल्कि सनातन धर्म के पुनर्जन्म का है।
2: उनको सपना आया था, जब ये ज्योतिर्लिंग जो है बर्फ के अंदर ढका हुआ था, तो उनको सपना आया था कि आप उत्तराखंड की ओर बढ़िए, वहां पर जो है साक्षात केदार भगवान जी विराजमान है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी है सबसे पहले यहाँ पर आए और उन्होंने जो है यहाँ पर पूजा पाठ की स्थापना की, और हम लोग भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ में यहाँ पर आए हैं और तब से आज तक भवन की सेवा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो है हमको एक सूत्र में बांधा हुआ है, और वो जो है 32 साल की अवस्था में जो है श्री केदारनाथ धाम में पहुंच गए थे, जो यहाँ पर इनका समाधि स्थल है। उन्होंने जो है 32 साल की अवस्था में यहाँ पर अपना शरीर का ध्यान किया था, और आज से नहीं सदियों से सनातन धर्म जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी के पीछे चल रहा है, और अभी भी हम लोग इन्हीं के अनुसरण में चल रहे हैं।
1: यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के बाद आदि गुरु की समाधि पर आकर श्रद्धा से अपना सिर नवाता है, क्योंकि ये वही भूमि है जिसने इस महान संत को अपने भीतर समाहित कर दिया था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचते हैं। श्रद्धालु बाबा केदार के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ इस दिव्य प्रतिमा और समाधि स्थल के सामने भी नतमस्तक होते हैं और सनातन धर्म के उस महान संत को नमन करते हैं जिसने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा दी।

0: तो यहाँ पर अभी आपने सुना, ये जो पूरी टीम है फ्रांस से आई हुई है, लगभग 17 लोगों की टीम है, इसमें फ्रांस और यूरोप के लोग हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे हैरानी हो रही है इन लोगों को मंत्रोच्चार इस तरह से करते हुए, जैसे हम भारतवर्ष में देखते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं पूरी आस्था और श्रद्धा में, वैसे ही इन लोगों को भी हम देख पा रहे हैं।
1: ये स्थान सिर्फ एक स्मारक भर नहीं है, बल्कि ये उस अदम्य चेतना का प्रतीक है जिसने भारत को एक बनाए रखा।
0: प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार व प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में चार शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। उनके इसी योगदान के चलते उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी गई।
1: आदि गुरु शंकराचार्य का केदारनाथ से अटूट संबंध है। उन्होंने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और महज 32 साल की उम्र में यही महासमाधि ली।
2: निश्चित रूप से सनातन धर्म में शंकर का बहुत महत्व है। शंकर हमारे लय के देवता हैं और ये कहा जाता है कि शंकर वह देव हैं जो बड़ा ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और संसार के जो वैज्ञानिक तत्व है वो शंकर में ही निहित है। तो ऐसे शंकर की पूजा के लिए जो द्वादश ज्योतिर्लिंग बना था, उन लिंगों में पूजन पद्धति का पुनः श्री गणेश शंकराचार्य ने बड़े ही आध्यात्मिक रूप से आरम्भ करवाया।
1: आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए चार मठ स्थापित किए और सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा, जिसका सरल अर्थ है आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही है।
0: भारत में सनातन धर्म की अलग जगह रखने के उद्देश्य से उन्होंने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को उनके विराट स्वरूप में फिर से स्थापित किया। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खास तौर पर केदारनाथ धाम से आदि गुरु का विशेष नाता था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने शिष्यों को आखिरी 5 उपदेश दिए थे। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही ब्रह्मलीन हुए थे और यही वजह है कि केदारनाथ धाम के ठीक पीछे जगत गुरु शंकराचार्य की ये समाधि मौजूद है, जो शताब्दियों से धर्म के प्रति उनके योगदान को याद दिलाती है।
1: आदि गुरु शंकराचार्य ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। महाभारत काल के बाद सदियों से उपेक्षित और जीर्ण क्षीण हो चुके केदारनाथ मंदिर का आदि गुरु ने जीर्णोद्धार करवाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इस दुर्गम हिमालय क्षेत्र में आकर पूजा अर्चना की, व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। आज भी उन्हीं की बनाई परंपरा के अनुसार दक्षिण भारत के रावल यहां बाबा केदार की पूजा अर्चना करते हैं।
2: जो शंकर हैं, इनका नाम ही शंकराचार्य है, ये आचार्य थे। और जब हमारे देश में वेद पूरी तरह प्रतिष्ठापित हो गया था, जन जन तक वेद के प्रति सबकी श्रद्धा थी और आचार्य शंकर ने वेद के अंतिम भाग अर्थात वेदांत, जिसको ज्ञान कांड से हम जोड़ते हैं, तो आचार्य शंकर के मन में एक चिंतन चला कि भारत की जो ये ज्ञान की परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा है, ये शाश्वत रूप से कैसे आगे बढ़ सकती है। इसके लिए उन्होंने एक सुंदर योजना बनाई और उनका एक चिंतन था कि ये ज्ञान अग्रसर होता रहे। इसके लिए उन्होंने भारतवर्ष के चारों भागों में अर्थात चारों कोनों में चार विद्यापीठ की रचना की, स्थापना की, जिसको हम कहते हैं आचार्य शंकर ने चार मठों की स्थापना की।
1: आदि गुरु शंकराचार्य ने दुनिया को बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। मात्र 32 साल की उम्र में संसार को अलविदा कहने वाले इस महान संत ने केदारनाथ की इस बर्फीली घाटी में जो ऊर्जा छोड़ी है, वो आज भी यहाँ आने वाले हर भक्त को महसूस होती है। बाबा केदार की छत्र छाया और भीम शिला की ओट में बैठी आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा सदियों तक आने वाले पीढ़ियों को ये याद दिलाती रहेगी कि सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है। केदारनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
3: हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसे केदारनाथ धाम में एक ऐसी दिव्य शिला मौजूद है जिसे श्रद्धालु केवल एक पत्थर नहीं बल्कि बाबा केदार के चमत्कार का साक्षात प्रतीक मानते हैं। इसे भीमशिला कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु यहां आता है केदारनाथ के दर्शन के साथ साथ इस शिला का भी दर्शन पूजन करता है। मान्यता है कि इसी शिला ने 2013 की विनाशकारी आपदा में केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी।

0: गढ़वाल हिमालय के हृदय में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महादेव के इस धाम को पंचकेदार में सर्वोच्च माना गया है। ये मंदिर अटूट भक्ति का प्रतीक है जो आधुनिक तीर्थयात्रियों को उनकी आस्था की प्राचीन जड़ों से जोड़ता है। भगवान केदार के इस मंदिर को लेकर कई ऐसे अविश्वसनीय तथ्य हैं जो इसे अद्वितीय और अकल्पनीय बनाते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। आज केदारनाथ यात्रा तब तक अधूरी मानी गई है जब तक कि भक्त बाबा केदार के दर्शन के बाद मंदिर की परिक्रमा कर भीमशिला के दर्शन नहीं कर लेते। केदारनाथ धाम में भीमशिला एक महत्वपूर्ण और चमत्कारी स्थान है। श्रद्धालु इस शिला को ईश्वरीय चमत्कार और भगवान शिव का वरदान मानते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आने वाला हर श्रद्धालु इस शिला के आगे श्रद्धा से सिर झुकाता है और इसकी पूजा करता है। इस शिला ने सबसे बड़ी त्रासदी से इस मंदिर की रक्षा की थी। केदारनाथ धाम में मौजूद भीम शिला का रहस्य 2013 की विनाशकाली बाढ़ से जुड़ा है। छह जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। केदारनाथ धाम के पीछे मौजूद चोराबाड़ी ग्लेशियर के ऊपर बादल फटा था। ग्लेशियर में बनी एक पुरानी झील में इतना पानी भर गया कि उसकी दीवार टूट गई। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं। लेकिन केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव से लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और मंदिर के पीछे ही थम गई। इस शिला ने बाढ़ के प्रचंड वेग को दो हिस्सों में बांट दिया जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वैज्ञानिक और भूविज्ञानी भी इस बात से हैरान हो गए कि इतनी भारी चट्टान ठीक मंदिर के पीछे आकर कैसे रुक गई और उसने ढाल का काम किया।
1: मंदिर का ये थोड़ा पिछला हिस्सा है जहाँ पर भीमशिला आप दिखा सकते हैं। देखिए भीमशिला यहाँ भी लोग विशेष करके आते हैं पूजा करने के लिए। भीमशिला पर भी फूल माला आप देख सकते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और बड़ा सा त्रिशूल डमरू के साथ यहाँ पर लगाया गया है। दरअसल ये वही भीमशिला है, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, त्रासदी के समय में जब एवलांच आया था तो कहते हैं कि इस भीमशिला ने मंदिर को बचा लिया उस त्रासदी से और मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पर भीमशिला में आकर भी यहाँ पर पूजा करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं।
0: स्थान मान्यता के मुताबिक पांडवों के अज्ञातवास और स्वर्गारोहण के दौरान भीम ने इस शिला को यहाँ स्थापित किया था, इसी वजह से इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। चट्टान के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो ये 20 फीट चौड़ी और 12 फीट ऊंची है। ये शिला आज इतनी पवित्र और पूजनीय हो गई है कि इस पर ओम की आकृति उकेरी गई है। इस शिला को आस्था और विज्ञान के संगम के रूप में देखा गया है जो सदियों से केदारनाथ धाम की रक्षा कर रही है। ये श्रद्धालुओं को एहसास कराती है कि जब प्रकृति प्रचंड रूप लेती है तब ईश्वरीय कृपा अपने भक्तों की रक्षा करती है। बाबा केदार का मंदिर मानव दृढ़ता और स्थापत्य कौशल की अद्भुत मिसाल है। ये मंदिर इंटरलॉकिंग तकनीक से बना है। इसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पत्थरों को खांचों के जरिए एक दूसरे में फंसाया गया है। यही वजह है कि मंदिर भूकंप और आपदाओं को झेलने में सक्षम है। भूकंप के निरंतर खतरे के बावजूद मंदिर मजबूती के साथ खड़ा है। जब भूकंप आता है तो मंदिर की संरचना हिलती तो है लेकिन टूटती नहीं। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऊर्जा को वितरित कर देता है।
1: इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इस तरीके से बना हुआ है कि इसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, कभी क्षय नहीं होगा। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। बताया ये भी जाता है कि इस मंदिर को, ये पांडव कालीन मंदिर है, पांडव जो थे महाभारत के बाद यहाँ पर आए थे और कहते हैं कि पाप मुक्ति के लिए यहीं पर आकर उन्होंने प्रार्थना की थी और भोलेनाथ को स्मरण किया था, जिसके बाद यहीं से युधिष्ठिर जो है, यहाँ पर एक झील भी है, बताया जाता है कि उसी झील से वो स्वर्ग लोक की तरफ आगे बढ़े थे। तो ये पूरा जो इलाका है अपने आप में शिवमय है, शिव तत्व हर एक कण कण में आप महसूस कर पाएंगे।
0: केदारनाथ की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी अजेय शक्ति। 2013 की भीषण त्रासदी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की। ये साक्षात प्रमाण है कि जहां शिव हैं, वहां काल का भी वश नहीं चलता। केदारनाथ धाम से श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे।
2: कहते हैं कि देवों के देव महादेव का केदारनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रायश्चित और मोक्ष की अनुभूति का पवित्र स्थान है। सदियों से भक्तों के बीच ये मान्यता रही है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन और सच्चे मन से की गई आराधना से पापों का शमन होता है और मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है।

0: हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मंदाकिनी के कलकल स्वर के साथ जहां हर सांस में शिव का नाम बसता है, वहीं है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम। इस साल केदारनाथ तीर्थ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और संकल्प का ऐसा महाकुंभ बन गई है जिसने नया इतिहास रच दिया है।
1: कोई दिक्कत नहीं, आराम से असली जा रहे हैं। असली
2: बद्रीनाथ की यात्रा करने के साथ दर्शन करते हुए फिर हम जाएंगे केदारनाथ जाएंगे, केदारनाथ की यात्रा करके गंगोत्री जाएंगे, जमुत्री जाएंगे, फिर उसके बाद घर वापस लौट।
0: केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 22 अप्रैल को कपाट खुलने के महज 30 दिनों के भीतर 7.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर पर शीश नवाया। उत्तराखंड पर्यटन और धार्मिक यात्रा के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उछाल है।
3: विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ की यात्रा इस बार पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। एक महीने में 7.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पूर्व कभी भी एक महीने में इतनी भारी संख्या में यात्री बाबा के दरबार में नहीं पहुंचे हैं। इन दिनों बाबा केदार का पैदल यात्रा मार्ग होया मंदिर परिसर भक्तों से गुलजार है। सुबह से साय तक बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुल मिलाकर कहें तो इन दिनों केदारनाथ धाम में आस्था का मेला लगा हुआ है और बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है।
0: इन दिनों केदारनाथ चार धाम यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी वजह से बेहतर सड़कें, हेलीकॉप्टर सेवाएं और अच्छी व्यवस्थाएं, इसी का असर है कि केदारनाथ यात्रा में पिछले साल के मुकाबले इस साल शुरुआती चरण में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। देश विदेश से भक्तों का लगातार आना जारी है। केदारनाथ की यात्रा कभी आसान नहीं होती। ऊंचाई, कठिन चढ़ाई, बदलता मौसम, सीमित ऑक्सीजन और पहाड़ी चुनौतियां, लेकिन जब मंजिल बाबा केदार धाम हो तो रास्ते तपस्या बन जाते हैं। दुर्गम रास्तों और कठिन चढ़ाई के बावजूद देश विदेश से आने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौसम का मिजाज पल पल बदलता है, कभी ठंड तो कभी मूसलाधार बारिश, और ऑक्सीजन की कमी चुनौतियां यहां कदम कदम पर यात्रियों की परीक्षा लेती है। लेकिन तमाम मुश्किलों पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। बुजुर्गों की लाठी हो या बच्चों का हौसला, हर कोई बस बाबा केदार के दर्शन की धुन में आगे बढ़ रहा है। केदारनाथ का पूरा पैदल मार्ग इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार है। दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है।
3: लगातार बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाओं को लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। खुद रुद्रप्रयाग के DM विशाल मिश्रा ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा जवानों के साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही लगातार यात्रियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जा रहा है।
0: इस बार भी यात्रा के दौरान कई जगह मौसम और मार्ग की चुनौतियां सामने आई। हाल ही में लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ, लेकिन राहत और बचाव एजेंसियों ने तेजी से काम करते हुए यात्रियों को सुरक्षित निकाला और व्यवस्था को बहाल किया।
4: माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को चिंता न हो और यह यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक, और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। कुछ जगह पर कल शाम को हल्का लैंडस्लाइड हुआ था जो कि गौरीकुंड से थोड़ा पहले था, वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की मशीनें लगा करके काफी हद तक कल शाम को ही कर दिया गया था।
0: तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। यात्रा करने से पहले उत्तराखंड पर्यटन के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केदारनाथ की यात्रा न केवल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है बल्कि कुशल प्रबंधन का भी बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी का अनुमान है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचे तब महादेव केदारखंड में प्रकट हुए और यहीं स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ की महिमा केवल कथा तक सीमित नहीं है, ये वो जगह है जहां पहुंचकर मन शांत हो जाता है और जहां अहंकार हिमालय की बर्फ की तरह पिघल जाता है, जहां हर यात्री महसूस करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे यहां तक लेकर आई है और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि सच्चे मन से यहां जो भी बाबा केदार के धाम आता है महादेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: केदारनाथ यात्रा पर हमारी इस खास पेशकश में भी लेता ही, बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
7: जाती है। Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
8: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं के लिए पवित्र अवसर में किया सरोवर में किया स्नान, शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। छब्बीस मई को अपने 30 साल पूरा कर रही वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से अधिक शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले, बेजवानों के लिए दाना पानी का इंतजाम। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले ब्लॉकबस्टर, लोडिंग 5 जून को रिलीज होगी फिल्म।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे।
8: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुल गए। शुभ अवसर पर सभी को बेसब्री से इंतजार था। महीनों की मशक्कत के बाद पवित्र गुरुद्वारे के रास्ते से बर्फ को हटाई गई। 7 महीने बाद खुले इस पवित्र गुरुद्वारे की फूलों से सजावट की गई थी। कपाट खुलने के बाद आज पहले ही दिन 5,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की।

0: हेमकुंड साहिब के कपाट खुले तो हर तरफ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे गूंज उठे। मुश्किल रास्तों को पार करते हुए जब पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचा, तो पूरा माहौल भक्ति के रंग में सराबोर दिखा। मंजिल दूर थी, रास्ते भी मुश्किल थे, लेकिन इन भक्तों के उत्साह के सामने सारी चुनौतियों ने घुटने टेक दिए। उत्तराखंड की पावन वादियों में आज श्रद्धा का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। फूलों से सजा पवित्र दरबार, भक्ति में लीन संगत, हर चेहरे पर विश्वास, हर आंख में भावनाएं, ऐसा लग रहा है मानो पूरा हिमालय गुरबानी में डूब गया हो। 7 महीने बाद जब श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, तो चारों ओर खुशियों, भक्ति और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला। चमोली जिले में सिखों के पवित्र तीर्थ और उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज पूरे विधि विधान से शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह से ही मौसम बेहद सुहावना बना रहा। बर्फ से घिरे हिमालयी पर्वतों के बीच खिली धूप ने इस ऐतिहासिक पल को और भी खास बना दिया। सुबह ठीक 9:30 पर पंज प्यारों की अगुवाई में सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को अनंत श्रद्धा और सम्मान के साथ दरबार साहिब में लाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु रास्ते भर माथा टेकते रहे और जयकारे लगाते रहे। पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। गुरुद्वारों को करीब 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगे पुष्पों की खुशबू और बरसात में घाटी की सुंदरता को कई गुने बढ़ा दिया। इसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ आरंभ हुआ। इस दौरान हुक्मनामा भी सुनाया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित पूरे देश की सुख समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना की गई। अरदास के साथ ही वार्षिक यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो गया।
1: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज 23 मई को विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। बताते चले, आज तड़के सुबह घांगरिया से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था, जो कि घांगरिया से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर का बड़ा ही कठिन यह मार्ग है, लेकिन सिख श्रद्धालुओं की जो संगत होती है, जो श्रद्धालु होते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इतने उत्साह से इस रास्तों से हेमकुंड साहिब पहुंचे और 9 बजे यहां पहुंचने के बाद सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं के बीच बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के बीच सचखंड से गुरु जो दरबार साहिब है वहाँ पे लाया गया, वहाँ पे सुशोभित किया गया। उसके बाद शबद कीर्तन भजन यहाँ पे चलता रहा और इसके बाद जो 12 बजे है पहली अरदास यहाँ पे पढ़ी गई, उसके बाद हुक्मनामा पढ़ा गया। इसी के साथ इस वर्ष की जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो शुरू हो गई है। आज कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला।
0: पहले ही दिन 5,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंचे और पवित्र गुरुद्वारे में शीश नवाया। दूर दूर से पहुंचे लोगों के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि विश्वास दिखाई दे रहा था। कठिन चढ़ाई के बावजूद हर कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक दिन पहले यानी 22 मई को गोविंद घाट गुरुद्वारे से पहला जत्था पंज प्यारों की अगुवाई में रवाना हुआ था। भारी पुलिस सुरक्षा, बैंड बाजों की मधुर धुन और पवित्र निशान साहिब के साथ श्रद्धालुओं का यह कारवां आगे बढ़ा। रात्रि विश्राम घांगरिया गुरुद्वारे में किया गया। इसके बाद आज सुबह 6:30 जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। समुद्र तल से करीब 4,320 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में शामिल है। मान्यता है कि यहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। सप्तशृंग पर्वत और हिमालय की भव्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित ये स्थान सिख धर्म की अटूट आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। हर वर्ष मई और जून में कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होती है, जो अक्टूबर तक जारी रहती है। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। किसी के हाथ में प्रार्थना होती है तो किसी के चेहरे पर सुकून, लेकिन हर दिल में सिर्फ एक ही भावना होती है और वो है अटूट

0: यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आज सुबह मौसम में बदलाव देखने को मिला। अचानक तेज हवा और बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं गुजरात में भी मौसम ने करवट ली तो लोगों को गर्मी से राहत मिली। देखिए रिपोर्ट।
0: आसमान में छाए बादल, तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें शनिवार को सुबह सुबह दिल्ली और आसपास के इलाके में बड़ी राहत लेकर आई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पिछले कई दिनों से जारी तेज गर्मी के बीच मौसम का मिजाज अचानक बदला तो वीकेंड पर गर्मी से छुटकारे की उम्मीद परवान चढ़ने लगी। राजधानी के कई भागों में झमाझम बारिश हुई तो कुछ जगहों पर धूल भरी तेज आंधी ने मौसम का माहौल बदल दिया। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में पहले अलर्ट भी जारी किया था।
2: तो 43 से 45 डिग्री का सितम झेल रही दिल्ली एनसीआर के लिए अचानक मौसम में बदलाव हुआ है और ऊपर बादलों का साया, तो थंडरस्टॉर्म, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि थंडरस्टॉर्म के साथ हवाओं के अचानक से जो तापमान है वो 30 डिग्री के नीचे आ गया है। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों पर बूंदाबांदी भी आपको मिलेगी और थोड़ी सी राहत जरूर इसे तापमान में मिलेगी।
0: मौसम विभाग और मौसम के जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने इस तरह करवट ली। बताया जा रहा है कि उत्तर पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में सक्रिय हुआ था। इसके कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखने को मिला, जिससे तेज गर्म हवाओं के बीच धूल भरी आंधी आई और हल्की बारिश भी हुई। इस दौरान कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 56 से 81 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई।
3: राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से मौसम काफी गर्म हो रहा था, चिलचिलाती हुई धूप निकल रही थी और पारा 45 डिग्री के पार जा रहा था, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। लेकिन आज शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद लोगों को हल्की राहत मिली है, थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि काफी गर्मी थी।
0: हालांकि दिल्ली वालों के लिए गर्म से यह राहत मामूली रही, क्योंकि कुछ समय बाद दिन चढ़ने पर

0: फिर तेज धूप से गर्मी की पहले जैसी ही तपिश महसूस होने लगी। मौसम विभाग ने आने वाले कई दिनों तक तेज गर्मी की आशंका जताई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए आगाह किया गया है। हालांकि हाल फिलहाल में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, जिससे रात के वक्त गर्मी में कुछ कमी महसूस की जा सकती है। मौसम के बदलाव का असर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक में भी नजर आया। सुबह आसमान में बादल छाए और कई जगह हल्की हल्की बारिश हुई। इसके साथ ही चली ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। पिछले कई दिनों से रोहतक में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा था।
1: पहले बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे भट्टी के अंदर तप रहा था। यहाँ पर इतनी लू चल रही थी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था और इससे एकदम से चेंज हो गया। अभी बहुत राहत मिली।
2: गर्मी से राहत है, जो बहुत ज्यादा पारा चढ़ा हुआ था, 45 डिग्री 47 डिग्री तक हमारा रोहतक का पारा पहुंच गया था। ये बारिश आने से कुछ ना कुछ उससे कम होगा, लोगों को बहुत राहत मिलेगी, लोग बाहर निकलेंगे।
0: इससे पहले शुक्रवार को गुजरात में जामनगर के कालावड़ इलाके में अचानक हुई बरसात ने माहौल बदल दिया। कालावड़ शहर और आसपास के इलाकों में दिन भर तेज गर्मी और धूप के बाद बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हुई। बहरहाल अभी मानसून आने में देर है, ऐसे में जगह जगह गर्मी से तपती धरती को बीच बीच में बारिश की झरोखों से तरावट मिलती रहे तो लोगों को सुकून रहेगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और आशुतोष कुमार के साथ, रोहतक से सुरेंद्र सिंह और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मौसम में बदलाव का रुख पहाड़ों में भी दिख रहा है। कश्मीर से हिमाचल तक इन दिनों पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, जिसके कारण पारा गिर रहा है। सैलानियों के लिए यह मई में ही सैर सपाटे का शानदार मौका है। हालांकि दोजिला और रोहतांग के इलाकों में सैर के लिए पहुंच रहे लोगों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
4: हर तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी है। सड़कों से लेकर मैदानों और आशियानों तक हर तरफ बर्फ ही दिख रही है। इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे आप अंटार्कटिका में आ गए हों, लेकिन हकीकत में ये तस्वीरें कश्मीर की है। नॉर्थ कश्मीर में गुरेज की तुलैल वैली में इन दिनों ऐसा ही माहौल है। यहाँ बांदीपुरा को गुरेज घाटी से जोड़ने वाले राजदान टॉप इलाके में ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पूरा क्षेत्र सफेद हो गया। इसके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट आई है और पूरा इलाका जैसे विंटर लैंड बन गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कश्मीर में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। मई के महीने में यहाँ आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज अलग है। मौसम का ऐसा रुख जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहे बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। इस बीच जोजिंगला इलाके में भी भारी बर्फबारी हुई। रात के वक्त गिरते बर्फ के फाहे इलाके में बेहद मनमोहक माहौल पेश कर रहे थे। मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख में गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इसके कारण हर तरफ माहौल भीगा भीगा नजर आया। इसके साथ ही धूप में मुरझा रहे पेड़ पौधों में भी हरियाली की रौनक वापस आ गई है। ऐसे माहौल में श्रीनगर आ रहे सैलानी डल झील में शिकारे पर सैर का मजा ले रहे हैं।
5: वेदर अच्छा है और एकदम ठंडा मौसम है, बारिश भी हो रही है। ऐसा अभी देखो विंटर के कपड़े लोगों ने पहने तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। सर
6: एकदम बढ़िया है, क्लाइमेट यहाँ का एकदम बढ़िया आ रहा है, एकदम ठंडा मौसम है यहाँ पे।
4: कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी मौसम के बदले मिजाज की शानदार तस्वीर दिख रही है। शिमला में बीते दिनों तापमान लगातार 30 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा था, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ बारिश हुई है तो तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। हल्की फुल्की ठंडक और सुहावने मौसम के बीच सैलानी यहाँ पर खूबसूरत माहौल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी मौसम में बदलाव के कारण पारा गिरा है।
7: आज जो है दोपहर के जो हमारे टेम्परेचर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 6 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, जिनमें मुख्य रूप से हमारा हमीरपुर में 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरा है, कालपा में भी -11 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हुई है, शिमला में लगभग 9 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं पर ताबो और बिलासपुर में भी 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट दर्ज की गई है।
4: हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास सहित आसपास के इलाकों में हिमपात के बाद यहां की वादियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई हैं और पूरा इलाका जैसे जन्नत में बदल गया है। रोहतांग की ठंडी फिजाओं और गिरती बर्फ ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। बर्फ से ढकी चोटियां और सर्द हवाएं पर्यटकों को रोमांच का अलग ही अनुभव दे रही है।
8: आज सुबह से रोहतांग दर्रे सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू मनाली के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद यहां आए पर्यटक वो अब काफी खुश हैं क्योंकि इस तरह का मौसम के लिए वो यहां पे पहुंचे थे। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय ये कुल्लू का इलाका है, तो लोग जो है पर्यटक जो है वो खासकर जो नदी किनारे जो इस पूरे मौसम का जो लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों की बात करूं तो पहाड़ों पे अभी भी हल्की धुंध और हल्के अभी भी बादल जो है पूरे इलाके में छाए हैं।
4: यहां के कई इलाकों में हुई बारिश से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
9: नौतपा आने से पहले ही बहुत गर्मी हो गई थी, अभी बारिश का मौसम रिमझिम बारिश हो रही है, इससे फसल में भी किसानों को फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा, घूमने फिरने का सैलानी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे।
10: सुबह से बारिश हो रही है कुल्लू में और मौसम अच्छा है जी, जो कि लोगों ने फसल बीजी है, बीज रहे हैं कई, उसमें अच्छी राह मिलेगी। गर्मी भी बहुत अच्छी है, जाना उतनी गर्मी नहीं रही है जितनी की मतलब थी, उतनी नहीं है।
4: बहरहाल कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए सैलानियों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा और श्रीनगर से अष्टवाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश के तमाम राज्यों में इन दिनों गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी जगहों पर हीटवेव का असर भी दिख रहा है। पसीने छुड़ाने वाले इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देखिए इस बेतहाशा गर्मी में थोड़ी राहत पाने के लिए कैसे उपाय किए जा रहे हैं।

0: चिलचिलाती धूप और आसमान से बरस रही आग के बीच सबसे बड़ी चुनौती है सेहत को दुरुस्त रखना। देश के कई राज्य इन दिनों बेतहाशा गर्मी की मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री को छूने लगा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और गुजरात में हीट वेव का असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने तमाम राज्यों में एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी कर रखा है। जयपुर में भी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। जैसलमेर में सुबह से ही हर तरफ गर्म हवाओं का राज हो जाता है। दोपहर के वक्त गर्मी से बचने के लिए लोग बाहर कम निकलते हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने गर्मी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भीषण गर्मी से राहत के लिए सड़कों पर फायर ब्रिगेड से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शहर में सभी अहम जगहों पर पानी की फुहारों से राहत पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। एहतियात के तौर पर लोगों से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ में भी गर्मी अपने पूरे तेवर दिखा रही है। यहाँ गर्मी से बचने के लिए लोग पानी, छाछ और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी और तेज धूप की वजह से दिन के समय सड़कों पर भीड़ कम दिखती है। जूस और शीतल पेय की दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ दिखने लगती है। सरयू घाटों पर जहां आमतौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी, वहां भी अब गर्मी का असर दिखने लगा है। वाराणसी में भी गंगा घाटों पर गिने चुने श्रद्धालु ही दिख रहे हैं। यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए रोजाना लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से दोपहर के वक्त ज्यादातर लोग अपने होटलों से बाहर नहीं निकलते। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी अभी गर्मी के तेवर ढीले पड़ने वाले नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर थोड़े से एहतियात बरते जाएं, तो तपिश के ये दिन ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वाराणसी से रोशन, चंडीगढ़ से असीम, अयोध्या से मयंक और जैसलमेर से विमल के साथ जयपुर से देव अंकुर, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिनेमा के इस महाकुंभ में इस साल दुनिया भर के मशहूर सितारों की महफिल सजी। बॉलीवुड के कई मशहूर स्टार्स ने भी इस फेस्टिवल में खूब सुर्खियां बटोरी। फेस्टिवल के आखिरी दिनों में ऐश्वर्या राय के ग्लैमरस लुक की खूब चर्चा हो रही है।

0: बेहिसाब ग्लैमर, बेशुमार चकाचौंध, बेमिसाल फैशन और फिल्मी सितारों से सजी खूबसूरत महफिल, कांस फिल्म फेस्टिवल। फ्रांस के खूबसूरत शहर कान में पिछले 12 दिनों से सजा सिनेमा का सबसे बड़ा मेला आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड के दिग्गज और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से सजी महफिल का आज आखिरी दिन है। 79वें कान फेस्टिवल का आगाज जितना शानदार था, इसका समापन भी उतना ही लाजवाब हो रहा है। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में शुरू से लेकर अंत तक हिंदुस्तान का जलवा दिखा। कान की परमानेंट क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के साथ रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। कान में ऐश्वर्या का लुक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस बार तो पिंक ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके इस पिंक गाउन को पिंक लीटर्स 4 चांद लगा रहे थे। उनका ये लुक बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लग रहा था। ऐश्वर्या के पिंक गाउन के साथ आराध्या की रेड ड्रेस ने भी कान्स फिल्म फेस्टिवल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कान्स फेस्टिवल में इससे पहले ऐश्वर्या मिडनाइट ब्लू गाउन में बेहद खूबसूरत लगी। पेप्स को स्माइल और हैंड वेव करते हुए मरमेड गाउन में ऐश का स्टनिंग लुक फैंस को बेहद पसंद आया। पहले से स्लिम लग रही ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कान्स के रेड कार्पेट पर पेप्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते हुए और मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी बनाते हुए नजर आई। एक्ट्रेस ने गाउन को सेम कलर के दुपट्टे के साथ टीम अप किया। साथ ही साइड पार्टेड कर्ली हेयर्स और डायमंड इयररिंग्स के साथ ऐश्वर्या ने अपने लुक को शानदार बनाया। ऐश्वर्या कान्स में साल 2002 से नजर आ रही हैं। तब से लेकर आज तक वो स्टनिंग ही लगी हैं। उन्होंने कान्स के रेड कार्पेट पर अपने लुक्स को फ्लॉन्ट कर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। वो हर साल अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और फैंस ने भी उनके हर लुक पर अपना प्यार लुटाया है। ऐश्वर्या के साथ साथ इस बार आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस और मौनी रॉय का लुक भी खासा चर्चा में रहा। बॉलीवुड की इन खूबसूरत हसीनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों की दुनिया में हिंदुस्तान की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। कान्स फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। यह फेस्टिवल इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा की कोई सरहद नहीं होती, कला, काबिलियत और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। कान्स फिल्म फेस्टिवल सिनेमा से जुड़े दुनिया भर के सितारों का वो मेला है जो हर साल सिनेमा और फैशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लौटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: किसी शनि की स्थितियां किसी व्यक्ति को धनवान बना देती हैं। शनि की कौन सी स्थितियां धन के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? क्या करें उपाय ताकि शनि देव की कृपा से धन की मुश्किलें सुलझ जाएं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal and finalize everything from home.
6: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
5: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
7: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
8: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कि शनि देव की कृपा से आपको धन का लाभ कैसे हो सकता है और शनि आपको धनी कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक अचूक उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनि देव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा, और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा, लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7:30 चलेगी या जब आपकी ढैया चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा, ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं जब आपको धन की मुश्किल हो, धन की कठिनाई आपको परेशान करे। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में बैठा है, शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है तो ये धन की मुश्किल पैदा करेगा। अगर शनि नीच राशि में बैठा है और उसका नीचत्व भंग नहीं हुआ है, या सूर्य के साथ बैठा है और शनि की स्थिति ज्यादा निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि आपके लिए धन की हानि करवाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि है, शनि की स्थिति खराब है और शनि की साढ़े साती चले या ढैया चले, तो धन को लेकर के, पैसे रुपए के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से आपने शनि का रत्न नीलम पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की बड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो, उसका खान पान, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन की कठिनाई, धन की मुश्किल आपको परेशान करेगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, दुर्घटना से सावधान रहें, परिवार में विवादों से बचें, करियर के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो, तीसरे, छठे या ग्यारहवें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो, तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए या अपने घर में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की साढ़े साती चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है। व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन, पवित्र आहार हो, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है, या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है, तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें। कोई बड़ा निर्णय अभी ना लें। रिश्तों की समस्या से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग हैं। धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है, कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें 2 चाहें 10 चाहें जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा। अगर आप धन संबंधी समस्या तुरंत दूर करना चाहते हैं, तुरंत हटाना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। रोज सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें निरंतर, तो इससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कमजोर है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार और अगर छोटी उम्र के हैं तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रविवार के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप रविवार को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
17: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
18: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
19: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
16: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
22: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई। 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय।
23: देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए कामना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट। श्रद्धालुओं के लिए पवित्र अवसर में किया सरोवर में किया स्नान। शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। छब्बीस मई को अपने 30 साल पूरा कर रही वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण। कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह। 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से अधिक शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल। पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले, बेजवानों के लिए दाना पानी का इंतजाम। है जवानी तो इश्क होना है फिल्म का ट्रेलर रिलीज। फैंस बोले ब्लॉकबस्टर लोडिंग, 5 जून को रिलीज होगी फिल्म।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे। वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्सेस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी

0: सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड पर आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
1: एएमसी की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है, जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। एएमसी के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा, जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम एएसए रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम एएसए रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं, जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
0: एएसए दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है, जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है, जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
1: एएमसी का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। एएमसी में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है, जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
0: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है, और एमका में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है, तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है, प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है, प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
1: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए एएमसी में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
0: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी।

0: डायनेमिक होगी, चेंजेस आएंगे।
1: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
0: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
1: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
0: ये देखें कि दुनिया में किसके पास सेल टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स्थ जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को आपको फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं, ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 हैं उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving, and TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics, or just set the right tone with smooth soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: रक्षा तकनीक और जियोपॉलिटिकल हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में देखा गया है कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन के उभरा है, जो कि पहले रूस हुआ करता था। यानी कहा जा सकता है कि अब भारत के पास दो दो विश्वसनीय दोस्त हैं, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ फ्रांस है। फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी से 114 राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये डील भारतीय वायुसेना की ताकत को 50% तक बढ़ा देगी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने राफेल फाइटर जेट खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी का इंतजार है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है तो ये डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। प्रस्तावित राफेल डील की कुल लागत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है, यानी लगभग $26 अरब, जो इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बनाता है। समझौते के तहत कुल 114 राफेल लड़ाकू विमानों का F4 वर्जन खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, वहीं नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन का ऑर्डर भी दिया गया है। अब जब वायुसेना के लिए 114 राफेल का सौदा अंतिम रूप ले रहा है तो भारत के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे।
1: भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल विमानों के लिए एक संभावित कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, जिसके तहत शुरुआती दौर में 18 राफेल विमान बने बनाए रेडीमेड फ्रांस से इंग्लैंड में आएंगे और बाकी जो 96 राफेल विमान हैं वह भारत में निर्मित होंगे और फ्रांस इसके लिए भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कलपुर्जे भारत में जो बनेंगे 60% बनेंगे, 40% कलपुर्जे फिर भी फ्रांस से आएंगे। यानी अगर ये राफेल विमान भारत में आते हैं और जाहिर बात है वो अगले 30-40 साल तक उड़ेंगे, तो 40% कलपुर्जे जिनमें कि इंजन होगा, रडार होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम के पंप होंगे, ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ्रांस से ही आएंगे।
0: एयरफोर्स ने सितंबर 2025 में 114 राफेल जेट की मांग रक्षा मंत्रालय को भेजी थी। खबर यह है कि राफेल फाइटर जेट का सौदा मेक इन इंडिया मिशन के तहत किया जाएगा। डसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। भारत का कहना है कि फ्रांस तमाम 114 राफेल फाइटर जेट्स में गोला बारूद मिसाइलों को इंटीग्रेट करे और साथ ही साथ इसका पूरा डेटा भारत के साथ साझा करे, ताकि इसे रडार सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सके। विमानों के सोर्स कोड को लेकर बातचीत हो रही है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये सोर्स कोड क्या है। दरअसल सोर्स कोड एक तरह से फाइटर जेट का दिमाग होता है और उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकता है। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप विमान बनाने वाली कंपनी या फिर उस देश पर निर्भर रहते हैं। भविष्य में किसी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी आपको उनकी अनुमति की जरूरत पड़ती है।
1: सोर्स कोड जो है कंप्यूटर की वह कोड प्रणाली है जिसका इस्तेमाल करना पड़ता है अगर जहाज के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे नेविगेशन सिस्टम या वेपन डिलीवरी कंप्यूटर, उनको अगर मॉडिफाई करना हो, उनको अगर अपग्रेड करना हो तो सोर्स कोड की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रांस हमें सोर्स कोड नहीं देगा तो फिर भविष्य में जब भी हम भारत में उसको अपग्रेड करना चाहेंगे और समझिए मेड इन इंडिया मिसाइल या मेड इन इंडिया बॉम्ब्स रॉकेट फायर करना चाहेंगे, तो उसके लिए जो वेपन सिस्टम का जो कंप्यूटर है उसको अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से किसी इंजीनियर को आना पड़ेगा जो आके हमारी सोर्स कोड को सेट करेगा, उसके बाद ही हम भारत के मिराज, भारत के रफाइल से भारत में निर्मित हथियारों को फायर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा दुनिया में प्राय सभी फाइटर विमान के कॉन्ट्रैक्ट्स में किया जाता है। फ्रांस अगर हमें सोर्स कोड नहीं देता है तो ये कोई खास उत्पीड़न वाली या खास चिंता वाली बात नहीं है।
0: माना जा रहा है कि कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी, साथ ही ज्यादा तादाद में एक ही प्लेटफॉर्म होने से राफेल के रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी। भारत में बनने वाले विमानों में स्वदेशी कम्युनिकेशन सिस्टम फिट किए जाएंगे। इसमें विमान के लिए नेत्रा और फाल्कन AWACS लगेंगे। वहीं ग्राउंड बेस्ड रडार और ICCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ बेहद सुरक्षित तरीके से रियल टाइम टैक्टिकल डेटा एक्सचेंज कर पाएगा। राफेल के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी सर्वाइवेबिलिटी और रिलायबिलिटी, जो राफेल को दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चर्चाएं इस बात को लेकर होने लगी जब हमारे पास फिफ्थ जेनरेशन फाइटर जेट अमेरिका का F-35 और रशिया का Su-57 है, तो फिर हम 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब सीधा और साफ है और कहें कि रणनीतिक तौर पर ही इसका जवाब तलाशा गया, जिसके बाद राफेल को चुना गया, क्योंकि भारत का निशाना केवल इस्लामाबाद नहीं है बल्कि भारत का निशाना बीजिंग है। दशकों तक भारत की रक्षा खरीद का पैमाना ये होता था कि क्या ये पाकिस्तान के F-16 से बेहतर है, लेकिन राफेल डील इस मानसिकता के अंत की घोषणा है। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना अब चीन के J-10C और JF-17 पर निर्भर है, जिनसे निपटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती हिमालय के उस पार है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और उसका J-20 स्टेल्थ फाइटर। अरुणाचल और लद्दाख जैसे ऊंचाई और हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में युद्ध के नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर किसी भी विमान की कागजी स्पीड मैटर नहीं करती है, यहाँ पर कोल क्षमता और साथ ही साथ पेलोड क्षमता मापी जाती है और उस हिसाब से फिर विमानों का चयन होता है। राफेल को विशेष रूप से भारतीय जरूरतों के तहत ढाला जा रहा है, जो लेह में जमा देने वाली ठंड में भी चीन के J-20 पर भारी पड़ने का मादा रखता है।
1: जब भारत ने राफेल को लेना शुरू किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेस्ट टेस्ट पायलट्स ने भारत में राफेल को हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भी ऊपर उड़ाकर देखा कि क्या राफेल से जब हम एयर टू ग्राउंड लेजर वेपन या एयर टू ग्राउंड जीपीएस गाइडेड मिसाइल फायर करेंगे, क्या वो हाई अल्टीट्यूड में यानी 10,000-20,000 फीट की ऊंचाई पर अगर टारगेट है उस पर नेविगेट करके उस पर निशाना साध के उसको ध्वस्त कर सकते हैं। इन ट्रायल्स में राफेल बहुत ही शानदार तरीके से पास हुआ। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने राफेल खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति ली।
0: भारत के पास इस समय 4.5 जेनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए भारत को पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत महसूस हो रही है। भारत के पास रूस और अमेरिका से पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने के विकल्प हैं। अब अगर भारत दोनों देशों में से किसी एक के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की डील करता है तो दोनों में से कौन भारत के लिए बेहतर साबित होगा, ये भी समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अमेरिकी F-35 जेट और रूस Su-57 लड़ाकू विमान की ताकत और खासियत के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आसमान का असली बाजीगर कौन है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का Su-57 लड़ाकू विमान दोनों ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, दोनों ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे दोनों ही रडार की पकड़ में नहीं आते। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक यानी 1970 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं Su-57 की अधिकतम स्पीड 2 मैक यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए उसके हथियार, युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ ही किसी भी हालात में बचने के लिए फुर्ती बहुत जरूरी होती है। Su-57 लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन F-35 की तुलना में बड़ा है। F-35 फाइटर जेट में ऑल एस्पेक्ट सेल्ट की सुविधा है, जिसका मतलब ये है कि ग्राउंड बेस्ड रडार के जरिए इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इसके ठीक उलट Su-57 में मजबूत फ्रंट एस्पेक्ट स्टेल्थ है, सामने से उड़ते समय जैसा कि घुसपैठ करने वाले लड़ाकू विमानों को रोकते समय होता है, Su-57 बिना पहचाने दुश्मन के लड़ाकू विमान के पास जाता है और उसे काफी नजदीक से निशाना बना सकता है। Su-57 की डिफेंसिव इंटरसेप्शन क्षमता F-35 की तुलना में इसके ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली रडार सेंसर सूट पर आधारित है।

तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका के F-35 विमान को दरअसल हमला करने के लिए ही चुना गया, क्योंकि अमेरिका की सोच ऐसी है। अमेरिका का मानना है कि सेल्फ डिफेंस का सबसे अचूक तरीका है हमला करना, जबकि रूस के विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो बचाव की मुद्रा में रहता है। रूस ने लंबी दूरी के हवाई हमलों की तुलना में एयर डिफेंस को प्राथमिकता दी है, यानी अपने हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करने वाले दुश्मन के विमानों को मार गिराने की ताकत। रूस के Su-57 को अपने विशाल भूभाग की रक्षा और अलग अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अमेरिका ने नाटो सहयोगियों की रक्षा, कच्चे माल के परिवहन और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए F-35 को डिजाइन किया है। Su-57 लड़ाकू विमान को सीमित स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ रूसी हवाई क्षेत्र के भीतर से एयर डिफेंस और कम दूरी के हवाई हमलों के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद अपनी सीमाओं के अंदर दुश्मनों के हमले को रोकना है। दरअसल F-35 लड़ाकू विमान को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के विवादित इलाके में घुस भी सकता है और वहां सही तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम भी दे सकता है। अगर सरल शब्दों में हम F-35 की काबिलियत की बात करें तो इसे एक्चुअली रूस के लिए ही तैयार किया गया है, ताकि उसके मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से वो बच के बाहर निकल आए। F-35 विमान अपनी छुपने की क्षमता, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने की ताकत और दूसरे विमानों के साथ जुड़कर लड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि भारत के लिए रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट में कौन सा बेहतर है। Su-57 और F-35 दोनों ही स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को अलग अलग भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा भारत के हिसाब से इस बात का आकलन करना जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान शानदार साबित हो सकता है।

अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दोनों के बीच में तुलना कर लेते हैं। दरअसल अमेरिका का F-35 अगर देखा जाए तो रूस के Su-57 के मुकाबले पीछे है, क्योंकि Su-57 सबसे अपग्रेडेड और नया फाइटर जेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिकी F-35 ने रण क्षेत्र में अपनी काबिलियत को परखा भी है और इसका लोहा भी मनवाया है। अगर आपको याद होगा तो हाल फिलहाल में ईरान पर हमला करने के लिए ही F-35 का इस्तेमाल किया गया था और रडार में आए बिना किस तरीके से उसने सटीक हमला किया था। वहीं अगर Su-57 की बात कर ले तो अभी तक केवल यूक्रेन युद्ध में ही इसका इस्तेमाल हुआ है, जिनके पास सही तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के मुकाबले कम से कम F-35 21 साबित हो रहा है। किसी भी लड़ाकू विमान का अधिग्रहण सिर्फ क्षमताओं के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 की गिनती दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में होती है। ये पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। बावजूद इसके भारत ने अमेरिका के इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी कई वजह हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के बारे में कहा ये जाता है कि सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है। F-35 का डेटा लिंक अमेरिका के सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी न्यूक्लियर कमांड और संवेदनशील सामरिक डेटा को अमेरिकी निगरानी में नहीं रख सकता। भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध जैसे हालात में उसका किल स्विच किसी और के हाथ में हो।

0: अगर हम F-35 लेते हैं तो एक तो अमेरिका से उसके हमें क्रिटिकल कंपोनेंट्स को लाना पड़ेगा। कहा जाता है कि उसका स्टार्ट ऑन स्विच रिमोट कंट्रोल्ड है। इसी तरह से कहा जाता है कि F-35 का जो सेंट्रल सर्वर है वो हमेशा अमेरिका में उनका जो मास्टर कंप्यूटर सेंटर है उससे जुड़ा रहता है। ऐसी हालत में अमेरिका को हमेशा पता रहेगा कि भारत ने F-35 को कहां पर डिप्लॉय किया है, पूर्वी सीमा में, पश्चिमी सीमा में, या हो सकता है दुनिया में और कहीं पर। जाहिर बात है भारत नहीं चाहेगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के विमान दुनिया में कहीं पर भी डिप्लॉयड हों तो अमेरिका को उसकी मिनट टू मिनट सूचना मिलती रहे।
1: अतीत की बात करें तो अमेरिका ने F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोककर पाकिस्तान को खूब परेशान किया था। इसके उलट फ्रांस का रिकॉर्ड बेदाग है। वो भारत के किसी भी युद्ध, चाहे वो करगिल हो या फिर बालाकोट के बाद के हालात, उस वक्त में हथियार सप्लाई नहीं रोकी। अब बात रूस के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 की कर लेते हैं। पांचवी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को रूस की ओर से ऑफर किया जा चुका है, वो भी भारत की शर्तों के साथ। अब भारत फिफ्थ जनरेशन Su-57 की बजाय 4.5th जनरेशन राफेल को क्यों तरजीह दे रहा है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है, लेकिन Su-57 को लेकर भारत फूक फूक कर कदम उठा रहा है और इसके पीछे वजह वाजिब भी है। दरअसल रूस खुद इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से टूटी हुई है और भारत इस समय ये खामियाजा नहीं उठाएगा। किसी ऐसे देश से लड़ाकू विमान लेना जिसकी सप्लाई चेन टूटी हो, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो, तो जाहिर सी बात है कि भारत भी इसको लेकर फूक फूक कर कदम रख रहा है। रूस के Su-57 को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी पूरी तरह से परखा हुआ फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं बना है। रूस खुद इसे सीमित संख्या में ही अपनी वायुसेना में शामिल कर पाया है और बड़े पैमाने पर इसका ऑपरेशनल इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है। इसके इंजन, स्टेल्थ क्षमता और मेंटेनेंस को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की रडार से बचने की क्षमता अमेरिका या चीन के फाइटर जेट्स के मुकाबले कमजोर है।
0: अगर हम रूस से Su-57 खरीदते हैं तो रूस ने यह कहा है कि सोर्स कोड भी दे देगा। अमेरिका F-35 का सोर्स कोड हमें कभी नहीं देगा। इसी तरह से रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत में Su-57 बनता है तो रूस जो है भविष्य में उसको रशियन GPS यानी कॉस्मोस से जोड़ने का प्रावधान रखेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि युद्ध के दौरान अमेरिकन F-35 अगर वो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं तो हमें अमेरिकन GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना पड़े। ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जाएं और पीछे से अमेरिकन जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह, उनका GPS या तो बंद कर दे भारत के लिए या भारत के लिए थोड़ा सा डिले कर दे, ढीला कर दे।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारत की नीति साफ है, ताकत ही शांति की सबसे मजबूत गारंटी है। और यही वजह है कि भारत देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बारीक से बारीक पहलू का विश्लेषण कर रहा है। हवाई ताकत से किसी भी तरह का समझौता ना हो, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले एक दशक के भीतर अपनी ताकत को दोगुना करने का एक मेगा प्लान तैयार किया है। फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों के सौदे को अंतिम रूप देने के साथ ही भारत ने अगले 10 साल में 430 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी AMCA की तैयारी एयरफोर्स को वो ताकत देगी जो एक साथ दो मोर्चों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा।
1: रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है। सिनेमा के इस महाकुंभ में इस साल दुनिया भर के मशहूर सितारों की महफिल सजी। बॉलीवुड के कई मशहूर स्टार्स ने भी इस फेस्टिवल में खूब सुर्खियां बटोरी। फेस्टिवल के आखिरी दिनों में ऐश्वर्या राय के ग्लैमरस लुक की खूब चर्चा हो रही है।

0: बेहिसाब ग्लैमर, बेशुमार चकाचौंध, बेमिसाल फैशन और फिल्मी सितारों से सजी खूबसूरत महफिल, कांस फिल्म फेस्टिवल। फ्रांस के खूबसूरत शहर कान में पिछले 12 दिनों से सजा सिनेमा का सबसे बड़ा मेला आज अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड के दिग्गज और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों से सजी महफिल का आज आखिरी दिन है। 79वें कान फेस्टिवल का आगाज जितना शानदार था, इसका समापन भी उतना ही लाजवाब हो रहा है। इस बार के कान फिल्म फेस्टिवल में शुरू से लेकर अंत तक हिंदुस्तान का जलवा दिखा। कान की परमानेंट क्वीन कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या के साथ रेड कार्पेट की शान बढ़ाई। कान में ऐश्वर्या का लुक हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। इस बार तो पिंक ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके इस पिंक गाउन को पिंक लीटर्स चार चांद लगा रहे थे। उनका ये लुक बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लग रहा था। ऐश्वर्या के पिंक गाउन के साथ आराध्या की रेड ड्रेस ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कांस फेस्टिवल में इससे पहले ऐश्वर्या मिडनाइट ब्लू गाउन में बेहद खूबसूरत लगी। फैब्स को स्माइल और हैंड वेव करते हुए मरमेड गाउन में ऐश का स्टनिंग लुक फैंस को बेहद पसंद आया। पहले से स्लिम लग रही ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर पोज में फोटोज क्लिक कराई। कांस के रेड कार्पेट पर फैब्स और फैंस को फ्लाइंग किस करते हुए और मुस्कुराते हुए हार्ट इमोजी बनाते हुए नजर आई। एक्ट्रेस ने गाउन को सेम कलर के दुपट्टे के साथ टीम अप किया। साथ ही साइड पार्टेड कर्ली हेयर्स और डायमंड इयररिंग्स के साथ ऐश्वर्या ने अपने लुक को शानदार बनाया। ऐश्वर्या कांस में साल 2002 से नजर आ रही हैं। तब से लेकर आज तक वो स्टनिंग ही लगी हैं। उन्होंने कांस के रेड कार्पेट पर अपने लुक्स को फ्लॉन्ट कर इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया है। वो हर साल अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और फैंस ने भी उनके हर लुक पर अपना प्यार लुटाया है। ऐश्वर्या के साथ साथ इस बार आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस और मौनी रॉय का लुक भी खासा चर्चा में रहा। बॉलीवुड की इन खूबसूरत हसीनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों की दुनिया में हिंदुस्तान की दावेदारी को और मजबूत कर दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। यह फेस्टिवल इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा की कोई सरहद नहीं होती, कला, काबिलियत और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती। कांस फिल्म फेस्टिवल सिनेमा से जुड़े दुनिया भर के सितारों का वो मेला है जो हर साल सिनेमा और फैशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Tech is moving fast, and employers want people who get it. At WGU, you'll earn a computer science degree that teaches you the skills behind AI. Online, accredited, built for what's next. Get started at wgu.edu.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: कि कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
10: सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की आवेदन की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के चमोली में आज विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। छब्बीस मई को अपने 30 साल पूरा कर रही वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण, कर्नाटक के विदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह। 3 दशकों में सूर्य किरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजवानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हां, आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था, लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mellow.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थी। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक

0: सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
1: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के घर में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी

0: सी इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें। लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक PM बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग PM बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो वंदे मातरम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a tank. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
6: चाय की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
12: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा अरफानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा अरफानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
2: कि कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं, आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं, शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: Good news today is really good. In this, वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
7: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शबद कीर्तन और गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए CBSE ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकरण, कर्नाटक के बेदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकरण ने किए 800 से अधिक शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के खुले कपाट, श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, फूलों से किया गया गुरुद्वारे का श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। धूमधाम से गुरु ग्रंथ साहिब को लाया गया हेमकुंड दरबार, शब्द कीर्तन के बाद पढ़ी गई पहली अरदास। कपाट खुलने के दौरान भारतीय सेना और पंजाब बैंड की धुन पर गूंजा पूरा हेमकुंड साहिब, पहले दिन ही 6,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई वाली एक यात्रा करके श्रद्धालु पहुंच रहे हेमकुंड साहिब दरबार, विदेशों से भी आते हैं श्रद्धालु। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चार धाम में दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के जारी है प्रयास। सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम, 8,11,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम में 5,56,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, आज 32,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री में 3,34,000 से ज्यादा और यमुनोत्री धाम में 3,39,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, पंडे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा की। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद रजाचंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया दिव्य श्रृंगार। ड्राई फ्रूट और फल मिठाई का लगाया गया भोग, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। उज्जैन पहुंचे कई फिल्मी सितारे, महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, अभिनेत्री अंकित लोखंडे और अभिनेता विक्की जैन ने महाकाल की रात्रि उषण आरती में हुए शामिल, विधि विधान से की पूजा। स्थापना के 30 साल पूरे करने जा रही भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम, 26 मई को कर्नाटक में होगा मेगा एयर शो। सूर्यकिरण टीम अपनी सटीक और रोमांचक हवाई कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध, कम ऊंचाई वाले पर बेहद करीबी फॉर्मेशन में उड़ान सबसे बड़ी खासियत। वायुसेना का राजदूत भी मानी जाती है सूर्यकिरण टीम, 27 मई 1996 को कर्नाटक के बेदर एयरफोर्स स्टेशन पर की गई स्थापना। पिछले 30 सालों में देश ही नहीं विदेशों में भी एयर शो कर चुकी है सूर्यकिरण टीम, 800 से ज्यादा एयर डिस्प्ले में दिखा चुकी है शौर्य। सूर्यकिरण टीम ने चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में भी किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अनुशासन, साहस और समर्पण टीम वर्क का जीवंत उदाहरण है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज, अत्याधुनिक मेड इन इंडिया एयर प्यूरिफिकेशन तकनीकों का सीएम ने किया निरीक्षण। दिल्ली में 21 जगहों पर लगाए गए एयर प्यूरिफायर, हर घंटे करीब 3 लाख लीटर हवा को साफ करने का लक्ष्य। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते पहाड़ों का रुख कर रहे हैं सैलानी। हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर दिखा आस्था का मेला। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस को मिली बड़ी तकनीकी मजबूती। हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन की हुई शुरुआत। हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन सीधे घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती फॉरेंसिक जांच करने में होगी सक्षम। करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है वैन की कीमत। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई। 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दोबारा जांच और सत्यापन के बाद सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। हरियाणा के सीएम नरसिंह सैनी का बड़ा ऐलान। नीट अभ्यर्थियों को 20 और 21 जून को मिलेगी मुफ्त रोडवेज की बस सेवा। सहारनपुर में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को राहत देने की पहल। जवानों को दिए गए 50 हाईटेक हेलमेट। लिथियम बैटरी से चलता है इसी हेलमेट में लगा कूलिंग फैन। शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों को ट्रायल के लिए दिया गया हाईटेक हेलमेट। भीषण गर्मी के बीच पहाड़ बने सैलानियों के पहली पसंद। मनाली में बड़ी संख्या पहुंच रहे सैलानी। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। शिरडी पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साईं दरबार में लगाई हाजिरी किए दर्शन। साईं दरबार में राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। विधि विधान से की आराधना। जम्मू कश्मीर के शोपिया में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। शोपिया में लोगों ने गुलाब का फूल देकर किया उपराज्यपाल का स्वागत। पदयात्रा में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जबलपुर में किसान संकल्प परिहार का कमाल। जापान में उगने वाला दुनिया का सबसे महंगा मियाज़ाकी आम जबलपुर में हो रहा तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी को दिया व्हाइट हाउस आने का न्योता। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम बड़ी उपलब्धि। सिर्फ 22 दिनों में यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख के पार। जम्मू श्रीनगर के बीच 2 मई से शुरू हुई थी वंदे भारत। घाटी के लोगों को मिल रही बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा। यूपी के सहारनपुर में भीषण गर्मी से राहत का इंतजाम। चौराहों पर लगे ग्रीन नेट और मिस्ट स्प्रे। यूपी के औरैया में गर्मी से पक्षियों को बचाने की सराहनीय पहल। पेड़ों पर दाना और पानी वाले विशेष घोंसले लगा रहे लोग। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी में पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम बी एस येदियुरप्पा ने विधि विधान से की पूजा। परिवार भी रहा मौजूद। तिरुमाला के वेंकटेश्वर स्वामी के दरबार पहुंचे यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह। विधि विधान से की पूजा। एमपी के धार में भोजशाला में सुबह सुबह हुई पूजा। भगवान की उतारी गई आरती। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दिया लेटर। पूरे देश में 47 जगहों पर हुआ आयोजन। महिला वर्ल्ड कप के लिए मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना हुई भारतीय महिला क्रिकेट टीम। एयरपोर्ट पर धूमधाम से की गई विदाई। ईंधन संरक्षण की दिशा में सीएम देवेंद्र फडणवीस की शानदार पहल। मुंबई से शिरडी जाने के लिए ट्रेन का किया इस्तेमाल। राजकोट में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा देश में विकास की गति लगातार बढ़ रही है। नैनीताल में 21वें राज्यपाल गोल्फ कप टूर्नामेंट का शुभारंभ। कई खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। देहरादून में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का किया उद्घाटन। वाराणसी में बनेगा भव्य अर्बन हार्ट। काशी की कला संस्कृति को मिलेगा नया मंच। 3D में जारी। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर। देश में मानसून समय से पहले दे रहा दस्तक। जल्द केरल में एंट्री ले सकता है मानसून। अब नीनो के प्रभाव से बावजूद मानसून की एंट्री समय से पहले। मौसम विभाग का अनुमान 26 मई को केरल पहुंच सकता है मानसून। 4 दिन पहले या बाद की भी जताई आशंका। मौसम विभाग ने दी जानकारी और मानसून के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अनुकूल माहौल। केरल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने 6 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर जमी बर्फ। गुरेज के राजदान दर्रे पर हुई जमकर बर्फबारी। 6 इंच से अधिक जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। यातायात प्रभावित हुआ। कश्मीर के जोजिला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी जारी। IMD का अगले 48 घंटों के दौरान आंधी तूफान के आसार। जम्मू में धीरे धीरे सूरज दिखा रहा है गर्मी, गर्म हवाओं के साथ लगातार बढ़ रहा पारा। एमपी के 37 जिलों में लू का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील की। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक समेत दक्षिणी भारत के मौसम सिस्टम में मानसून के करीब आने पर रुक रुक कर बारिश। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बारिश। हिमाचल में भी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में गरज के साथ बारिश की संभावना। अहमदाबाद में गर्मी के चलते बढ़े सब्जियों के दाम, बाजारों में पसरा सन्नाटा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, 14 राज्यों में आंधी तूफान की संभावना। यूपी के कई जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और झांसी समेत कई जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी। पंजाब, हरियाणा, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के लिए भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। देश के 50 शहर में यूपी के 26 शहर सबसे अधिक गर्म, लखनऊ में भी गर्म शहरों की लिस्ट में शामिल। चंडीगढ़ में भी गर्मी के चलते सड़कों पर सन्नाटा, घटी पर्यटकों की संख्या। वलसाड में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, तापमान में आई भारी गिरावट। भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में गर्मी और लू का प्रकोप जारी, कई इलाकों में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन ने लोगों से दोपहर में घरों में रहने की अपील की। अयोध्या में भीषण गर्मी के चलते घटी राम भक्तों की संख्या, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अयोध्या में बढ़ती गर्मी से बढ़ी एनर्जी ड्रिंक, गन्ने के जूस की मांग। वाराणसी में भी लगातार बढ़ रहा तापमान, घाटों पर पसरा सन्नाटा। वाराणसी में प्रशासन ने दोपहर में गंगा स्नान पर लगाई रोक, दोपहर में नाव परिचालन पर भी लगाई गई रोक। मुरादाबाद में स्थानीय लोगों की सराहनीय पहल, चौक चौराहों पर बांट रहे शरबत और पानी। ऑरा वर्ल्ड टूर के अपने गीतों से दुनिया भर में जल बखेर रहे दिलजीत दोसांझ, अटलांटा में शानदार प्रस्तुति से बांधा समा। तरसेम जस्सर की पंजाबी फिल्म दस्तार का टीजर आउट, 1980 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित, 17 जून को बॉक्स ऑफिस पर देगी दस्तक। पंजाबी फिल्म चढ़ती कला का धमाकेदार ट्रेलर जारी, विमल कौर खालसा के जीवन पर आधारित है, 29 मई को फिल्म होगी रिलीज। इश्कनामा से सामने आया शहनाज गिल, जय रंधावा का फर्स्ट लुक टीजर जल्द होगा रिलीज, फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कमल हासन ने किया पीएम मोदी की ऊर्जा बचाने की इस अपील का समर्थन, ईंधन से जुड़े मौजूदा मुद्दों पर की बात, सरकार को सुझाव भी दिए। यूक्रेन में वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन, सैन्य ड्रोन ऑपरेटर्स ने लिया हिस्सा। वाइल्ड ड्रोन प्रतियोगिता में यूक्रेन के 19 प्रमुख सैन्य यूनिट्स और ड्रोन निर्माता कंपनियों ने लिया हिस्सा, वीडियो गेम कंट्रोलर से ऑपरेट होता है ड्रोन। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चीन तैयार, मिशन जुवकवान सैटेलाइट सेंटर से होगा लॉन्च। बांग्लादेश में ईद से पहले दुर्लभ सफेद भैंसा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, सुनहरे बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप दिया गया नाम। ढाका के एक फॉर्म में पाला गया दुर्लभ भैंसा, करीब 700 किलो के भैंसे के माथे पर लटकते सुनहरे बाल की वजह से लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। कान के रेड कार्पेट पर बैठी आराध्या संग एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय की एंट्री, 3.5 लाख की ड्रेस में लूटी लाइमलाइट। ऐश्वर्या और आराध्या के लुक ने खींचा सबका ध्यान, ब्लश पिंक गाउन ड्रेस, ऐश्वर्या का ग्लैमरस लुक। लाइट ऑन वुमेन्स के वर्थ गाला के लिए एक फ्लाउ गाउन पहना, डायमंड रिंग, झुमके और क्लासिक हील्स ने बढ़ाई शोभा। बेटी आराध्या लाल गाउन और मैचिंग कैप में बेहद दिखी खूबसूरत, मां ऐश्वर्या के साथ ग्रैंड एंट्री के साथ कान में किया डेब्यू। ऐश्वर्या राय ने गुलाबी ग्लैम को सबको चौंकाया, सोशल मीडिया पर फैंस ऐश्वर्या आराध्या के लुक की कर रहे हैं जमकर तारीफ। है जवानी तो इश्क होना है में दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन, फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट, 5 जून को होगी रिलीज।
8: वायलेंस का मामला है, मारता वारता है तुम्हें?
9: नो,
8: तुमसे प्यार नहीं करता?
9: बहुत ज्यादा प्यार करता है। He wants to make love to me all the time.
8: क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए सर। I want to be a father.
7: माधुरी दीक्षित ने माँ बहन के ट्रेलर लॉन्च के शेयर की तस्वीरें, येलो प्रिंटेड साड़ी में दिखी बेहद खूबसूरत, फिल्म 4 जून को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। तुलू रस्मों से हुई एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की गोद भराई, सुनहरी साड़ी के साथ 16 भव्य 16 श्रृंगार अगस्त बनने जा रही है मां। मुंबई में प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के सुरों का चला जादू, भक्ति संगीत कॉन्सर्ट में शानदार गीतों से बांधा समा। फीफा वर्ल्ड कप एंथम में कर दिखेंगे शकीरा, डाई डाई गाने से टूटेगा 16 साल पुराना रिकॉर्ड, गाने पर करेंगे लाइव परफॉर्म।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
10: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरबाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा दरबार में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: शनि एक ऐसा ग्रह है जिससे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन जो शनि ग्रह है वो कर्मों का फल देता है। देखिए, जो शनि ग्रह है ना, वो रंग को राजा बना सकता है, लेकिन अगर ये कमजोर है आपकी कुंडली में तो ये आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि शनि की कृपा से, उनकी उपासना से किस तरीके से दूर होंगे धन संबंधित समस्याएं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप धन संबंधी समस्या तुरंत दूर करना चाहते हैं, तुरंत हटाना चाहते हैं, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। रोज सवेरे उठ करके सूर्योदय के पहले अगर पीपल के वृक्ष में जल डालें निरंतर, तो इससे आपकी धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी।
0: तो ये बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 24 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से समझते हैं कि शनि ग्रह का धन की प्राप्ति से और धन संबंधित योग से आखिरकार क्या संबंध है, और किस तरीके से पंडित जी शनि देव की उपासना करके धन संबंधित बाधाएं अगर जीवन में आ रही हैं उससे छुटकारा मिल सकता है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके जीवन में धन की मुश्किल है, धन की समस्या है, तो शनिदेव की कृपा से, शनिदेव की पूजा करके आप अपनी धन संबंधी मुश्किल को कैसे दूर कर सकते हैं। शनि का धन के मामलों से क्या संबंध है? देखिए, शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों का कारक है और आपके कर्मों का फल देने वाला ग्रह है। आपके कर्म के अनुसार आप धनवान होंगे या आप दरिद्र होंगे, ये निर्धारण जीवन में शनि देव ही करते हैं। और शनि की विशेष स्थितियों से धन की प्राप्ति सरल भी हो सकती है और कठिन भी हो सकती है। शनि अगर कुंडली में फेवरेबल है तो धन आसानी से मिलेगा, और अगर निगेटिव स्थान पर है, नकारात्मक सिचुएशन में है, तो धन पाना आपके लिए कठिन होगा। देखिए, शनि की जो महादशा होती है वो लगभग चलती है 19 साल तक। तो अगर शनि निगेटिव है कुंडली में तो 19 साल तक धन के लिए कष्ट होगा, लंबे समय तक आपको तकलीफ भोगनी पड़ेगी, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर शनि नकारात्मक है, निगेटिव है कुंडली में, तो जब आपकी 7:30 चलेगी या जब आपकी 2:30 चलेगी तो उस समय में आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आपके कर्म शुभ नहीं हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो शनि जीवन में धन की बहुत हानि करवाता है। यानी धन होगा या नहीं होगा ये प्रारब्ध तो है ही, उसके अलावा आपके अपने कर्म भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप जीवन में धनवान होंगे या दरिद्र होंगे।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना

0: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: पंडित जी, अगर शनि ग्रह कुंडली में नेगेटिव है, कमजोर है, तो वो व्यक्ति को किस तरीके से धन संबंधित समस्याएं देता है, अपार कष्ट देता है और धन की हानि किस तरीके से करवाता है, ये हमें बताइए।
0: देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं या आपके बहुत सारे कर्म ऐसे हो सकते हैं जब आपको धन की मुश्किल हो, धन की कठिनाई आपको परेशान करे। अगर शनि कुंडली के अशुभ भाव में बैठा है, शनि कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा है तो ये धन की मुश्किल पैदा करेगा। अगर शनि नीच राशि में बैठा है और उसका नीचत्व भंग नहीं हुआ है या सूर्य के साथ बैठा है और शनि की स्थिति ज्यादा निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि आपके लिए धन की हानि करवाएगा। अगर कुंडली में प्रतिकूल शनि है, शनि की स्थिति खराब है और शनि की 7.5 चले या 2.5 चले तो धन को लेकर के, पैसे रुपए के मामले को लेकर के जीवन में दिक्कतें होंगी। अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, अपने मन से आपने शनि का रत्न नीलम पहन लिया है तो ऐसी स्थिति में भी धन का बड़ा नुकसान हो सकता है, धन की बड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध ना हो, उसकी आदतें अच्छी ना हो, उसका खान पान, उसका व्यवहार अच्छा ना हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता हो, अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी धन की कठिनाई, धन की मुश्किल आपको परेशान करेगी।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दुर्घटना से सावधान रहें, परिवार में विवादों से बचें, करियर के मामले में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आज के लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से बिना देर किए जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न आस्था शुक्ला ने हमें लिखा है और आस्था हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1993। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है कानपुर। आस्था कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आस्था, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आने वाला समय है उसमें आपका विवाह होने की संभावना बनती है संभवतः साल 2027 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बन रहे हैं। विवाह करते समय अगर कुंडली मिला लें तो मुझे लगता है इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अगला सवाल वो किसका ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और इस पर अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए, बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न शुभाशीष ने हमें लिखा है और शुभाशीष हमें पश्चिम बंगाल कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1983। जन्म का समय 2:10। जन्म स्थान है नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में कुछ दिनों से काफी दिक्कतें चली आ रही हैं और मैं नौकरी बदलने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी में बदलाव कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का समय आपका जुलाई के महीने से आएगा। जुलाई 2026 से नवंबर 2026 के बीच में आप नौकरी में बदलाव कर पाएंगे और नौकरी में बदलाव के साथ साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। तो आने वाले समय में आपका करियर भी ठीक दिख रहा है और बदलाव से आपको लाभ भी होगा। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ

0: लाभ होगा।
1: देखिए शनि नेगेटिव होता है तो व्यक्ति को जीवन में धन संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन देखिए शनि जो है वो कर्म फल देवता होता है। ऐसे में शनि व्यक्ति को अपार धन की स्थिति में देता है, यानी शनि कब बना देता है रंक को राजा, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए शनि की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब शनि आपको धनवान बना देता है, जीवन में धन देता है। कब ऐसा होता है? अगर शनि कुंडली में अनुकूल हो तीसरे छठे या ग्यारहवें भाव में बैठा हो और फेवरेबल सिचुएशन में हो तो व्यक्ति को शनि की वजह से जीवन में धन मिलता है। अगर कुंडली में शनि उच्च राशि में बैठ जाए, फेवरेबल हो जाए, अनुकूल हो जाए या अपने घर में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन अवश्य मिलता है। अगर कुंडली में शनि बहुत बढ़िया हो, विशेष अनुकूल हो, शनि की महादशा चले, शनि की साढ़े साती चले, शनि की ढैया चले, अगर ऐसा हो जाए तो शनि की महादशा में, साढ़े साती में, ढैया में व्यक्ति को अपूर्व धन मिलता है, व्यक्ति के धन के भंडार भर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो, अच्छा आचरण हो और उसका आहार सात्विक हो, पवित्र भोजन पवित्र आहार हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को धन बहुत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति पर उसके माता पिता का या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है तो शनि की कृपा होगी और आप कष्ट से बचे रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव या भगवान कृष्ण का भक्त है या कुछ स्थिति में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का भी भक्त है, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या हनुमान जी, अगर कोई व्यक्ति इनका भक्त है, इनकी पूजा करता है तो शनि के नकारात्मक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति को धन और सम्मान दोनों वैसे भी मिल जाते हैं।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृष को धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, इस समय आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को

0: अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसे में धन प्राप्ति के लिए शनि देव को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी उपासना कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं।
0: देखिए, नौकरी का सीधा मतलब होता है शनि। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी करते हो, बिना शनि कृपा के नौकरी संभव नहीं है। तो आप ऐसा क्या उपाय नियमित रूप से करें कि नौकरी में समय पे इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, आपको सफलता मिले, क्या उपाय करेंगे? अगर आप नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो शनिवार को पहले हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा के बाद कम से कम 108 बार शनि देव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा और जब मंत्र जप कर लें तो किसी निर्धन व्यक्ति को क्वाइंस या सिक्कों का दान करिएगा। 20 का सिक्का हो, 50 का हो, वो मटेरियल नहीं है, कोई भी क्वाइन हो, आप 1 चाहें 2 चाहें 10 चाहें जितने भी क्वाइन चाहें आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं और ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो नौकरी पाना आपके लिए सरल होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि व्यवसाय यानी बिजनेस में धन प्राप्ति के लिए शनि देव को किस तरीके से प्रसन्न किया जा सकता है।
0: देखिए, व्यवसाय का शनिदेव से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि रोजगार ये भी एक तरीके का है और रोजगार का मतलब होता है शनि, तो अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और चाहते हैं कि आप व्यापार में धन कमा सकें, व्यापार में धन के हालात बेहतर हो सके, तो शनिदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे? हर शनिवार को प्रातः काल अपने घर से 1 लोटा भरकर पीपल के वृक्ष के पास जाइए और उसमें जल डालिए सूर्योदय के पहले और शाम को उसी पेड़ के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा एक मुखी दीपक लोहे की कटोरी में जलाइएगा और दीपक जलाकर वहीं पर खड़े होकर या बैठकर 1 बार शनि चालीसा का पाठ करिएगा। पाठ के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाइएगा या भोजन का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, इस दिन सात्विक रहते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करते, पवित्र भाव से पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके व्यापार के हालात में सुधार होगा।
1: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुमार मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, कोई बड़ा निर्णय अभी ना लें, रिश्तों की समस्या से बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो है फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना।

0: बदलाव के योग हैं, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न अभय ने हमें लिखा है और अभय हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 6 अक्टूबर 1990। जन्म का समय दोपहर में 3:45। जन्म स्थान है जयपुर। अभय कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अब है आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी छोड़ करके बिल्कुल व्यापार में जा सकते हैं और उसका उपयुक्त समय अभी चल रहा है। आप बिल्कुल व्यापार में जाइए, आप सफल होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। आपको करना बस इतना है कि इस ईमेल आईडी पर अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज देने हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न श्री कृष्ण जी ने हमें लिखा है और श्री कृष्ण जी हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1965, दोपहर 2 बजे, जन्म स्थान है जामनगर। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुझे छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कर्ज कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप कर्ज से जल्दी मुक्ति पा जाएंगे। 2027 के मध्य तक आते आते आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा और भविष्य आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में शनि की ये 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, बहुत मुसीबत का ये समय है, लगातार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कौन सा सरल उपाय है जिसे कर करके जीवन से जो छोटी छोटी समस्या है इसका समाधान हासिल हो सकता है।
0: जी देखिए, अगर शनिदेव की 7.5 है या शनिदेव की ढैया चल रही है और शनि गोचर में अनुकूल नहीं है, कुंडली में उसके पॉइंट्स अच्छे नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको साढ़े साती या ढैया में कष्ट होगा और ज्यादातर कष्ट आपको धन का ही होगा। तो ऐसी स्थिति में एक स्तुति है शनिदेव की, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसको आप रोज शाम को 108 बार पढ़िए, या अगर आप 3 बार भी पढ़ लेंगे रोज शाम को तो बहुत अच्छा है, 3 बार संध्या को, या फिर और अच्छा चाहते हैं तो 1 बार सुबह 1 बार शाम को दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए। शनिवार की शाम को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनि की साढ़े साती की वजह से या ढैया की वजह से धन का नुकसान आपको नहीं होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 24 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

0: दिन 24 मई को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है, पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन कुल मिला के धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अक्टूबर के महीने के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या नकारात्मक सोच से, निगेटिव सोचने से भी बीमारियां पैदा होती हैं? देखिए, कोई भी बीमारी पहले मन में आती है, फिर वो शरीर में दिखाई देती है, अभिव्यक्त होती है। ज्यादातर बीमारियों का चिंतन करने से या बीमारियों के बारे में ज्यादा सोचने से कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ती है और बीमारी होती जरूर है। सकारात्मक आप चिंतन करें, आप कितने भी बीमार हों, अगर आप पॉजिटिव सोचें और मन में ये सोचें कि मैं इस बीमारी से बाहर निकल आऊंगा, तो निश्चित रूप से आप बाहर आ जाएंगे।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 24 मई 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 24 मई 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ के प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 24 मई रविवार, इस दिन शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा।
1: और अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को जीवन की बेहतरी के लिए क्या जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मेष। जीवन को अच्छा करना चाहते हैं और मेष राशि है आपकी, तो आप रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़िए, इसी से आपका जीवन बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
0: जी, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व कमजोर है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद 108 बार और अगर छोटी उम्र के हैं तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रविवार के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप रविवार को ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा।
1: पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNTA के साथ।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like

रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: tough.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हां, आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melody.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के घर में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे।

0: आन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और ढाई साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें। लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमेलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता

0: दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay,
3: come on, let it go.
2: Nora Jones,
4: the heart is drained.
2: Daniel Caesar,
5: we both know how
2: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,00,000 के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लौटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, कई लोगों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा, यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: हाउ आर यू? गुड बॉय, नाइस टू सी यू। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉपिक।
8: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 20 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण, कर्नाटक के वेदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्य किरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे। वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम ASA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम
0: की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवीं जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4-5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic.
4: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: कि कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं, आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं, शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: The TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good talk.
4: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज. दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज. संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र. नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा. बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर.
2: इसके ऊपर उसके ऊपर गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
10: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट. श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में किया स्नान. शब्द कीर्तन गुरवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं. शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना. देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद. देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र. कहा, भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित. सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई. 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन. दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय. 20 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकिरण. कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह. 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले. यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल. पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले. बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम.

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हां, आपको बता दें एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती है अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melody.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री। जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी

0: एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गर्बाटेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें। लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस MSI पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक PM बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग PM बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits.

0: to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुरा कर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hey, how are you?
7: Oh, fine.
6: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
8: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 20 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के वेदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: यहां एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एविनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवीवेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्सेस फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता है बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले भी लगा है, पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो है वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर क्या है, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवीं जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35, जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास सेल टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे, ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं, बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रो की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good topic.
5: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena,
7: La Que Buena,
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: get The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: कि कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं, आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं, शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: द
3: The wide world of sports comes alive on TuneIn. With top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
11: Gone! Home run!
3: NHL. College basketball.
12: He shoots it immediately.
13: He makes it in.
3: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
14: One lap to go.
3: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
15: Hey, how are you?
16: I'm fine.
15: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good talk.
17: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: मुझे तकरीबन
2: नहीं है, कम से कम
18: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान। शब्द कीर्तन गुरवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई। 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन। दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकिरण। कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह। 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल। पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले। बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallet.
0: आपको बता दें कि मोदी, मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी, बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हर आमो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक दिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे

0: नेता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस एमएसआई पार्टी से जुड़ गईं जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: अच्छी खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा अरफानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा अरफानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

0: बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लौटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
6: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही।
1: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK-1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK-2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ऐसे रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम AESA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: AESA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है, पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेन पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो हैं वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्रा टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल्स हैं वो भी लग सकती हैं, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो यूएस उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टुडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड्रन को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4-5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 है उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग, और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving, and TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: How are you?
8: Oh, fine.
7: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
9: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: कि कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 20 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: 操！
1: 慢慢。
2: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती हैं अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: आपको बता दें कि मोदी, मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास यह है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी के एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, ना ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बारटेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है, एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हरामो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबाटेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार

0: को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा संसद में आकर नहीं बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है।
0: दरअसल जॉर्जिया मेलोनी अपने शुरुआती दिनों से ही मानवीय मूल्यों और इटली की गौरवशाली परंपरा की पैरोकार रही हैं। उनकी विचारधारा शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस एमएसआई पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही हैं।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

0: पानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कानफिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लौटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुराकर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों
4: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: How are you?
8: Oh, fine.
7: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
9: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा

वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

0: आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के फिफ्थ जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है।
1: एएमसीए प्रोजेक्ट को करीब 15,803 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। ये भारत के स्वदेशी रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर के लिए बेहद अहम परियोजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश ने 15 मई को पुट्टपर्थी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की नींव रखी। यानी पुट्टपर्थी में विमान के पुर्जों को जोड़ने और परीक्षण की सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि एएमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे डीआरडीओ की यूनिट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले एलसीए तेजस मार्क 1 बनाया है, मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब वो 5वीं पीढ़ी का एएमसीए विकसित कर रही है, जो भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और दूसरे खोजी उपकरणों के लिए लड़ाकू विमान को अदृश्य बनाना या फिर उसकी पकड़ में आने की संभावना को कम करना है।
2: फाइटर जेट अगर देखा जाए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम माना जाता था और उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई जब से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई। और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अगर हमें एयरक्राफ्ट के रूप में समझना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम चाहेंगे क्या एक एयरक्राफ्ट के अंदर। एक एयरक्राफ्ट के अंदर वो पायलट सेफ होना चाहिए, वो जहाज सेफ रहना चाहिए और वापस आना चाहिए अपना मिशन करने के बाद। अब उसको करने के लिए तरीके दो निकाले गए कि जहाज जो है वो विजिबल ना हो। मैं कहूंगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि वो विजिबल ना हो, वो एक गलत विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे, वो वाली विजिबिलिटी प्रोड्यूस करे जो वो उसके एडवांटेज में हो, साइज के एडवांटेज में हो, डिटेक्शन के एडवांटेज में हो।
1: भारतीय वायुसेना मौजूदा दौर में एक अहम परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां उसे पुरानी होती तकनीक और भविष्य के युद्ध प्रणालियों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वो टू फ्रंट वॉर जैसे हालात का आसानी से सामना कर सके।

0: एक और चीन तिब्बत सीमा पर लगातार बुनियादी ढांचे, रडार नेटवर्क और फिफ्थ पीढ़ी के विमानों की तैनाती कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन में जुटा है। चीन की मदद से पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है। दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग भारत के लिए रणनीतिक दबाव पैदा करता है। ऐसे में वायुसेना को जल्दी से जल्दी आधुनिक विमान खरीदने की जरूरत है।
1: अगर भारत को दुश्मन के इलाके में घुसना है, चुपचाप वहां पर हमला करना है और सुरक्षित तरीके से वहां से वापस आ जाना है, तो इसके लिए भारत को स्टेल्थ तकनीक की बहुत ज्यादा जरूरत है। AMCA इस तकनीक को काफी हद तक पूरा करने में मदद करेगी।
0: स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही तैयार हो रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए AMCA में खास तरह की बनावट और रडार से निकलने वाली किरणों को अब्सॉर्ब यानी अवशोषित करने वाली टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। AMCA में इंटरनल वेपन बे लगा है, यानी हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे ताकि उसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहे। AMCA में मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन तकनीक होगी। इससे पायलट दुश्मन के खतरों को बहुत पहले ही देख और ट्रैक कर पाएगा। शुरुआती स्क्वाड्रन यानी AMCA MK1 में अमेरिकी GEF-414 इंजन लगाए जाने की उम्मीद है, जबकि भविष्य के संस्करण MK2 में इससे ज्यादा ताकतवर यानी संयुक्त रूप से विकसित इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विन इंजन वाले AMCA में ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल के साथ साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को भी लैस किया जाएगा।
1: रक्षा जानकारों का मानना है कि AMCA न सिर्फ भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगा, बल्कि इससे भारत अपने आत्मनिर्भर के लक्ष्य की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ जहां हमारे विमानों को नई ताकत और तकनीक मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ये विमान हम खुद ही अपने यहाँ ही बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। यानी सीधे तौर पर भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा।
0: देश में तैयार होने की वजह से भारत के पास AMCA के सॉफ्टवेयर और कोड का पूर्ण नियंत्रण होगा, जिससे युद्ध के समय उसमें बदलाव करना या फिर उसे अपग्रेड करना आसान होगा।
2: अगर कोई चीज आपके अपने देश की है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप और हम देश के हैं तो हम अपने देश के लिए सोचेंगे, देश हित के लिए सोचेंगे, देश के लिए जान दे देंगे, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसी तरह एमका एयरक्राफ्ट जो है, जो हमारा देश एस्पायर कर रहा है बनाने का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ मेक इन इंडिया का, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपके अपने ही देश का है। दूसरा एडवांटेज अगर गिनना शुरू करें तो उसकी एक इकोनॉमिक एडवांटेज है कि आपका वो पैसा जो दुनिया के बाहर जा रहा है वो आपके अंदर रहेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट में जो जॉब्स क्रिएट होंगे वो आपके लिए होंगे, आपकी इकोनॉमी में इजाफा होगा। कल आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में एक और बड़े इजाफे की तरफ आप काम करेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रातों रात शुरू नहीं होती है। आप अगर किसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप उसको फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है।
0: अब कैसे होगा भारत का अपना स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA, ये भी जान लीजिए। AMCA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर KR नीली के मुताबिक F-35 और Su-57 हैवी वेट कैटेगरी यानी कि 30 टन के पांचवी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, जबकि AMCA मीडियम कैटेगरी यानी कि 25 टन क्लास का पांचवी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें वेपन अंदर होते हैं यानी बाहर से दिखाई नहीं देते। AMCA की पहली फ्लाइट 2028 के आखिर तक होगी, यानी तब ये अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट के साथ स्क्वाड्रन बनाने की योजना में है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में DSI यानी डायवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट को जोड़ा गया है। पारंपरिक लड़ाकू विमानों में इंजन तक हवा पहुंचाने के लिए जटिल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि रडार तरंगों को परिवर्तित करते हैं। DSI में इन पुर्जों की जगह एक विशेष उभार होता है जो हवा के बहाव को कंट्रोल करता है। साथ ही DSI में कोई हिलने वाले पुर्जे नहीं होते जिससे विमान का रडार सिग्नेचर काफी कम हो जाता है।
2: डाइवर्टलेस सुपरसोनिक जो आपकी इनलेट होती है वो आपके जहाज के अंदर जो आपका जिस स्पीड पर वो चल रहा है जो इनलेट ऑफ एयर है वो जो फ्रंटल जो रडार है उसको वो एब्जॉर्ब करने का जो मटेरियल है वो लगा होता है। उसमें होता बेसिकली ये, अगर आम सरल भाषा में समझे तो वो स्लो डाउन करेगा एयर के फ्लो का सबसोनिक स्पीड के ऊपर, और वहां पर हम देखते हैं कि जेट इंजन में जो एयर इनटेक का जो मामला है उसके ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके वजह से ना केवल आप एक स्पीड अचीव कर पाते हैं बट एक सुपरसोनिक स्पीड में आपकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम हो जाती है।
0: AMC की असली ताकत में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है, यानी ये फाइटर जेट ड्रोन सैटेलाइट और दूसरे फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है जिससे खतरे से निपटने में काफी कम वक्त लगेगा। AMCA के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार का सबसे उन्नत संस्करण लगाया जाएगा। ये रडार गैलियम नाइट्रेट तकनीक पर आधारित होगा जो इसे पुराने रडार की तुलना में ज्यादा रेंज और स्पष्टता देगा। इसका डिटेंशन रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होने की उम्मीद है और एक साथ 50 लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और कई मिसाइलों को अलग अलग लक्ष्यों पर गाइड कर सकता है। उत्तम ASA रडार में लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे दुश्मन को ये पता नहीं चल सकता कि उस पर रडार से नजर रखी जा रही है या फिर नहीं। उत्तम ASA रडार में 18 अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स दिए गए हैं जो इसे हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री मिशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
2: ASA दुनिया का अब एक एसेंशियल रडार बनता चला जा रहा है जिसको मैं कहूंगा कि ये एक सेंसर की टेक्नोलॉजी है जो कि आपको स्पीड, स्टेल्थ और जैम प्रूफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी काम आती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसकी जो जो रेज है हाईली रिलायबल है क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो आपके लाइटनिंग स्पीड पर स्टीयर करते हैं पूरे के पूरे स्काई में। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका जो काम करने का तरीका है, डिटेक्शन का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो जाता है और उसकी जो मल्टी फंक्शनैलिटी है वो डेफिनेटली उसके जो वेपन सिस्टम्स हैं उसके साथ एक इंटीग्रेशन हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है इस बीम को अट्रैक्ट मतलब इंटरसेप्ट करने के लिए। इसका जो इसमें जो बेसिक काम है वो टाइनी छोटे छोटे सॉलिड स्टेट के मॉड्यूल्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव बैक होते हैं।
0: AMCA का कॉकपिट और इसकी हथियार ले जाने की क्षमता इसे पांचवी पीढ़ी के विमानों में सबसे आधुनिक बनाती है। AMCA में पैनोरमिक डिस्प्ले लगा है, यानी एक विशाल टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि पायलट को युद्ध क्षेत्र का 360 डिग्री विजुअल मुहैया कराएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वॉइस कमांड का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी पायलट बोलकर कोई भी कमांड दे सकता है जिससे पायलट को हर समय बटन दबाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट के लिए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी लगा है। पायलट अपनी हेलमेट के जरिए ही टारगेट को देख और लॉक कर सकेगा।
2: अगर हम कॉकपिट की बात करें तो कॉकपिट हमेशा से एक जहाज का बड़ा मेल पार्ट रहा है और AMCA में जो हम नेक्स्ट जनरेशन का ग्लास डिजाइन लगा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4K रेजोल्यूशन जो है वो लार्ज इलाके का पैनोरामिक व्यू स्ट्रेट अवे जो पायलट को देता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज है। रियल टाइम उसका जो फ्लाइट डाटा है प्लस उसकी जो टैक्टिकल मैपिंग है प्लस जो उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारी चीजें पायलट को मदद करती हैं। एक एडवांस एवियोनिक्स उसके अंदर जो है वो भी अपने आप में देखा जाए तो हाईली इंटीग्रेटेड सेंसर जो है वो काम आते हैं।
0: टारगेट लॉक करने से लेकर उसे तबाह करने तक के लिए AMCA में अलग अलग तरह के हथियारों की ताकत सौंपी गई है। हवा से हवा में अटैक करने के लिए अस्त्र मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। हवा से जमीन पर हमला करने के लिए स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अटैच किया जा सकता है। वहीं हवा से जमीन और हवा से समंदर में हमला करने के लिए ब्रह्मोस एनजी को एएमसी में अटैच किया जा सकता है।
2: कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एमका अपने आप को डेवलप कर पाएगा, बट अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसमें मल्टी रोल के लिए हर तरह का हथियार लगाया जा सकता है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल्स ले लीजिए, अस्त्र टाइप की ले लीजिए, क्लोज कॉम्बैट की जो मिसाइल है वो भी लग सकती है, एयर टू ग्राउंड वाली जो है, जो हमारी फेमस ब्रह्मोस है वो भी इसके अंदर जो स्टैंड ऑफ अटैक करने के लिए काबिलियत रखती है, एंटी रेडिएशन से रिलेटेड रुद्रम टाइप मिसाइल्स जो है वो भी इसमें काम आ सकती है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम्स भी इसमें अपलोड किए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी वैरायटी होगी जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्रेस होगी, डायनामिक होगी, चेंजेस आएंगे।
0: भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। अब स्टेल्थ कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। पहला है आकार। विमान को नुकीले कोणों और सपाट सतहों के साथ डिजाइन किया गया है। ये रडार तरंगों को वापस भेजने के बजाय दूसरी दिशाओं में बिखेर देता है। दूसरा है रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। विमान की बॉडी पर विशेष रसायनों की कटिंग की जाती है जो रडार ऊर्जा को सोख लेती है और उसे गर्मी में बदल देती है। तीसरा है इंटरनल वेपन बे, यानी हथियार को विमान के बाहर अटैच करने के बजाय विमान के अंदर रखा जाना, जिससे उनका रडार सिग्नेचर कम हो सके। चौथा है इंजन हीट मैनेजमेंट। विशेष नोजल के जरिए इंजन की गर्म गैसों को ठंडा या फैला दिया जाता है ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उसे न पहचान सके।
2: स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में समझना है तो एयरक्राफ्ट का शेप और साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर। उसमें जो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसकी जो कोटिंग है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करती है। उसके जो इंटरनल बेस है, दैट मीन्स जो सारा उसके ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह लगे हैं वो उसके अंदर के हैं, उसके बाहर लटक नहीं रहे हैं। जो एक्सटर्नल पॉड्स होते हैं उनके ऊपर लटकने से उतना ही आसानी से जो रडार है वो उसको कैच कर पाता है, क्योंकि रडार बीम वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस रडार उसको कंटिन्यूस फॉलो कर पाता है। इसी तरह उसका जो हीट सिग्नेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाज जब उसकी स्पीड बढ़ती है तो ऑब्वियस बात है कि वो हीट जनरेट करता है। सो उस हीट को आप उस लेवल पर या जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ऊंचाई पर, वो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो हीट को और ठंडे को जहाज के अंदर अगर एक बार सर्कुलेट कर पाते हैं तो आप उस हीट को अवॉइड करते हैं, जो कि रडार या मिसाइल अपने आप में कैच करता है। सो अगर मोटे तौर पर देखें ये सभी चीजें मिलाकर नॉइस को, उसकी विजिबिलिटी को, उसकी इफेक्टिवनेस को एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की वजह से वो जहाज सक्सेसफुली अपने आप को सर्वाइव कर पाता।
0: आने वाले वक्त में भारत तक जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट तैयार करने का, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स है। फिलहाल दुनिया के तीन देश ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं और ये तीन देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका के पास दो तरह के पांचवी जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं, F-22 और F-35। चीन के पास भी दो तरह के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, J-20 और J-35। जबकि रूस का पहला पांचवी पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है Su-57। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि विमान पूरी तरह से गायब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जब तक दुश्मन उसे रडार तक पहचान पाता है तब तक विमान हमला करके वापस जा चुका होता है।
2: स्ट्रेट अवे ये देखें कि दुनिया में किसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या नहीं, कम है या ज्यादा एक अलग बात है, बट इफेक्टिवली अगर जहाज के ऊपर काबिलियत देखी जाए तो US उसमें माहिर है। उसके F-24 F-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ लैस माने जाते हैं। इसी तरह रशिया ने भी इसको क्लेम किया है, हालांकि वो काफी पीछे है, बट उनका जो Su-57 जो एयरक्राफ्ट है उसमें उनका क्लेम है कि यस वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली उसे यूज कर रहे हैं। चाइना अगेन एक सक्सेसफुल कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जिसने अपने JF-20s और J-35 में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एज ऑन टूडे ये तीन ही कंट्री है जिनके पास फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की करतूतें किसी से छुपी नहीं है। हर पल ये देश भारत के खिलाफ साजिशों का तानाबाना बुनते रहते हैं। चीन के पास फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है और वो सिक्स जनरेशन प्लेन की तैयारी में है। खबर यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन की डील करने की तैयारी में है। ऐसे में ये डील भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती है। चीन और पाकिस्तान के फ्रंट को देखते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। भारत को फाइटर जेट्स की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में 18 जेट्स होते हैं। ऐसे में भारत को 756 फाइटर जेट्स चाहिए। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 29 स्क्वाड्रन यानी तकरीबन 522 लड़ाकू विमान है।

0: ऐसे में फाइटर जेट स्क्वाड को एक लेवल पर लाना अर्जेंट जरूरत है ताकि दोनों मोर्चों पर टकराव की स्थिति में हालात नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ऐसे में भारतीय वायुसेना के घटते स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए राफेल का बेड़ा भारत आने वाला है। फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स भारत आएंगे, यानी अब टू फ्रंट वॉर की नौबत भी आ जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए नो टेंशन।
1: ये डील भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, भारतीय वायुसेना के लिए स्पेशली? हमारे स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बहुत जल्दी से डिप्लीट होती जा रही है और हमारे को ये जो गैप है जो कि 6-8 स्क्वाड्रन हमारे को अगले 4 से 5 साल में मिल जाएंगे। ये जहाज राफेल भारतीय नेवी के पास भी है, 26 हैं उनके पास, 114 हम लेने हैं। बात ये हो रही है कि नेवी और भी लेगी, तो ये भारत के पास जब 200 प्लस जहाज हो जाएंगे अगले कुछ सालों में, तो इसका कंप्लीट MRO जो कि ऑलरेडी हैदराबाद में सेटअप है साफरन का, वो इंजन्स भारत में असेंबल होंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी भारत को देगा, इंजन मैन्युफैक्चरिंग की शेयर करेगा।
0: पहले यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, फिर अमेरिका के साथ ट्रेड डील, और अब फ्रांस के साथ भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील। ये दिखाता है कि भारत के साथ दुनिया क्यों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। चीन के साथ भरोसे की कमी है क्योंकि दुनिया जानती है कि उसके वायदे और दावे में कितना दम है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो किसी को भी धोखा दे सकता है। रूस के कई हथियारों को कॉपी कर चीन ने मेड इन चाइना वेपन तैयार किए हैं, जबकि भारत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूस भारत मिलकर कई हथियार बना रहे हैं, उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और ये भरोसा ही है कि आज फ्रांस भी भारत में आकर हथियारों के निर्माण और उनके मेंटेनेंस के लिए फैसिलिटी तैयार करने जा रहा है। दरअसल फ्रांस के मामले में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक भारत के लिए अच्छा रक्षा साझेदार है जो कि अभी तक रूस हुआ करता था। फ्रांस हमें राफेल दे रहा है, और न सिर्फ राफेल दे रहा है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हुई है, यानी कि 50% कलपुर्से भारत में ही बनेंगे। इसका सीधे तौर पर मतलब है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर तकनीक विकसित करके भारत किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं होगा। मोदी और मैक्रों की केमिस्ट्री दिखाती है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरा है। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि उनकी दोस्ती अब जमीन, आसमान और समंदर से आगे बढ़कर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
3: जाए। कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेश दौरों से बचें और अपने ही देश में घूमें, तो आप भी इस संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बनाइए व्लॉग, और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hey, how are you?
7: Good boy.
6: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
7: Madam. डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
8: I'm in the game. I should I join with this G2-3?
5: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
3: कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्यकिरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्यकिरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।

अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर डिप्लोमेसी की दुनिया में एक नए युग का आगाज कर दिया है।

0: very, very good coffee.
1: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। जी हाँ, आपको बता दें, एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया भर में जानी तो जाती है अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए, लेकिन समूचा यूरोप उन्हें आयरन लेडी मानता है। दरअसल मेलोनी का व्यक्तित्व संवेदना और फौलाद का अनोखा कॉम्बो है। डिप्लोमेसी को लेकर भी मेलोनी की सोच और समझ गजब की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी हालिया मेलोडी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
2: How are you?

0: डिप्लोमेसी की दुनिया में मेलोडी के नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। 15 मई को 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण में 20 मई को जब इटली पहुंचे, तो इटली और भारत का 8 दशक पुराना रिश्ता अचानक ही नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दरअसल साल 2000 के बाद किसी भी भारतीय पीएम का इटली का ये पहला द्विपक्षीय दौरा था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक गिफ्ट पैक दिया। आप कह सकते हैं कि किसी एक देश के पीएम द्वारा किसी दूसरे देश के पीएम को दिया जाने वाला ये शायद सबसे सस्ता गिफ्ट था। लेकिन इस सस्ते गिफ्ट को मेलोनी ने जिस तरह से ग्लैमराइज किया, उससे भारत और इटली के बीच के प्रगाढ़ होते संबंधों की मुनादी पूरी दुनिया में हो गई। मेलोनी ने मेलोडी टॉफी के गिफ्ट पैक को लेकर पीएम मोदी के साथ मात्र 11 सेकंड का एक वीडियो अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया और महज 6 घंटे में ही मेलोडी डिप्लोमेसी के इस वीडियो को करीब 11 करोड़ व्यूज मिल गए।
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Melt.
0: आपको बता दें कि मोदी मेलोनी और मेलोडी के सोशल मीडिया इम्पैक्ट का अपना एक खास पसे मंजर है, पृष्ठभूमि है। दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर ये लफ्ज जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। यूरोप की आयरन लेडी मेलोनी का ह्यूमर किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जून 2024 में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो हंसते हुए कहती हैं, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम।
1: हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम।
0: काबिले गौर है कि मोदी और मेलोनी पिछले 3.5 वर्षों में अलग अलग सम्मेलनों में कुल 7 बार मिल चुके हैं, लेकिन बीते 20 मई को इटली की राजधानी रोम में हुई मुलाकात डिप्लोमेसी के लिहाज से मील का पत्थर साबित हुई है। पीएम मोदी के इटली पहुंचने से लेकर वतन वापसी के लिए टेक ऑफ करने तक मेलोनी ने मोदी के साथ बिताए एक एक पल को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें साझा की। सबसे पहले मेलोनी ने बेहद गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का अपने देश में स्वागत किया। उसके बाद एक ही कार में बैठकर दोनों नेता रोम की सबसे मशहूर ऐतिहासिक धरोहर कोलोसियम पहुंचे। खास बात यह है कि कोलोसियम रोम का सबसे पुराना स्टेडियम है। इसे करीब 2000 साल पहले रोमन साम्राज्य के गौरवशाली कालखंड में बनाया गया था। प्राचीन रोम में इस स्टेडियम में जानवरों के बीच लड़ाइयां आयोजित की जाती थीं। साफ है कि 2000 साल से इसका वजूद बरकरार है, जिसकी वजह से इसे रोमन साम्राज्य की ताकत और इंजीनियरिंग के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। इसी स्टेडियम की अलग अलग लोकेशन से मेलोनी ने मोदी के साथ अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कमाल ये है कि दुनिया मोदी मेलोनी की इन तस्वीरों में उलझी हुई थी, उसी दौरान इटली और भारत के रिश्तों का सबसे मजबूत दस्तावेज तैयार हो रहा था। पीएम मोदी के दौरे के आखिर में जब दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब दुनिया को पता चला कि इन लाइटर मोड वाली तस्वीरों के पीछे कूटनीति की कितनी गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मेलोनी ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 14 बिलियन यूरो से बढ़ाकर साल 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा, एयरोस्पेस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारतीय छात्रों, शोधार्थियों और ट्रेंड प्रोफेशनल्स के इटली में जाकर काम करने और इसके लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक पहल तैयार करने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। खास बात यह है कि कूटनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ ही मेलोनी के मन में भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को लेकर गहरा सम्मान है।
1: As we know very well, the strength of the relationship between two countries is not only measured by the depth of the political relationship or in terms of economic figures, but it is also indicated by the ability to bring our populations together, to be able to create opportunities for mutual knowledge. That's why we decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have our central old cultures develop a dialogue and make them more and more connected.
0: मेलोनी वैश्विक मंचों पर बेशक अपने ह्यूमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक और कूटनीतिक समझ बहुत गहरी है। सबसे खास ये है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का वे तहे दिल से सम्मान करती हैं। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने हिंदी की एक मशहूर कहावत परिश्रम ही सफलता की कुंजी है का स्टाइलिश इस्तेमाल किया।
1: Parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India, and it is often used in a very popular way of saying, Parishram hi safalta ki kunji hai.
0: भारतीय संस्कृति के साथ अपने लगाव को मेलोनी समय समय पर प्रकट करती रही हैं। पिछले महीने 24 अप्रैल को मेलोनी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का झुमका पहने नजर आईं। फॉर्मल आउटफिट में झुमका पहने मेलोनी बिल्कुल भारतीय नारी की तरह नजर आ रही थी। जून 2024 में इटली में आयोजित G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारतीय संस्कृति के प्रति मेलोनी के लगाव की झलक देखने को मिली थी। G7 शिखर सम्मेलन में मेलोनी ने पीएम मोदी समेत सभी भारतीय प्रतिनिधियों का स्वागत सनातनी अंदाज में नमस्ते करते हुए किया था। बतौर मेजबान भारतीय प्रतिनिधियों का नमस्ते के साथ स्वागत तो कूटनीतिक मेजबानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेलोनी पिछले साल जब यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका के दौरे पर गईं, तो वहां अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए ही मिलीं। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मिलने की मेलोनी की तस्वीरें भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुई थीं।
2: राजनीति मेलोनी को विरासत में नहीं मिली, न ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि सियासी गलियारे में आसानी से एंट्री मिल जाती। इतना ही नहीं, मेलोनी जब एक साल की थी तो उनके पिता ने दो बेटियों और पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ घर बसा लिया। मेलोनी को बचपन बेहद मुश्किलों भरा मिला। पेट भरने के लिए इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। बेहद कम उम्र से छोटे मोटे काम करने पड़े, यहाँ तक कि इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर की भी नौकरी की। बेहद दिलचस्प है एक बार टेंडर से पीएम बनने तक का ये सफर।

0: लहरों के साथ मिलकर नौका पार करने का हुनर तो हरामो खास के भीतर होता है, लेकिन इतिहास के अनमोल पन्नों पर रोशनाई की चमक उन्हीं की रंग लाती है जो धारा के विपरीत तैरने का दम रखते हैं। जीवन की दुर्धर्ष धाराओं को चीर कर कामयाबी के अलभ्य किनारे तक पहुंचने वाली ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत है जॉर्जिया मेलोनी। इटली के 161 साल के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया को अगर यूरोप की आयरन लेडी कहा जाता है तो इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं। सिर्फ इटली ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, जॉर्जिया मेलोनी पूरे विश्व की नारी शक्ति के लिए प्रेरणा की अजस्र स्रोत हैं, क्योंकि इस महिला ने हालात से लड़कर तमाम बाधाओं को परास्त कर संघर्ष के रथ पर सवार होकर इटली के सर्वोच्च पद का सफर तय किया है। पहली बार 2021 में इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई अपनी आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने एक जगह लिखा है,
1: मेरा कभी ये मानना नहीं रहा कि एक महिला को केवल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। राजनीति किसी जेंडर विशेष की अमानत तो नहीं, बल्कि सभी के लिए है, सबकी भलाई के लिए है। अगर मेरी जैसी किसी महिला को कहा जा रहा था कि संतान की हसरत है तो एक तरफ हो जाओ, तो कॉल सेंटर में नौकरी करने वाली गर्भवती युवती के लिए क्या उम्मीदें रखी जाएं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे व्यवधान नहीं है, बल्कि व्यवधान को पार करने में हमारी मदद करते हैं।
0: काबिले गौर है कि अपनी आत्मकथा में महिलाओं के अधिकारों का मुखर समर्थन करने वाली मेलोनी ऑटोबायोग्राफी प्रकाशित होने के करीब एक साल बाद ही इतिहास रचते हुए इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। इटली के एक नाइट क्लब में बार टेंडर से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का मेलोनी का सफर दुश्वारियों और कठिनाइयों से लड़ने की अनूठी दास्तान है। कभी वैश्विक सभ्यता के केंद्र बिंदु रहे रोम में 15 जनवरी 1977 को पैदा हुई जॉर्जिया मेलोनी के अपनी मां के गर्भ में आने के बाद से ही दुश्वारियों ने दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। दरअसल मेलोनी के पिता फ्रांसिस्को टैक्स एडवाइजर थे और मां अन्ना उपन्यासकार। ये परिवार रोम के एक पॉश इलाके कैमिल्यूचिया में रहता था, लिहाजा आर्थिक तंगी तो नहीं थी, लेकिन मेलोनी के जन्म के पहले से ही पिता फ्रांसिस्को और मां अन्ना के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई थी। आई एम जॉर्जिया माय रूट्स माय प्रिंसिपल में जॉर्जिया ने लिखा है,
1: जब मैं गर्भ में थी तो घर के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि मां ने अबॉर्शन कराने का फैसला लिया। इसके लिए वो हॉस्पिटल भी चली गई, लेकिन आखिरी वक्त पर इरादा बदल दिया। मैं अपनी मां और उनके साहस की ऋणी हूं। अगर उन्होंने तब साहस नहीं दिखाया होता तो शायद मैं इस दुनिया में आती ही नहीं।
0: काबिले गौर है कि मेलोनी के जन्म के बाद उनके माँ पिता के बीच पहले से ही खराब रिश्ते इतने बिगड़ गए कि सेपरेशन की नौबत आ गई। मेलोनी बमुश्किल एक साल की थी तब साल 1978 में फ्रांसिस्को पत्नी और दो बेटियों को बेसहारा छोड़कर स्पेन के कैनरी द्वीप चले गए। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। मां अन्ना के कंधों पर अपना गुजारा करने के साथ ही एक साल की जॉर्जिया मेलोनी और 2.5 साल की एरियाना मेलोनी की परवरिश की जिम्मेदारी आन पड़ी। नॉवेल राइटर अन्ना कलमकारी से इतने पैसे कमा लेती थी कि दोनों बच्चियों की परवरिश ठीक से हो जाए। विधाता जब किसी को आसमानी मकाम अता करने वाला होता है तो पहले उसका कड़ा इम्तहान लेता है। जॉर्जिया जब 3 साल की हुई तो एक नामुराद घटना ने जिंदगी की दुश्वारियों में एक और बड़ी परेशानी का तड़का लगा दिया। वाकया साल 1980 का है। 3 साल की जॉर्जिया अपनी बड़ी बहन एरियाना के साथ खेल रही थी। दोनों की उम्र इतनी नादान थी कि व्यवहारिक जीवन में आने वाले खतरे का जरा भी इल्हाम नहीं था। दोनों बहनों ने एक ऐसी गलती कर दी कि घर के सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस घटना का जिक्र एक इंटरव्यू में करते हुए जॉर्जिया मेलोनी की बड़ी बहन एरियाना ने कहा था,
1: मैंने और जॉर्जिया ने लड़कपन वाले कौतूहल में लाइट नहीं जलाने का फैसला किया। लाइट के विकल्प के तौर पर हमने मोमबत्तियां भी जला ली। ना समझी ऐसी थी कि हम दोनों ने जलती हुई मोमबत्तियों को रजाई और खिलौनों से ढक लिया और पूरी बेफिक्री के साथ कार्टून देखने चले गए। उसके बाद तो पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
0: आग में घर का सारा सामान जल जाने के बाद मेलोनी की मां के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत नया सामान खरीद लें। लिहाजा वो दोनों बेटियों को लेकर रोम के गरबा टेला स्थित अपने मायके शिफ्ट हो गईं। मायके में भी इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आराम से रह सकें, लिहाजा मेलोनी और उनकी बहन को लंबे समय तक फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़ा। इतने संकट और संघर्ष के बीच बचपन बीता जॉर्जिया मेलोनी का। स्कूलिंग पूरी होने के बाद माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे जॉर्जिया के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठा सकें। इसीलिए मेलोनी की ग्रेजुएशन करने की हसरत दिल के किसी कोने में दफन हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से मेलोनी ने काफी कम उम्र से ही कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे जिससे कि कुछ उपार्जन हो सके। कुछ समय उन्होंने सीडी बेची, यहाँ तक कि क्रैच में बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉर्जिया मेलोनी ने रोम के सबसे नामचीन नाइट क्लब पाइपर क्लब में बार टेंडर का भी काम किया है। साल 2013 में अपने संघर्षपूर्ण अतीत को भारी मन से याद करते हुए मेलोनी ने जो कहा था उसे सुनकर आपकी मानवीय संवेदना झंकृत हो जाएगी।
1: मैंने जीवन का ककहरा

0: शुरू से ही राष्ट्रवादी भावना से लबरेज रही है। वामपंथी विचारधारा की पुरजोर मुखालिफत उनकी नसों में लहू बनकर दौड़ता है। शायद यही वजह है कि महज 15 साल की उम्र में इटली की उस एमएसआई पार्टी से जुड़ गईं, जिसे इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी के समर्थकों ने 26 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। कहने की जरूरत नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी को मुसोलिनी की नीतियों और सिद्धांतों की प्रशंसा करने से कभी परहेज नहीं रहा। हालांकि 15 साल की उम्र में जॉर्जिया मेलोनी के राजनीति में कदम रखने के पीछे एक ऐसी दर्दनाक घटना का हाथ था जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। हुआ ये कि 19 जुलाई 1992 को प्रमुख इतावली मजिस्ट्रेट पाओलो बोर्सेलिनो को माफियाओं ने उनके 5 सुरक्षा कर्मियों समेत एक विस्फोट में उड़ा दिया, क्योंकि पाओलो बोर्सेलिनो माफियाओं के खिलाफ मामलों की सख्ती से सुनवाई कर रहे थे। इस घटना के बाद 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार के खात्मे के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली की संसद में अपने पहले भाषण में 25 अक्टूबर 2022 को उस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहा था,
1: मैंने 15 साल की उम्र में विया डी एमिलियो नरसंहार के बाद अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इस नरसंहार में माफियाओं ने जस्टिस पाओलो बोर्सेलिनो को उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ मौत के घाट उतार दिया। उसी समय मैंने तय कर लिया कि खामोश रहकर सब कुछ सहन करते रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है।
0: 15 की उम्र में दहशत और भ्रष्टाचार को खत्म करने के संकल्प के साथ राजनीति में आई जॉर्जिया ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमाम झंझावातों और संघर्षों को पार करते हुए आखिरकार 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया अगर अगले 3 महीने तक पीएम बनी रही तो 1948 के बाद इटली की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम बनने का तगमा भी उन्हें हासिल हो जाएगा। आपको बता दें कि इटली में 1948 के बाद से अब तक 68 सरकारें बदल चुकी हैं, यानी एक सरकार की औसत उम्र महज 16 महीने रही है, जबकि मेलोनी पिछले 43 महीनों से लगातार अपने देश की सेवा कर रही है।
2: तो बंदे में है दम में आज आपने जॉर्जिया मेलोनी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: अमरनाथ की सबसे पवित्र गुफा से बाबा अरफानी की पहली झलक सामने आ गई है। करीब 7 फीट ऊंचे बर्फ के शिवलिंग ने आकार ले लिया है। इस बार यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। पूरे यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को बाबा अरफानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा।

बाबा अमरनाथ की ये तस्वीर भोलेनाथ के भक्तों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीर शिव भक्तों को आस्था के रंग में सराबोर कर रही है। ये तस्वीर सामने आते ही महादेव के भक्तों में अमरनाथ यात्रा का उत्साह और बढ़ गया है। यात्रा की शुरुआत में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन से पहले ही ये तस्वीर ही श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की भक्ति के रंग में रंग रही है। बाबा अमरनाथ की इस पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बर्फ से बना करीब 7 फीट का शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। अमरनाथ गुफा के आसपास अच्छी खासी बर्फ जमी हुई है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाकर पवित्र गुफा तक

0: पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं। इस रास्ते को साफ करने वाले जवानों को ही भगवान के पहले दर्शन का सौभाग्य मिला है। यात्रा मार्ग पर ज्यादातर जगहों पर 6 से 8 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन कुछ जगहों पर जमी बर्फ 10 से 12 फीट तक हो चुकी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान इस मार्ग को साफ करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यात्रा रूट के ज्यादातर हिस्से को साफ कर लिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अब भी बर्फ से ढका दिख रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 15 जून तक पूरा यात्रा मार्ग साफ कर लिया जाएगा। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा 2 रूट से पूरी होगी। पहला रूट बालटाल सोनमर्ग से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचेगा। दूसरा रूट नुनवा पहलगाम से होकर जाएगा। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। इस साल यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा का विशेष महत्व है। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का सफर जितना कठिन है, उतना ही अलौकिक और आध्यात्मिक भी है। बर्फ से ढके पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाएं और शिव का नाम का अखंड जाप हर कदम पर भक्तों की आस्था को और मजबूत करता है। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा के दरबार तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। हालांकि अकेले या छोटे ग्रुप में जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन अब भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,00,000 के पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फ्रेंच रिवेरा में सजे कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक छोटे रेस्क्यू डॉग यूरी ने सबका दिल जीत लिया। चिली की फिल्म ला पेरा में शानदार अभिनय के लिए यूरी को प्रतिष्ठित पाम डॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्म में यूरी एक अकेली महिला की सूनी जिंदगी में खुशियों और अपनापन लौटाता नजर आ रहा है और बिना किसी बनावटी हरकत के उसकी मासूम मौजूदगी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। सम्मान समारोह में निदेशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टलो ने यूरी के साथ मंच साझा किया।
2: फ्रेंच रिवेरा का जश्न, लाल कालीन पर बेजुबान, कैमरों की लगातार चमक, दुनिया भर के बड़े कलाकारों की मौजूदगी। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा सिर्फ बड़े सितारे की ही नहीं हुई, बल्कि एक छोटे से रेस्क्यू डॉग ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस डॉग का नाम है यूरी, एक ऐसा मासूम साथी जिसने बिना बोले हर किसी का दिल छू लिया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार यूरी को पाम डॉग के खास सम्मान से नवाजा गया। ये अवार्ड उन खास डॉग्स को मिलता है जिनकी मौजूदगी फिल्म में नई जान डाल देती है। जैसे ही यूरी के नाम का ऐलान हुआ, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोगों ने मुस्कुरा कर स्वागत किया। यूरी को ये सम्मान चिली की फिल्म ला पेरा में उनके शानदार अभिनय के लिए मिला। ये फिल्म डायरेक्टर्स फोर्थ नाइट सेक्शन में दिखाई गई, जहां नई सोच और अलग कहानियों को जगह दी जाती है। निर्णायक मंडल ने कहा कि यूरी का अभिनय पूरी तरह स्वाभाविक लगा। यही सच्चाई दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है। सम्मान समारोह के दौरान निर्देशक डोमिंगा सोतोमायोर कैस्टिलो मंच पर पहुंची। यूरी को लाल रंग का खास कॉलर पहनाया, जिस पर सुनहरे अक्षरों में पाम डॉग लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: आपके कौन से काम ऐसे हैं जिसकी वजह से शनि आपको दरिद्रता देते हैं? आपके कौन से काम ऐसे हैं जिन कार्यों की वजह से शनि आपको धनी बना देते हैं? शनि का धन से क्या है संबंध और क्या है धन प्राप्ति के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: How are you?
7: I'm fine.
6: Nice to see you. Prime Minister Modi brought us a gift. A very, very good topic.
8: डिप्लोमेसी में मेलोडी युग का आगाज। दिलचस्प है मेलोनी की कामयाबी का राज। संघर्ष में ढूंढा सफलता का गूढ़ मंत्र। नाइट क्लब से पीएम तक का अनोखा सफरनामा। बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट, श्रद्धालु ने पवित्र सरोवर में किया स्नान, शब्द कीर्तन गुरुवाणी के साथ निभाई गई सभी परंपराएं। शिरडी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, देश की सुख समृद्धि के लिए की कामना, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। देश भर के 51,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा भारत की युवा शक्ति और तकनीक से दुनिया प्रभावित। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी लेने की तारीख बढ़ाई, 12वीं के छात्र अब 24 मई तक कर सकेंगे आवेदन, दोबारा जांच और सत्यापन के लिए सीबीएसई ने दिया अतिरिक्त समय। 26 मई को अपने 30 साल पूरा कर रही भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्य किरण, कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स स्टेशन में होगा भव्य समारोह, 3 दशकों में सूर्य किरण ने किए 800 से ज्यादा शानदार डिस्प्ले। यूपी के औरैया में भीषण गर्मी से पक्षियों को बचाने की शानदार पहल, पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं विशेष घोंसले, बेजुबानों के लिए दाना पानी का इंतजाम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

अब वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की हिफाजत में उड़ान भरता नजर आएगा देश में तैयार फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन। स्टेल्थ क्षमताओं से लैस ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसके पास रफाल जैसी ताकत होगी, सुखोई जैसी फुर्ती, मिराज जैसा दमखम। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नींव रखी जा चुकी है, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।